0: माँ पार्वती की माँ। लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे माँ आदि शक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधू का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में, और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं, क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है। कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नजर वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधु की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गोपवीतकम कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णुवादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रोत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थत शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषणे प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
0: गर्ग मुनि ने,
1: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिससे जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या

0: शंकर की पत्नी शोभित हुई, हिमालय की कन्या थी, लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया, कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसन्ति अधिकं मुने सा बभार तदाहारं दिव्य रत्न समन्वितं वलयानि महारानी शुद्ध चामी करानि च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवं सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है, और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो हैं पार्वती, वो हैं काली, वो हैं दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख भेड़िया नगारे बड़े ढोल गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे, स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में यह नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं, और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, बारात के साथ आए यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूढ़ गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधिवद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही विधि
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है, और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणि ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में, कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि वर वधु भी खा लेते हैं प्रायः प्रायः, सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं। तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से, वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी, अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
0: हो जाते हैं।
1: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना। पंडित
0: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्रायः प्रायः नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
1: क्योंकि एक
0: देवताओं का अनुग्रह बरसता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
0: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीला जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 सुबह के 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
0: लेकिन प्रायः प्रायः सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं, और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थीं, नगर की वधुएँ थीं, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले, और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुशोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधू की पूजा करे या वधू वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाए तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताहा सकला महोत्सवम, के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधू दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: दान कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वर्यामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षि समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकर तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विध सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणेश तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षि सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिव जी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता, मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं, तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ। हे पंडित देवर्षि, जब तुम्हें हठ से उन्होंने रोका, तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन वाच्य महेश विषय अतिव असि तुम बहिर्मुख, त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वच, अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशान का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था, इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर, तुम देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे। मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
3: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतयम पुराणो न हयन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
3: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान।
3: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें, अगर

0: आ ज्ञान प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है
0: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
0: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है, और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है, और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं, ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई है, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने

0: कहा कि तुम चाहे मर कर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
0: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संत लुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगो अस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे जो बातें हैं वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जनम बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति
0: स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं। वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं। और अध्याय दूसरा है, ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी, माना अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती

0: है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है तो। इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज हैं, वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो।
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा. Children are doing that.
0: I think it's happening every day.
1: कितनी बार आप movie में चले जाओ, आप shopping mall में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: School uniforms में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. Definitely.
1: तो जहाँ resistance मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दे. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत इजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों? क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी एक्चुअली, अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस, हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज. क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट.
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट, यू नो, पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है जब वो नीचे फ्लो कर रहा है? एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या?
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवनदायिनी, मनुष्य को देना.
1: एब्सोल्युटली. सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा हाँ. में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बींग. उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बींग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बींग. दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके. देर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रीचर्स, दैट्स ऑल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
0: उन्हें
1: nourish. और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते हैं. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
0: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना
0: and give them happiness, you know? Yeah.
1: ये मेरी responsibility है. तो imagine how the day will pass and then I'm sharing and giving without expecting. At the end of the day मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think इस satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
0: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में stress कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
1: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
0: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माय वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया. द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ इज माय वर्क.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबॉडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है. स्टॉप, माय रोल इज ओनली टू
0: वंडरफुल. यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
1: you know, flow,
0: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
0: You know, we, at times we stay.
1: रुका हुआ पानी रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है।
0: कई बार अपने साथ लोगों को कईयों को ले चलते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो,
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारी जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होके
1: आई फील ब्यूटिफुल।
0: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
1: हीलिंग हो जाएगी उससे। कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज को जरूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्पररी चीजों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है। मुझे अंदर पता होता है कि

0: लेकिन उस आवाज को सुनना मतलब इस टेम्पररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीजें ढूंढी हुई है इनसे दूर जाना। हम मैं इसको आवाज को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
1: बात करना बंद कर देते हैं।
0: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठ कर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे। That's good for me. Mm-hmm. Then I should follow that. So be quiet, let go, let be, accept everything, pass on to everyone as they come, and listen inside.
1: Mm-hmm.
0: Simple, simple things. सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं बहुत डिफिकल्ट, तो नहीं सिंपल सिंपल।
1: हाँ, और हर बार की तरह
0: स्टार्ट डूइंग दैट।
1: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज़ मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
0: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए। मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए, और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज़ है। But what we didn't realize is that every time we are inflicting so much of pain on ourselves, तो गुस्सा बार बार करना या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माई फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है। और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है, तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है, तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे,
2: watch it
0: and see it. तो what happens कि एक है कि जैसे ही हम अपनी consciousness की जो energy है उसको वहाँ से हटा देते हैं और वहाँ से हटाकर उस thoughts को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो energy को हटाते हैं वो जो emotion है वो finish हो जाती है. अभी क्या है, हम उस emotion को energy देते हैं,
2: fuel करते रहते हैं ना,
0: fuels.
2: We always say that उसने हमारे anger को fuel किया, but yeah. I think it's our energy.
0: खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है. तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है. अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी. सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन. It builds up more and more, and it can stay with me till a very, very long time. So, usse detach ho jayenge, and then come back to my stage, to the center. Ki main kaun? Om Shanti. Ye bhi agar yaad rahe, to it means main ek shant swarup atma hu. So, I come back to my stage that I am a peaceful being. The awareness, acknowledge, accept ke haan aa raha hai. Fir usse detach ho jaye, and then come back to my original stage. तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था, तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
2: गुस्से के दौरान भी करेंगे.
0: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है.
2: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है, और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस. So again, it may not go completely in one day, but the moment we start watching and going through these 5 steps, I think gradually we should be able.
0: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते. अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा. लेकिन वो एक-एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा, क्योंकि awareness जाएगी. You know, awareness चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है, and then it will go. And ये justification खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से. जब तक वो belief system सबसे strong है कि औरों की वजह से गुस्सा, then I will not change. Then I will keep waiting for you to change.
2: Yes, you know, we've always been saying it's just a thought way. So again, the thought that I am responsible, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, even if उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता ये कि हम इतने गिल्ट और रैंक मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया,
0: नुकसान हो जाता है. पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए औरों से और गुस्सा कर, यू नो, मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, यू नो, सो इट इज जस्ट
2: जस्टिफिकेशन ऑफ अ
0: वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
2: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पे कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज़ ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
0: पीस इज अ वर्ड व्हिच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड. यू नो वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस. हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है. यू नो एंड एट दैट टाइम वी से आई वॉन्ट पीस. पीस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ द बींग. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे. अंदर एक साइलेंस होगा. एक है साइलेंस, एक है नॉइज. यू नो तो पीस डजंट मीन कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइज है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है. वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
2: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
2: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क. व्हेन यू से कि आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या इस सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
0: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
2: उसके लिए.
0: एब्सोल्युटली
2: है ना. लेकिन मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिव इन हो गया?
0: नहीं, गिव इन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो है वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो देखो, औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
2: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कह सकते हैं
0: ओम शांति.

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं आने की आरजे साक्षी आ जाती हूँ आपके पास लेके अपने प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। आज है संडे का दिन और संडे वाले दिन आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, और आज ना हमारे साथ आज के एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। जी हाँ, डॉक्टर राजेश आज हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, हैप्पीनेस कोच है और साथ ही साथ योग गुरु भी है। तो इनसे बातें करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले ना अभी बहुत सारी जानकारी है जो आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं। तो देखिए, जानकारी आपके साथ साझा करूँगी, बातें करूँगी आपसे। आप फिलहाल के लिए तो कहीं मत जाइए क्योंकि अभी प्यारे प्यारे गाने लेकर के आ गई हूँ। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और इसी के साथ फैजाबाद से बाहर जाएंगे आप, तो ये मत सोचिएगा कि रेडियो मानव रचना के साथ आपका जो कनेक्शन है वो वीक हो जाएगा या टूट जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप हमारे साथ वर्ल्ड वाइड कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, और ऐप को देखते ही आपको ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करते हैं, ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर एवरग्रीन हिट्स आप सुन सकेंगे वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमें सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। अगर आप देखिए हमारे साथ और ज्यादा करीब आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो बस आपको हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को पेज को भी फॉलो करना है विद द नेम ऑफ रेडियो मानव रचना। तो चलिए फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। अब मैं बात करूँ, बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आ गई हूँ। जी हाँ, और देखिए बात हम करेंगे अब रील्स की। देखिए जो रील्स की लत है ना, ये कहीं ना कहीं आपको अकेला करती जा रही है और डिप्रेशन के देखिए एक मैं कहूँगी डालती चली जा रही है। और कैसे, देखिए ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये हमारे दिमाग पर असर डाल रही है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए इंडिया में ना युवाओं में मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रॉनिक स्ट्रेस जैसी समस्या सिर्फ उदासी या मूड खराब होने तक सीमित बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका जो युवाओं की सेहत पर और उनकी जिंदगी पर भी एक जो असर है, गहरा असर जो है वो पड़ रहा है। ऐसे में ये देखिए सवाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है सभी से कि अगर आपके साथ भी ऐसा है तो क्यों हो रहा है, क्या आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, और ये स्ट्रेस आप क्यों ले रहे हैं। तो चलिए इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बहुत सारी होती हैं बातें, मैं बात कर रही हूं रील्स की, इस आदत की. देखिए, कई बार हमने देखा ऐसे कि अगर आप सबके साथ बैठे, अब पहले के टाइम में ऐसा होता था जब हम खाना खाने जब बैठते थे ना तो सब अपना खाना एंजॉय करते थे. अच्छा, थोड़ी थोड़ी ना बातें भी हो जाती थी, सब बैठे हैं साथ में, बातें हो रही हैं, खाना खा रहे हैं. लेकिन अब क्या होता है, हम खाना तो खा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, क्योंकि हम सभी के हाथ में, जितने भी परिवार वाले बैठे हैं, मम्मी अपना फोन चला रही हैं, पापा अपना फोन चला रहे हैं, बच्चे अपना मोबाइल फोन चला रहे हैं, और ये धीरे धीरे हम सभी को अपने परिवार से भी अलग कर रहा है और आपको अकेलेपन की ओर धकेल रहा है. यानी कि रात में जब आप अपना जो टाइम है अपने परिवार के साथ बैठ के बात करने में गुजारते, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, अपने अपने कमरों में अपने बड़े मोबाइल फोन के साथ बैठे हैं, रील्स को स्क्रॉल करते हुए, या फिर कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ ई कुछ लर्निंग कुछ कर रहे हैं, आप कुछ भी करें लेकिन अपने मोबाइल फोन पे लगे हैं, जिसकी वजह से आप अकेले पड़ रहे हैं. और धीरे धीरे ये जो रिश्ते हैं कमजोर पड़ जाते हैं, सब अपने अपने में काम में मशरूफ रहते हैं, अपने अपनी चीजों में मशरूफ रहते हैं, और उसके बाद आप अकेले पड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं दिस लेड टू डिप्रेशन, क्योंकि आप इतने ज्यादा अकेले हैं, अब आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, आपके पास वो 4 दीवारें हैं जिनको आप बस देख रहे हैं, आपके पास वो मोबाइल फोन है, लेकिन आप मोबाइल फोन भी कितना चला पाएंगे, एक टाइम ऐसा आता है ना कि वो एक लिमिट जो है वो भी क्रॉस हो जाती है, हमारी आंखें थक जाती हैं, हमारी जो उंगलियां हैं वो थक जाती हैं, और उसके बाद जब आप चारों तरफ घूम रहे देखते हैं तो आपके चारों तरफ कोई नहीं होता, क्योंकि जब सब होते हैं तब हम अपने मोबाइल फोन में लगे होते हैं. और ये हमारे साथ अक्सर, हम जो लोग हैं अब वो जरूर नोटिस करेंगे, अब जो लोग हैं जो नई जनरेशन आ रही है उनके साथ ये ज्यादातर हो रहा है, और इसी वजह से स्ट्रेस के मामले हो गए या जो क्रॉनिक डिजीज के मामले हो गए वो तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये दबाव सीधा सीधा डिजिटल जो टॉक्सिन ये जो है हमारे अंदर बढ़ता चला जा रहा है, दबाव हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है. चलिए इसके बारे में और भी करेंगे बहुत सारी बातें, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। इसी के साथ बात मैं कर रही हूँ, अगर आप ज्यादा मोबाइल फोन अपना चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, आदत पड़ चुकी है, इससे क्या होगा, सीधा सीधा आपकी आंखों पर जोर पड़ता है, आंखें खराब होती हैं, नींद की समस्या रहती है। जिन लोगों को मोबाइल चलाने की आदत होती है ना, उनको नींद भी वैसी आती है फिर, या फिर वो पूरी रात जागते रहते हैं और फिर जब बॉडी हमारी थक जाती है तब अपने आप हमारी आंखों में दर्द होने लगता है और हम फोन रखते हैं। लेकिन वहां तक नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि आपकी आदत जो है वो खराब हो चुकी है रील्स देखने की। इसी के साथ साथ शारीरिक समस्या, गर्दन में दर्द होना या बैक पेन होना या मानसिक तनाव होना, ये भी आता है जब स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है और अकेलापन बढ़ जाना, या फिर देखिए मैं आपको बता दूं कि आप दूसरों से बात करने का ना मन नहीं करेगा, क्योंकि फिर आप इतने अकेले होने लगेंगे, इतना अकेला आपको अपने आप को अच्छा लगने लगेगा कि एक टाइम तो अच्छा लगेगा, उसके बाद जब आप अकेले पड़ जाएंगे तब आपके पास लोग नहीं होंगे। तो इसीलिए जो सोशल आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोशली लोगों से कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, घूमने जाइए, फैमिली के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए और फ़ोन को एक लिमिटेड टाइम पर आप रखिए। आप बहुत ज्यादा फोन चला रहे हैं तो उसका लिमिटेड एक टाइम जो है वो सेट कर दीजिए कि इससे ज्यादा फोन नहीं चलाएंगे, तभी आप इस आदत से, इस लत से बच सकते हैं, रील्स की लत से। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद हमारे साथ आकर के जुड़ जाएंगे डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी है। बहुत सारी होंगी इनसे बातें, तब तक के लिए कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, feel life.

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। आज संडे का दिन है और हमारे साथ डॉक्टर राजेश आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद है। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेश, मैं आपका स्वागत करती हूँ।
1: नमस्कार साक्षी, नमस्कार रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा।

0: बुक काफी अच्छी है और कई सारी राज जो है मैं कहूंगी इस बुक में छुपे हुए हैं। अगर आपको भी अपनी बॉडी के बारे में, मन के बारे में जानना है तो ये बुक है जिससे आप काफी ज्यादा ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश क्या कहना चाहेंगे?
1: धन्यवाद साक्षी, आपने किताबों की बात की है और मैं श्रोतागण से हमेशा कहना चाहता हूँ कि शरीर को और मन को जानते हैं हम, लेकिन शरीर और मन के बाद एक और भी आयाम होता है, वह है ऊर्जा
0: जी,
1: वह है आध्यात्मिक ऊर्जा
0: जी जी।
1: तो ये जो कुंडलिनी सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स जो बुक मैंने लिखी है और ये मार्केटिंग कर रही है इस बुक की पेंगुइन रैंडम हाउस और न्यू वॉइस प्रेस ने इसको रिलीज किया है। तो ये किताब अपने आप में एक अहम किताब है जिसमें एक डिवाइन जर्नी के बारे में बातचीत होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुंडलिनी है क्या। कुंडलिनी एक दैवीय शक्ति होती है जो हर इंसान में निहित है। आप कुछ भी हो, यह शक्ति आपके अंदर है, तभी आप इस संसार में, आपका जन्म हुआ है और आप अपने सारे स्किल्स को आप डेवलप कर रहे हो। इस किताब का एक बड़ा ही गूढ़ रहस्य है जो है शरीर, मन, ऊर्जा, भावना और आत्मा को हम कैसे समझें। और इसमें पूरा साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है और हमें डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल के साथ कैसे चलना है। और इस किताब में आपके लिए पर्टिकुलर 9 से 10 महीने की आपकी साधना की गाइडलाइन है। और ये किताब अभी अमेजोन पर भी अवेलेबल है और इस जरूर खरीदिए, बहुत सस्ते रेट में हम लोगों ने रखा है, लाइक 269 और 79 रुपीज। कुंडलिनी सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स।
0: बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आज हम बहुत सारी डॉक्टर राजेश के साथ बात करने वाले हैं। डॉक्टर राजेश, क्योंकि आज संडे है और हर संडे आप रेडियो मानव रचना के साथ आकर चुके जुड़ते हैं, कुछ अलग हम टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी हम सभी लिसनर्स को मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक की इजाजत आपसे लूंगी।
1: जरूर जरूर,
0: बिल्कुल। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बहुत सारी होती हैं बातें. डॉक्टर राजेश आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. डॉक्टर राजेश, एक बहुत ही खास ये टॉपिक जो है वो आज आपसे मैं जानना चाहती हूँ. कुंडलनी की बात हो रही है, आम भाषा में, आम लोगों के लिए, हम सभी के लिए. आप बताइए कि ये जो कुंडलनी है ये होता क्या है?
1: देखिए, कुंडलनी जो शब्द है ना, ये कुंडला वर्ड से आया है. कुंडला का अर्थ होता है पड़ा रहना. एक डेप्थ है, एक गड्ढा है, वहां पर कुछ पड़ा हुआ है. तो क्या पड़ा हुआ है? शक्ति, ऊर्जा. शक्ति और ऊर्जा, यही है कुंडलनी. कुंडलनी का अर्थ होता है एक दैवीय शक्ति जो हमारे अंदर पड़ी हुई है, उसे हमें जागृत करना है. तो जो भी हम योग का पाथ अपनाते हैं, चाहे वह भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग, इन सब का एक ही उद्देश्य होता है, आपके अंदर चेतना का विकास, चेतना का उत्थान. यही है कुंडलिनी योग का सार.
0: बिल्कुल. डॉक्टर राजेश, मैं ये जानना चाहूंगी कि कुंडलनी, क्या हर इंसान के अंदर कुंडलनी एनर्जी ये होती है?
1: जी, हर इंसान, इवन जानवर के अंदर भी.
0: अच्छा,
1: जानवर के अंदर. ये चक्रों का खेल है. हम लोगों के चक्र जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, अपवर्ड होते हैं, जानवर के पैरेलल होते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो ये सब में होता है. तो ये कुंडलिनी को हम समझने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि यह एक विशेष ऊर्जा है जो हमारे अंदर छिपी हुई है. इसको जगाने के पहले, इसको अवेक करने के पहले हमारे बॉडी माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है. आप ऐसे समझिए कि आप एक बल्ब को जब आप जलाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है 60 वाट की कैपेसिटी है.
0: करेक्ट.
1: अगर उस बल्ब के अंदर हजारों वाट का करंट आ जाएगा तो क्या होगा? बल्ब फ्यूज कर जाएगा. सेम वे कुंडलिनी एक हायर फोर्स है हमारे अंदर. अगर हमारा मन तैयार नहीं है, हमारे मन जो है उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभी सृजन नहीं हुआ है, तो ऐसे समय में जब ये ऊर्जा जगती है तो आदमी पागल हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, कहता है. तो हमारे नजर से जो अगर आप देखेंगे, जो पागल है उसकी भी ऊर्जा जगी हुई है, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसकी माइंड ने उसको संग्रह नहीं कर पाया. इसलिए कोई भी ऊर्जा पर अगर आप काम करते हैं तो आपका शरीर तैयार होना चाहिए, मन तैयार होना चाहिए, आपकी भावना जो होंगे वह संतुलित होनी चाहिए. यही है कुंडलिनी योग. और इसी में हम चक्रों का खेल भी समझते हैं. हमारे अंदर जो है कई प्रकार के चक्र होते हैं जो मेडिकल साइंस के रूप में हम देख नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका हम अनुभव कर सकते हैं. ऋषि मनुष्यों ने अनुभव किया है. ये जो चक्र है, सबसे पहला चक्र जो होता है वह है मूलाधार. मूलाधार चक्र जो है वह आपके पेरिनियम सेंटर में पुरुष में होता है, और महिलाओं में पोस्टीरियर पार्ट जो सर्विक्स सेंटर के पीछे वाले हिस्से पर होता है. और उसके सेकंड चक्र जो होता है उससे 4 उंगली ऊपर जो कॉक्सिक बोन, टेल बोन जो शुरू होती है, उसको कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र. ये दोनों चक्र का जो काम है आपकी सेक्सुअलिटी को मॉनिटर करना, सेक्सुअल एनर्जी को मॉनिटर करना. ये बेसिक इंस्टिंक्ट जो है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को भी गाइड करती है. आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो है, ये 4 जो हम समझते हैं, ये 2 चक्रों का काम है. इसके बाद क्या होता है, तीसरा चक्र आता है, वह है नाभि के पीछे वाला हिस्सा जो स्पाइनल कॉर्ड पर है, वहां पर यह चक्र होता है मणिपुर. मणिपुर ऊर्जा जो भी हम खाते हैं उसमें इम्यूनिटी, वाइटलिटी एंड डायनामिज्म प्रदान करता है आपके व्यक्तित्व को. ये पाचन तंत्र को गाइड करता है. मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र जो है आपकी सेक्सुअलिटी को गाइड कर रहा था, और वहां पर जो हार्मोन होते हैं टेस्टिस एंड गोनाड्स, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और गुनाइट से प्रोजेस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन जो फीमेल को, ये तो हार्मोन, लेकिन मणिपुर चक्र से आपकी एड्रेनल ग्लैंड कंट्रोल होती है। उस पर जो दो हार्मोन है एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, उसके बाद फिर एक और चक्र आता है जो हार्ट चक्र के नाम से हम जानते हैं, जिसको कहते हैं अनाहत चक्र। वह स्टर्नम के पीछे वाला हिस्सा है जहाँ लव है, कंपैशन है, एम्पैथी है। इस स्टेट को जो हम कहते हैं ये डिवाइन स्टेट है, ये कंप्लीट जॉय और पीसफुल का है। और यहाँ पर जो हार्ट चक्र के जो ग्लैंड है स्पेशल, वह है थाइमस, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप कभी कभी सुने होंगे किसी का ब्रेकअप हो गया, वो घर में सो रहा है, डिप्रेस्ड है, कोल्ड है, कफ है, वो है क्या? तो आपकी पूरी इम्यूनिटी जो है हो गई इनसाइड, कोलैप्स कर गई। वही अगर आप हैप्पी हैं तो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत हैप्पी हैं, जॉय है, किसी के साथ आप लव में हैं, तो ये हार्ट चक्र का खेल है। उसके बाद जो आता है विशुद्धि चक्र आता है, वो थ्रोट चक्र जिसको कहते हैं। थ्रोट चक्र जो है स्पेशली आपके ग्लैंड वह है थायराइड को मेंटेन करता है। यह आपके अंदर विशुद्धि का अर्थ होता है प्यूरिफिकेशन, बाहर के किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स एनर्जी को अंदर में आने से बचाता है। हम कहते हैं ना, भगवान शंकर गले में सर्प की माला लेके रखे हुए हैं, विष को उन्होंने पान कर लिया है, हलाल कर लिया है, और उनका नाम पड़ गया है नीलकंठ। अरे ये पॉइजन है क्या? एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो आ रहा है उसको हमने यहीं पर रोक दिया, अपने शरीर में आने ही नहीं दिया, मन के ही धरातल पर उसको डिसॉल्व कर दिया। यही है विशुद्धि चक्र। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है वह एंड ऑफ द स्पाइन, भ्रूमध्य के पीछे वाला हिस्सा है, और यहाँ पर जो चक्र का काम है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को मेंटेन रखना, पूरी नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना। और इसके बाद दो और चक्र होते हैं जिसका विशेष उपयोग हम लोग करते हैं और साधक करते हैं, जहाँ पर शिखा और चोटी बांधते हैं ना, पुरुष चोटी शिखा बांधते हैं, स्त्रियां चोटी बांधती हैं, उस जगह को कहते हैं बिंदु चक्र। ये बिंदु चक्र से अमृत हमेशा गिरता है और नाभि में जाकर के वह खत्म हो जाता है, और इससे जो अमृत गिरता है, इस अमृत का उपयोग हम अपनी सेक्सुअलिटी में करते हैं, जनरल लाइफ में। लेकिन योगी क्या करता है, खेचरी मुद्रा को लगा करके अपने विशुद्धि चक्र पर इस अमृत को रोकता है कंठ पर, ताकि उसकी लाइफ जो हो लंबी हो और निरोग जीवन रहे। इसलिए अमृत को वह बचाता है, रसपान करता है अपने विशुद्धि चक्र पर। और लास्ट में जो होता है क्राउन चक्र, जिसको हम सहस्रार चक्र कहते हैं, वो तो कंप्लीट दिव्य रूप है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, स्वयं को हम स्वयं से जोड़ लेते हैं, और यही है समाधि का स्टेज। तो ये कुंडलिनी योग जो है, यह ऊर्जा जो है फेमिनिन एनर्जी है जो मूलाधार में निवास करती है, और जब आप योग का अभ्यास करते हैं हर चक्रों से यह गुजरते हुए धीरे धीरे धीरे धीरे सहस्रार तक पहुंचती है। तो जो शक्ति है वह शिव से मिलती है, शक्ति और शिव का मिलन ही

0: कुंडलिनी योग है।
1: बिल्कुल।
0: तो शक्ति यहाँ ऊर्जा हो गई और शिव जो है यहाँ चेतना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, ये तो हमने अभी जाना है, चक्रों के बारे में हमने जाना है, और कुछ और भी मैं ज़रूर आपसे बातें जानना चाहूँगी, लेकिन अभी एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

राजा ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से।

0: प्यार है, आता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक के करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डर है।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। संडे का आज दिन है और बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं, कुंडलिनी एनर्जी पे हम बातें कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी, कुंडलिनी अवेकनिंग के साइंस की अगर हम बात करें, सिम्टम्स साइन की अगर बात करें, तो वो क्या होते हैं और कैसे हम ये पहचान सकते हैं कि अब जो है कुछ बदलाव तो आ रहा है।
1: संतुलन, जीवन में संतुलन, स्थिरता, सब में प्रेम भाव को देखना, किसी से राग द्वेष नहीं रखना, मैं और तुम के भाव से हट करके सब में ईश्वर के उसी गुण को हम दर्शन करते हैं, तो समझो इस आदमी ने अपनी चेतना का विकास किया है।
0: लेकिन डॉक्टर राजेश, मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के इस टाइम में जो लाइफस्टाइल इतनी भाग दौड़ भरी चल रही है और छोटी छोटी बातों पे हम स्ट्रेस लेते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो क्या एक नॉर्मल इंसान क्या इस कुंडलिनी एनर्जी को प्राप्त कर सकता है? क्योंकि एकदम से चेंज आना बहुत मुश्किल है कि आप अगर किसी ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ इतना सारा काम है, स्ट्रेस है, हम ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इसे अचीव किया जा सकता है?
1: साक्षी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं। जब से सृष्टि बना है, हम अगर आदि मानव के इतिहास को देखते हैं तो उनके भी जीवन में बहुत संघर्ष था, वो समय से भी। समय समय पर सारे चीजें जो हैं चैलेंजेस का रूप बदलता गया, अभी का रूप कुछ और हो गया है, लेकिन संघर्ष तो जीवन में हमेशा रहा, योगियों के साथ, तपस्वियों के साथ, हर लोगों के साथ, राजाओं के साथ, हमेशा संघर्ष तो है ही अगर इतिहास को जानेंगे। अब इस संघर्ष में अपने आप के लिए थोड़ा समय निकालना, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि हमारा जो जन्म है, इस जन्म का सिर्फ एक ही उपयोग थोड़ी है कि मुझे कमाना है, खाना है और बच्चे पैदा करना है, संपत्ति अर्जित करना है और चले जाना है, ऐसा नहीं। कुछ हमारे भी इस शरीर और आत्मा के लिए कुछ करना होगा, मन के लिए कुछ करना होगा। ये शरीर का जो है उपयोग सारे चीजों के लिए संतुलित में, जीवन के हर आयाम को संतुलित करना है, समाज के साथ, परिवार के साथ और अपनी जो भी जरूरत की चीजें हैं, लेकिन उससे एक समय निकालना है जिसमें अपने लिए कुछ तो करना होगा। यही है जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक पाथ। और आध्यात्मिक पाथ जो है वह क्या करता है, योग को अगर हम जानेंगे ना, सारे योग का एक ही कंक्लूजन होता है, चाहे आप राजयोग करते हो, भक्ति योग करते हो, कर्म योग करते हो, ज्ञान योग करते हो, एक ही चीज है, चेतना का विकास। आज के युग में जो हम देखते हैं कि योग करने का अर्थ है कि हम शरीर का वजन कम करें, बीमारियों को खत्म कर लें, यह ऑब्जेक्टिव योग नहीं है, ये योग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तो हाथी से हम चीटी, हाथी के बल को हम चीटी मारने में उपयोग कर रहे हैं। योग का जो लक्ष्य है वह है आत्म संयम, आत्म शुद्धि, आत्म अनुशासन और आत्म साक्षात्कार, मैं कौन हूं। जिस दिन मैंने समझ लिया मैं कौन हूं, फिर तो सारा मैटर ही सॉल्व हो गया।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या बिना प्रॉपर गाइडेंस के कुंडलिनी प्रैक्टिसेस डेंजरस हो सकती है? क्योंकि अभी आपने कहा जैसे कि एक बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है, अगर 1000 वॉट का उसमें पड़ जाता है तो फ्यूज हो जाएगा, तो क्या अगर अकेले किया जाए इसकी प्रैक्टिस, तो क्या ये डेंजरस है या नहीं?
1: देखिए, डेंजरस तो कोई भी चीज है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपको आती नहीं है तो आप ठोक दीजिएगा। लेकिन इस किताब में जो कुंडलिनी सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स लिखने की जो मेरी इच्छा हुई है, तो इसमें प्रॉपर गाइडलाइन है, आपके 9 से 10 महीने के जो प्रैक्टिसेस हैं, पूरा रोड मैप बना हुआ है कि आप इससे चलिए, सारे इसके अनुशासन, डिसिप्लिन, सारे चीजों के बारे में चर्चा है और बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, कुंडलिनी सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, मेरा अगला सवाल ये होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर कुंडलिनी को काफी ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, रियलिटी और मिथ में क्या डिफरेंस है?
1: देखिए, रियलिटी तो यही होता है कि जो चीज आपने सुना है और जब उसका आप अनुभव करते हैं। मैंने रसगुल्ला के बारे में बहुत सुना है, रसगुल्ला कभी खाया ही नहीं, तो वो मिथ हो गया। और रियलिटी जिस दिन मैंने रसगुल्ला खा लिया तो अनुभव हो गया कि सफेद रसगुल्ला का टेस्ट कैसा है और गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा, दोनों रसगुल्ला ही है। ये एक्सपीरियंस, रियलिटी का अर्थ होता है एक्सपीरियंस। सत्य जो है, ट्रूथ जो है ना, स्क्रिप्चर साहब को बताता है। बाइबल टॉक्स अबाउट द ट्रूथ, गीता टॉक्स अबाउट द ट्रूथ, कुरान टॉक्स अबाउट द ट्रूथ, गुरु ग्रंथ साहब टॉक्स अबाउट द ट्रूथ, बट हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस ट्रूथ इज अ रियलिटी ऑफ आवर सेल्फ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा मिथ है जो आपने सुना हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या किसी के थ्रू आपने सुना हो, जो कि कुंडलनी को जो है इसके बारे में आपने सुना हो और आपको लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, तो वो मिथ बस्ट आप आज कीजिए।
1: देखिए, सबसे पहले कुंडलनी के पहले एक बार मैं बताऊं, जब मैं 28 इयर्स पहले जब मैं योग में आया था, जब मैं योग सीखने के लिए जाता तो कुछ लोग कहते थे क्या, अरे योग करोगे तो पगला जाओगे, ऐसे कहते थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों लोग समाज में कहते हैं। बाद में समझ में आया कि जब आप आदमी योग करने लगता है तो वह अपने आप में चेतना का विकास करता है, फिर वह छोटी मोटी चीजों में उसकी इच्छाएं नहीं रहती है, वह हमेशा ईश्वर के चिंतन में लगता है, वह अपने आप के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, एक सकारात्मक दृष्टि तैयार करता है, और यही चेतना का विकास है, और इसी का नाम है कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति जो है, यह हर को अवेकन करना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, क्योंकि अब आपको मालूम है कि हमें कैसे आगे की ओर आना है
0: जी।
1: आगे बढ़ना है, मुझे कर्म करते चलना है। फल की इच्छा के हेतु के लिए हम कर्म नहीं करते हैं, ये तो चेतना का विकास होगा तभी तो हम इसको समझेंगे। रट करके तो हम भगवद गीता में सुनते आ रहे हैं बचपन से कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन इसको रियलाइज करना, जो रियलिटी में लाना है, इसके लिए तो साधना करना पड़ता है। साधना जो है आपके अंदर डार्कनेस को खत्म करती है, इग्नोरेंस को खत्म करती है, इसीलिए हम गुरु के पास जाते हैं, इसीलिए हम मास्टर के पास जाते हैं, इसीलिए हम अच्छे ज्ञानी की खोज करते हैं जो हमारे अंधकार को खत्म कर दे।
0: बिल्कुल।
1: और अंधकार हमारा जो है क्या है, राग द्वेष ईर्ष्या अभिनिवेश, यही पांच जो है, जो इसको हम कैसे खत्म कर ले, हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइक।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।
1: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज है सैटरडे का दिन और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी है। डॉक्टर राजेश, आपसे बातें हमारी चल रही हैं और कुंडलिनी योग के बारे में, कुंडलिनी एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कुंडलिनी की बात करें, क्या डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जो है कुंडलिनी जर्नी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर इसको जैसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग से टाइम निकाल के हम रोजाना प्रैक्टिस करें तो उससे भी मुमकिन है?
2: देखिए, जब साधना आप करते हो तो अनुशासन की जरूरत होती है, जब आप नौकरी करते हो अनुशासन की जरूरत होती है, जब आप शिक्षा ग्रहण करते हो गुरु के आश्रम में अनुशासन की जरूरत है। अनुशासन जो है मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जब आप पतंजलि योग सूत्र को खोलेंगे ना तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ, पहला शुरुआत जो सूत्र की होती है कहता है अथ योग अनुशासनम। अथ का अर्थ होता है नाव, योग अनुशासन की ओर ले चलता है। मतलब अब आप 40 इयर्स 30 इयर्स 50 इयर्स, जब भी आप योग जिस दिन शुरू करते हैं कहते हैं कि भूल जाओ, पीछे भूल जाओ, नाउ अब आप अनुशासन में आ गए। अथ योग अनुशासनम, योगा मेक्स यू डिसिप्लिन। और जब आप डिसिप्लिन को जब आप रोज लगेंगे साधना में, तो दूसरा सूत्र महर्षि पतंजलि लिखते हैं वह क्या है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है। आपके चित्त के अंदर, आपके मन के अंदर जो मेंटल मॉडिफिकेशन होता है ना, जो तरंगे पैदा होती है, जो वृत्ति पैदा होती है, योग उसका निवारण कर देता है। और ये 5 वृत्तियां होती हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 जो स्मृतियां है ना, वृत्तियां है ना, इसको योग बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर देता। और तब तीसरा सूत्र महर्षि पतंजलि लिखते हैं, ततः दृष्टा स्वरूपे अवस्थानाम। अब आप अपने आप के प्रति दृष्टा हो, अपने आप के प्रति साक्षी हो, अपने आप के प्रति विटनेस भाव में अब आप जी रहे हो कि जो भी हो रहा है सब दृष्टा में हो रहा है,
1: बिल्कुल
2: सब साक्षी में। रियलाइजेशन कितना फास्ट हो गया, परसेप्शन कितना इजी, क्लैरिटी हो गई। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि सिर्फ 1 घंटे का योगा अभ्यास ही मत करो, थोड़ा सा इसके ग्रंथों के पीछे भी जाओ, बड़ा आनंद आता है।
1: बिल्कुल,
2: और बहुत ही अच्छे लॉजिकल वैल्यूज सब आपको मिलेंगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, एक आखिरी सवाल जरूर आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा और सभी लिसनर्स जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज है संडे का दिन और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है और बहुत सारी हम इनसे बातें कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश, कुंडलिनी योग पे हमारी बातें चल रही हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहती हूँ, क्या वो खास संदेश है जो आप हमारे सभी लिसनर्स तक पहुँचाना चाहते हैं? कुंडलिनी योग है, लाइफस्टाइल है, तो क्या कहना चाहेंगे?
2: कुंडलिनी योग लोगों को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए और इस किताब को अपने घर में जरूर लाइए, इसमें आपको प्रॉपर गाइडलाइन है, इसके पीछे जो साइंस है, साइंस बिहाइंड कुंडलिनी है। एंड एवरी रिलीजन व्हाट दे अंडरस्टूड एंड दे प्रैक्टिस अबाउट द कुंडलिनी, ये भी इसमें है। और एक आपको प्रॉपर रोड मैप है, गाइडलाइन है, इस किताब को जरूर अपने घर में लाइए और जरूर पढ़िए, बहुत सारी चीजें आपका मिथ से पर्दा उठेगा। और कुंडलिनी सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स जो है अवेलेबल है अमेजोन पर सिर्फ 270 और 80 रुपीस के।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश, आप हमारे स्टूडियो और इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
2: धन्यवाद साक्षी, धन्यवाद रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिलकर के काफी अच्छा लगता है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप के प्रति सजग बनिए।
1: बिल्कुल, चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, कल होगी आपसे मुलाकात, होगी बहुत सारी बातें, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: योर सिटी योर रेडियो, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो मनोरंजना 107.8 FM।
2: वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आप लोग इस टाइम जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजना 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइव। ये शो हमारा हर बार की तरह मैं बोलूंगा बहुत स्पेशल होने वाला है। रीजन बीइंग, यहाँ पर आप एजुकेट होते हैं, आपको पता लगता है एग्जैक्टली हम जो बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहे हैं, कौन सी वो कंपनीज हैं, क्या क्या कर रही हैं कंपनीज, अलग अलग डोमेन, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग चीजें फॉलो की जा रही हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो हम शुरुआत करते हैं अपने फॉर्मेट को ऐसे कि हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, देन वी गोना टॉक अबाउट द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर्स, हाउ इट स्टार्टेड, यूएसपी, और जो इनसाइट हमारे पास अवेलेबल है वो तमाम चीजें यहाँ पर आपको बताएंगे, इट विल हेल्प यू अलॉट। तो फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, मैं इतने कहूंगा कि मैं आ चुका हूँ, आप लोग जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजना 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइफ।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर USA एंड UK। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड $100 बिलियन, और ये 2027 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, $150 बिलियन तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है, ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ भी करते हैं, एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रोमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज़ जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफ़ी

तारीफ होती है। सो यूपीआई एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक यूपीआई यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट यू नो अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज यूपीआई। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ आरबीआई की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, सेबी की तरफ से बनाई गई हैं, आईआरडी की तरफ से बनाई गई हैं, एनपीसीआई की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं हूँ सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहाँ पर अगर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गाँव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज़ बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि गांव में इस टेक्नोलॉजी को अगर पहुँचा दिया और वहाँ के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गाँव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहाँ के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टैक्स से भी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है, इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर ये हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या क्यूआर बेस्ड यूपीआई। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स को आ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, आईडीफाई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो है वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या, दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना बताया कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है, और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टैग होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। उसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस। RBI ने नई गाइडलाइंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहाँ पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं, जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है, और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का वो इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव जो है वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव है, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताइए फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

0: Dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum
1: dir ta Welcome back. मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी हैं और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर 2 एंड टीयर 3 जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं आप फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोज कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड देन उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

रसार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: बिना किसी देरी के शो को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट टुडेज कंपनी. सो द नेम ऑफ दिस कंपनी इज फ्रियो, FREO. इमेजिन करिए आप एक ऐसे बैंक को जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, जहां पर लंबी लाइन नहीं लगती, जहां पर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क नहीं होता, सिंपली आपके स्मार्टफोन में रहता है, जब आप चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं. वेल एग्जैक्टली दैट इज द कंपनी, दैट इज द आइडिया बिहाइंड फ्रियो. फ्रियो एक इंडियन फिनटेक कंपनी है जो अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करती है, वी आर क्रेडिट लेड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म. यहां पर आपको डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ऑफर की जाती है. ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन. डिजिटल सेविंग्स का आपको सॉल्यूशन यहां पर मिलता है, पर्सनल क्रेडिट लाइन यहां पर आपको मिलता है, क्रेडिट कार्ड्स आपको मिलते हैं, क्रेडिट स्कोर ट्रैकिंग आपको मिलता है, क्रेडिट ऑन UPI भी आपको मिलता है, एंड इसके अलावा और इनके प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मनी लैंड करने में हेल्प करते हैं. सो यहां पर एक जो मिशन ये लेकर के चल रहे हैं वो ये है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ईजी बनाना, फास्ट बनाना, ज्यादा एक्सेसिबल बनाना, और इंडिया का जो डिजिटल पॉपुलेशन जिसमें ग्रोथ हो रही है उसमें अपना योगदान देना. Now, how exactly it started? So the story of Frio actually started with another fintech product called MoneyTap. देखिए 2015-16 में इंडिया ने बहुत रैपिड एक ग्रोथ देखी, रैपिडली हम लोग चेंज हुए क्योंकि स्मार्टफोन अफोर्डेबल हो गए थे, इंटरनेट हमारे फोन में आ चुका था, डिजिटल पेमेंट जो है वो ग्रो कर रही थी, बट देर वॉज अ गैप कि पर्सनल लोन अभी भी स्लो था, स्ट्रेसफुल था. तो बहुत सारे जो एग्जैक्टली यंग प्रोफेशनल थे उस टाइम पे, उन्हें ट्रेडिशनल मेथड समझ नहीं आते थे कि बैंक जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अप्रूवल का वेट करो, उसके बाद लोन अमाउंट जो है वो फिक्स करो. तो यहाँ पर फाउंडर्स को समझ में आया कि अगर किसी ने 2 लाख रुपए का लोन लेना है, ठीक है, एंड उसके लिए उसको इतना पेपर वर्क नहीं करना है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर किसी को 20,000 रुपए का लोन लेना है, ठीक है, तो मानकर चलो यार कितना अमाउंट है, बट उसके लिए 1 लाख रुपए क्यों ले वो, क्यों कोई मिनिमम लिमिट हो, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, ठीक है. उसके बाद फिर इन्होंने क्रेडिट लाइन के लिए एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया. मनी अवेलेबल थी वेन एवर नीडेड, ठीक है, जहां पर कस्टमर्स उसको यूज कर सकते थे जब भी उन्हें जरूरत थी. उस प्लेटफॉर्म का नाम था MoneyTap. इसको बनाने के बाद डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उसको बना दिया, टीम ने अपने विजन को एक्सपेंड किया. दे रियलाइज कि पीपल डोंट जस्ट नीड लोन्स, दे नीड एन एंटायर डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जहां पर 2021 में MoneyTap को इन्होंने इवॉल्व करके फ्रियो बना दिया. सो बेसिकली फ्रियो स्टार्ट हुई तो नहीं बोलूंगा, बट ट्रांसफॉर्म हुई थी MoneyTap इनटू फ्रियो इन 2021. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट, दैट इज द स्टोरी बिहाइंड इट. नाउ लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव.
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए. डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा. क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है. ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं.

धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंदीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं। मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं। चाहिए

वेलकम बैक, हमारे सागर शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। एंड आई एम जस्ट होपिंग आपको मजा आ रहा है। यहाँ तक जितनी केस स्टडी आपको बताई है, जितनी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया है, कंपनी के बारे में आपको बताया है, आपको समझ भी आई है और आपको अच्छा भी लग रहा है। बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। पहला नाम कुणाल वर्मा। कुणाल वर्मा इज द को फाउंडर एंड CEO ऑफ फ्रियो। बिफोर बिल्डिंग फ्रियो उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट बिल्डिंग में, कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेस में। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या जो कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके लोगों को दे सकते हैं ताकि उनके लिए यूज करना आसान हो। हिज बिगेस्ट बिलीफ इज टेक्नोलॉजी शुड नॉट जस्ट डिजिटाइज बैंकिंग, इट शुड रीडिजाइन द एक्सपीरियंस। एंड एग्जैक्टली वही ये कंपनी कर रही है। दूसरा नाम आता है अनुज कैकर। अनुज कैकर जो हैं वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एलुमनाई हैं। इनके करियर की अगर बात करें, बिफोर एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने बिजनेस में, मार्केटिंग में, स्केलिंग करने में, कस्टमर प्रोडक्ट्स को उसमें अपना जो है एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया है। ISB में भी इनको रिकॉग्नाइज किया गया था एज एन ISB यंग लीडर फॉर लीडरशिप कंट्रीब्यूशन। मतलब कॉलेज टाइम से ही लीडरशिप क्वालिटी थी और इनके कॉलेज ने ही उसको आइडेंटिफाई किया, इनको रिकॉग्नाइज किया, इनको रिवॉर्ड भी मिला था उसको लेकर के। सो इनका फोकस फ्रियो में रहा है कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस ग्रोथ एंड मेकिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट सिंपलर। तीसरा नाम आता है बाला पार्थसारथी। बाला जो हैं वो एकदम आप कह सकते हैं टेक की दुनिया से आते हैं, स्टार्टअप एक्सपीरियंस से आते हैं। सो बिफोर फ्रियो ही वाज ऑलरेडी डूइंग रियली वेल, ही वाज ऑलरेडी नोन इन इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड कंट्रीब्यूटेड एक्सपर्टीज जो इनकी थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, टेक प्लेटफॉर्म्स में, डिजिटल बिजनेसेस को स्केल कैसे करना है। तो यहां पर ये तीन लोग मिले तब जाकर के कंपनी स्टार्ट हुई। सो कुणाल लेकर के आए प्रोडक्ट एंड बिजनेस विजन, अनुज लेकर के आए कंज्यूमर स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ, एंड बाला लेकर के आए टेक एक्सपर्टीज। तो तीन अलग अलग डोमेन्स के लोग आकर के मिलते हैं एक जगह पर सेम विजन के साथ, तब जाकर के कहीं कोई कंपनी ऐसा कुछ कर पाती है। बिकॉज यू कांट डू एवरीथिंग एट वंस, सो यू नीड अ प्रॉपर टीम, यू नीड पीपल जो आपकी तरह सोचते हो, आपकी तरह देखते हो। That's how it started. Okay, got music break. Us ke baad show ko aage badhayenge. Stay tuned, feel good, feel live.

वंस अगेन वेलकम बैक। अगर कोई फीडबैक है तो 8010781078 पर जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स टेक द शो अहेड। सो व्हाट एग्जैक्टली वाज द प्रॉब्लम दैट फ्रियो वाज ट्राइंग टू सॉल्व एट दैट टाइम? तो मैंने बताया कि फाउंडर्स को यहाँ पर एक मेजर गैप नजर में आया कि ट्रेडिशनल बैंकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। अभी भी बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगी सेम प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड है वो बहुत। और जो यंग इंडियंस हैं उनके पास भैया अब फोन आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, स्पीड की आदत लग चुकी है, तो उन्हें चाहिए स्पीड एंड कन्वीनियंस। दूसरा है क्रेडिट एक्सेस जो है बहुत लिमिटेड था। बहुत सारे ऐसे भी वर्किंग इंडियंस थे जिनके पास एक्सेस ही नहीं था, फ्लेक्सिबल लोन्स का ऑप्शन ही नहीं था मार्केट में। 2 लाख रुपए लो, 1 लाख रुपए लो, अगर किसी को 20,000 रुपए या 15,000 की जरूरत है, सॉरी कोई ऑप्शन नहीं है। एंड तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत स्कैटर्ड थे। ठीक है, एक ऐप आपको बैंकिंग बता रही है, दूसरी ऐप आपको लोन के बारे में बात कर रही है, तीसरी ऐप आपको कार्ड के बारे में बता रही है। इन्होंने क्या किया, सिंपल उसको कंपाइल करके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के आए। तो यहाँ पर बिजनेस मॉडल भी एग्जैक्टली इसी एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करता है। पहला है इनका लैंडिंग पार्टनरशिप, ये जो है काफी सारे रेगुलेटेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ काम करते हैं ताकि लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड कर पाए, जो बैंक्स हैं प्रॉपर रेगुलेटेड। उसके बाद सेकंड आता है डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कस्टमर जो हैं वो फ्रियो ऐप इकोसिस्टम को यूज करते हैं फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड तीसरा आता है टेक प्लस डाटा, कंपनी जो है डिजिटल प्रोसेस जो है वो यूज करती है टू इम्प्रूव रिस्क असेसमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड फास्टर अप्रूवल्स, ताकि किसी को वेट ना करना पड़े। अगर वेट नहीं करना पड़ेगा, स्मूथ हो जाएगा सर, तो बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। साथ साथ ये रिस्क भी यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं अपने टेक की मदद से कि सामने वाला इंसान जिसको हम लोन दे रहे हैं कि क्या उसको रीपे कर पाएगा या नहीं। हालांकि ट्रेडिशनली ये जो चीज़ थी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसमें बहुत सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, ऑफलाइन लोग जाते थे घरों में जा के वेरीफाई करते थे, तब जाकर के लोन्स कहीं अप्रूव हुआ करते थे। बट यहाँ पर इस कंपनी ने इस एक प्रॉब्लम को भी फिक्स किया। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए हैं। लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। एंड वी गोना टॉक अबाउट यूएसपीज। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव

फील गुड फील लाइव। मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्ना 107.8 के साथ। फ्रियो हमारी आज की कंपनी है, उसकी यूएसपीज की बात करेंगे। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, पहला है क्रेडिट फर्स्ट नियो बैंक अप्रोच। बहुत सारी जो फिनटेक एप्लीकेशन या कंपनीज आपको नजर आती हैं वो पेमेंट से स्टार्ट होती हैं, बट इस कंपनी ने क्रेडिट से अपना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो किसी को, मनी का एक्सेस दे रहे हो आप लोगों को। ये बहुत कुछ डिफरेंशिएट करता है, कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताता है। दूसरा आता है फ्लेक्सिबल क्रेडिट। सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग कस्टमर्स इनटू ट्रेडिशनल लोन्स, तो यहां पर इन्होंने कस्टमर को एक्सेस दिया, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट जो आपको चाहिए वो आप ले लीजिए, और जब आप पे कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपनी यूजेज के हिसाब से, आप उसको पे कर दीजिएगा। देन डिजिटल एक्सपीरियंस, यहां पर गोल था बैंकिंग शुड फील लाइक यूजिंग अ मॉडर्न ऐप, नॉट डीलिंग विद पेपर वर्क एंड यू नो गोइंग थ्रू दोस क्यूज एंड लाइंस एंड फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स दे आर जस्ट वेटिंग। नेक्स्ट आता है यहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर दे दिए, सेविंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट इकोसिस्टम, तो सब कुछ एक जगह पर मिल गया। तो ये मैंने पहले भी बोला था कि यंगस्टर्स को चाहिए स्पीड एंड कन्वीनियंस, दोनों चीजें इन्होंने मिला करके दे दी। और याद रखिएगा कस्टमर्स अब उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर अब क्विक कॉमर्स आ चुका है, 10 मिनट 15 मिनट में आपके घर पे सब कुछ पहुंच रहा है, और लोग उसको मतलब बैक टू बैक यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो मंगवा रहे हैं। ये दिखाता है हमारे एटीट्यूड को, अगर उसकी आदत लग गई है। फॉर एग्जांपल अगर वो ग्रॉसरी के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो 10 मिनट में आ रही है, बाकी चीज़ों के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो 10 मिनट में आ रही है, तो वो लोन के लिए एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन वेट नहीं करना चाहेगा, करना पड़ेगा अगर ऑप्शन नहीं है तो। बट अगर कोई इंसान आता है और आगे बोलता है कि आपको 2 दिन में लोन अप्रूव हो जाएगा, तो वो उसकी तरफ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि स्पीड की आदत हमें लग चुकी है। कस्टमर शिफ्ट हो रहा है, कस्टमर चेंज हो रहा है, हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी एज वेल, कि हम बहुत इवॉल्व हो रहे हैं अच्छे से, बहुत डिजिटल वर्ल्ड में हमने जो कदम रखा है बहुत तेजी से हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है किसी स्टार्टअप के लिए। सो या दैट इज, फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द की ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ फ्रियो। पहला है राइजिंग ऑफ यू नो इंटरनेट, राइज ऑफ डिजिटल इंडिया। करोड़ों लोग हैं भैया जो UPI के साथ कंफर्टेबल हो गए, स्मार्टफोन्स के साथ कंफर्टेबल हो गए, डिजिटल KYC होने लगी। तो सिंपल सा फिनोमिना है ऑलरेडी, जहाँ पर लोग हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग हैं, जहाँ पर करोड़ों लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको वहाँ पर जाकर के अपनी दुकान लगानी है, और ऐसी दुकान लगानी है जिनकी उसको ज़रूरत है, कस्टमर बेस को। सिंपल। सेकंड आता है यंग वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया के पास करोड़ों लोग हैं जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको फ्लेक्सिबल टूल्स चाहिए, स्पीड चाहिए, एक्सेसिबिलिटी चाहिए। ये कंपनी को समझ में आ गया एंड दे स्टार्टेड इट। तीसरा आता है ऑल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल्स। जो ट्रेडिशनल क्रेडिट इवेल्युएशन होता था, वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता था, बट टेक की मदद से फिनटेक कंपनीज यूजर्स को डिफरेंटली समझते हैं, किसी एक ब्रैकेट में नहीं डालते हैं। एंड उसके बाद उनका पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, मतलब बड़े बड़े बैंक्स के साथ पार्टनरशिप है जिनकी मदद से ये क्रेडिट दे पाते हैं। सो दीज आर द की ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ रियो, राइज ऑफ डिजिटल इंडिया, यंग वर्किंग पॉपुलेशन, ऑल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल्स एंड पार्टनरशिप्स। सही टाइम पर सही चीज इन्होंने स्टार्ट कर दी। सो कभी बैंकिंग का मतलब होता था भैया एक बिल्डिंग, एक काउंटर, एक लंबी सी लाइन, लेकिन नए भारत में बैंकिंग का एक्सपीरियंस बन रहा है। लोगों को एक्सपीरियंस बेस्ड बैंकिंग पसंद है अब। और फ्रियो की कहानी में बताती है कि स्टार्टअप सिर्फ नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, वो पुरानी प्रॉब्लम्स को नए नजरिए से देखते हैं। तीन फाउंडर्स ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर दुनिया डिजिटल हो रही है तो बैंकिंग अभी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है बॉस? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, फ्रियो। अब आज की केस स्टडी आपको कैसी लगी मुझे बताइए 8010781078 पर। फिलहाल वक्त है शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का, फिर मुलाकात होगी। उम्मीद कर रहा हूँ केस स्टडी पसंद आई होगी। कोई फीडबैक है तो 8010781078 ये हमारा नंबर है, बताइए। नाउ दिस इज द टाइम टू साइन ऑफ। नाउ योर दोस्त एंड होस्ट आर सागर साइनिंग ऑफ।
1: हिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। हर हफ्ते एक हेल्थ एक्सपर्ट देते हैं आपको बहुत सी जानकारी आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन आज जिस प्रॉब्लम या फिर जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, वो प्रॉब्लम पहले ज्यादा नहीं होती थी लेकिन अब बहुत कॉमन होती जा रही है। इसका क्या रीजन है और क्या है इसका सोल्यूशन, ये हम जानेंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। लेकिन पहले जानते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है किडनी रिलेटेड। जी हाँ, किडनी, जो कि हर व्यक्ति के पास दो होती हैं, लेकिन इनका रोल क्या होता है बॉडी में और किस तरीके से आजकल किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है या फिर बढ़ती हुई और प्रॉब्लम्स जो इससे कनेक्टेड होती हैं, ऐसे कुछ सवाल और कुछ सवालों के जवाब आज देने वाले हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष महाजन, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। बहुत वर्षों का अनुभव है इनको विभिन्न अस्पतालों और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने का जो किडनी से जुड़ी होती हैं। सो डॉक्टर मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव।
3: नमस्कार, थैंक यू सो मच।
2: डॉक्टर मनीष, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछना चाहती हूँ, पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करें, उससे पहले किडनी के फंक्शन के बारे में जानना चाहेंगे साधारण शब्दों में, कि किडनी हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है।
3: हाँ, मैं इसको सामान्य वर्ड में बोलूँगा कि किडनी जो हमारा है बॉडी में, जितने भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया होता है, चाहे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड यूरिया क्रिएटिनिन, इन सबको बॉडी से निकालने का काम, फिल्टर करने का काम हमारा किडनी करता है। इसके सिवा किडनी जो करता है, हम तो ये सोचते हैं कि बस वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ ये हमारा बीपी भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है और विटामिन डी के एक्टिवेशन में भी ये हेल्प करता है। और किडनी, बहुत कम लोग जानते होंगे कि किडनी में एरिथ्रोपोइटिन बनता है जो कि हमारा हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। तो एनीमिया के भी पेशेंट में किडनी का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन बढ़ता है जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ाता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में।
2: जी, यानी अगर किसी को एनीमिया है या किसी को हाई बीपी है तो किडनी पे इफेक्ट होना नॉर्मल है।
3: जी, मैं ये नहीं बोलूंगा, अगर किडनी में कोई कॉम्प्रोमाइज अगर कुछ हो गया, किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो पेशेंट को एनीमिया होने के पूरे चांसेस
2: हो सकते हैं। यानी किडनी जो है वो ओवरऑल पूरी बॉडी से कनेक्टेड है और आपका बीपी, आपका ब्लड भी इससे जुड़ा हुआ है। सो अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या फिर एनीमिक है, तो कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो उसकी वजह से एनीमिया है या फिर एनीमिया की वजह से किडनी, यानी इंटर रिलेटेड है ये दोनों चीजें। सो डॉक्टर साहब, हम किडनी की बात कर रहे हैं और किडनी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमारे पास अक्सर हमारे शोज में आते रहते हैं, लोगों के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अचानक से ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। आज से 20 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन आज के समय में किडनी

0: तो ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिसीज है। दूसरी चीज़ जिसके सिवा स्मोकिंग, मोटापा और अच्छा खान पान नहीं खाना और अल्टरनेटिव मेडिकेशन, इन सब के कारण भी किडनी की डिजीज काफ़ी हो रहे हैं। और स्पेशली जैसा कि मैंने बताया, इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो अगर शुगर नहीं कंट्रोल होता है तो इनमें किडनी के प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं अगर इंडिया के संदर्भ में अगर मैं परसेंटेज वाइज में बोलता हूँ तो वन आउट ऑफ सेवन लोगों में सीकेडी होता है। 15-20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को सीकेडी है। तो ये हमें बताता है कि ये सीकेडी की जो बर्डन है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, चाहे कोई भी कारण हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या डिसलिपिडीमिया हो, या शुगर नहीं कंट्रोल हो, या बीपी नहीं कंट्रोल हो, या खान पान से रिलेटेड, या मोटापा हो, तो ये सब सारे कुछ अल्टरनेटिव मेडिकेशन जैसे मैंने बताया, तो अगर इन सब सबको अगर देख लें तो इंडिया में इसका बर्डन काफ़ी ज़्यादा है।
1: इंडिया में जहाँ हम डायबिटीज़ की बात करते हैं वहाँ किडनी की बात करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डायबिटीज़ किडनी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है या हाई ब्लड प्रेशर कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आपके मन में प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। 8010781078 पर वक्त है एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और बातें चल रही हैं आज किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशन के बारे में। किडनी हर इंसान के पास होती है, लेकिन उसका ख्याल रखना भी उसी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आज हमारे बीच लेकर आए हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष महाजन, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर महाजन, हम बहुत सी बातें किडनी से जुड़ी हुई करें, लेकिन अभी आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया। अब डायबिटीज़ भी अलग अलग प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सो यहाँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ज़्यादा जो खतरा है वो कौन से टाइप की डायबिटीज़ से है, क्योंकि टाइप 2 की जो डायबिटीज़ होती है जनरली लेटर स्टेज में या बड़े होने पर पता चलती हैं, और तब तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ऑलरेडी शरीर में आ चुकी होती हैं।
1: डायबिटीज़ जो है वो साइलेंट किलर मैं बोलता हूँ इसको, बहुत साइलेंट है। और वन ऑफ, जैसे कि मैंने बताया डायबिटीज़ जो है वो इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल, तो वन आउट ऑफ 3 डायबिटिक पेशेंट में सीकेडी होता है। तो इसका अर्ली मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग और इस पर नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली इंडियन पॉपुलेशन में वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास तब जाते हैं जब इनको बहुत एडवांस स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। का सीकेडी प्रॉब्लम हो गया होता है। जैसे कि आपने बताया टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 में जब डायग्नोसिस टाइप 1 डायबिटीज़ का होता है, जनरली बच्चों में ही पाया जाता है ज्यादा, जिसमें इंसुलिन नहीं बन पाता, बाहर से देना पड़ता है बच्चों को। इसमें डायग्नोसिस होने के 5 साल के बाद इसकी मॉनिटरिंग हम स्टार्ट कर देते हैं कि किडनी में कोई असर तो नहीं आ रहा। कॉमन सी बात है कि बच्चे हैं, इंसुलिन इस्तेमाल कभी होगा कभी नहीं होगा, और 67% जो पॉपुलेशन होता है चाहे वो टाइप 1 या टाइप 2 हो, इनके डायबिटीज नहीं कंट्रोल रहते। और टाइप 2 डायबिटीज जिनको होता है, जैसी डायग्नोसिस होता है तो साल में एक बार मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी होता है। एक इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, इनके जो फर्स्ट अर्ली साइंस जो आते हैं वो

0: यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रहा।
1: ओके
0: तो और लेकिन जब प्रोटीन की लीकेज जब स्टार्ट होती है तो अगर आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराते तो आपका सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल आता है। तो जनरली सारे पब्लिक ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो किडनी बिल्कुल ठीक है, नहीं वो ठीक नहीं है। जैसे ही आपका किडनी में किडनी के कारण डायबिटीज के कारण यूरिन में प्रोटीन अगर आने लगा तो मतलब आप ऑलरेडी सीकेडी स्टेज 3 में आप पहुंच गए होते हैं। और ये आपको इट इज लाइक एन आइसबर्ग, जैसे कि मैंने बताया 1 in 3 पेशेंट ऑफ डायबिटीज दे ऑलरेडी हैव इट बट दे डू नॉट नो अबाउट इट, उनको पता नहीं होता कि ऑलरेडी सीकेडी स्टेज में। बाय द टाइम जब तक सीरम क्रिएटिनिन जो नॉर्मल 1.0 उसको माने 1.0 से 1.1 जब होता है तब तक 50% से ज्यादा उनके किडनी के फंक्शन ऑलरेडी
1: खराब हो चुके होते हैं।
0: तो
1: इसमें डॉक्टर साहब क्या यूरिन कल्चर कराना या यूरिन रूटीन कराना इस तरीके के टेस्ट जरूरी होते हैं साथ के साथ?
0: हाँ जी बिल्कुल, एनुअल जब आप जांच कराए तो यूरिन रूटीन जरूर कराए, इसमें आपको पता चलता है कि प्रोटीन लीकेज हो रहा है नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज साल में एक बार यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो जरूर कराएं। अगर आपके यूरिन से प्रोटीन अगर निकल रहा है तो आप समझ जाएं कि किडनी में डायबिटीज के कारण इसके असर आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप उस वक्त तुरंत किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को कंट्रोल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हम जानते हैं डायबिटीज तो रूट कॉज तो डायबिटीज है, अगर आप डायबिटीज को स्टार्टिंग से ही कंट्रोल रखते हैं तो इसको हम प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं और इससे काफी हद तक बचा भी जा सकता है।
1: जी बिल्कुल, यानी समय पर जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप किडनी को ठीक रखना चाहते हैं तो साल में एक बार अपने कुछ बेसिक टेस्ट करा लीजिए किडनी से रिलेटेड, और अगर आपको हाई बीपी या फिर डायबिटीज है तो ये टेस्ट कराने बेहद जरूरी हो जाते हैं। साल में एक बार आप काफी हद तक अपनी किडनी को बचा के रख सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं किडनी की प्रॉब्लम के, जैसे टेस्ट में तो पता चल गया लेकिन क्या टेस्ट के अलावा जैसे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं तो हमें उन चेंजेस को बिल्कुल भी नकारना नहीं चाहिए। जनरली लोग उन्हें अवॉइड करते रहते हैं और स्पेशली मैंने देखा है फीमेल्स बहुत अवॉइड करती हैं कि अगर ये कोई प्रॉब्लम हो रही है तो चलो थोड़े दिन बाद चेक कराएंगे, तब तक कहानी बहुत बिगड़ जाती है।
0: अर्ली वार्निंग साइन मैं बोलूँगा अगर डायबिटीज है या नहीं है दोनों में मैं बात करता हूँ, एक तो थकावट होना, घबराहट आना, पेशाब ज़्यादा है पेशाब कम होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, पेशाब में झाग आना, मोटापा और पैरों में सूजन, चेहरे में सूजन, भूख कम लगना, ये सब सारे अर्ली वार्निंग साइंस हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको एक दो अगर कुछ आ रहा है तो आप अपनी जांच करें कि अब तो आप डायबिटिक भी हों या नेवन हो, और डायबिटिक नहीं भी है तो शायद आपको किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये जेनेटिक से भी होता है, लाइफस्टाइल से भी होता है, जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको भी होता है, अगर बीपी नहीं कंट्रोल है तो उनको भी हो सकता है।
1: जी यानी मतलब ये जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर पैरों में स्वेलिंग आ रही है, फेस पे स्वेलिंग आ रही है, थकावट बहुत रह रही है, सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और किडनी के मामले में तो जनरली पैरों की स्वेलिंग बहुत बड़ा एक वार्निंग साइन होती है जिसको आपको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से जाँच करानी चाहिए। बहुत सारे लोग और एक्सपर्ट्स कहते हैं पानी बहुत पीना चाहिए, ये सवाल बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम्स में भी पूछते हैं कि हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी एकदम ठीक रह सके। ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं जिसे किडनी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डॉक्टर मनीष महाजन के साथ, जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।
1: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है नॉलेज पार्टनर SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हम बात करें हैं किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में, किडनी प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन। एक सवाल जो बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं, हमें पानी कितना पीना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तबीयत खराब हो रही है थोड़ा पानी पी लो, शायद इस वजह से प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और पानी एक मैजिकल लिक्विड भी है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक भी कर सकता है। बट आखिर ये पानी पीना कितना चाहिए, ये जान रहे हैं आज हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष महाजन से, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूफ्रोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर महाजन, पानी की बात हम कर रहे हैं। पानी जो है वो एक अमृत है। पानी ना मिले तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कम पानी पीने से BP बढ़ जाता है, या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन पानी कितना पीना चाहिए, और क्या बहुत ज़्यादा पानी जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है?
2: दीक्षा जी, आपने बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और बहुत लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। और किडनी हमारा बहुत स्ट्रांग ऑर्गन होता है, और इनकी कैपेसिटी 800 लीटर ऑफ ब्लड को फिल्टर करने की होती है। और रही बात कि आप पानी कितना पी सकते हैं, तो मैं मेल और फीमेल को कैटेगराइज करके बोलूँगा जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, जो किडनी को जिंदा रहने के लिए, किडनी को एक अच्छे से काम करने के लिए, फीमेल को स्पेशली 200 ml का गिलास, कम से कम 12 गिलास पीना चाहिए, जो रफली 2.5 लीटर होता है मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ। और मेल को 200 ml का गिलास कम से कम 10 पीना चाहिए, मिनिमम 2 लीटर ऑफ गिलास। चाय को भी मैं पानी मानता हूँ, दूध को भी पानी मानता हूँ, और जो सब्जी आप खाते हैं वो भी पानी में मैं काउंट करता हूँ। अब दूसरा आपका ये रहा कि कितना ज़्यादा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलेस कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। जैसे कि हम किडनी डिजीज़ की बात करते हैं, अगर इस्टेब्लिश किडनी डिजीज़ है, आपका सीरम क्रिएटिनिन कितना, आपका EGFR कितना काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम पानी का मात्रा भी डिसाइड करते हैं। अगर आपका सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है, किडनी बढ़िया फंक्शन कर रहा है, तो मिनिमम अमाउंट जो बताया उतना, या उससे ज़्यादा आप जितना पिए उतना बढ़िया होता है, मिनिमम है। लेकिन अगर किडनी आपकी प्रॉब्लम है, अगर सूजन आ रहा है, तो आपको पानी का मात्रा कम करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपका किडनी की काम करने का परसेंटेज कितना है, उसके हिसाब से पेशेंट वाइज पेशेंट या इंडिविजुअल वाइज इंडिविजुअल हम डिसाइड करते हैं कि पानी का इंटेक कितना होना चाहिए।
1: पानी का इंटेक आपको फॉर फीमेल्स 2.5 लीटर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और मेल्स के लिए 2 लीटर मिनिमम है अगर आप एकदम ठीक हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में और बॉडी को फिट रखने में, लेकिन जब किडनी प्रॉब्लम होने लगती है, किडनी को आपको कंट्रोल करना है, तो प्रोटीन का इंटेक कम होता है। तो ऐसे में जो डायबिटिक पेशेंट है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि प्रोटीन कितना लें, कितना नहीं लें, और कितना अवॉइड करें।
2: अब अगर इसको मैं दो, जैसे कि आपने बताया, इसको मैं दो तरीके में बांटता हूँ। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट है, या नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट है, या डायबिटिक जिनको नहीं है, अगर डायबिटिक अगर आपको नहीं है, तो आप 1.5 टू 2 ग्राम या मिनिमम 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से पर डे आप प्रोटीन का इंटेक ले सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, जैसे कि मैंने बताया, अगर किडनी में असर आ गया तो प्रोटीन लीकेज अगर होने लगता है, तो 0.6 टू 0.8 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आप उससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटीन का लीकेज होता है, जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे उतना ज़्यादा प्रोटीन का लीकेज होता है, जितना ज़्यादा प्रोटीन का लीकेज होता है आपकी किडनी खराब उतनी फास्ट तरीके से होता है, प्रोग्रेशन जो डायबिटिक किडनी डिजीज को वो ज्यादा हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये पेशेंट वाइज पेशेंट या इंडिविजुअल वाइज इंडिविजुअल हम डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन का इंटेक कितना होना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, तो बिल्कुल आप प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं, मिनिमम 1.5 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और चीज आपने थोड़ी शुरुआत में कही थी, और ये बहुत कॉमनली लोगों में देखा भी गया है, पेन किलर्स का इस्तेमाल। अक्सर आफ्टर 60 लोगों के घुटने में दर्द होता है, और वो नी रिप्लेसमेंट कराने की जगह पेन किलर्स खाना शुरू कर देते हैं कि नी रिप्लेसमेंट से उन्हें डर लगता है। अब ये पेन किलर्स जो हैं, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पेशेंट अगर नी रिप्लेसमेंट समय पे करा ले, तो वो किडनी फेलियर से बच जाता है। उसका डायरेक्ट कनेक्शन पेन किलर से होता है। सो ये पेन किलर क्या इतने भयावह होते हैं कि लोगों की किडनी तक फेल हो जाती है, और किस प्रोपोर्शन में लेना चाहिए?
2: देखिए, मैं पेन किलर्स के बहुत अगेंस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट मैं बोलूँगा कि एक्सेस ऑफ एनी मेडिकेशन टेकन इरेशनली बिना डॉक्टर के

0: डिवाइस के बिना अगर आप लेते हैं तो वो आपको हार्म पहुंचा सकता है। जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पेन किलर्स होते हैं, जैसे नैप्रोक्सिन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, नेमोसिलाइड्स हो गए, ये आपके किडनी में विपरीत असर करते हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेते। हालांकि मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि जिन्होंने 10 दिन लिया उनके भी किडनी में असर आ गए। तो कोई भी पेन किलर लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। और आपको जैसे मैंने दो कॉम्प्लिकेशन जैसे बीपी है, अगर डायबिटीज़ है तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। कुछ सेफ पेन किलर्स भी होते हैं जैसे पैरासिटामोल हो गए या अल्ट्रासेट हो गया, ये सब सेफ पेन किलर्स से आप सेफ पेन किलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के इरेशनली घर में पेन किलर का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेटर है।
1: बिल्कुल, यानी पेन किलर्स का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें और डॉक्टरी सलाह से ही पेन किलर लें, खुद ब खुद जाकर मेडिकल स्टोर से पेन किलर्स ना खरीदें। बहुत सारी और भी बात, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. और बातें चल रही हैं आपकी हेल्थ के बारे में. किडनी हेल्थ से जुड़ी कुछ खास इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष महाजन, जो कि कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. सो डॉक्टर महाजन, अब बात करते हैं बच्चों की हेल्थ के बारे में. क्या बच्चों में भी कोई किडनी डिजीज हो सकते हैं? जैसे बच्चा है 8-10 साल का बच्चा है, एकदम नॉर्मल है, क्या उसमें ये किडनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? और अगर हाँ तो क्या सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स को देखने चाहिए?
1: दीक्षा जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल करा. आपने तो 8-10 साल की बातें करी है. मैंने तो 6 महीने के बच्चे या 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चों में भी किडनी के प्रॉब्लम देखे हैं. एक कंडीशन होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जनरली बच्चों में काफ़ी पाया जाता है. और इसमें जो मेन जो साइंस जो देखने को मिलते हैं वो यूरिन में प्रोटीन का लीकेज होना, और काफ़ी ज़्यादा लीकेज होता है. अगर इसका समय पे डिटेक्शन और इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो और तो ये किडनी फेलियर की ओर ये बच्चे जा सकते हैं. तो और इनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है. और अर्लीस्ट जो साइन होते हैं बच्चों में, ये चेहरे पे सूजन आना, पैर में सूजन आना, ये आना, अगर किसी भी उम्र में बच्चे के जन्म हो लेने के बाद अगर आप ऐसे कोई भी सिम्टम्स देखते हैं कि चेहरे में सूजन या पैर में सूजन अगर आ रहा है, पेशाब अगर करे उसमें झाग आ रहा है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं. जनरली इन तरह के जो पेशेंट होते हैं वो बच्चों के डॉक्टर के पास जल्दी भाग कर जाते हैं. हालांकि ये किडनी की प्रॉब्लम है, इसको नेफ्रोलॉजिस्ट एक बहुत अच्छे से, इसका ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने तक चलता है. और बच्चों के जो माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं, जब तक वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुँचते हैं तब तक थोड़ा सा एडवांस हो गया होता है. और बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका समय पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, 6-7 साल 8 साल 9 साल ऐसा रहा, ट्रीटमेंट हुआ नहीं, अल्टीमेटली उनके किडनी फेलियर हो गया, वो डायलिसिस में आ जाते हैं. काफ़ी यंग बच्चों में देखा जाता है. हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये बच्चों में ये कंडीशन पाया जाता है. दूसरी चीज़, दीक्षा जी आपने टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करी थी, जैसे कि मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ में भी ये किडनी के डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तीसरी चीज़ जो होते हैं, एक एक्वायर्ड कंडीशन, जेनेटिक्स की भी मैं बात करूँ, एक एक्वायर्ड कंडीशन भी जैसे होता है ADPKD, एक्वायर्ड पॉलीसिस्टिक किडनी वगैरह, जो माँ बाप से बच्चों को हो जाता है, तो ये भी एक किडनी की एक कंडीशन है जो बच्चों में पाया जाता है, जो कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको पता चलता है. तो इसके भी ट्रीटमेंट, अगर सही समय पर इसकी मॉनिटरिंग या ट्रीटमेंट हो तो काफ़ी हद तक इसको डिले किया जा सकता है, स्लो किया जा सकता है, और काफी हद तक एक सामान्य जीवन बच्चों को दिया जा सकता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी सिम्टम्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओवरऑल अगर आप देखें किडनी हेल्थ में, तो सिम्टम्स, पैरों में स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग, थकावट, ये सारी चीजें अगर आपको दिख रही हैं किसी में भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें. और अगर आपके फिजिशियन कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने को, तो जरूर जाएं, इसमें डिले ना करें. डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, ऑल्दो रेयर है, किसी किसी की एक ही किडनी होती है. और ये मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रही थी क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिनकी सिर्फ एक सिंगल किडनी है, उनको पता भी नहीं था इतने सालों तक, कभी जाकर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और उनको पता चला. सो क्या एक किडनी से ईजिली बाय बर्थ ऐसा कॉमन है? और अगर है तो क्या इससे जिंदगी आसानी से चल जाती है?
1: जी बिल्कुल, मैं इसमें कहना चाहूँगा दो कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिन्होंने 60 साल के बाद अल्ट्रासाउंड कराया, उनको पता चला एक किडनी है, उनको इससे पहले नहीं पता होता,
0: उसके बाद वो स्ट्रेस में आ जाता
1: है. तो इसका मतलब ये है कि 60 साल तक उन्होंने बहुत सामान्य जिंदगी जी है. कहने का मतलब अगर उसके पास एक किडनी है या 2 किडनी है, अगर सामान्य काम कर रहा है तो आप बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी सकते हैं, औरों की तरह जी सकते हैं. देखिए, और कुदरत का भी आपको मैं एक बात बताऊं, अगर किडनी खराब होता है तो दोनों होता है, आप एक रख लो या 2 रख लो, दोनों होते हैं खराब. एक नहीं होता, दोनों हो जाते हैं, और पेशेंट किडनी फेलियर होता है और वो डायलिसिस में चला जाता है. तो अगर आपके पास एक किडनी बाई बर्थ है या एक किडनी बाद में भी अगर छोटा हो जाता, अगर एक किडनी बढ़िया काम करा, तब बिल्कुल सामान्य जिंदगी
0: जी सकते हैं. बिल्कुल, यानी सामान्य जिंदगी जी जा सकती है, बस आपको घबराना नहीं है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. बेसिक कोशिश ये होनी चाहिए कि ओवरऑल हेल्थ ठीक रहे तो किडनी भी ठीक रहती है. डाइट ठीक लेंगे, पानी ठीक से पियेंगे, तो आपकी बॉडी एकदम ठीक रिएक्ट करेंगे. डॉक्टर साहब, चलते चलते थोड़ी सी बातें मैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में करना चाहूँगी. किडनी ट्रांसप्लांट कितना मुश्किल है, ये मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आजकल काफी होने लग गए हैं लेकिन फिर भी उसके बाद लोग सर्वाइव कई बार नहीं कर पाते। जैसे सतीश शाह, एक बहुत ही माने हुए एक्टर, किडनी ट्रांसप्लांट कराया था थोड़े टाइम पहले, लेकिन उसके 3-4 महीने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आई और नहीं बच पाए। सो ये कितना सक्सेसफुल है?
1: किडनी ट्रांसप्लांट अगर ढंग से पेशेंट का एवेल्युएट करके अगर हम करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप वगैरह मैचिंग है, काफ़ी कुछ मैचिंग है, तो उसमें रिजेक्शन के रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। और किडनी, जैसे कि मैं बताऊं, आप अपने घर में किसी से लेते हो तो ऑफकोर्स वो बाहर की चीज़ है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है। कोई भी चीज़ अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसको आपको संभाल के रखना होता है। 2-3 दवाइयाँ इसमें होती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, टैक्रोलियर माइक्रोफेनोलेट दवाइयाँ हम चलाते हैं, तो ये क्या करता है कि आपकी किडनी को आपकी एंटीबॉडी से बचा के रखता है। अगर दवाइयों में आप थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतते, समय पर नहीं खाते हैं, तो किडनी के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या, अगर किडनी ट्रांसप्लांट आपके हुए हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट आप खा रहे हैं किडनी को बचाने के लिए, तो ऑफकोर्स आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो हैं, सामान्य लोगों की तरह आप नहीं जी सकते। आपको मास्क पहनना और भीड़ ऐसे जगह से आप दूर रहें जहां से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर इन्फेक्शन वगैरह होता है तो किडनी में इसका विपरीत असर आता है। पहले हम पेशेंट को काफ़ी बोलते थे कि मास्क पहने और भीड़ से बच के रहें, तो पेशेंट पढ़े लिखे जो समझ जाते हैं इसकी वैल्यू, वो इसको फॉलो करते हैं और उनका ये किडनी ट्रांसप्लांट काफी लंबे समय तक चल जाता है। और जो पेशेंट इस बात को सीरियसली नहीं लेते तो उनके किडनी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट करती है। और कुदरत का करिश्मा देखिए, कोविड तक हम बोलते थे कोई मास्क नहीं पहनता था, अब तो मास्क पहनना ही अनिवार्य हो गया है। तो जो कोविड में जो प्रोटोकॉल में जो सावधानियां हम लोग बरतते थे, वही सावधानी आप बरते किडनी ट्रांसप्लांट के पास, तो इसके सक्सेस होने के चांसेस, और डॉक्टर से हर 3-6 महीने में मिलते रहे, समय पे दवाइयाँ खाएं, क्योंकि वो बाहर का गुर्दा है, आपका एंटीबॉडी जो है वो उसको पहचानता नहीं है। समय पे बस दवा खाएं, परहेज करें, भीड़ से दूर रहें, किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने का चाह आपको लगता चाहे उससे दूर रहें, और एक बैलेंस्ड डाइट लें, पानी का मात्रा आप ठीक रखें, तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट बहुत हद तक सक्सेसफुल हो जाता है।
0: बिल्कुल। क्या डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी 2-3 महीने बाद किसी पेशेंट को रिएक्शंस हो सकते हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल, एक्यूट एंड जैसे कि मैंने बताया कि इसमें रिजेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं किसी के बाहर, लेकिन हर किसी को नहीं होता। अगर वो मॉनिटरिंग में रहते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे बीके नेफ्रोपैथी इन्फेक्शन होते हैं, CMV का साइटोमेगलो वायरस का भी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी एंटीबॉडी मेडिएटेड भी रिजेक्शन हो सकते हैं, किसी किसी मरीज में हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, काफ़ी ये अनकॉमन है। अगर समय पर आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलते रहें तो इसका बचाव किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, सावधानी तो जो किडनी ट्रांसप्लांट किया है, डूज एंड डोंट्स उनको फॉलो करने ही होंगे।
0: जी, यानी इतना मेजर होता है ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस कि उसमें आप लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, चलते चलते कुछ टिप्स जो आप हमारे लिसनर्स और हमारे व्यूअर्स को देना चाहें।
1: टिप्स मैं ये बोलूंगा कि बाहर का खाना कम खाएं, जंक फूड कम खाएं, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें, और डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग करते रहें, क्योंकि समय पर अगर डायबिटीज़ आप डिटेक्ट कर लेते हैं या BP डिटेक्ट कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक अपने किडनी के प्रोग्रेशन को भी रोक देते हैं। और एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज करें, स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बंद कर दें, कोशिश करें, अल्कोहल का मात्रा कम कर दें या बंद कर दें, और कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह अगर कुछ हाई रहता है तो उसको भी कंट्रोल रखें। तो ये डूज एंड डोंट्स अगर आप करते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रकृति से जुड़े रहें, हरी सब्जियां खाएं, जितना प्रकृति से जुड़ते हैं उतनी आपकी आयु लंबी होती है। प्रकृति से आप जितना दूर जाते हैं उतने कॉम्प्लिकेशन आपको होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, BP हो जाते हैं, और किडनी की भी प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है।
0: जी बिल्कुल, यानी नेचुरल चीज़ों के जितना पास रहेंगे उतना सेफ रहेंगे हमेशा। डॉक्टर महाजन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में और बहुत सारी बातें आपने बताई। उम्मीद है जो हमारे लिसनर्स और जो व्यूअर्स ने सुना देखा वो डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे।
1: धन्यवाद दीक्षा जी।
0: बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं प्रोग्राम ऑल इज़ वेल में। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है और आप ये पॉडकास्ट किसी के साथ शेयर करना चाहें तो हमारी ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या iOS स्टोर से। पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर RG दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर मनीष महाजन के साथ ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रोग्राम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण रील्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव. दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ.

0: अरे हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय रंगमंच और अभिनय जगत की एक बेहद सम्मानित हस्ती, जिनका नाम है रामजी बाली। रामजी बाली सर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से अभिनय में डिप्लोमा प्राप्त किया और आज वहीं एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने अपने थिएटर ग्रुप थिएटर वाला के माध्यम से अनेक नाटकों का निर्देशन किया है, कई चर्चित नाटक भी लिखे हैं और भारतीय शास्त्रीय रंगमंच को एक नई पहचान देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको वर्ष 2011 में संगीत नाटक एकेडमी द्वारा यंग प्लेराइट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रेनाउंड थिएटर डायरेक्टर, playwright and teacher, he is also a talented actor who has appeared in films, web series and television projects such as Delhi Crime, Commando, Sahib Biwi aur Gangster 3 and recently The Kerala Story 2, where he portrayed the role of Neha's father. थिएटर के प्रति इनकी लगन, स्टूडेंट्स को दिया गया इनका मार्गदर्शन और कला के प्रति इनका समर्पण इनके एक कंप्लीट थिएटर पर्सनालिटी को बनाता है। आज हम इनके सफर, इनके अनुभवों और थिएटर से लेकर सिनेमा तक की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, प्लीज जॉइन मी इन गिविंग अ वेरी वार्म वेलकम टू एक्टर, प्ले राइट, डायरेक्टर, थिएटर मेंटोर एंड एनएसडी प्रोफेसर श्री रामजी बाली जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
1: शुक्रिया बहुत बहुत।
0: तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई।
1: मेरे सफर की शुरुआत जहाँ तक मैं समझता हूँ रामलीला से हुई है। जब हम छोटे थे बचपन में, हमारे आसपास काफी रामलीलाएं होती थी
0: जी।
1: तो बहुत छोटे थे तो देखने जाते थे, थोड़े से बड़े हुए थोड़ी सी समझ डेवलप हुई तो फिर उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं समझता हूँ कि मेरे रंगमंच की शुरुआत वहीं से हुई
0: जी। मतलब आपका बचपन से ही रुझान एक्टिंग की तरफ ही था।
1: एक्टिंग की तरफ रुझान था बचपन से ही, और सिनेमा देखते थे तो उससे ही प्रभावित थे, क्योंकि यहाँ का कोई फोक थिएटर तो हमने देखा नहीं था। तो और फोक थिएटर के नाम पे हमारे आसपास अगर कुछ हो रहा था तो वो रामलीला थी
0: जी। जी जी। तो कुछ ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था कि कोई मतलब एक्टिंग में हो या कोई ऐसी चीज में हो जिसके प्रति आपका थोड़ा और इंटरेस्ट आया और आपको लगा कि नहीं मुझे तो इसी में ही जाना है, या ये खुद एक मन से आया, एक बच्चे का ये था भाव?
1: मुझे लगता है कि ये बच्चे के मन का भाव ही था
0: जी,
1: जो आगे आया। और मेरे फैमिली में कोई ऐसे किसी की ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी कि किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से कोई जुड़ा हुआ हो
0: जी।
1: और मैं बहुत सिनेमा से बहुत मैं कहूँ प्रभावित था, बहुत इंस्पायर था। तो उन दिनों ये राजेश खन्ना और इन लोगों की फिल्में, ये आराधना और ये टीवी पे आती थी और या चित्रहार आते थे, तो उसी से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे लगा
0: जी। तो सर, जैसे एनएसडी तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा, और क्या ये आपका कुछ बचपन का ही सपना था कि आपने एनएसडी जाना है, या धीरे धीरे बड़े होते गए तो पता चला इन सब चीजों के बारे में?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को कुछ ऐसा मालूम नहीं था कि एक्टिंग की भी कोई ट्रेनिंग होती है। बचपन में तो रामलीला करते रहे और एक्टिंग का मन में, जैसे जैसे रामलीला की बड़ी बड़े लोगों के साथ काम किया तो लगा कि इसमें बहुत मजा सा आता है, कुछ ये अलग चीज है
0: जी।
1: अच्छा, मैं गा नहीं सकता था, मुझे डांस नहीं आता था, तो लगता ये मैं कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस का अंदर कहीं रहा होगा। और मैं स्कूल में बहुत एक्टिव था, स्कूल्स में छोटी छोटी स्किट्स होती थी
0: जी।
1: तो एक दो दोस्त थे उनके साथ मिलके हम करते थे, तो वो कहीं रहा। और बाद में आते आते जब

0: बादशाह, बिल्कुल इनके नाम
1: बहुत सुनते बड़े थे। बड़े एक्टर,
0: हाँ, राज बब्बर, ये लोग निकले हैं। तो हम कहाँ सोचते थे कि फरीदाबाद के, तब इतना कनेक्टिविटी भी नहीं थी दिल्ली से कि कहाँ कौन जाएगा एक्टिंग कोर्स करेगा। बड़ी मुश्किल से एक दिन मेरे को किसी ने उसका एड्रेस ला के दिया एनएसडी का, मेरे एक दोस्त ने
1: जी।
0: तो मैं 12th में था, तो मैं जैसे तैसे दिल्ली पहुंचा और वहां जाके पता चला कि यहाँ तो ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलता है।
1: अच्छा।
0: तो मैं बड़ा उदास हुआ और नाराज भी हुआ कि अरे ग्रेजुएशन करेंगे तो इतनी एज हो जाएगी, फिर हीरो कब बनेंगे। तो मतलब जो भाव होता है एक छोटे,
1: मतलब वो 3 साल ग्रेजुएशन
0: करेंगे, फिर वो हाँ करेंगे, अच्छा फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
1: और तब तक मूड बदल जाए, ये
0: मूड बदल जाए, या घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी हमारी कि मतलब कि हम कहीं भी जब आंख खुलेगी तभी कोई कोर्स कर लेंगे टाइप, सर्वाइवल वाली जिंदगी थी कि कैसे सर्वाइवल चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात थी
1: जी। तो अब जैसे आप एनएसजी में एक प्रोफेसर हैं, तो आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आप टीचर और आर्टिस्ट इन दोनों रोल्स को किस तरीके से बैलेंस करते हैं।
0: मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अब, क्योंकि मुझे एनएसजी पास किए ही 20-25 साल हो गए हैं और मैं 2001 में एनएसजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया एक्टिंग का, और ऐसा संयोग रहा कि 2001 से निकलने के बाद से मुझे अपना थिएटर ग्रुप, थिएटर वर्कशॉप ऑल ओवर इंडिया में हम करते रहे घूम घूम के, तो वो एक तरह की टीचिंग ही होती है
1: जी।
0: जब हम किसी वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, उनके साथ थिएटर की बेसिक्स को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एक प्रोडक्शन तैयार करते हैं, तो वो टीचिंग का ऐसा अनकॉन्शियसली कहना चाहिए कि वो आ गई, नेचर में आ गई
1: जी।
0: और फिर मुझे बाद में अभी 2018 से लेके मैं 5 साल में को बनारस का डायरेक्टर बनने का भी मौका मिला एनएसडी का, तो वहाँ फिर वो सब एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब देखना था और एकेडमिक्स भी देखना था, तो वो टीचिंग वो फिर अनोइंगली आ गई, तो ऐसा कुछ मुझे अलग से नहीं करना पड़ता। और एनएसडी की टीचिंग बहुत डिफरेंट है, एनएसडी की वो स्टीरियोटाइप टीचिंग नहीं है
1: जी,
0: इसीलिए वो एक यूनिक इंस्टीट्यूट है। वहाँ हम 2+2=4 नहीं पढ़ाते,
1: अच्छा
0: वहाँ 2+2=5 भी हो जाता है और 3 भी हो जाता है।
1: तो जैसे आपने बोला टीचिंग स्टाइल बहुत डिफरेंस है, क्या डिफरेंट होता है?
0: डिफरेंट ये कि वो हमारा जो कोर्स है वो मशहूरी इसलिए क्योंकि वो परफॉर्मिंग आर्ट का है और वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फील्ड है, तो ज्यादातर हमारा 80% तो प्रैक्टिस होती है
1: जी,
0: और हम सब लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, है ना, 20% थ्योरी है, बाकी जो है सब परफॉर्मेंस करना है, करके सीखना है, क्या गलती हो रही है, अलग अलग एक्टिंग के मेथड्स हैं, है ना, अलग अलग फोक फॉर्म्स हैं
1: जी,
0: तो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हैं जो अलग अलग रीजन से आती हैं, तो वो तो करने से होगा
1: जी,
0: वो कोई ब्लैकबोर्ड पे लिखने से वाली हमारे वहाँ की टीचिंग का फलसफा वहाँ है ही नहीं
1: जी। तो जैसे आपने बताया बनारस में भी आपको डायरेक्टर रहने का मौका मिला 5 साल का, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका?
0: वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था बिकॉज वहाँ कुछ नहीं था शुरू में जब हम गए
1: जी।
0: और दूसरी बात मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहूँगा कि वो नाट्यशास्त्र पे बेस्ड एक्टिंग इंस्टीट्यूट है,
1: अच्छा
0: एनएसडी का है, लेकिन हम पूरी जो हमारा शिक्षा पद्धति है वो पूरी हमारी एंशियंट जो 4,000-5,000 साल पुराना जो हमारे पास एक मेथड है
1: जी,
0: उस पे बेस्ड वो ट्रेनिंग प्रोसेस को लेके तैयार करना था। तो इत्तेफाकन मैंने वहाँ जाने से पहले कई संस्कृत प्लेस किए थे और ईश्वर की कृपा से मेरा वहाँ एज ए डायरेक्टर सिलेक्शन हो गया, तो मुझे एक बहुत आज़ादी मिली उस सेंटर को डेवलप करने में और बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ मिलकर काम करने में कि कैसे उसको शेपअप कैसे करें, क्योंकि नाट्यशास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है। नाट्यशास्त्र ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम सब समझ गए हैं और उस पर अभी भी उसकी बहुत लेयर्स हैं, तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव था और उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी, मैं उसको अपना एक अच्छा गोल्डन टाइम मानता हूँ अपने 5 साल जो मैंने वहाँ निदेशक के तौर पर काम किया।
1: तो फिर जब आप वहां से यहाँ आए दिल्ली दोबारा, तो कुछ मिस नहीं किया वहां का आपने?
0: ऑब्वियसली जब आप एक नया सेंटर या नई चीज बनाते हैं वो एक आपके बेबी की तरह होता है, जब वो जीरो से शुरू करते हैं, आज वहाँ कई अच्छी चीजें हैं, एक स्टूडियो बनाया, मतलब एक शेपअप हुआ, उसके बाद हमारे अंदर एक थिएटर वालों को आदत रहती है कि एक वर्कशॉप खत्म अब आगे बढ़ना है
1: जी।
0: तो हम अब फंसते नहीं है, इसलिए उतना ज्यादा मिस नहीं होता। हाँ वो शहर भी गजब है,
1: शहर जैसे बहुत अच्छा है ना बनारस, बिल्कुल,
0: और बाबा विश्वनाथ वहाँ बैठे हैं तो वो तो हमेशा लगता ही है, लेकिन हमेशा थिएटर कहता है कि आगे बढ़ो
1: जी।
0: और फिर मेरी फैमिली भी इधर थी और यहाँ भी एक ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे यहाँ एक जॉब था, मैंने अप्लाई किया, हो गया, तो वापस बैक टू पवेलियन।

0: दिन अपने शहर आ गए
1: जी। तो राम जी सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे थिएटर की बातें जान के। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से राम जी सर के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिएटर के बहुत ही जाने माने मिस्टर रामजी बाली जी। तो सर, अभी जैसे आपने बताया NSG के बारे में, हमें थिएटर के बारे में, अब थोड़ा थिएटर रिलेटेड ही मैं आपसे और चीज़ें पूछना चाहूँगी कि थिएटर ने आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया है?
1: थिएटर ने ज़िंदगी का सबक ये सिखाया है कि हमेशा मध्यम मार्ग पे चलो, एक्सट्रीम किसी भी विषय पे नहीं होना है, चाहे लाइफ में है, चाहे आर्ट में है, किसी भी चीज़ को लेके। हमेशा थिएटर आपको आपकी जो एजेस होते हैं ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको सुकर्व करता है, ताकि आपको, क्योंकि लिटरेचर है उसमें, उसका सबसे बेस। तो मैं तो मानता हूँ कि किसी, मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि एक 4 पेज की कहानी पढ़ के आप किसी के जीवन की पूरी हिस्ट्री समझ जाते हो, उसका इमोशन समझ जाते हो। ये कितना सस्ता सौदा है। नहीं तो हम अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे तब हमें एक सबक मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: हम किसी की जीव जिंदगी के 4 पन्ने पढ़ते हैं 10-15 मिनट में, और हमें कितना सबक
0: समझ भी आ।
1: तो थिएटर में तो लिटरेचर तो उसका बेस है, तो लिटरेचर हमें, हमारी समझ को विस्तृत करता है, काम डाउन करता है, और काफी कुछ सिखाया थिएटर ने
0: जी। और जैसे सर, आज के डिजिटल युग में थिएटर की रेलेवेंस को आप कैसे देखते हैं?
1: मुझे लगता है कि थिएटर की रेलेवेंस इससे और बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि आप देख लीजिए, थिएटर कोई आज का नहीं है। थिएटर शायद जिस वक्त इंसान ने खाना खा लिया होगा उसी वक्त उसको कुछ करने की सूझी होगी। जिस वक्त रोटी का सवाल खत्म हो गया होगा वहीं से थिएटर शुरू हो गया होगा। चाहे कम्युनिटी में, एक ट्राइबल एरिया में जंग, चाहे भाषा नहीं रही होगी, लेकिन जब उन्होंने शिकार मार के खाया होगा, फैमिली के साथ रात को बैठे होंगे आग जला के, तो शायद दिन की क्या घटना हुई होगी, शायद किसी ने एक्ट करके दिखाया होगा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, वहीं से थिएटर शुरू हुआ
0: जी।
1: जो इतना पुराना है, जिसकी जड़ें हैं। और आप देख लीजिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी के लेवल पे देख लीजिए, सिनेमा तो अभी का है, 500 साल भी नहीं हुआ अभी।
0: अच्छा।
1: अभी देख लीजिए, ये तो हजारों साल, अनंत, मतलब जैसे बोलते हैं ना, सनातन है
0: जी।
1: रंगमंच सनातन है, जहां मनुष्य है यहां 2 लोग, एक कर रहा है, एक देख रहा है, रंगमंच हो रहा है
0: जी,
1: है ना। और आप देख लीजिए, उसकी टेक्नोलॉजी बदलती चली गई
0: जी।
1: मीडिया की, पहले बड़े बड़े वो रिकॉर्ड आते थे, आज हम कैसे गाना सुन रहे हैं
0: जी।
1: फिर वीडियो कैसेट्स आते थे,
0: फिर सीडीज आ गई,
1: वो आई, फ्लॉपी आई, फिर क्या क्या आया, आज वो लिंक में ही है फिल्म, है ना। ये सब का बहुत छोटा स्पैम है, 10 साल में, 5 साल में चेंज हो जाता है
0: जी।
1: लेकिन रंगमंच एक जीवित व्यक्ति करता है और एक जीवित व्यक्ति उसके सामने बैठ के देखता है, दोनों सांस ले रहे होते हैं उस वक्त। तो इसकी ये जो ग्रेटनेस है वो कोई मीडियम नहीं ले सकता
0: जी।
1: तो जब तक इसका ये जीवंतता वाली बात है, कोई भी मीडिया, कोई भी AI इसको वो नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट,
0: हाँ जी,
1: छपाई खाने में तो आप जो भी हमारी कुर्ती है, शर्ट पहना है, हजारों बन रहे हैं, जैसे ही उस पर कोई कारीगर अपने हाथ से आपका नाम लिख देता है, कस्टमाइज हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: उसकी वैल्यू
0: और उसकी उसका दाम भी बढ़ जाता है,
1: उसकी ब्रांडिंग अलग है। तो जस्ट लाइक दैट, रंगमंच, जितना ये टेक्नोलॉजी आएगी, रंगमंच की महत्ता उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने समझाई है, यहाँ पे क्लियर की है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे प्ले होता है और ये नुक्कड़ नाटक, इनमें क्या फर्क रहता है?
1: नुक्कड़ नाटक भी एक नाटक है,
0: हाँ जी,
1: लेकिन वो नुक्कड़ पे होता है, इसलिए नुक्कड़ नाटक है। उसकी कुछ सीमाएं हैं, और सीमाओं के साथ साथ उसकी कुछ स्वतंत्रता भी है, और उसकी कुछ पाबंदियां हैं, क्योंकि वहां पे आपका बुलाया हुआ दर्शक नहीं है उस तरह का। नहीं तो आप एक ऑडिटोरियम बुक करते हैं, आप इनवाइट करते हैं या एड निकालते हैं, लोग आते हैं, स्वतः आते हैं, मन से आते हैं, मन बना के आते हैं कि मैं नाटक देखने आज मंडी हाउस जाऊंगा या जाऊंगी, गाड़ी चला के जाते हैं, बस पकड़ के आते हैं, या फरीदाबाद में भी किसी, हम जब सभागार में करते थे, आप प्लान करते हो कि आज आपको नाटक देखने जाना है। नुक्कड़ नाटक में वैसा नहीं है। नुक्कड़ नाटक आप सड़क पे जा रहे हो, चाट पकौड़ी खा रहे हो, अचानक कोई डम डम डम बजने लगता है, तो क्या हो रहा है, शोर होता है, वो यहीं कॉर्नर में साइड पे 4 लड़के या लड़कियां कुछ दफली बजा के कुछ एक जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं
0: जी।
1: तो उनका क्या, वो उसी वक्त वो स्पेस क्रिएट करते हैं, उसी वक्त वो मंच क्रिएट करते हैं, वहां मंच नहीं होता है, उसी वक्त वो दर्शक को रोकने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त वो कोई एक इशू लेते हैं। उनका क्या है, उस रंगमंच में जो बेसिक हम फर्क है, वो इशू बेस्ड रंगमंच है, और उसमें स्लोगन है
0: जी।
1: उसमें आर्ट भी है, लेकिन आर्ट की मात्रा थोड़ी कम है उसमें, मैसेजिंग ज्यादा है बजाय इमोशन के
0: जी।
1: मेरा मतलब ये नहीं कि जो वो कर रहे हैं वो इमोशनल सीन नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन मोर और लेस अगर हम बात करें तो वो एक तरह का नारा है, वो कुछ बात कहना चाहते हैं ग्रुप, वो आता है 10 मिनट में, हो हल्ला करता है, अपना कोरियोग्राफी करता है, अपने डायलॉग बोलता है, चला जाता है, वही फिर मार्केट फिर चालू हो जाती है वैसे की वैसे। लेकिन ये जो जो प्रोसिनियम रंगमंच की हम बात करें, उसमें आर्ट है, एस्थेटिक है, म्यूजिक कहाँ थोड़ा कम आएगा, कहाँ ज्यादा आएगा, यहाँ एक पर्दा लहराना चाहिए, यहाँ से लाइट थोड़ी सी ऐसी आएगी, तो ये एक कलेक्टिव वर्क है आर्ट का, आर्ट फॉर्म का एक गुलदस्ता है कहना चाहिए, जिसमें लिटरेचर भी है, मंच भी है, मेकअप भी है, कॉस्ट्यूम भी है, लाइटिंग भी है, लाइव म्यूजिक भी है, डायलॉग भी है, इमोशन भी है, है ना, एक एनवायरनमेंट है, ये बेसिक फर्क है मुझे जहां तक मेरी समझ।
0: नहीं नहीं बिल्कुल सही आपने बताया। तो नुक्कड़ नाटक हमने जैसे अभी कुछ सालों पहले मतलब देखने शुरू किए हैं, इससे पहले तो या होते थे या आप ज्यादा लोगों के बीच में?
1: नहीं ऐसा नहीं है, नाट्य शास्त्र में भी वीथी नाटक की बात होती है, वीथी अच्छा। का वीथी का मतलब गली होता है।
0: अच्छा
1: तो वीथी नाट्य की बात है, तो इट मींस कि तब भी होते होंगे, उसका प्रारूप क्या रहता होगा ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि हमारे नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन है, लेकिन जब नाट्य शास्त्र की ही प्रैक्टिस बीच में मुगल काल और ये सब मतलब जो बहुत पहले खत्म हो गया, अब ये दोबारा रिवाइव हो रहा है इंडियन क्लासिकल थिएटर, तो हम नहीं कह सकते कि पहले कितना हुआ, लेकिन हाँ ये इधर आज का जो नुक्कड़ नाटक है उसकी अगर हम बात करें तो वो ये इमरजेंसी वगैरह के बाद जब सरकार बदली, जब चीज़ें आईं, तो ये लेफ्टिस्ट लोगों ने ज़्यादा इसको अपनाया, प्रमोट किया, और इसका इतिहास है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है
0: जी। तो सर थिएटर और फिल्म में एक्टिंग करने का सबसे बड़ा अंतर क्या है? जैसे आपने बहुत सी फिल्में भी की हैं हमने देखा, और अभी रिसेंटली केरला स्टोरीज 2 में आपका बहुत अच्छा रोल है उसमें, सो क्या अंतर रहता है दोनों चीज़ों में?
1: देखिए मुझे कई लोग इसमें बहुत बड़े बड़े थ्योरीज गढ़ते हैं, बताते हैं, मुझे आज तक कुछ अंतर नहीं लगा। मुझे लगता है एक्टिंग एक्टिंग है
0: जी।
1: रंग अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, ये मंच पे भी एक सीन हो सकता है कि एक आप इंटरव्यू कर रही हैं मेरा, है ना, आप सवाल पूछ रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसी को अगर कैमरा लगा दें जैसे पॉडकास्ट है फॉर एग्जांपल, क्या फर्क आ जाएगा बताइए? आप कोई अजीब से एक्सप्रेशन बना के थोड़ी बात करेंगे, आप ऐसे ही बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हाँ, उसमें क्योंकि लेंस चेंज हो जाता है तो उसका एक्सप्रेशन और वो बहुत बड़े पर्दे पर दिखता है। अभी आपका जितना जितना जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही दिखेगा, और दूर से देखेंगे तो छोटा दिखेगा, मंच पे जो आगे बैठा होगा उसका क्षेत्र बड़ा दिखेगा, लेकिन सिनेमा में क्या सबको एक साथ दिखता है? वो लेंस की करामात है, वो एक टेक्निकलिटी है, उससे एक्टर का कोई लेना देना नहीं है। एक्टर को हाँ ये ध्यान रखना है कि अब आपका क्लोज लगा है तो मुझे ज्यादा, मैं हाथ हिला हिला के बात कर रहा हूँ तो वो फ्रेम में है ही नहीं, वो इतनी सी बात है, वो डायरेक्टर बोल देगा भाई हम आपका ना अभी आईज का ले रहे हैं
0: जी,
1: तो आप बस ये वाले डायलॉग को आपका एक रिएक्शन ले रहे हैं, तो आप मंच पे भी आप वही रिएक्शन देते हैं लेकिन उसमें शायद आपका हाथ भी चलता है। तो मुझे छोटी सी टेक्निक हल्का सा फर्क है, मुझे ऐसा कोई ड्रास्टिक फर्क नहीं लगता,
0: वो भी सिर्फ कैमरे को फेस करने वाली
1: एक चीज और है कि जो सिनेमा का एक्टर है वो रंगमंच नहीं कर सकता, उसको दिक्कत आएगी।
0: अच्छा
1: कर सकता मतलब कर लेगा कोई भी, लेकिन वो उतना शायद अच्छा अभिनेता साबित ना हो मंच पे, लेकिन जो मंच का अभिनेता है जब वो सिनेमा करता है तो बहुत बेहतर अभिनेता साबित होता है।
0: अच्छा ऐसा क्यों कि सिनेमा वाला नहीं कर पाएगा?
1: नहीं उसको दिक्कत आएगी, मैं नहीं कह रहा कर नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है ना वो कॉन्टिन्यूटी में इमोशन को कैरी नहीं कर रहा है, हम 2 घंटे का प्ले कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं।
0: हाँ वो सीन में कट करके
1: डायलॉग के बाद कट हो रहा है उसका बार बार, उसके सामने एक्टर नहीं है, उसके सामने कैमरा है
0: जी,
1: उसको एक्टर की आदत ही नहीं है, कम आदत है, समझ लो हमारे पास तो एक्टर ही एक्टर है, हम मंच में जब घुसे तो सामने एक्टर, दाएं एक्टर, बाएं एक्टर, हमारा कैमरा तो दर्शक है,
0: बिल्कुल लाइव ऑडियंस जो देख रही है,
1: नहीं हमें वहीं से देख रहा है ना, तो इसमें क्या है कि अभी यहाँ भी कैमरा लगा देंगे, आपके कान के पास लगा देंगे, आपके कंधे के पीछे लगा देंगे,
0: हाँ जी,
1: तो वहां पे दर्शक मूव कर रहे हैं एक तरह से 360 डिग्री में
0: जी,
1: और रंगमंच पे एक्टर मूव कर रहा है तो उसको कट्स की आदत है, इमोशन के कट्स की आदत है, हम एक फ्लो में करते हैं तो हमें उसकी गहराई, उसकी डेप्थ, उसका इमोशन का जो क्या कहते हैं उसका जो नमक आना चाहिए वो उसके थोड़ा सा एहसास ज्यादा है
0: जी।
1: मुझे ऐसा लगता है, और ये साबित हुआ है, ये हॉलीवुड तक के एक्टर्स में साबित हुआ है।
0: अच्छा
1: जितने हॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं सब थिएटर करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, हमारे यहाँ के कम करते हैं लेकिन वहां के तो करते ही, वो एक सीजन फिक्स करते हैं, हम 3 महीने नहीं करेंगे सिनेमा, तीन महीने हम जाएंगे अपने ग्रुप में, थिएटर करेंगे, 20-50 शो करेंगे, वापस सिनेमा में आएंगे।
0: ये बहुत ही अच्छा एक फर्क आपने समझाया अभी। तो आपने जैसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेस भी दिए हैं खुद से, मतलब डायरेक्ट भी किए हैं, तो आपके दिल के सबसे करीब कौन सा प्ले है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो मैंने प्ले डायरेक्ट किए हैं उनमें अगर हम बात करें तो मेरे बहुत करीब है अभिज्ञान शकुंतल कालिदास का। मुझे बनारस में रहते हुए संस्कृत नाटक करने का मौका मिला और मैंने कालिदास के तीनों नाटक किए, कई बार किए हैं अब तो मैं जब भी अभिज्ञान करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने अगर मैं लिखे हुए प्लेस की बात करूँ तो मैंने लगभग अब तक 9-10 प्ले लिखे हैं और उसमें मेरा सबसे प्रिय प्ले एक है, एक रोमांटिक कॉमेडी है मैंने लिखी है, कोई बात चले।
0: अच्छा।
1: उसको मैंने 2010 में लिखा था, तो उसके कई शोज हम कर चुके, उसमें यशपाल शर्मा भी जो हमारे हरियाणा के बहुत बड़े एक्टर हैं सिनेमा में, गंगा जल में जो मेन विलेन थे
0: जी,
1: वो भी उसमें एक्ट कर चुके हैं प्ले में, और वो प्ले करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत फन है उसमें।
0: तो जैसे आपने प्ले की बात बताई तो ये आपका कैसे रहता है कि आपको अलग अलग शहर में आप जाके करते हैं, इसका क्या चीज रहती है?
1: जब कोई प्रोडक्शन तैयार होता है तो अगर हम दिल्ली में जैसे ओपन किया तो जो थिएटर वर्ल्ड के लोग हैं उनको पता रहता है कि अच्छा एक नया प्ले आया है, वो थिएटर फेस्टिवल होते हैं कई शहरों में लोग करते हैं तो इनवाइट करते हैं, गवर्नमेंट्स के भी अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स होती हैं उनके वो लोग भी फेस्टिवल्स करते हैं, तो जो थिएटर वर्ल्ड का एक अलग संसार है वो जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं कि किसका क्या प्रोडक्शन चल रहा है, फिर उसको इनवाइट करते हैं।
0: और प्ले का ड्यूरेशन क्या रहता है, मतलब कुछ घंटों का या कुछ दिनों का भी रहता है?
1: नहीं, दिनों का नहीं रहता है। क्या रहता है कि यूजुअली पहले 2.5-2.5 घंटे के, 3-3 घंटे के प्लेस होते थे जब हमने किया, अभी भी होते हैं 2.25 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट, मतलब ये इसको फुल लेंथ प्ले माना जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइमिंग माना जाता है, क्योंकि अभी टाइम कम हो रहा है तो अभी 1.5 घंटे के भी नाटक होते हैं, 1.5 से 2.5 घंटे ज्यादातर नाटक होते हैं, उसमें कुछ लोग इंटरवल रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं,
0: तो उसमें फुल म्यूजिक वगैरह सब रहता है,
1: सब होता है, पूरा सेटअप लेके चलना पड़ता है। कुछ चीजें जैसे किसी ने हमें मान लीजिए कि पटना में इनवाइट किया तो बेसिक जो सेटअप है स्टेज का
0: जी
1: वो, और मैं आपको बता दूं कि कोई बात चले यशपाल शर्मा वाला प्ले आपके मानव रचना में भी हुआ है।
0: अच्छा।
1: मुझे अभी याद आया, जस्ट अभी याद आया।
0: अच्छा।
1: और यशपाल शर्मा ने ही किया है आपके स्टूडेंट्स के सामने
0: जी,
1: मुझे ये इस बात को हो गए कम से कम 8 साल हो गए होंगे।
0: अच्छा।
1: मिस्टर भल्ला ने इनवाइट किया था
0: जी जी,
1: तो एक आपका अंदर ऑडिटोरियम है उसमें शो किया था, बहुत सक्सेसफुल शो हुआ था, बहुत अच्छा शो हुआ था।
0: वाओ, ये तो बात आपसे अभी
1: मुझे भी अब भूल गया था।
0: हाँ।
1: अभी याद आया मुझे कि हाँ हमने किया है उसको, बॉम्बे से टीम आई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ करने का
0: जी। तो साथियों अब वक्त हो चला है हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को जारी रखेंगे राम जी बाली सर के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए क्रिएटिव मंच ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिएटर जगती के जाने माने मिस्टर रामजी बाली जी। तो सर, बहुत ही मजा आ रहा है आज आपके साथ हमारे शो में, और डेफिनेटली जो लिसनर्स आज ये शो सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत चीजें थिएटर से रिलेटेड समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से क्या क्या होता है पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने। तो अभी तक हमने बात की आपके टीचिंग स्टूडेंट्स और आपके प्लेस के बारे में, लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर मतलब जो चीज़ लाना चाहूँगी, फिल्म एंड स्क्रीन वर्क जो आप करा है, जैसे थिएटर से फिल्म और वेब सीरीज तक का सफ़र आपका कैसा रहा? आपने काफ़ी वेब सीरीज भी की हैं, थिएटर तो हमें पता ही है उसमें तो आपकी है ही महारत हासिल, तो अपनी वेब सीरीज के बारे में बताइए और उसके बाद में आपकी मूवीज के बारे में पूछूंगी।
1: मैंने डेली क्राइम एक वेब सीरीज, बहुत चर्चित वेब सीरीज रही, उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला। उसमें जो बहुत बड़े एक्टर हैं राजेश तैलंग, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं
0: जी।
1: और देखा जाए तो मैंने तिग्मांशु धूलिया जी के साथ सिनेमा में काफ़ी मुझे अवसर मिला उनके साथ काम करने का। मेरी पहली फिल्म उनके साथ पान सिंह तोमर थी
0: जी।
1: और पान सिंह करने के बाद उनके साथ मेरा एक अलग बाउंडिंग बनी। तो उसके बाद मैंने उनके साथ साबी और गैंगस्टर में भी एक छोटा सा रोल किया है, और एक यारा फिल्म उन्होंने बनाई थी तिग्मांशु सर ने, उसमें भी मुझे अभिनय करने का मौका मिला। और सिर्फ अभिनय नहीं, मेरे को जब भी वो सिनेमा कुछ बनाते थे तो अक्सर मुझे डायलॉग में भी बुला लेते थे कि तुम थोड़ा सा एक्ट्रेस को हेल्प कर दो
0: जी।
1: तो बड़ा वो प्यार रखते हैं, स्नेह रखते हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं कि तिग्मांशु धूलिया बहुत बड़ा नाम
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: अगर वो मुझे कह रहे हैं कि तुम एक्ट्रेस का डायलॉग चेक कर लो तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसा मैं उनके साथ काफी काम किया है, ऋषु भाई के साथ। हम उनको प्यासे सब जो एनएसजी के लोग हैं ऋषु भाई बुलाते हैं उनको, और उनके साथ काम करने का मौका मिला। और खोसला का घोसला बहुत शुरुआती फिल्म थी जब मैं जस्ट एनएसजी से पास आउट किया था, वो काफी आती है इसलिए लोग उसको ज्यादा जानते हैं। उसमें मैं एक बड़े रोल के लिए कास्ट हुआ था पहले, लेकिन फिर उस वक्त मैं बहुत यंग दिखता था, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला दिवाकर ने कि आई एम वेरी सॉरी, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज फाइनल। उसमें एक बड़ा रोल कर रहा था मैं, लेकिन उन्होंने बोला कि राम जी मुझे बहुत, प्रोड्यूसर कह रहे कि आप छोटे लग रहे हो, लेकिन आप एक रोल है जरूर करो। वो एक छोटा सा आईपीएस का रोल, फिर मेरे को दिवाकर ने बोला कि आप करो। तो फिल्म बहुत आती है,
0: हाँ जी
1: हाँ, तो उसमें किया काम। फिर एक फिल्म है रागदेश, रागदेश में भी मैंने एक्टर्स को भी ट्रेन किया था उसमें, और एक रोल भी किया, और रागदेश की भी स्क्रीनिंग आपके यहाँ हुई थी मुझे अच्छे से
0: अच्छा।
1: याद है हाँ, उसमें तिग्मांशु धूलिया की फिल्म, क्योंकि वो INA पे थी फिल्म, मतलब आज़ाद हिंद फौज के ऊपर, तो उस एक केस है, कोर्ट केस है, उसके ऊपर वो फिल्म थी, तो उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। और बाकी मुझे अपनी फिल्म भी एक छोटी सी बनाई मैंने, जो एक हरियाणा में रह के ही बनाई, हरियाणवी फिल्म बनाई अज्जो नाम से।
0: अच्छा।
1: वो एक बच्ची और दादी,
0: वो शायद आपने अभी थोड़े टाइम पहले ही,
1: नहीं अब उसको हो गया 5-1 साल हो गया।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और वो अभी स्टेज ऐप पे है वो फिल्म
0: जी।
1: और वो फरीदाबाद के ही मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रोड्यूस की थी, मिस्टर प्रदीप मोहंती
0: जी।
1: वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे पहला मौका दिया, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने कोई इंडिपेंडेंटली फिल्म नहीं बनाई थी
0: जी।
1: काम जरूर किया था, लेकिन कोई पहली बार जब आप पे ट्रस्ट करता है वो बहुत बड़ी बात होती है,
0: बड़ी बात।
1: और उन्होंने मौका दिया फिल्म की, उसमें डॉली अहलूवालिया मेन रोल में थी, और उसमें यशपाल शर्मा ने भी एक कैमियो किया था, और स्वानंद किरकिरे ने गाना गाया है उसका टाइटल, अंतरा मित्रा ने गाना गाया है, और ठीक अपने एनएसजी के काफ़ी लोगों ने मदद की उसमें मुझे। और इसके अलावा थिएटर में भी मैंने कुछ सेलिब्रिटी को लेके एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक प्ले राजपाल यादव भाई को लेके किया था
0: अच्छा।
1: चलो इश्क लड़ाएं के नाम से, और उसके बाद मैंने हिमानी मैम के साथ, हिमानी शिपुर जी के लेके भी एक प्ले किया डायरेक्ट, उसमें हम दोनों ने मिलके एक्टिंग भी की, और यशपाल भाई वाला प्ले तो हमारा खूब चला जिसका मैंने जिक्र किया आपके यहाँ भी हुआ है। और इस तरह लगे हैं, जो भी काम आता है कर लेते हैं, चाहे थिएटर का हो चाहे सिनेमा का हो, और बेसिक यह है कि रंगमंच से आर्ट से जुड़े रहना है, यही प्रयास रहता है। और अभी एनएसटी में पढ़ा रहा हूँ तो रही हैं।
0: जी जी, नहीं इतना ही नहीं है, बहुत बहुत कुछ आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर जैसे आपने नेम लिया अभी तिग्मांशु धूलिया जी का, और हमने देखा पंकज त्रिपाठी जी के साथ भी, और शायद नवाज सर के साथ भी, तो आपका मतलब कैसा रहता है जब इतने बड़े लोगों से मिलना होता है, उनके साथ वर्क करना होता है, क्या वो भी उतने डाउन टू अर्थ लोग
1: हैं? ये सब लोग अपने दोस्त लोग हैं, सीनियर हैं, कुछ लोग मेरे सीनियर बड़े भाई जैसे हैं। नवाज भाई, जब नवाज भाई एनएसजी में थे तब हम श्रीराम सेंटर में थे, और बाद में मुझे भी एनएसजी आने का मौका मिला, वो सब सीनियर हमारे सीनियर हैं, और छोटे भाई की तरह ही बिहेव रहता है, उनका प्यार मिलता है। और पंकज बहुत डाउन टू अर्थ है, हमारा मेरा जूनियर है बट वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा एक्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग एक फैमिली के लोग हैं। मतलब
0: जैसे आपने यशपाल जी की बात की और राजपाल यादव,
1: ये सब लोग सब सीनियर हैं हमारे, एक कम्युनिटी, एक हम तो एलुमनाई हैं एनएसजी के, तो ऐसा कुछ मतलब,
0: तो वही उसी प्यार से मिलना होता होगा, उसी प्यार से सब रहते होंगे। नहीं बहुत अच्छी बात लगती है कि एक सेलिब्रिटीज का भी अगर इतना डाउन टू अर्थ हो भी, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो सर अब मैं बात करूंगी आपकी जो अभी रिसेंट जो फिल्म आई है केरला स्टोरीज में, हमने आपको देखा है केरला स्टोरी 2 में, वो कैसे आपको वो रोल मिला और क्या एक्सपीरियंस था उसका?
1: वो रोल मुझे ऐसे मिला, शायद उन लोगों ने, एक बहुत बड़ा नाम है कास्टिंग में, मुकेश छाबड़ा
0: जी,
1: बहुत बड़े नाम है उनका, उनके ऑफिस से कॉल आया रात को मुझे कि आप अपना सिर्फ इंट्रो भेज दो
0: जी।
1: तो कोई ऑडिशन जैसा नहीं हुआ मेरा, शायद मुकेश मुझे बहुत पुराना जानता है, इवन कई फिल्में मुकेश ने ही मुझे कास्ट किया, पान सिंह हो या दिल्ली क्राइम हो, और भी कई काम मुकेश को ध्यान रहता है, क्योंकि मैं तो फरीदाबाद में हूँ, मतलब दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो मैं दिल्ली मुंबई में तो स्ट्रगल कर नहीं रहा, तो मुकेश को अचानक लगा होगा कि मैं शायद उसमें फिट हो सकता हूँ, तो मुकेश ने अपने ऑफिस में बोला, तो उनके असिस्टेंट्स ने वो मंगवाया, तो वो मेरे को रोल जो मिला विदाउट ऑडिशन मिला, और शुरू में रिवील नहीं किया गया कि हम इस पे फिल्म ये सब्जेक्ट है।
0: ओके,
1: हाँ, कि जब सेट पे गए जब तब हमें स्क्रिप्ट वगैरह मिली, तो धीरे धीरे आइडिया लगा कि अच्छा ये इस सब्जेक्ट पे है, और वो चैलेंजिंग था क्योंकि इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं कि रोज न्यूज़ में सुनते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, इस तरह की फिल्में बनाना, विपुल अमरीश लाल शाह ने फिल्म प्रोड्यूस की, ये भी बहुत डेयरिंग है, क्योंकि मुंबई का सीनेरियो बहुत डिफरेंट है, बहुत डोमिनेशन जिन लोगों का है इंडस्ट्री में वो अलग विचार के हैं, और जिन्होंने ये फिल्म बनाई वो अलग विचार के हैं, तो बहुत जल्दी आपको
0: क्रिटिसाइज भी करते हैं,
1: क्रिटिसाइज से कोई दिक्कत नहीं, लेबलिंग हो जाती है, फिर आपको काम मिलने में भी प्रॉब्लम होता है।
0: अच्छा,
1: तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा ये है, थोड़ा मुझे लगता है, तो लेकिन काम करने में बहुत मजा आया, क्योंकि जो कामाख्या नारायण इसके डायरेक्टर हैं वो बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने, वो नेशनल अवार्ड विनर है ऑलरेडी, और बहुत एक्सपीरियंसड है, और बहुत, और इशू बहुत सेंसिटिव है, इसमें थोड़ा सा बदलने से कुछ और कहानी हो जाएगी,
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: थोड़ा सा स्ट्रेस कहीं और दे दिया आपने, थोड़ा सा कुछ कर दिया, उन्होंने जितने बैलेंस तरीके से तीनों लड़कियों की स्टोरी रखी है, आपको लगता नहीं कि किसकी स्टोरी को ज्यादा एम्फसाइज किया, किसको दबाया, ऐसा नहीं, सबको इक्वल स्पेस दिया है, इक्वल कैरेक्टर्स को इतना मौका दिया है, अदरवाइज बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि उन्होंने कंटेंट पे ध्यान दिया, नहीं तो हम तो उस तरह से कोई बहुत स्टार तो हम लोग है नहीं है, हम लोग तो छोटे मोटे एक्टर हैं
0: जी।
1: और उसी में उन्होंने फिर भी मौका दिया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला।
0: नहीं, हमने आपका रोल देखा, बहुत ही एकदम मतलब सिंपल सोबर जो एक्टिंग आपकी थी उसमें, नेहा जो लड़की के फादर का रोल आपने किया, बहुत अच्छी मूवी भी इवन बहुत अच्छी है, मुझे तो लगता है सभी को ये देखनी चाहिए जरूर, इवन गर्ल्स को तो बहुत देखनी जरूरी है,
1: बिल्कुल देखनी चाहिए।
0: हाँ जी, सो लिसनर्स अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हम रामजी वाली सर के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में थिएटर के जाने माने मिस्टर रामजी बाली जी। तो सर, बहुत अच्छी बातें अभी आपने हमें बताई आपकी वेब सीरीज की, मूवीज की, आपके थिएटर पार्ट की। सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने भी NSD से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद आप अब मूवीज भी कर रहे हैं काफी, वेब सीरीज भी, और अभी NSD में आप प्रोफेसर भी हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को NSD में एडमिशन लेना हो, बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं भी पता होता कि एक्टिंग में किस तरीके से अपना करियर बनाए, तो क्या इसके स्टेप्स हैं, थोड़ा आप हमें बताइए।
1: देखिए, आपकी जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज हमारे टाइम में तो एक ही कोर्स था जो 3 इयर्स वाला कोर्स है, और उसके लिए उस वक्त 10 नाटक करने होते थे और टोटल ऑल ओवर इंडिया से 20 सीट होती थी
0: जी।
1: अभी एक तो वो 10 नाटक अब 6 नाटक हो गए हैं
0: जी,
1: वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है वहाँ। दूसरा, अभी 20 सीट के अलावा 32 सीट्स हो गई हैं, तो सीट्स भी बड़ी हैं, और ये 3 ईयर का फुल टाइम कोर्स है। और उसको करने के लिए आप पहले अपने शहर में जो भी थिएटर हो रहा है उनके साथ जुड़िए, क्योंकि 6 नाटक करने के लिए अगर कायदे से करोगे तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं।
0: ओके,
1: है ना, रोज रोज नाटक कोई भी छोटे शहरों में होता नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। आपको बहुत जल्दी करना है तो दिल्ली में कई ग्रुप्स हैं जो नाटक रेगुलर करते हैं, आप दिल्ली आके ज्वाइन कीजिए उन ग्रुप्स को। थोड़ी सी जो भी उनका फीस स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा बहुत फीस लेते हैं, वो करवाते हैं, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और हमारे स्कूल ने किया है कि अभी हमारे जो सेंटर्स हैं, 4 सेंटर्स हैं, वहाँ 1 साल का कोर्स है, हमारे समय में ये नहीं था, और उसके लिए 4 नाटक चाहिए और
0: रिलैक्सेशन
1: है, और 20-20 सीट्स सारे सेंटर्स में है, तो 80 सीट्स और बढ़ गई
0: जी।
1: अगर आप उस नजरिए से देखें तो, और वो बनारस जैसे हम बात कर रहे थे, बनारस में 1 सेंटर है, 1 सेंटर हमारा बेंगलुरु में है
0: जी,
1: 1 सेंटर हमारा सिक्किम में है, और 1 सेंटर हमारा त्रिपुरा में है। तो ये 4 सेंटर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर वो आपके क्षेत्र के आसपास हैं। और तीसरी चीज, हमारे अब शॉर्ट टर्म कोर्स भी हमने शुरू किए हैं।
0: अच्छा।
1: जो पेड कोर्सेज हैं
0: जी,
1: कि अगर आपको 3 मंथ का कोर्स करना है तो वो आप साइट पे चेक कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, शायद 50-60,000 कुछ उसका फी है, और वो हम टाइम टू टाइम अनाउंस करते रहते हैं 3 मंथ के कोर्स।
0: बेसिकली ये डिप्लोमा कोर्स हो जाएंगे या
1: ये 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स है?
0: ओके।
1: ये आप अपने के किसी को है ही कि मैं कर लूं,
0: करना ही करना,
1: एज का भी फैक्टर नहीं है।
0: अच्छा,
1: किसी को लगा के अरे मैंने जवानी में सोचा था मैं नहीं कर पाया, चलो मैं 3 महीने का एक्टिंग कोर्स NSD का कर लेता हूँ, है ना, उस तरह के बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है। तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारी साइट पे वो सब है। और एक 1 ईयर कोर्स अभी हमारा बॉम्बे में चल रहा है, उसमें वो भी पेड कोर्स है।
0: अच्छा,
1: तो काफी अभी स्कोप है, और सारी जानकारी NSD की जो वेबसाइट है उस पे सारी उपलब्ध है, और सारा प्रोसेस भी उपलब्ध है उसमें।
0: बिल्कुल। और सर एक चीज और, जैसे किसी ने कोई भी कोर्स नहीं किया है और तो भी क्या उसको एक्टिंग करने का कहीं पर मौका मिल सकता है, एड एजेंसीज में या कहीं मूवी में
1: कोई
0: साइड रोल, तो किस तरीके से उसे अपना, उसके लिए क्या पोर्टफोलियो रेडी करना चाहिए, क्या कराना चाहिए?
1: मैडम, 90% जो लोग हैं वो नॉन ट्रेन्ड एक्टर काम कर रहे हैं, ट्रेंड एक्टर को काम नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: है ना, बॉम्बे में आप जाके देखिए, वहाँ पे कास्टिंग एजेंसियां हैं, आप उनसे मिलिए। बॉम्बे में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, वो जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनको मालूम है, आरामनगर की एक जगह है अंधेरी में, वो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, बार बार मिलेंगे, फोटो शेयर करेंगे, आपका इंट्रो देंगे, थोड़ा ऑडिशन शूट करेंगे, फिर वो आपको कॉल करते हैं
0: जी।
1: तो वो सब ओपन मार्केट है, सब कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई NSD का सर्टिफिकेट ही चाहिए, उल्टा है, बल्कि सर्टिफिकेट वालों को बहुत स्ट्रगल है, और जो नॉन स्ट्रगल वाले एक्टर हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा कुछ
0: ये तो मुझे लगता है हर चीज में चाहिए।
1: हाँ, ये परफॉर्मिंग आर्ट है ना, इसमें हाँ उसको डिग्री नहीं चाहिए ना, जिसको जो एड बना रहा है,
0: हाँ जी।
1: आपका लुक उसको चाहिए, आपका लुक अगर उसकी रिक्वायरमेंट में फिट है तो उसको कुछ नहीं चाहिए।
0: और अगर जैसे कोई यंग आर्टिस्ट जब रिजेक्शन फेस करता है, बहुत करते ही होंगे, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
1: मैं तो रिजेक्शन को उसकी पूंजी मानता हूँ
0: जी।
1: जब तक कोई एक्टर या कोई भी आर्टिस्ट ह्यूमिलेट नहीं हुआ, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ह्यूमिलेशन तो हमारी पूंजी है
0: जी।
1: तो बिना ह्यूमिलेशन कौन सा ऐसा काम है जो बिना ह्यूमिलेट हुए आप आगे बढ़ जाओगे? होगा ही होगा।
0: मैं थोड़ा यंग जनरेशन की बात, वो दिल पे लगा लेते हैं। बिल्कुल,
1: इस पे ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है ना, लुक सबसे पहले है, मैंने अभी आपको बताया।
0: हाँ जी।
1: आप फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको रिजेक्ट करने से पहले मुझे आपको टेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा आप ये फाइल चला के दिखाइए, व्हाटएवर जो भी उसका। एक्टर को तो देखते ही नहीं आप नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसकी जो रिक्वायरमेंट उसमें फिट नहीं हो, आप लाख अच्छे एक्टर हो, तो ये मन से नहीं लगाना चाहिए। किसी भी यंग एक्टर को, क्योंकि ये फील्ड ही लुक का है, पहले लुक है। अगर आप थोड़े बहुत उसके लुक में हो तो उस जैसे वो 5-6 लोग छांट लेगा
0: जी।
1: फिर वो उनको टास्क देगा, अच्छा ये डायलॉग बोल के दिखाइए, ऑडिशन लेगा, फिर जो उसको सूट करेगा उसको कास्ट करेगा। इस तरह अगर हम नाराज होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, वो दुख होगा भी, लेकिन उसको कोई चारा नहीं है, ये उसका प्रोसेस का, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस है, आपको उससे बचना,
0: मतलब ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए,
1: ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। ऑडिशन दो, भूल जाओ, अगर आपका होगा आपको फोन करके ढूंढ लेगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेगा
0: जी।
1: आपने ऑडिशन दिया, आप अगले दिन

0: भाई छोड़ के होनोलुलु चले गए, मान लीजिए वो आपको होनोलुलु से बुला लेगा कि सर आप सिलेक्ट हो गए आ जाइए, और आप उसके दरवाजे पे खड़े रहिए ऑडिशन देके, वो आपको बेइज्जती करेगा फिर, भाई साहब नहीं हुआ आप जाइए घर, क्या करें।
1: तो सर आपकी ये बात हमें तो बहुत मोटिवेट कर रही है, लेकिन आप किस चीज से मोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ में?
0: अपनी लाइफ में मुझे तो लगता है आरटी हमें मोटिवेट करता है और दूसरों का अच्छा काम मोटिवेट करता है कि काश ये मैंने किया होता। वो जिस दिन खत्म हो जाएगा कि मैंने तो सब कर लिया, अब मैंने पा लिया है सत्य,
1: हाँ जी,
0: तो खत्म हो जाओगे। वो मोटिवेशन होता है जब आप किसी दूसरे का काम देखते हो और आपको लगता है काश ये मैंने किया होता
1: जी,
0: वही मोटिवेट करता है।
1: बहुत अच्छी बात है आपने बताई है हमें। और सर अब लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे। सबसे पहले थिएटर या सिनेमा?
0: थिएटर।
1: डायरेक्टर या एक्टर?
0: एक्टर।
1: स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजेशन?
0: ये डिपेंड करता है कि कहाँ हो रहा है, क्या
1: जी,
0: हो रहा है।
1: जी जी। एनएसडी के दिन या आज का सफर?
0: एनएसडी के दिन।
1: एक वर्ड में थिएटर को अगर डिफाइन करना हो?
0: सत्य है।
1: और एक वर्ड में अगर सक्सेस के लिए कुछ बोलना हो?
0: मन की शांति।
1: वाओ, बहुत ही सुंदर आपने जवाब दिया हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने जो लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं, इसमें हर जनरेशन के लोग सुन रहे होंगे, यंग पीढ़ी भी हमारी सुन रही है, मिडिल एज भी, और तो उनके लिए आप क्या अपने तरफ से एक संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप थिएटर से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो पहले थिएटर देखना शुरू कीजिए, थिएटर को प्रमोट कीजिए, है ना, पहले उसकी एस्थेटिक को समझिए और लिटरेचर पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, किसी भी लैंग्वेज का पढ़िए, वो आपको बहुत आनंद देगा, मैं बता रहा हूँ, किसी भी वेब सीरीज़ को देखने से ज़्यादा आनंद देगा। और लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको थिएटर और अच्छे से समझ आएगा।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आशा करते हैं आपके आगे के प्रोजेक्ट्स में भी आपको बहुत सफलता मिले, और फिर से हम आपको ऐसे ही बुलाएं। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज एनएसडी के प्रोफेसर मिस्टर रामजी बाली जी, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें समझाई एनएसडी थिएटर और फिल्म जगत के बारे में। तो अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी शो क्रिएटिव मंच में, और मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगरा जधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आरती सागर आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ, एंड दिस शो इज रियली स्पेशल। दिस इज अ शो ऑफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम फॉर यू, बिकॉज यहां पर हम लोग हर बार एक आर्टिस्ट लेकर के आते हैं जो अपनी लाइफ से कुछ वैल्यूएबल चीजें हमें दे करके जाते हैं, स्किल्स हमें कुछ बता करके जाते हैं। आज हमारे साथ हैं सिमरनजीत सिंह, 23 साल के एक आप कह सकते हैं नौजवान जो एक यात्रा पर निकले हुए हैं। इनकी यात्रा है गाने लिखने की, गाने कंपोज करते हैं, रैपर हैं, राइटर हैं, अपना खुद का स्टूडियो रन करते हैं, इसके अलावा बाकी लोगों के लिए भी कंपोजिशन करते हैं। अच्छा, यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग रही है, यहाँ तक कि द जर्नी इज की एक स्टूडियो विजिट किया, और चलिए मैं क्या बता रहा हूँ, इनसे ही शुरुआत करते हैं सबसे पहले। लेकिन स्वागत करेंगे सिमरनजीत का। सिमरन, स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सर।
1: मुझे जेन्युइनली ये जानना है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, 2019 में एक स्टूडियो विजिट किया, अचानक से कुछ ट्रिगर हुआ कि यार ये करना चाहिए कुछ ऐसा, थोड़ा बताइए क्या कहानी थी, ऐसा क्या लगा कि यार ये करना है?
2: यस सर, बिल्कुल। तो जिस दिन मैं अपने ब्रदर के साथ गया था स्टूडियो, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी, तो जो भी वो गाना बना रहे थे ना, मैं उस टाइम सुनता था बैड बनी, जे बेलविन, तो मैं इनके गाने सुनता था, तो मैं ये चाहता था कि मेरे भाई कि वो इस तरीके का थोड़ा म्यूज़िक बनाए, कुछ हॉलीवुड टाइप। तो वो जो बना रहे थे वो बिल्कुल ही एकदम से एक नॉन कमर्शियल टाइप था, तो मैं उस टाइम कुछ बनाता था नहीं, ना मैं म्यूज़िक करता था। तो एक उस दिन मेरे मतलब मन में चाहत आई थी कि मुझे हॉलीवुड स्टाइल का कुछ मतलब मेरा भाई बनाए, तो उस दिन तो पहली चीज़ हुई ये। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि जो भी उसका मेरे भाई का मतलब जो भी गाना वगैरह बना, उसमें जो कंपोजिशन थी या जो फील थी, मतलब वो फील ठीक थी लेकिन ऐसी फील नहीं थी कि वो मतलब दिल को छू जाए, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो वो उसका जो वर्जन था एफएल स्टूडियो जिस पे कि मतलब म्यूज़िक वगैरह बनता है, तो उसका मोबाइल वर्जन हुआ। तो उसी दिन उसी रात को मैंने, रात को अभी मेरे को याद है, कुछ 12 बजे या 1 बजे का कोई टाइम वगैरह होएगा, तो मैंने उस टाइम वो फ़ोन पर डाउनलोड करा, उस पर थोड़ा बहुत मैंने कुछ ना कुछ बनाया उस रात को। तो उस दिन से मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन पे बीट्स वगैरह बनानी चालू करी। तो मैं तब भी मैं हॉलीवुड गाने बहुत सुनता था और मैं बहुत एडमायर करता था, मैं चाहता था कि इंडिया में मैं हॉलीवुड स्टाइल का म्यूज़िक लेके आऊँ, जो भी म्यूज़िक वगैरह चलता है उनका, जो भी बीट्स वगैरह होती हैं, मैं वो अपने स्टाइल में, लेकिन लैंग्वेज मेरी पंजाबी ही हो। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत उस पर मेरा हाथ बैठने लगा, मैंने बहुत सारी बीट्स बनाई हैं, कभी मैं आपको सुनाऊंगा भी कभी लगेगा तो मैं फ़ोन से मेरा हाथ अच्छी तरह बैठ गया। फिर धीरे धीरे मैं ये समझता था कि ये कंप्रेशन क्या होता है, सैचुरेशन क्या होती है, डिले क्या होता है, रिवर्व क्या होता है, ये सब फ़ोन के उसमें भी था, तो ये सब मेरे को थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज होने लगी। तो उसके बाद 2021 में मार्च 11, हाँ, मैं अपनी सबसे पहली जॉब पर लगा। तो जब मैं पहली अपनी जॉब पे लगा, तो उसके मतलब उसके बाद ये था कि मेरे को दिमाग में कि अब धीरे धीरे मेरे को अपना ना खुद का स्टूडियो बनाना है। मैं देखता था यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह कि माइक क्या होता है, एक्सएलआर केबल्स क्या होते हैं, और ऑडियो इंटरफेस क्या होता है, स्टूडियो मोनिटर्स क्या होते हैं, मैं देखता था, मैं और मेरे को ये रहता था, मैं बताता किसी को नहीं था कि मेरे को ये चाहिए या वो चाहिए, मेरे को बस मतलब मन में था जब मैं खुद जॉब पर लगूँगा तो खुद ही सब कमाऊँगा। तो उसके बाद मैं अपनी जॉब पे लगा धीरे धीरे 2021 में, तो मेरे चलो स्टार्ट थी, तो 2021 के नवंबर के महीने से मैंने बनाना चालू कर दिया। मैंने सबसे पहले लिए स्टूडियो हेडफोन्स पे मैंने अपना थोड़ा बहुत म्यूज़िक वगैरह चालू करा। तो 2022 के दिसंबर तक मैंने अपना पीसी बना लिया। उसके बाद मैं जब शिफ्ट हुआ पीसी पे, तो थोड़ा बहुत मेरे को, क्योंकि मेरा हाथ बैठा हुआ था फ़ोन मोबाइल पे, तो मेरे को थोड़ा पीसी पे आने में मतलब थोड़ी दिक्कत वगैरह हुई थी स्टार्टिंग में। तो करते करते फिर मैंने ऑडियो इंटरफेस लिया, फिर मैंने माइक्रोफोन लिया, फिर मैंने केबल्स वगैरह सारा कुछ ली, फिर मैं टोटली शिफ्ट हो गया कंप्यूटर पे। लेकिन तब भी मैं ना हमेशा एक ये चीज़ देखता था, जो एक जिसे बोलते हैं ओवरऑल क्वालिटी गानों की, जो एक वोकल क्वालिटी होती है या म्यूज़िक की क्वालिटी होती है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं भी अभी बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैं हमेशा से वो डिफरेंस मेरे को पता रहता था कि हाँ यार ये साउंड थोड़ा अच्छा लग रहा है या प्रोफेशनल लग रहा है या मतलब कैसा लग रहा है, ये जो मेरे को इस चीज़ की हमेशा से वो थी। तो मैंने इस पे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल में रात रात बहुत रात में ऐसे जागता रहता था। और वैसे भी जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है मेरे सबको पता है कि उनका तो कोई सोने का टाइम ही नहीं होता। तो मैं ये सब जब ये सब करते करते उसके बाद जब मैंने अपना सबसे पहली बीट अपना पहला एक सॉन्ग बनाया डेमो सॉन्ग पीसी पे, तो वो अच्छा साउंड नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मैं फिर ये यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखता था कि ये मतलब कैसे साउंड करेगा प्रोफेशनल क्या है। फिर मेरे को धीरे धीरे ईक्यू के बारे में पता चला कि इक्वलाइज़र हम जब करते हैं, हम कट्स लगाते हैं, लो कट, हाई कट, हम मडी वोकल्स, इन सब के बारे में मेरे को पता चला। फिर धीरे धीरे मैं और जानने लगा क्योंकि मैंने सब इक्विपमेंट्स तो ले लिए थे लेकिन मेरे को अब ये नहीं पता था इनको प्रोफेशनल यूज़ कैसे करते हैं, कि जो अच्छी रिकॉर्डिंग प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। मेरे को बाद में यही पता चला कि सिंगर बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल सिंगर भी मैटर करता है लेकिन उसके साथ एक एकोस्टिक ट्रीटमेंट स्टूडियो भी मैटर करता है। क्योंकि अगर अच्छा सिंगर किसी नॉन ट्रीटेड रूम में अगर रिकॉर्डिंग करेगा तो तब भी वो क्वालिटी नहीं आएगी। इसलिए हम स्टूडियो में आपने देखा होगा कि हम फोम वगैरह रोक वूल वगैरह लगाते हैं ताकि वो साउंड एब्जॉर्ब करे और आवाज़ फैले ना, जिससे कि आवाज़ बहुत अच्छी क्वालिटी में मतलब रिकॉर्ड होती है। तो फिर उसके बाद इसकी मेरे को नॉलेज होने लगी। तो 2024 में मैंने थोड़ा बहुत मतलब गाने अपना मतलब गाना गाना चालू कर दिया था। मैं अपने भाई को देखता था, मैं अपने भाई को भी बहुत एडमायर करता हूँ क्योंकि उसको भी मैं देखता रहता था तो मेरे को अच्छा लगता था, मेरा भी होता था कि मैं भी अब चालू करूं, मैं भी कुछ बनाऊं। लेकिन मैं तब भी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं हॉलीवुड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूं। हॉलीवुड का मतलब हॉलीवुड अमेरिका ही नहीं, मतलब कि जैसे फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, इटालियन म्यूज़िक हो गया, मैं अभी भी बहुत सुनता हूं। और मेरा अभी भी होता है कि यार इनकी इस वाली बीट पर अगर मैं अपना पंजाबी में कुछ बनाऊँ तो मतलब कैसा लगेगा। तो इसके लिए मैं हमेशा एकदम से रेडी रहता हूँ। तो मैं तब भी ये चीज़ मतलब हमेशा देखता था कि यार मैं चाहता हूँ कि कुछ हॉलीवुड वाली टाइप में मैं कुछ फील लेके आऊँ। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ना मैंने 2024 में थोड़ा बहुत लिखना राइमिंग बनानी चालू करी और कंपोजिशन मैं बना लेता था लेकिन मैं लिख नहीं पाता था। मैंने 2024 में थोड़ा बहुत लिखना भी चालू कर दिया क्योंकि अब मैं अपनी बीट्स तो बनाता था लेकिन उस बीट्स पे मेरा भाई वाली फील नहीं ला पाता था जो कि जैसी मैं चाहता था। तो फिर मेरे को ये चीज़ मेरे अंदर से ही ये चीज़ आई कि मैं अब इसको भी थोड़ा बहुत चालू करूँ। तो मैं कंपोजिशन बना लेता था, मैंने थोड़ी बहुत राइमिंग बनानी चालू करी, थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स मैंने जानने मतलब चालू करे। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत सिंगिंग का रियाज चालू करा। मैंने कहा चलो उसको मैं ही गाता हूँ क्योंकि मेरी कंपोजिशन और मेरी राइमिंग वगैरह वो कोई कर नहीं पाता, किसी को समझ नहीं आती। तो मैंने कहा चलो उसको मैं ही ट्राई करता हूँ। तो धीरे धीरे

0: तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि सब तो मैंने करा, मतलब मैंने इन चीज़ों में मेहनत ही बहुत करी है। बहुत बहुत रातें मैं जागा हूँ, बहुत मेरा जो स्लीप साइकिल अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, मतलब थोड़ा पहले से ठीक है, क्योंकि मतलब रात रात भर जानने की इच्छा होती थी कि यार ये साउंड ऐसे साउंड कर रही है, अपनी वोकल को सिल्क कैसे मैं साउंड कराऊं, इनको अच्छे से अच्छा कैसे साउंड कराऊं, जो ये प्रोफेशनल जो बॉलीवुड के जो मिक्सिंग मास्टर मास्टरिंग इंजीनियर बैठे हैं ये कैसे मतलब मिक्सिंग वगैरह करते हैं जो इनकी इतनी अच्छी आती है। तो ये सब मैं मतलब हमेशा से रहता था मेरे को कि मैं जाना चाहता था, तो उस चक्कर में बहुत रातें मैंने अब इन चीज़ों पर R&D करी है। तो फिर उसके बाद फाइनली मैंने 2025 में मतलब गाना वगैरह स्टार्ट करे, तो उसके बाद फरवरी मार्च फिर अब 2025 में मैंने अपनी एक EP भी डाली थी जिसका नाम था फोर एवर। अब आप इसको ये समझोगे कि फोर एवर नहीं था, ये था FOUREVER, और वो इस EP में मतलब थे चार गाने, तो वो चार गानों को ही मतलब दर्शाता था कि ये चार गाने मतलब हमेशा के लिए रहे। तो उन चार गानों से मैंने एक और स्टार्ट किया था। अब मेरा जो है प्लान है वो है एल्बम का, 7 गानों की एल्बम होएगी। इस बार मैंने 2026 में मैंने इस बार कोई गाना नहीं डाला, इस बार मैंने ट्रेंड को अच्छी तरह समझा है और इस बार मैंने जो गाने बनाए हैं सारे ट्रेंड के हिसाब से और एकदम समय के हिसाब से बनाए कि इस टाइम हमारे इंडिया में क्या चल रहा है।
1: बहुत उम्दा। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। समरा जी से अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक इनकी यात्रा के बारे में तो बात कर लिए। आइए, बहुत सारे सवाल हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं एज अ लिसनर, सो वी गोना टॉक अबाउट ऑल दोस क्वेश्चंस, ऑल दोस थिंग्स, बट ये सारी बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, शो इज वॉइस ऑफ यूथ, फील गुड फील।

0: मैं उम्मीद कर रहा हूँ जी आपको पसंद आ रही है गाने, आपको पसंद आ रहा है हमारा शो। चलिए शो को आगे लेकर चलते हैं। सिमरनजीत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, फरीदाबाद से हमारे शहर के एक आर्टिस्ट हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ही थिंक्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड हाउ यू कैन बिकम अ कंपोजर। वी वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। सिमरनजीत अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको म्यूजिक बनाना है। You said कि आपने फोन से स्टार्ट किया।
1: हाँ जी,
0: पहला सवाल तो ये होगा कि भैया क्या ये जरूरी है, बहुत भारी रकम स्टूडियो आपके पास हो अगर आपको म्यूजिक बनाना है, इज इट मैंडेटरी?
1: बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो म्यूजिक ऐसी चीज है ना, कई कई बार मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कुछ म्यूजिक वगैरह नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे गाने बना रखे हैं, उन गानों की धुन, उन्होंने 100 गाने बना रखे हैं और वो 100 गाने की धुन कभी भी मेरे को सुना सकते हैं। तो जो म्यूजिक है वो ऐसा नहीं है कि आपने बस कंप्यूटर में बनाया तो कंप्यूटर में सेव रहेगा, वो आपके माइंड में सेव रहता है वो चीज़, सबसे पहली बात तो ये। और अगर जिसको भी किसी चीज़ से स्टार्ट करना है ना, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या है। आपके पास जो चीज़ आप उससे स्टार्ट करो, ठीक है, धीरे धीरे आप बनाओ उस चीज़ को, धीरे धीरे करके, ठीक है, बस करते रहो, रुको मत।
0: बहुत उम्दा। फ़ोन से कैसे सीखा जा सकता है म्यूज़िक?
1: फ़ोन से सर, आजकल का देखो सर जो टाइम है, आजकल तो वैसे सर AI भी इतना सारा चल रहा है, ठीक है सर, जो इंटरनेट ऐसी चीज़ है ना कि लोग इसका, इनको इसका यही नहीं पता कि इसका जो यूज़ है वो कितना अच्छा यूज़, अगर इसको हम अच्छे वे में यूज़ करें तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इंटरनेट पर सारी चीज़ें ही पड़ी हैं कि ये चीज़ कैसे होती है, कि कोई काम कैसे होता है। आप कुछ भी डालो, या आप YouTube पे डालो, आप Google पे डालो, या अब तो AI आ गया, AI पे भी डालो तो वो किसी भी चीज़ का हल आपको 2 मिनट में बता देगा। अब बाकी वो आपका काम है कि आप उस पर मेहनत करते हो कि नहीं करते।
0: ऑलराइट, इस टाइम जो लोग आपको सुन रहे हैं, मतलब मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करूंगा, हम लोगों को गाना गाने की तरह समझ आता है, ठीक है, गाना मेरे सामने आया, मेरे को अच्छा लगा, मैं सुन रहा हूँ। आप एक म्यूजिक कंपोजर हैं, आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप बताइए उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या होता है, कितनी सारे प्रोसेस होते हैं गाने को गाना बनने में?
1: जी जी, सबसे पहले देखो सर, ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि पहले म्यूजिक बनेगा या पहले लिरिक्स आएगी, ये बिल्कुल भी वो नहीं होता, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता कि गाने की एक लाइन, कभी कभी मान लो किसी भी गाने की एक लाइन आपको मिल जाती है, ठीक है, कोई म्यूजिक नहीं बना, कोई आपको कोई लाइन अच्छी लग गई, आपके दिमाग में कोई लाइन आ गई, उस लाइन पे भी कभी कभी गाना पूरा पूरा गाना बन जाता है। और कभी कभी मान लो आपने कोई बीट बनाई, या कभी कभी कोई ऐसी कोई ट्यून बनाई या मेलोडी बनाई, और कभी कभी उस मेलोडी पे भी पूरा गाना बन जाता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पहले आपको, मतलब गाना बनाने के लिए पहले आप कोई बीट बनाओ या पहले आप कुछ गाना लिखो, ऐसा फिक्स नहीं है। पर देखो तब भी अगर आपको एक स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं कि एक गाना अगर कैसे बनता है, सबसे पहले देखो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास म्यूज़िक बीट होनी चाहिए, आपके पास अपनी लिरिक्स होनी चाहिए, या आपके मतलब लिरिक्स होनी चाहिए, वो बेशक आपकी हो किसी की भी हो, ठीक है। उसके बाद आपको उस गाने की फील पता होना चाहिए कि ये गाना, मतलब जो फील है इस गाने की, फील क्या है कि जो मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरी जो लिरिक्स है वो इस गाने पे मतलब है कि वो अच्छी लग रही है, वो जो फील आ रही है जो आनी चाहिए। तो उसके बाद फिर जो स्टेप्स होते हैं कि रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, पर अगर आपको मैं डिटेल में बताऊँ तो अगर जैसे मान लो कोई मेरे पास कोई भाई आया है, या कोई भी दोस्त वगैरह आया, कोई भी क्लाइंट वगैरह आया, वो कोई सुनाता है गाना, तो उस गाने की फील के हिसाब से कभी कभी हम पियानो पे कुछ कोड्स बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम कोड से ही करते हैं सबसे पहले, कि उसका स्केल क्या है गाने का, कि वो मेजर में है, माइनर में है, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि उसका गाने का स्केल क्या है। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत मेलोडी बनाते हैं, थोड़ा बहुत फिर हम ड्रम्स वगैरह ऐड करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा फिर बेस वगैरह। तो बेसिक तो देखो यही होता है, एक मेलोडी, ड्रम्स, बेस और आपका वोकल्स, वोकल्स फिर आपके आपके लास्ट में मेन आती है। तो यही 4-5 चीज़, ये आपको मैंने बेसिक बताया, वैसे चीज़ तो बहुत सारी होती है, परकशंस, हाई हैट्स, वो सब आपका मतलब ड्रम्स वगैरह में आ जाते हैं,
0: टेक्निकल में नहीं जाएंगे।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये बस ये बेसिक चीज़ होती है, लेकिन सबको एक ये पता है कि एक चलो म्यूज़िक बीट है और बस उस पर वोकल रिकॉर्ड कर दो, पर जो असली जो चीज़ होती है वो होती है मिक्सिंग, मास्टरिंग। ये बहुत बड़ा एक ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक गाने को प्रोफेशनल साउंड कराने में, मिक्सिंग मास्टरिंग, ये बहुत प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये सर। एक ऐसा स्टेप मिक्सिंग, सबसे पहले आपको मिक्सिंग बताता हूँ, जो मिक्सिंग है ना वो एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम गाने की हम सारी लेवलिंग करते हैं। हम जैसे मान लो कोई पियानो है या कोई गिटार है बीट के अंदर, तो उसको हम एक ऐसे लेवल पे लेके आते हैं जहाँ पे आपके गाने के सारे ड्रम्स, आपकी पियानो की मेलोडी, आपकी गिटार मेलोडी या जितनी भी जो भी मेलोडी है उन सब का हम एक ऐसा लेवल सेट करते हैं ताकि वो सारी के सारी एकदम बराबर और एक अच्छी सुनाई दे। ये ना होए कि कोई गिटार ज़्यादा सुनाई दे रहा है, कोई बेस ज़्यादा सुनाई दे रही है। तो सबसे पहले हम एक लेवलिंग से करते हैं, फिर उसके बाद हम एक EQ करते हैं, उसमें हम कट्स लगाते हैं कि कहीं पर, क्योंकि जहाँ लो फ्रिक्वेंसी होती है वहाँ पर मड्स होती है बहुत सारा, तो वहाँ पे हम कट करते हैं ताकि वो और ज़रा क्लियर सुनाई दे। EQ हम करते हैं, फिर हम करते हैं कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंप्रेशन होता है जैसे मान लो जो भी किसी भी गाने की जो ऑडियो पीक है, ऑडियो पीक और उसकी जो डायनेमिक रेंज है, तो वो उन दोनों को बैलेंस करता है। जो कंप्रेशन होता है वो उन दोनों को बैलेंस करता है। जैसे कि मान लो अगर कोई भी सिंगर है, कोई गाना गा रहा है, ठीक है, उसने कहीं जगह पे उसकी जो आवाज़ है, कहीं पे उसका सुर हाई हुआ, कहीं पे उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है और कहीं जगह उसकी आवाज़ थोड़ी सी धीमे है, तो अब उस हाई को और धीमे को बैलेंस करने के लिए हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। तो ये हो कि बेसिक कंप्रेसर, और फिर उसके बाद सैचुरेशन, ये सब ये आपके मतलब ये स्टेप्स हैं जो आपके मिक्सिंग में आते हैं। उसके बाद जो मास्टरिंग होती है, मास्टरिंग होती है लास्ट स्टेप, जिसमें कि गाना होता है एकदम पॉलिश। पॉलिश कहने का मतलब है कि ये कि मास्टरिंग में आपके पास खाली एक स्टेम होती है, मिक्सिंग में आपके पास सारी स्टेम होती है, चाहे वो आपकी गिटार होए, वोकल्स होए, ड्रम्स होए, सारी वो स्टेम्स होती है, लेकिन मास्टरिंग में आपके पास एक्सपोर्ट होने के बाद एक स्टेम होती है जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। और मिक्सिंग का भी एक ये रूल होता है कि हमें हेडरूम देना पड़ता है 6 dB का, मतलब आपकी जो बीट है उसका मैक्सिमम जो रेंज है वो 6 dB से कम होनी चाहिए, ताकि मास्टरिंग में, क्योंकि मास्टरिंग में ओवरऑल वॉल्यूम भी बढ़ती है, मास्टरिंग में वॉल्यूम भी बढ़ती है, इसलिए हमें 6 dB का हेडरूम देना पड़ता है। तो फिर मास्टरिंग के बाद आपका गाना और पॉलिश साउंड करता है, और गाना वाइड साउंड करता है, और क्लियर साउंड करता है। तो ये स्टेप्स होते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चला लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद सिमरनजीत से हम आगे बात करेंगे। और काफ़ी सारे सवाल है मेरे, और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर एज अ लिसनर मैं खुद भी कि मैं वो चीज़ें जान पाऊँ जो संगीत जो आप सुनते हो उसके पीछे मैटर करती है। और अगर आपका एज अ स्किल इसको स्टार्ट करना है, हाउ एग्जैक्टली यू कैन स्टार्ट इट, वी गोना एड्रेस दैट पार्ट बट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, शो वॉइस ऑफ यूथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वंस अगेन वेलकम बैक। अगर मेरे लिए कोई फीडबैक है, कोई भी ऐसी चीज है जो सिमरनजीत तक पहुंचानी है, तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइए। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और सिमरनजीत हमारे साथ हैं क्योंकि फरीदाबाद के कलाकार हैं, सिंगर हैं, कंपोजर हैं, रैपर हैं, बहुत सारी आर्ट फॉर्म इनके पास है। हम यहाँ पर उन सारी आर्ट फॉर्म्स को एक बकेट में समझने की कोशिश कर रहे हैं ओवरऑल कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अगला प्रश्न मेरा सिमरनजीत आपसे रहेगा बीट्स के बारे में। बीट हमने बहुत बार सुनी है, बहुत अच्छी भी लगती है कई बार। बीट एक टेक्निकल स्किल है या क्रिएटिविटी है?
1: सर मैं कहता हूँ दोनों ही है। क्योंकि आप क्रिएटिविटी में आप ये चीज़ आप बना लेते हो, लेकिन पर आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि ये जो साउंड है कि ये, मतलब आपको टेक्निकल ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो साउंड है कि ये सही है कि नहीं है उस जोनर के हिसाब से। तो ये दोनों चीज़ ही मेरे को लगता है सर, दोनों चीज़ ठीक है।
0: ठीक है, ये कैसे डिसाइड होता है कि बीट कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर ड्रॉप होगी, इसके पीछे के मैथ्स क्या है?
1: सर बिल्कुल आपको बताते हैं। तो बेसिकली सर ये चीज़ है, ये चीज़ ना इस पर डिपेंड करती है कि जो हमने लिरिक्स लिखी है उसमें सबसे पहले आपका हुक आती है, हुक के बाद प्री कोरस आता है, प्री हुक आती है, फिर मेन आपका कोरस आता है। तो उसको इन सब के जो आपकी अरेंजमेंट्स होती है ना लिरिक्स में, तो उसमें हम फिर उसमें डिसाइड करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये बिल्डअप आएगा, यहाँ पे आपकी मेन आपके ड्रम्स वगैरह आएंगे, उससे पहले थोड़े बहुत बिना बेस के ड्रम्स आएंगे, तो ये चीज़ वहाँ पे सेट होती है। और कई कई बार मान लो अगर पहले से बीट बनी हुई है तो फिर उस बीट के साथ, अगर जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं कि यूट्यूब पर बीट्स लेते हैं, परचेज करते हैं या फिर यूज़ करते हैं फ्री बीट्स यूज़, तो फिर उनको उस बीट के हिसाब से ही लिखना पड़ता है कि जहाँ पे कहाँ पे कोरस से पहले प्री कोरस आ रहा है या कहाँ कौन सी हुक आ रही है, तो उनको उस हिसाब से ही वो चीज़ बनानी पड़ती है। पर इसका कोई भी फिक्स नहीं है।
0: ऑलराइट, रिवर्ब कहाँ पे डालना है, डिले कहाँ पे डालना है, ये कैसे डिसाइड होता है?
1: सर ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ डिसाइड होती है। जैसे मान लो कोई एक, वैसे वोकल्स पे तो देखो सर ये मतलब मेन होती है कि लगती है डिले भी और रिवर्ब भी। पर जैसे मान लो कोई, अगर मैं मेलोडी लेता हूँ, ये जो चीज़ आपने सर बात करी ना बहुत अच्छी बात करी, पर ये चीज़ ना ये खुद अंदर से सेंस होनी चाहिए। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अगर इस पे मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे लगानी ही लगानी है, ये आपको अंदर खुद के सुन के आपको सेंस करनी, मतलब सेंस अंदर से आनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे मेरे को स्टेज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मेरे को रिवर्ब की रिक्वायरमेंट है कि या डिले की है कि नहीं। ऐसी बात नहीं है, ये लगती है और भी मेलोडीज़ वगैरह उन पर भी लगती है रिवर्ब वगैरह, कि हमें जैसे मान लो कोई ट्यून है उसको थोड़ा ड्रीमी साउंड कराना है तो हम वहाँ पे रिवर्ब लगाएंगे, या हमें कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं तो हम वहाँ डिले वगैरह लगाएंगे, तो ये ऐसे काम करता है सर।
0: चलिए मैं एक सिचुएशन आपको देता हूँ। एक लड़का इस टाइम पे आपकी आवाज़ सुन रहा है जो बिल्कुल फ्रेशर है, उसको गाने बनाने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ का पहला गाना बनाना चाहता है। उसने कविता लिख ली है जो लिरिक्स है उसके, अब उस कविता को उसको एक फाइनल गाने में कन्वर्ट करना है। अब मुझे बताइए कैसे करना है।
1: जी जी सर बिल्कुल। अब सबसे पहले सर हम जो भी कविता है या फिर लिरिक्स है, पहले हम उसका ब्रेक डाउन करेंगे कि उसकी जो एक एक लाइन है वो कैसे, मतलब किस अरेंजमेंट में आ रही है, वो कोई किसी रैम्स में आ रही है या फिर किसी फ्लो में आ रही है, किस फ्लो में आ रही है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका जो सिग्नेचर है वो किस उसमें है। तो उसके बाद फिर हम उसमें थोड़ा बहुत उसका गाने का स्केल देखते हैं कि हाँ कि अब जो है ये किस स्केल पे, ये जो मतलब है लिरिक्स है हम उस स्केल पे ट्राई करते हैं। फिर हम जब उसका एक कोड प्रोग्रेशन बना के, सबसे पहले हम बेसिक पे कोड प्रोग्रेशन पे ही देखते हैं कि हाँ ये ऐसा साउंड करेगा, मतलब हमें थोड़ा बहुत पता चलना मतलब चालू हो जाता है कि हाँ ये गाना लास्ट में जाके ऐसा साउंड करेगा। तो कोड प्रोग्रेशन पे फिर हम थोड़ा बहुत स्केल ऊपर नीचे करके चेक करते हैं। वैसे ये मेरा अपना तरीका है, मेरे को मतलब और लोगों के और अपने अपने तरीके होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ऊपर नीचे करके मैं हमेशा चेक करता हूँ कि सबसे अच्छा जो है वो कहाँ पर साउंड कर रहा है जो गाना है। तो वो करने के बाद फिर हम थोड़ा बहुत मतलब मैं पहली बात तो मैं सुनता हूँ थोड़ा बहुत कि हाँ इसको मतलब किस जोनर में बनाए। अगर कोई मेरे को अपना छूट दे देता है कि आप अपने हिसाब से म्यूज़िक बनाओ, फिर तो मैं कोई ना कोई नया सा जोनर ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास पहले से कोई आता है कि उसको पर्टिकुलर कुछ बॉलीवुड टाइप ही बनाना है या कुछ पर्टिकुलर किसी और जोनर में बनाना है, तो फिर वहाँ पर मैं फिर उसी तरीके के ड्रम्स निकालता हूँ, जैसे कि हमारे सैंपल्स पैक होते हैं बहुत सारे, तो जोनर के हिसाब से होते हैं, हिप हॉप सैंपल पैक, एफ्रो सैंपल पैक, ड्रिल सैंपल पैक, तो उनमें उस तरीके की साउंड्स वगैरह होती हैं, साउंड्स वगैरह ड्रम्स की भी, सबकी पर्टिकुलर जोनर के हिसाब से ही साउंड होती है। तो फिर अगर मुझे कोई कहता है कि आप अपने हिसाब से म्यूज़िक बनाओ, तो फिर मैं पहली बात तो उसको थोड़ा बहुत सुनता हूँ, फिर मैं एज्यूम करता हूँ कि हाँ यार इस पे ये वाला जोनर इस्तेमाल करना चाहिए, फिर उस जोनर की थोड़ी बहुत मैं बीट्स और ड्रम्स वगैरह बनाता हूँ, तो ये प्रोग्रेशन बनी, ये थोड़े बहुत ड्रम बने, फिर उसके बाद हम करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह। वैसे तो एक गाना बनने में कम से कम मैक्सिमम हफ्ता कह सकते हो आप, एक अगर अच्छा गाना किसी को बनाना हो या कोई भी अगर बिगनर हो तो कम से कम हफ्ता, क्योंकि बात यह है ना कि म्यूज़िक तो मैं कंप्लीट तो मैं दो दिन में ख़त्म कर दूंगा गाना, लेकिन क्योंकि अगर कोई न्यू कमर है, क्योंकि उसको उस गाने को प्रैक्टिस करने में भी टाइम लगेगा दो तीन दिन अच्छे से, क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छा आउटपुट आए म्यूज़िकली भी और वोकली भी, इसलिए हम कम से कम हफ्ते का टाइम रखते हैं ताकि जो जो सिंगर है वो अच्छे से अच्छी मतलब प्रैक्टिस करके रखे ताकि हमें फाइनल आउटपुट बहुत अच्छी मिले। तो फिर बेसिकली बस ये है कि हम थोड़ा बहुत स्क्रैच मैं म्यूज़िक वगैरह बना लेता हूँ, हम पहला क्योंकि मेरा जो स्टेप है ना कम से कम मैं डेमो वर्जन ही कम से कम 5-6 डेमो वर्जन बनाता हूँ, 5-6 डेमो वर्जन बनाता हूँ मैं कम उनको इतनी बार सुनता रहता हूँ, फिर देखता हूँ कि हाँ इसमें ये इस चीज़ की कमी है या इसको थोड़ा और बढ़िया करूँ या थोड़ी कंपोजिशन में और नई चीज़ें लेके आऊँ, और 7-8 बाद नंबर बाद फिर मैं इसको फाइनल करता हूँ, फाइनल रिकॉर्डिंग। उसका ये उसका मतलब फ़ायदा ये है कि वो गाना हमारे जहन में बैठ जाता है, क्योंकि जैसे मान लो अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लो पोएम है, हमने जैसे जोनी जोनी यस पापा वाली पोएम हमने इतनी बार सुनी है, वो जैसे हमारे सबके जहन में बैठी हुई है कि जोनी जोनी यस पापा हेटिंग शुगर नो पापा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी गाना करे ना तो इसी तरीके से ऐसा याद कर ले कि वो एकदम जहन में बैठ जाए, क्योंकि एक बार जब जहन में बैठ जाती है वो चीज़ तो वो चीज़ एकदम से अच्छे से निकलती है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है, जो भी न्यू कमर होते हैं जो पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो डरते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे, जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं हड़बड़ाते हैं थोड़ा उनको मतलब डर लगता है वो ऐसे करके, तो इसलिए कम से कम मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 बार तो डेमो वर्जन ही रिकॉर्ड कर मतलब कराना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है ये मैं हाँ
0: बेसिकली प्रैक्टिस
1: बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम डन विद माय क्वेश्चंस, जाते हुए अपने कुछ गानों के नाम बता दिए लोगों को ताकि अगर आपको सुनना चाहे तो सुन सकते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी सर, मेरे जो जितने भी मेरे गाने अभी तक मतलब आपको मैं नाम बता देता हूँ, वो सारे ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, चाहे वो एप्पल म्यूज़िक हो, स्पॉटिफाई वगैरह हो, अमेजोन म्यूज़िक हो, तो वो सभी म्यूज़िक पे आप सुन सकते हो इंक्लूडिंग यूट्यूब। तो मैं कुछ गानों के नाम बताता हूँ जो मेरे वैसे तो मेरे मतलब सारे ही फेवरेट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छे लगते हैं वो, तो पहला है स्पार्कल बाय सिमरनजीत सिंह, एंड सेकेंड है राइड इन हुड बाय सिमरनजीत सिंह, ये इसमें मेरे भाई ने भी रैप करा, मेरे ब्रदर गुरजीत सिंह, एंड थर्ड सॉन्ग मेरा सुपीरियर, इस सुपीरियर की जो लिरिक्स है ये मेरे भाई ने ही लिखी है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब गाना जो था ये इसमें थोड़ा रैप टाइप था, तो मेरा भाई का है थोड़ा मेन उनको मतलब मेरे भाई का सिंगिंग कम है और रैप वगैरह ज़्यादा है हाँ। तो और फोर्थ सॉन्ग बजिन, ये मेरे एक और मेरे बहुत अच्छे खास भाई हैं अमरजीत भाई, तो इसमें मैं और मेरे भाई और अमरजीत हम तीनों ने मिलके हम कुछ ये वाला सॉन्ग अगर सुनोगे तो ये फ़नी सॉन्ग है, हमने कुछ इसमें कुछ फंकी टाइप का हमने कुछ म्यूज़िक वगैरह ट्राई करा था कुछ ब्रूनो मार्स टाइप, और एक गाना हो रहा है यारियां ते मान, ये हमने दोस्तों के ऊपर बनाया था, इसमें हमने वीडियो में मजाक मस्ती करी थी, और एक सबसे पहला मेरा सॉन्ग था ओमेगा, ये आप सुनना, उसकी लिरिकल आपको बेशक अच्छी ना लगे लेकिन उसकी बीट आपको बहुत अच्छी लगेगी ओमेगा की।
0: सो सुनिएगा जरूर, फरीदाबाद के ही आर्टिस्ट हैं, एंड आई थिंक वी एज अ सिटी वी शुड सपोर्ट आर आर्टिस्ट जो यहाँ पर आते हैं और जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ बड़ा करने के ख्वाब देखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक शहर के तौर पर हम सबको इकट्ठे होकर उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ हमारा शो का जो ये एपिसोड है यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच सिमरनजीत यहाँ आने के लिए।
1: थैंक यू सर, सर थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने मतलब अपॉर्चुनिटी दी, थोड़ा बहुत मेरे को भी अच्छा लगा आपसे थोड़ा बहुत सीखने को मिला मेरे को, और बस सर यही कहना चाहता हूँ मैं, थैंक यू।
0: इट्स एन ऑनर टू हैव यू। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपको शो पसंद आया हो तो बताइए और सिमरनजीत के गाने चेकआउट करिए, आपको अच्छा लगे, कुछ खामियां लगे, कुछ और एक्सपेक्टेशन लगे सिमरनजीत से, तो उनको उनके कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। फिलहाल मैं यहाँ पर शो को एक हॉल्ट देता हूँ, चलेंगे फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन हम मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, करिए सर, ये दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
2: देखिए किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि आपको बताऊंगा उस मिट्टी के बारे में जिसको जाना जाता है कोकोपीट के नाम से। भारत के बड़े शहरों में मिट्टी की जरूरत को पूरा करने के लिए कोकोपीट का उपयोग किया जाता है। इस कोकोपीट को नारियल फाइबर, कॉयर फाइबर या कॉयर के तौर पर भी जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोकोपीट को बनाया कैसे जाता है। कोकोपीट नारियल के जो छिलके होते हैं ना, छिलकों को पीसकर तैयार किया जाता है। इसकी उर्वरकता में पौधों की बढ़ोतरी के लिए बहुत सारे पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। इसका उपयोग फूल और सब्जियों की पैदावार के लिए किया जाता है। कहीं भी खेती करने के लिए मिट्टी अत्यंत आवश्यक चीज है किसान भाइयों। और भी देखिए, आप जानते हैं, आप कहीं भी खेती करना चाहते हैं तो आपको मिट्टी की जरूरत तो पड़ेगी ही। ऐसे में शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मिट्टी की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन अगर आप शहर में रहकर खेती करना चाहते हैं तो इस तरीके को स्वीकार करके आप अपनी छत पर भी छोटी छोटी थैलियों में सब्जियां उगा सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है।
1: देखिए दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं कोकोपीट। ये पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन सवाल है कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने का तरीका क्या है और हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किचन गार्डन में कोकोपीट उर्वरक का इस्तेमाल करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। पौधों में कोकोपीट डालने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, इससे बीजों या पौधों में वो जो फंगल होती है ना, फंगल नाम का रोग बिल्कुल नहीं लगता और बीज तेजी से बढ़ते रहते हैं। और इसके अलावा मिट्टी में कोकोपीट मिलाने से वो जो खरपतवार होती है वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है। पानी सोखने की अधिक क्षमता के कारण पौधा मिट्टी में नम रहता है और उसकी जो बढ़ोतरी होती है ना, वो भी शानदार होती है। दोस्तों, कोकोपीट डालने से पौधे की जड़ें भी एकदम मजबूत हो जाती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कोकोपीट और मिट्टी तैयार करने का सही तरीका क्या है। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कोकोपीट और मिट्टी तैयार करने के तरीके के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोकोपीट ईंटों को एक बाल्टी में डाल लें। अब इसमें एक या दो मग पानी डालकर बारीक बारीक तोड़ लें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। यहाँ पौधे की मिट्टी को थोड़ा ढीला कर लें। इसके बाद कोकोपीट को पानी से निकालकर मिट्टी में डाल दें और मिट्टी को बेहतर ढंग से मिला दें। कोकोपीट का उपयोग बीज बोते समय भी किया जा सकता है। इसके अलावा पौधे के लिए मिट्टी 40%, कोकोपीट 30% और गोबर की जो खाद है या वर्मी कंपोस्ट वो 30% कोकोपीट के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो जो भी आपके पौधे होंगे उनको पोषण तत्व मिलेंगे और आपकी जो फसल है वो होगी बेहतर से बेहतर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: दोस्तों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कोकोपीट के बारे में, और मैंने पीछे आपको बताया भी था कि कितना प्रतिशत होना चाहिए जिससे कि आपके पौधों को अच्छी तरह से पोषक तत्व मिल सकें। मैंने बताया था कि पौधे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मिट्टी 40%, कोकोपीट 30% और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 30%। कोकोपीट के साथ मिलाकर के भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और सभी छिलकों को इकट्ठा करके सबसे पहले किसी साफ जगह पर धूप में 3 या 4 दिन के लिए सुखाने के लिए रख दें। अब इन छिलकों को कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, लेकिन ध्यान रखें कोई भी टुकड़ा ज्यादा ठोस ना हो। किसी भी ठोस टुकड़े को अलग से हटा दें। अब इन छिलकों को ग्राइंडर मिक्सर में पीस लें। छिलकों को तब तक पीसना है जब तक ये पाउडर का रूप ना ले ले। हालांकि नारियल के जो छिलके हैं ना, उनको पूरी तरह से पीसना संभव नहीं है, परंतु इसमें कुछ रेशे रह जाते हैं, इसलिए पाउडर को अलग से छान लें और रेशों को अलग कर दें। अब जो पाउडर है उस पाउडर में पानी मिलाएं और 2 से 3 घंटे तक के लिए छोड़ दें। जब ये पाउडर पानी को बेहतर ढंग से सोख ले तो इसे निचोड़ लें। इससे क्या होगा, जो बाकी का पानी है वो पानी निकल जाएगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: दोस्तों, आज मैंने आपसे बात की है कोकोपीट के बारे में, और कोकोपीट को बनाने का तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बताया है, और इससे आपके पौधों को पोषक तत्व किस तरह से मिल सकते हैं वो भी समझाया है। यानी कि कोकोपीट को लेकर के जितनी भी तकनीकी बातें थीं वो सारी बातें आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन अब समय आपसे आज्ञा लेने का आ चुका है, इसलिए आपका दोस्त फहीम आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं, और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुकाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। अरे

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चीलों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की संत्रास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गौंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गौंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं। कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: से दिल में समा, आ जा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
2: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
3: नैन भरते नहीं प्रकृति तुझे बार बार निहार निहार, हरियाली का ओढ़े आंचल, सरसों के छींक पीले पीले, नहरे देख लगे कुछ ऐसे, गले में जो हार हो तेरे, पानी यूं झिलमिल करता एक सेतु में मोती, गुथे हो जैसे चांदी की रेखा सी मुस्काती, पगडंडियां जगह जगह बिखरी, लताएं झूम रही कुछ ऐसे जैसे लच झूम रही हो, तुझे झूम झूम गोभी के फूल लगे कुछ ऐसे, नच पहनी हो कुआरी कन्या सी, सोन बालिया गेहूं की तूने पहनी अपने कानों में, यौवन कलश तेरे ओ प्रकृति ये ऊंचे ऊंचे शैल शिखर, ओढ़ लिया तूने ओ प्रकृति नील गगन का आंचल, पल पल छिन छिन बदले ओ प्रकृति तूने अपने परिधान, कभी हरियाली कभी नील गगन, कभी आंचल में टाक सितारे, चलती पग में झरनों के घुंघरू बांध, छम छम छम की ध्वनि सुनाती तू नाच रही है, झूम झूम जो मदहोश यौवन मदिरा पी कर तुम, पतझड़ आया तुम्हें उदास कर गया, सोन पत्तियां झड़ रही पेड़ों पर से तमाम, लजाए से खड़े हैं सर को झुकाए निर्मम पतझड़ ने लूट लिए भव्य प्रकृति तेरे परिधान, उदास न हो तू ओ प्रकृति नील गगन का ओढ़ ले आंचल, फिर से वसंत आएगा फिर वह भव्य परिधान तुझे मिल जाएगा, फिर तू लजाना ओढ़ के आंचल, दुख तो सब पर आता है, सूरज अस्त होता है रोज, दीपक हम जलाते हैं पर फिर आना ही पड़ता है, सूरज को दुनिया में जीवन देने को।

0: 8FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर आज तक की रिलीज फिल्म के गीत, गजल, भजन, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हो, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं सुनना, या फिर कैसा लग रहा है आपको सृजन और रेडियो मानव रचना भी, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है भगवती सक्सेना जी। आप लेखिका हैं, बहुत सारा साहित्य के क्षेत्र में आपने काम किया हुआ है, आज हम उनके बारे में जानेंगे सुनेंगे। भगवती सक्सेना जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: भगवती जी, जो सबसे पहले हमारे दोस्त आप लोगों से जानना चाहते हैं, यही कि आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? भगवती जी,
1: मैं 2012 से ही कहानियाँ लिख रही हूँ, कहानियाँ कविता, क्यों, मेरी दो बेटियाँ थी और एक मेडिकल में हॉस्टल में गई, एक इंजीनियरिंग में, और हम हस्बैंड वाइफ रह गए और मेरे पास समय ही समय था।
0: अच्छा।
1: और मैं बचपन से
0: जी, क्या बात।
1: और मैं बचपन से डायरी में कुछ ना कुछ लिखती थी, और वो समय ने मुझे मजबूर किया और मैं उसमें हमेशा रात भर दिन भर जब समय मिला मैं लिखने लगी, और तब से मेरी जो लेखनी चलती रही तो अभी तक चल रही है।
0: अच्छा।
1: लेखनी की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई, तब तो ऐसा कुछ नहीं था, डायरी में दो दो लाइन लिखते रहते थे, ऐसा मीडिया आजकल जितना फेमस हो गया उस समय मीडिया नहीं था।
0: क्या बात है भगवती जी, हो सके तो हमारे दोस्तों को अपनी शुरुआती दौर की कोई रचना या अभी की कोई रचना, जो भी आप हमारे दोस्तों को देना चाहें कृपया आप दीजिए।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: हाँ, मैं कविता सुनाती हूँ।
0: जी, स्वागत।
1: मैं नारियों के ही ऊपर बहुत लिखती थी कि आगे बढ़ो। उस समय मैं पहले गोरखपुर में थी
0: जी,
1: अभी आपने मेरा परिचय, तो वहीं मैंने ये कहानी कविता लिखी थी। बुलंद है हौसले मेरे,
0: क्या बात है,
1: जीवन के कितने भी कठिन पल हो, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: इरादे कर बुलंद, अब रहो, सहना छोड़ो, शुरू करो कहना, जैसे ही कुछ ऊंचाई पर चढ़ोगी तुम्हें विरोध मिल सकता है, रन करो, झुकोगी नहीं, रुकोगी नहीं, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: बेबाक बेबाक बिंदा, हंसी पर भी तुम्हारे कुछ लोग हंसेंगे, माखौल उड़ाएंगे, नीचा दिखाने की कोशिश जारी रहेगी, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: जीवन के कठिनतम दांव को भी हंस कर टालना, हिम्मत न हारना, अनुपलब्धता को उपलब्धि में बदलना, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात,
1: अवरोध खड़ा कर रहे हर अभिमानी से, अवरोध खड़ा कर रहे हर अभिमानी से, तुम्हारी राह में आए हर अज्ञानी से,
0: क्या बात है,
1: चोट पहुंचाने वाली कुंठित मनमानी से, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात,
1: फिर दोहराना, बुलंद है हौसले मेरे, ये मेरी कविता।
0: क्या बात है, क्या बात है, ए भाई जरा देख के चलो,

दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है भगवती सक्सेना जी, लेखिका हैं, बहुत सारी विधाओं में आप काम करती हैं, आपने उनकी अभी भी कविता सुनी नारी पर। भगवती सक्सेना जी, चुनौत में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी, आप बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपको पढ़ा गया, मानवी, हंस, गृह शोभा, अभ्युदय, कविता कानन, सत्य की मशाल, मेरी निहारिका, साहित्य वसुधा, पलाश, बड़े बड़े नाम हैं। गुजारिश होगी कि आप अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
1: ये मुझे जो भी रचना अपनी अच्छी लगती है मैं इन समाचार पत्र और ये सब में भेजती हूँ और वहाँ से लोग उसको चुनते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई पत्रिकाओं में भेजती हूँ, समाचार पत्र में आती है। मैं तो अपना काम करती हूँ कि मुझे जो अच्छी लगती है मैं भेजते ही रहती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई पत्रिका में मेरी रचना आए और लोग उसको पढ़ें और लोग मतलब उससे कुछ प्रेरित होकर कुछ आगे भी करें। और मैं नारियों के ऊपर बहुत मतलब
0: नारियों पर आपने बहुत बहुत बहुत हाँ बहुत काम,
1: उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मेरा दिमाग में हमेशा रहता है क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है जीवन में पहले।
0: जी जी, भगवती जी, इस मोड़ पर गुजारिश होगी आप अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए फिर।
1: हाँ, रचना का शीर्षक है
0: जीवन। जी,
1: ये भी कविता है। वैसे मैं कहानियां भी बहुत लिखती हूँ।
0: जी,
1: अपने जीवन के निर्णायक स्वयं ही बनना, कभी किसी को ये है समर्पण नहीं करना। जब विचलित हो मन, मौन को ही शस्त्र बनाना, निश्चित विजय तुम्हारी होगी, समय भी आएगा जो षड्यंत्र रचेगा, साम दाम भेद सब कुछ करेगा।
0: क्या बात है?
1: राम कृष्ण के वंशज हो सदा ये याद रखना, सत्य के पथ पर चलते रहना, तुम्हारी विजय होगी। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र जब जीवन में नजर आए हिम्मत रखना, संकल्प साधना, लक्ष्य निर्धारित करके सब पाओगे।
0: क्या बात है?
1: गीता में कृष्ण के शब्दों को सदा ध्यान में रखना, ध्यान रहे ये अपना भारत इकलौता ऐसा देश है, रामायण गीता से कोई भी अनजान नहीं है।
0: क्या बात है?
1: खंडित होते देखो जब जब रिश्तों की मर्यादा को, अपने जीवन के निर्णायक सदा स्वयं ही तुम बनना।
0: क्या बात है, बहुत

0: వెల్కమ్ అగైన్ టు రేడియో మానవ రచన విత్ ఫీల్ గుడ్ ఫీల్ లైవ్ 107.8 ఎఫ్ఎం పర్ ఆప్ హై మాధురి కే సాథ్ ఔర్ మాధురి హాజిర్ హై आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही बेहद ही खास मेहमान हैं, लेखिका हैं, कथाकार हैं, कवित्री हैं, भगवती सक्सेना जी। भगवती जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हैं। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, प्रेरणा साहित्य संस्था, भाषा साहित्य मंच, कलश कारवा, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी संस्थाओं की। गुजारिश होगी कि आप अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
1: हाँ, बहुत सुंदर सफर है
0: जी।
1: अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था
0: जी,
1: इसमें मैं 2021 से हूँ
0: जी,
1: और इसमें सब कुछ होता है, साहित्यिक सांस्कृतिक सम्मेलन होते ही रहते हैं
0: जी,
1: और वार्षिकोत्सव होता है जिसमें बहुत बड़ा उत्सव ही समझिए, साहित्यिक और सांस्कृतिक। पूरे देश से लोग आते हैं और जिनको बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं, राशि दी जाती है कईयों को 31,000 11,000। वो कई क्षेत्र के रहते हैं
0: जी,
1: मतलब कोई जैसे नृत्य विधा या फिल्म के कलाकार, ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं
0: जी।
1: और वो हम उसमें हैं, मैं भी उसमें कार्यकारिणी में हूँ अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था में
0: जी, जी, जी।
1: वो डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला की संस्था है
0: जी,
1: और इसकी ब्रांचेस बाहर भी हैं और यहाँ भारत में भी कई जगह है।
0: क्या
1: आप कोलकाता में भी है?
0: हाँ, तो नाम ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाम ही है आपकी संस्था का।
1: हाँ, तो इसकी ब्रांचेस शाखा कई जगह है
0: जी, जी, जी।
1: मैं इन्हीं संस्थाओं में मतलब हर समय हर महीने इसमें कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन मीटिंग होते रहती है। काव्य गोष्ठी होती है और लघु कथा भी होती है।
0: आप अपनी बहुत सारी संस्थाओं को भूल रही हैं। पंखुड़ी संस्थान है जिसके माध्यम से हम मिले हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
0: हम लोग जुड़े ही पंखुड़ी के माध्यम से।
1: मैगजीन में मेरी कहानी भी आई है ब्लॉग में, और वो बहुत उसके तो मैं बहुत लोगों को बहुत दिनों से जानती हूँ, आज भी नहीं, वो डॉक्टर उपमा शर्मा से मेरी बहुत अच्छी पहचान है। रानी
0: भगवती जी, आप गुजारिश होगी इस मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों को दे रही है।
1: मेरी ये कविता का शीर्षक है आजाद परिंदा
0: जी। स्वागत है।
1: क्योंकि देखिए, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, शायद ये आपको पता ही होगा
0: जी,
1: आप देख रहे
0: हैं जी, जी।
1: हाँ, ये इसी के ऊपर एक कविता है
0: जी। स्वागत स्वागत।
1: जिम्मेदारियों से मुक्त एक आजाद परिंदा हूँ मैं। हाँ, मैं 60+ हूँ।
0: हाँ,
1: जिंदगी जीना आ गया।
0: हाँ,
1: सब बंधनों से आजाद हूँ। डरना मैंने छोड़ दिया है।
0: हाँ,
1: मैं 60+ हूँ
0: जी।
1: डांस भी कर सकती हूँ, गाने भी मैं गा सकती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ।
0: हाँ, मैं
1: 60+ हूँ।
0: क्या बात,
1: गया वो 60s का जमाना। गया वो 60s का जमाना जब लोग सिर्फ बजट करते थे। 21वीं सदी में 60+ फैशन शो में भी जाते हैं।
0: क्या बात है,
1: भी तो जाते हैं। हाँ, मैं 60+ हूँ। तन पर झुर्रिया हो सकती है, तन पर झुर्रिया हो सकती है, पर मन पर बिल्कुल नहीं है।
0: क्या बात है,
1: वो अलग बात है, वो अलग बात है कि डायबिटिक हूँ। चुपके से रसगुल्ला खाती जरूर हूँ। अंतर मन के नेटवर्क से चिंतन में ईश्वर से भी हमेशा जुड़ी रहती हूँ। हाँ, मैं 60+ हूँ।
0: क्या बात है,

0: Welcome again to Radio Manav Rachna with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर और आज हमारे साथ हैं कहानीकार कवित्री गीतकार भगवती सक्सेना जी। भगवती जी टुडेज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी आपकी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, कुछ के मैं नाम लूंगी और आपसे गुजारिश करूंगी आप अपने सफर के बारे में बताइए। शीशे के रिश्ते, परिसीमा के परे, कल्पनाओं का अंबार, पंकजा जो आपने ट्रांसलेट किया है हिंदी में, गुजारिश करूंगी अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइएगा जी।
1: बहुत सबसे पहली किताब मेरी शीशे के रिश्ते थी
0: जी,
1: जिसमें कहानियां हैं 35-36
0: जी,
1: और उसके बाद भी परिसीमा के परे मेरी एक किताब आई है 2024 में
0: जी,
1: जिसका विमोचन भी अभ्युदय संस्था में हुआ
0: जी।
1: और इसमें भी 35-36 कहानियां हैं जो यहाँ सब लोगों के द्वारा बहुत पसंद की गई।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद अभी एक किताब इस समय हुई है 2025 में, कल्पनाओं का अंबार
0: जी,
1: उसमें कुछ कहानियां भी हैं और कुछ कविताएं भी हैं, दोनों उसमें
0: है। जी जी।
1: अच्छा, वो डिजर्विंग बुक जो है वो स्नेहा की है, स्नेहा खानवेलकर
0: जी,
1: और उनका ट्रांसलेशन मैंने किया।
0: अच्छा, आप पंकजा पंकजा की बात हो रही है ना अभी?
1: हाँ, पंकजा पंकजा जी,
0: जी आप,
1: हाँ वो किताब एक आत्मकथा थी और बहुत प्यारी किताब थी।
0: अच्छा, पंकजा जो आपने ट्रांसलेट की है?
1: जब मैंने ट्रांसलेशन किया तो भी मुझे वो लिखने में भी बहुत आनंद आया।
0: क्या बात, क्या बात।
1: पूरे की है स्नेहा खानवेलकर।
0: तो गुजारिश होगी भगवती जी इस मोड पर आप हमारे दोस्तों को अपनी जो भी कविता गीत जो भी आप देना चाहें आपका स्वागत है।
1: कविता का शीर्षक है मुस्कान
0: जी। स्वागत।
1: स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग किसने देखा है? पर जिस घर में पत्नी हंसती मिले, मुस्कुराती मिले, समझना वही स्वर्ग।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: आकाश किसने छुआ है? पर जिस घर में पत्नी उड़ती दिखे, विचरण करे, समझना वही आकाश है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हवा को किसने पकड़ा है? हवा को किसने पकड़ा है? पर जहाँ पत्नी शांत मिले, आपका सत्कार करे,
0: क्या बात है,
1: समझना वही संसार है।
0: वाह, क्या
1: दूर
0: बात
1: से ही
0: क्या बात है।
1: दूर से ही मुस्कुराती दिखे, खिलखिलाती दिखे,
0: क्या बात है,
1: आपको देख आनंदित हो, समझना वही लक्ष्मी है।
0: क्या बात है। तेरा

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। आप लेखिका हैं, कवित्री हैं, कथाकार हैं, भगवती सक्सेना जी चुडोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी, आपने इतना सारा काम किया साहित्य के क्षेत्र में, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। कुछ के मैं नाम लूंगी, सहभागिता सम्मान से सम्मानित है, श्रेष्ठ सदस्य सम्मान आपको मिला है, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य चेतना सम्मान आपको प्राप्त है, राजू देवी सम्मान से आप सम्मानित है, हिंदी गौरव सम्मान, पलक रत्न सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, कलम सारथी सम्मान। बहुत लंबी लिस्ट है आपके सम्मानों की। गुजारिश होगी कि आप अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। इतना सारा सम्मान आपको मिला, कैसा लगता है इतना सारा सम्मान लेने?
1: सबसे पहला सम्मान मुझे पलक समूह से, क्योंकि मैं वहाँ बहुत सी कहानियाँ लिखती थी और 2012 से लेकर अभी तक मैं लिख रही हूँ, तो 2019 में मुझे पलक रत्न का सम्मान मिला वहाँ से।
0: जी जी।
1: उसके बाद मैं ये अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था से 22 में मिला, 23 में मिला, 24 में मिला और 25 में अभी पूरे बैंगलोर में श्रेष्ठ सदस्य सम्मान से नवाजा गया।
0: और बेंगलोर से पधारी हैं दोस्तों हमारे स्टूडियोज में।
1: हाँ जी जी। फिर प्रेरणा साहित्य मंच से मुझे 24 में साहित्य चेतना सम्मान मिला, प्रेरणा मातोश्री राजो देवी सम्मान मिला। वहाँ पे बहुत सी प्रतियोगिता होती रहती है, उसके अनुसार हमें सम्मान मिलते हैं। और साहित्य अर्पण समूह से हिंदी गौरव सम्मान मिला, भाषा साहित्य मंच से साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया। वहाँ भी हर माह में काव्य गोष्ठी होती है और हर महीने हम लोग जुड़ते रहते हैं, कविता कहानी कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तब साल में एक बार सम्मान दिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: कलम बोलती है साहित्य संस्था, कलम के साथ ही सम्मान से मुझे नवाजा गया।
0: क्या बात।
1: और इस तरह कई संस्था थी, एक विश्व रचनाकार मंच भोपाल का था, वहाँ से कल्पना चावला सम्मान भी मुझे मिला है।
0: क्या बात।
1: और कई एक अभी हम लोगों ने एक नाटक संस्था शुरू की है अभी जो चतुर नार के नाम से विख्यात है, और उसमें हम 4 लोग हैं और बेंगलोर में कई संस्थाओं में हम जाकर उस पे नाटक भी करते हैं, छोटी छोटी नाटिका समाज के उत्थान के लिए, जैसे अभी हम एक पर्यावरण के ऊपर करने वाले हैं, हमारी तैयारी है।
0: आप समाज सेवी भी हैं, है ना। इसीलिए इंटरव्यू लेना जरूरी होता है दोस्तों, कि इनको हम सिर्फ साहित्यकार के माध्यम से जानते हैं कि आप साहित्यकार हैं, लेकिन आप इतना काम कर रही हैं समाज में। भगवती जी, गुजारिश होगी कि इस मोड़ पर अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे
1: दीजिए।
0: जी, स्वागत।
1: ये मेरी छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है इम्तिहान।
0: क्या बात है, स्वागत है।
1: इम्तिहान अभी बाकी है, ब्रह्मांड विश्वविद्यालय की कठिन परीक्षाएं अभी बाकी है।
0: क्या बात है।
1: उड़ान अभी कितनी शेष है क्या मालूम, पर परीक्षा की तैयारी अभी बाकी है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तन जरूर थका है, मन पंछी में जान अभी बाकी है।
0: क्या बात है।
1: आत्मविश्वास अभी बाकी है, रोज जिंदगी की गलतियों को सुधारते हैं, प्रश्नकर्ता की नजरों का सामना अभी बाकी है।
0: क्या बात है।
1: जो बोया है वो पाएंगे, कर्म का भुगतान अभी बाकी है।
0: बाकी है।
1: ध्यान अभी बाकी है।

0: Welcome again to Radio Manav Rachna with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेजी बेजी खास मेहमान है लेखिका, कथाकार, कवित्री, साहित्यकार तो हैं ही, साथ में आप समाज सेवी भी हैं हमें अभी अभी पता लगा। और हमारी बेहदी एक महत्वपूर्ण संस्था है पंखुरी से आप जुड़ी हुई हैं, जिनके माध्यम से हम इनसे हमारा परिचय हुआ। भगवती सक्सेना जी स्टूडियो में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी, आपने इतना सारा काम किया साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, साहित्य के माध्यम से भी आपने समाज की, देश की बहुत सेवा की, इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, इतनी सफलता आपने अर्जित की। कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति ना होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ हो सकता है। और ये बताएं कैसा लगता है इतने सारे सम्मान लेके किसी सारी सफलता अर्जित कर। भगवती जी,
1: बिल्कुल होता है। सबसे पहले मेरे श्रीमान जी जयप्रकाश गौर जी,
0: क्या बात,
1: मेरा बहुत साथ देते हैं और समझिए कि समय बदला है, उन्होंने पग पग पर मेरा साथ दिया है। अगर मैं लिख रही हूँ तो वो बहुत कुछ बाहर, घर, किचन सब देख लेते हैं अगर वो अभी रिटायर्ड लाइफ में है।
0: क्या,
1: और मेरी बेटियाँ, छोटी बेटी इंजीनियर है और वो भी मेरा बहुत साथ देती है। सबके सहयोग से ही जो मुझे समय मिलता है उससे मैं बहुत कुछ लिखती हूँ। मतलब इसमें सबसे बड़ा हाथ तो मेरे श्रीमान जी का है जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे।
0: और कैसा लगता है इतने सारे अवार्ड्स लेके?
1: बहुत अच्छा लगता है,
0: क्या
1: असीम शांति मिलती है। अब ऐसा लगता है कि कुछ, मतलब कोई चीज की मुझे इच्छा नहीं रही, मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से।
0: क्या मतलब, गुजारिश करूंगी, हम अंतिम दौर में हैं, अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए।
1: बिल्कुल, सुनाओ
0: जी, स्वागत। हम तो इंतजार कर रहे हैं।
1: मेरी इस कविता का शीर्षक है बदलाव।
0: ठीक है, स्वागत।
1: चरित्र के समस्त आयाम केवल स्त्री के लिए ही परिभाषित थे, कुछ दशकों ने बदल दिया इसे। ऐसा बदलाव होना भी चाहिए। अब सुरक्षा चक्र के लिए कोई भी स्त्री मैरिड लिखना पसंद नहीं करती। करीबी दोस्त अगर पुरुष भी हो तो वो नहीं डरती, क्यों डरे,
0: क्या बात,
1: शब्दों के चयन में भी नहीं डरती, वस्त्र भी कपड़े भी मन मुताबिक ही पहनती है। भावों की उन्मुक्त अभिव्यक्ति, उसकी बेबाकियां उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती। उन्मुक्त हंसी और कर्तव्य की अभिव्यक्ति उसे किसी कटघरे में नहीं बांधती। अब चाय भी वो साथी से बनवा सकती है। बराबरी से जिम्मेदारियों का बोझ भी उठा सकती है।
0: क्या बात है,
1: उसकी सोच, उसकी संवेदनाएं अब उसे अंदर ही अंदर घुटने का सबब नहीं बनती।
0: क्या बात है,
1: स्त्री के लिए बने आयाम बदल चुके हैं, कुछ दशकों ने इसे बदल दिया है। धन्यवाद।
0: क्या बात है, कंकरिया मार के जगाया
1: कल तू मेरी।

0: भगवती जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला, आप हमारे स्टूडियोज में चले आए ऑल द वे फ्रॉम बेंगलोर, आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ मुझे नहीं पता।
1: धन्यवाद मैम, आपने मुझे समय दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप इस मंच का और आपके FM रेडियो का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके आपसे सुनने के।
0: और दोस्तों, संगीता अहलावत जी सुन रही हैं, राजेंद्र अग्रवाल हैं, अरविंद सिंह हैं, उमा शंकर शुक्ला, अलका शर्मा, प्रीता कौशिक, तनिष्क शर्मा, प्रियम वत्स, वीनू, नीता, अमृता, प्रभात, सुदर्शन, उपमा, रितेश, पूर्वा, आरके सिंह जी हैं, सुजीत है, सलमान है, अंकित है, मुकेश शर्मा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको रेडियो मानव रचना और सृजन भी, SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना, फील गुड फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सुरक्षा संवाद। इस खास कार्यक्रम को हम आपके लिए लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर, जहां हमारे एक्सपर्ट आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों के बारे में ही बात करते हैं। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो एक ऐसा विषय है जिससे हर कोई रिलेटेड है और हर कोई बचना भी चाहता है, साइबर फ्रॉड। हर बार हम साइबर फ्रॉड के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे मन में ये आशंका होती है कि शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन सुबह उठकर जब हम अखबार देखते हैं तो हजारों ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं। इंस्टाग्राम रील्स इनसे भरी हुई हैं, लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, न्यूज़ में अक्सर ये मुद्दा छाया होता है, क्योंकि इस छोटे से सेलफोन में हमारी पूरी दुनिया है, जिसमें हमारा बैंक बैलेंस भी है। हम अक्सर कैश रखते थे कुछ साल पहले तक, लेकिन अब हम उसका भी इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि हम सब कुछ ऑनलाइन पे करते हैं। डिजिटली हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन शायद डिजिटली सेफ्टी को हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो आज ऐसे ही विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर बसंत चौहान जी, जो कि SHO हैं साइबर क्राइम सेंट्रल जोन में फरीदाबाद पुलिस के साथ। ये बहुत समय से जुड़े हुए हैं, और जब साइबर पुलिस स्टेशन हुआ भी नहीं करते थे तब भी ये साइबर का कार्य संभाल रहे थे। बसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद दीक्षा मैडम आपका, और आज हम यहाँ साइबर क्राइम पे लोगों को जागरूक करने के लिए और उनकी जो समस्याएं हैं, कैसे वो साइबर क्राइम का शिकार ना बने, इस पर हम डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे हैं, और उम्मीद है कि इससे लोगों को बहुत फायदा होगा।
1: जी बसंत जी, हमने आपको देखा है, आप बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, बुजुर्गों को, सबको बताते आए हैं कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचना होता है। आज मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम साइबर क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम बेसिकली क्या एग्जैक्टली कहलाया जाता है?
2: देखिए मैम, साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है, क्राइम का मतलब जो भी चीज़ हम लॉ के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, लॉ के अगेंस्ट कर रहे हैं
1: जी,
2: लेकिन साइबर क्राइम के अंदर स्पेसिफिकली दो चीज़ का होना आवश्यक है, एक तो इंटरनेट का, एक किसी डिवाइस का। और सामने वाला जो व्यक्ति है उसको हम नहीं जानते हैं
1: जी,
2: वो अंधेरे में रहकर हमारे खाते को खाली करना चाहता है, या सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की कोई हमारे बारे में कोई वीडियो को वायरल करके या किसी भी प्रकार से हमारी मॉडेस्टी को आउटरेज करना चाहता है, या हमारे किसी भी अकाउंट को हैक करना चाहता है और उसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी डिवाइस का इस्तेमाल करके जिसमें इंटरनेट का यूज़ किया गया हो, और वो डिवाइस कंप्यूटर भी हो सकती है, फ़ोन भी हो सकता है, और इस प्रकार का कार्य करे जो लॉ के अनुसार ठीक नहीं, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं।
1: जी बिल्कुल, यानी एक इंटरनेट कनेक्शन और एक फ़ोन, लैपटॉप या टैब जो होता है, जो डिवाइस हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं लोगों से जुड़ने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी बैंक की ट्रांजैक्शन करने के लिए, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो साइबर फ्रॉड के शिकार आप हो सकते हैं। बसंत जी, अगली चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे कॉमन साइबर फ्रॉड कौन सा है जो आज के समय में चल रहा है? क्योंकि आप पिछले 6-7 सालों से, जब हम साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम के बारे में ये शब्द इस्तेमाल भी नहीं होता था, तब से आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या है सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला साइबर क्राइम या फ्रॉड?
2: देखिए मैडम, मेरा मानना यह है कि साइबर फ्रॉड को करने के लिए साइबर फ्रॉडस्टर्स को हर हालत में पैसा चाहिए
1: जी।
2: वो तरीका कोई भी अपना सकते हैं, आप में डर पैदा कर सकते हैं, आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं, आपके खाते की जानकारी वो किसी भी प्रकार से इकट्ठी कर सकते हैं, और आपको बातों में बहला फुसला कर आप ही से आपकी जानकारी वो इकट्ठी कर सकते हैं फोन कॉल के द्वारा, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा ही ठगना होता है
1: जी।
2: जिसके लिए वो अनेक तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आज की डेट में जो फ्रॉड चल रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट है जो वर्ड काफ़ी हमारा सुना हुआ है और बार बार हम इसको कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, हनी ट्रैप है, रिमोट एक्सेस है जिसमें APK फाइल आती है और हम लिंक क्लिक करते हैं तो हमारा एक्सेस फोन का चला जाता है और उसके बाद वो हमारा खाता खाली कर देते हैं, जॉब स्कैम्स हैं, इस तरह ये हजारों हो सकते हैं
1: जी।
2: तरीके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली दो शब्दों में सिमटा हुआ है, नीड और ग्रीड। आदमी की जरूरत और आदमी का लालच। 90% जो फ्रॉड हो रहा है वो ग्रीड पर हो रहा है, और 10% जो फ्रॉड हो रहा है वो जरूरत में हो रहा है
1: जी।
2: मैं इनको भी थोड़ा सा बाइफर्केट कर देता हूँ। ग्रीड क्या है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने पैसे को कहीं इसी जगह इन्वेस्ट करूं जो डबल हो जाए।
1: बिल्कुल।
2: और जरूरत क्या है, मुझे कहीं नौकरी चाहिए, मुझे बीमार हूँ कहीं किसी डॉक्टर को दिखाना है, उसके लिए मैं कोई वेबसाइट देखूंगा, वहां से मैं जो पॉपअप्स आते हैं वहां से गलत नंबर ले लूंगा या गलत वेबसाइट का इस्तेमाल कर लूंगा, तो मैं एक नकली पेज पर चला जाऊंगा और वो मेरे से जानकारी हासिल करके मुझे ही ठग लेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को पता भी नहीं होता कि गूगल पे वो सर्च कर रहे हैं जो नंबर, वो नंबर गलत है और वो किसी फ्रॉडस्टर का है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर बसंत चौहान जी से, जो कि SHO हैं साइबर क्राइम सेंट्रल जोन थाना के फरीदाबाद पुलिस के साथ, और काफी समय से साइबर क्राइम की फील्ड में ही कार्यरत हैं। इनसे हम बहुत कुछ जान रहे हैं साइबर फ्रॉड के बारे में। अगर आपके मन में भी कुछ प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ये बातचीत अच्छी लग रही है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके ये पूरा पॉडकास्ट किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमारी ऐप के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में रेडियो मानव रचना आपको ऐप मिल जाएगी, प्ले स्टोर या iOS स्टोर से। फिर लेफ्ट में लिखे पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए, पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर RJ दीक्षा के फोल्डर में जाइए या फिर सुरक्षा संवाद के फोल्डर में जाइए, और आपको श्री बसंत चौहान जी के साथ हुई ये सारी बातें मिल जाएंगी। वक्त है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: जीवन में बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे सेहत, हमारी सोच और हमारा खान पान, रहन सहन। लेकिन अब इन सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है हमारी सेफ्टी। सेफ्टी आपकी फिजिकली भी और आपके बैंक बैलेंस की भी, यानी साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आज हम कर रहे हैं हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर बसंत चौहान जी के साथ, जो कि SHO है साइबर क्राइम सेंट्रल जोन पुलिस स्टेशन फरीदाबाद पुलिस में, और साथ ही आज के हमारे एक्सपर्ट भी हैं। कार्यक्रम का नाम है सुरक्षा संवाद, जिसे हम लेकर आए खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर। तो बसंत जी, शुरू करते हैं उन फ्रॉड्स के बारे में जो जनरली होते हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कॉलर टोन भी चल रही है, सबके फोन पर सुनाई देता है कि डिजिटल अरेस्ट नामक कोई चीज नहीं होती, कोई आपको कॉल करे इस तरीके से, वीडियो कॉल करे, तो आप ना उसके जाल में फंसे। लेकिन फिर भी हमने देखा है अक्सर डिजिटल अरेस्ट में बहुत जो एक सोफिस्टिकेटेड लेवल पे कोई बुजुर्ग रिटायर हुए हैं या जिनके पास फाइनेंशियली काफी बैक उनकी स्ट्रांग है, बच्चे बाहर रहते हैं, एक बड़े से घर में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत काबू किया जाता है, और अकेले बुजुर्ग हों तो वो बहुत ही आम शिकार होते हैं। तो हम क्यों नहीं उनको समझा पा रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता है, कितनी अवेयरनेस चल रही है इसको लेकर?
1: देखिए मैडम, इसकी जो मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन किया क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, उसका एक रीजन है
0: जी
1: कि जो ज्यादा एज के व्यक्ति हैं उनके लिए अखबार पढ़ना और टीवी देखना दोनों दो बार काम हो जाते हैं
0: जी,
1: और मोस्टली लोग जो हैं अपने शौक के हिसाब से कोई रेडियो सुनता है, कोई नहीं भी सुनता है। जब हम एक एज पर आ जाते हैं पर्टिकुलर, तो हमें सुनना भी कम हो जाता है, हमारी समझ में भी चीज़ें कम आनी शुरू हो जाती है, और हमारा सोचना भी बहुत मध्यम हो जाता है। तो इसीलिए वो उन लोगों को शिकार बना रहे हैं जो पहले बहुत अच्छी नौकरी पर या बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर रहे हैं, बहुत पैसा कमाया है और अब रिटायर हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो उनमें वो भय का माहौल पैदा कर देते हैं। जो भी डिजिटल अरेस्ट शब्द है ये एक क्रिएट किया हुआ है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं। कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी ईडी हो गई, CBI हो गई, पुलिस हो गई, साइबर पुलिस हो गई, कभी भी किसी को कॉल व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल या किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई कॉल नहीं करती है, ना ही उनसे किसी भी प्रकार का कोई वार्तालाप करती है, ना ही नोटिस भेजती है। तो ऐसे जो लोग हैं जो आपने कहा है कि फिर उनका कैसे बचें, उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स भारत सरकार ने OOTP का एक सिस्टम चालू किया है
0: जी।
1: तो जो उनके बच्चों को समझना चाहिए, जैसे कि मेरे पिता हैं 74 years के हैं, तो वो नहीं इन चीजों का ध्यान रख पाते हैं। तो मैं खुद बैंक में गया हूँ और बैंक में जाके मैंने OOTP सिस्टम लागू करा लिया है। अब वो कोई भी UPI पेमेंट करेंगे या खाते से पेमेंट करेंगे तो बिना मेरे OTP दिए वो संभव नहीं हो पाएगी।
0: ओके, मतलब जब तक आप उनके बेटे यानी उनका कोई भी रिलेटिव जो वहां पर नाम जिनका रजिस्टर है, जब तक उनके पास दूसरा OTP नहीं आएगा और वो शेयर नहीं करेंगे, तब तक वो पेमेंट नहीं हो सकती
1: है। तो ये ख्याल मुझे जो लगता है बुजुर्गों का, उनके जो बच्चे हैं उनको ही रखना चाहिए, क्योंकि वो मैंने जो पहले बोला है सोचने समझने में थोड़ा मध्यम हो जाते हैं और वो डर भी जल्दी जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: उनको डराया भी बहुत जल्दी जा सकता है, तो वो अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए ही, अपने परिवार को बचाने के लिए ही डर जाते हैं और वो डर के माहौल में ही उस पैसे को दे देते हैं।
0: बिल्कुल, कभी उनसे कहा जाता है कि आपके बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है या आपका पैसा जो है वो क्राइम एक्टिविटीज या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये बहुत कॉमन से कुछ ऐसे उन्होंने सिचुएशन बनाई होती है, पिक्चर पूरी ऐसी बना देते हैं सामने कि एक पुलिस स्टेशन है या एक अदालत चल रही है, वो इतना ज्यादा प्रिपेयर्ड रहते हैं। क्या मानसिकता होती है साइबर फ्रॉडस्टर्स की, इतना दिमाग, ये क्या कोई पूरा गिरोह काम करता है या कुछ 4-5 लोग मिलकर काम करते हैं?
1: देखिए मैडम, ये जब शुरू हुआ था तो ये कॉल सेंटर्स में काम करते थे
0: जी,
1: कॉल सेंटर्स गुड़गांव भी थे, हम जो अपने हरियाणा से लेके चलते हैं, इंटरनेशनल क्राइम है, नेशनल लेवल पे हो रहा है और सभी जगह है। तो जब वो कॉल सेंटर्स में काम करते थे तो जो ये हमारी जो अमेजोन जैसी या वेबसाइट्स हैं या फिर कमर्शियल वेबसाइट्स हैं जो सामान बेचते हैं, तो वहां पर ये लोग कॉलर का काम करते थे, प्रॉब्लम्स लेने का काम करते थे लोगों से, भाई प्रोडक्ट लिया है कैसा नहीं है, आप पे भी जब आप सर्विस भी कराते हो तो वहां से कॉल आती है
0: फीडबैक के लिए।
1: तो उन्होंने देखा कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई खराब माल भी मिल जाता है ना तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। कोई व्यक्ति कोई शिकायत भी करता है तो उसको चेंज भी ना करे तो भी वो पड़ा रहता है और लोग कहते रहते हैं। तो इनको पहला जो मोटिवेशन मिला ना उनको इन कॉल सेंटर्स से मिला। तो धीरे धीरे लोगों को देखते देखते वो मॉडिफाइड होता चला गया और आज जब वो ये देखते हैं कि भी एक तरीका फेल हो गया तो नया तरीका इजाद कर लेते हैं और वो हमसे बात करके हमारी बातों से सारी बातों का अंदाजा लगाते हैं कि मैं डरूंगा जल्दी
0: कि नहीं डर,
1: हाँ, या मैं लालच में आऊंगा या मैं डर जाऊंगा, यानी मेरे पे उन्हें क्या तरीका इस्तेमाल करना है वो मेरी बातों से ही पता लगाते हैं,
0: इतने ट्रेंड होते हैं।
1: बिल्कुल, वो सोशल मीडिया को आपके, आप खुद ही अपने सोशल मीडिया को ओपन टू एवरीबॉडी कर रहे बैठे हैं।
0: बिल्कुल,
1: आप एक लाइक के लिए सभी साइबर फ्रॉडस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं, आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप खुद से ही पोस्ट करे जा रहे हैं आज मेरा बर्थडे है, आप खुद से ही पोस्ट करे जा रहे हैं मुझे ये ब्रांड पसंद है, आप खुद बता रहे हैं अपनी सारी आदतों को, तो आपको रीड करते हैं सोशल मीडिया से
0: मैं अभी कहां पर जा रहा हूं, लाइव चेक इन होते हैं, तो आप जब अपनी लोकेशन ही डिस्क्लोज कर रहे हैं,
1: यस, तो आपकी आदतें, आपकी सोच सब वो पकड़ लेते हैं। वैसे भी AI का जमाना, फोन सबको सुन रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वो सारी चीजों को पता करके ही आपके बारे में पता करके आपको बात करते हैं और आपको जो चीज चाहिए वो नकली प्रोवाइड करा देते
0: हैं। जी जी, बातों ही बातों में आपने कहा AI का जमाना है, फोन सब कुछ सुन रहा है, और ये हमने सुना भी है कि फोन आपका अगर इंटरनेट ऑन है, फोन ऑन है, तो वो सब कुछ सुन रहा है। क्या इंटरनेट ऑफ करके भी आपके फोन में आपकी बातें या आपकी जो इंफॉर्मेशन आप एक दूसरे के साथ शेयर करें वो जाती रहती है?
1: देखिए, आप कोई भी जब फेसबुक है या आप इंस्टाग्राम है, आप 10-5 सेकंड से ज्यादा किसी भी चीज को देखते हैं या उसको स्क्रॉल करके रोक देते हैं तो वही चीज बार बार आपके माइंड को पढ़ के आती रहती है।
0: वो एल्गोरिथम उसका
1: एल्गोरिथम आ रहा है, वो उसको आपको रीड कर रहा है। तो जेमिनी है आपका, जितने भी आ रहे हैं, ChatGPT है या और भी जो AI अपना क्रिएटेड है सभी का
0: जी, जी,
1: तो आप फोन का भी अपना है, एप्पल ने अपना बनाया हुआ है। तो जिस तरह से आप उसको ऑफ कर देंगे तो निश्चित सी बात है कि वो आपको ट्रैक नहीं करेगा। प्रत्येक एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं तो पूछती है आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक।
0: हाँ बिल्कुल,
1: बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते उसको,
0: उसको ओके कर देते हैं।
1: हाँ, ओके कर देते हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा,
0: लोकेशन हमेशा ऑन रहती है।
1: हाँ, आप इन चीजों को बंद रखें। दूसरा, आपको जो एप्लीकेशंस नहीं चाहिए आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं, इन्हीं से ही पूछ सकते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमारा डाटा बैकग्राउंड में चोरी कर रही हैं, तो उनको फोन में किस लिए रखना है। तो आप अपनी जरूरत की एप्लीकेशन रखें। अब एक एप्लीकेशन तो मैं मान लीजिए कोई फोटो एडिट करने के लिए यूज कर रहा हूँ और वो मांग रही है मेरी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री को और मांग रही है मेरे माइक्रोफोन का एक्सेस, तो मैं किस लिए उसको डाउनलोड करूँ?
0: बिल्कुल,
1: और हम वो फ्री की एप्लीकेशन के चक्कर में उसको सारी एक्सेस दे देते हैं। तो इससे बेहतर तो कोई अच्छी सी पेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें जो थोड़ा पैसा ले लेकिन हमारी इन सब चीजों को वो ना चोरी करें।
0: जी, तो दोस्तों बहुत सारे सवाल हमारे पास अक्सर आते रहते हैं, जैसे अकाउंट फ्रीज हो जाता है या गलती से हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ऐसे कुछ सवालों के जवाब हैं जो हम बसंत जी से जान रहे हैं, जो कि इंस्पेक्टर हैं साइबर क्राइम सेंट्रल जोन में और SHO हैं साइबर क्राइम सेंट्रल जोन पुलिस स्टेशन के। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।
2: नफरत कर

0: वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम है दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, जो हम लेकर आते हैं आपके लिए खास सीरीज फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर। और आज हम बात करें हैं साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम या फिर साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इंस्पेक्टर बसंत चौहान, SHO साइबर क्राइम सेंट्रल जोन पुलिस स्टेशन फरीदाबाद पुलिस, और इन्हें कई वर्षों का अनुभव है साइबर फ्रॉड को दूर करने का या फिर साइबर सिक्योरिटी का। तो बहुत से सवाल और बहुत से जवाब। बसंत जी, एप्लीकेशन की आपने बात करी, अब ये सिचुएशन मुझे लगता है कि हर किसी व्यक्ति के साथ होती है। उसे समझ नहीं आता कि अगर उसे एक ऐप डाउनलोड करनी है, सपोज अगर मुझे कोई टाइपिंग के लिए ऐप डाउनलोड करनी है, तो मुझे ये समझ नहीं आता मैं कौन सी ऐप डाउनलोड करूं, कौन सी जेन्युइन है। तो जेन्युइन ऐप को कैसे पहचान सकते हैं, वो जो सबसे ऊपर ऊपर आती है या वो जो सजेस्टेड आती है, किस तरीके से पहचानें?
1: देखिए मैम, जो सबसे ऊपर आती है या सजेस्टेड आती है, उन तरीके से आप किसी भी ऐप के बारे में ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनमें से कौन सी ऐप अच्छी है
0: जी।
1: तो आप जिस भी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिसकी भी एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एक स्पेसिफिक पेज होता है, स्पेसिफिक वेबसाइट होती है, उन्होंने क्या रिलीज किया है, क्या रिलीज नहीं किया है, उसके बारे में वहाँ एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है आपकी। उनके टेलीफोन नंबर्स भी होते हैं, आप उनसे मेल पे भी द्वारा भी बात कर सकते हैं। तो आप उन्हीं से पूछिए, आप जिनकी एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि क्या आपने ये एप्लीकेशन इस वर्जन पे यहाँ पे डाली हुई है, नहीं डाली हुई, iOS प्लेटफॉर्म पे हो या एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे हो या आप कहीं और से खरीद रहे हैं उसको, तो क्या मैं इसको खरीद रहा हूँ, ये सेफ है कि नहीं है। तो वो आपको अपने बारे में जो स्पेसिफिकेशंस हैं सारी चीजें बता देंगे, वो मैच करती हैं तो वो सेफ है, नहीं है तो नहीं है।
0: पर इतना समय हर कोई लगाता नहीं है, तुरंत देखता है ऐप और डाउनलोड करी और काम शुरू कर दिया और अपना डेटा जो है वो सारे का सारा शेयर कर दिया। और फोन में हमारी ऑलमोस्ट सारी दुनिया बसती है, आपकी फोटोग्राफ से लेकर आपके बैंक की डिटेल्स, आपकी पर्सनल जानकारियां और आपकी ईमेल आईडीज, हर चीज इसमें होती है। तो बसंत जी, यहां पर मैं आपसे अब सवाल जानना चाहती हूं कि बच्चों की गेम्स, रोब्लॉक्स जैसी गेम का नाम मैं इसलिए लेना चाहूंगी क्योंकि बीच में ये न्यूज में बहुत छाया हुआ था, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं वो इतना हिप्नोटाइज कर देते हैं या फिर कह सकते हैं इतना ज्यादा उनको एक्साइटेड कर देते हैं कि वो अपने माँ बाप का लाखों रुपया लगा देते हैं उस चीज पर, तो ये कैसे होता है?
1: देखिए मैम, जो आपने नाम लिया, बच्चों से भी और बड़ों से भी आज इससे सब इफेक्टेड है। बच्चे तो गेम खेल रहे हैं, बड़े इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, 2400 घंटे फोन हाथ में रखते हैं, 16-16, 17-17 घंटे मोबाइल पे रह रहे हैं।
0: Absolutely.
1: तो ये बहुत वल्नरेबल हो गया कि किस तरह से हम अवॉइड करें बैड चीजों को या लिंक्स को। तो जो रिमोट एक्सेस एंड टैक्स सपोर्ट्स के नाम से जो आपका साइबर क्राइम चल रहा है, यही आज की डेट में सबसे खतरनाक है। जिसमें आपकी, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, उसमें आपकी मोबाइल पर किसी भी व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज में, किसी भी मैसेज के अंदर, किसी भी फोटो के अंदर या अन्य किसी भी चीज के साथ जिसे आप पसंद करते हैं, उसमें एक मलवेयर डाल दिया जाता है। और उस मलवेयर को भी इतना ग्रीवियस इंटेंसिटी ज्यादा होती है कि वो 30-35 डाल देते हैं उसमें इकट्ठे।
0: अच्छा,
1: तो वो आपके फोन में एक चीज को ही नहीं, आपके पूरे फोन में से आपके पासवर्ड समेत बहुत सारी चीजों को चुरा के ले जाता है।
0: Okay.
1: तो उस मैं जब आपको लगे कि आप किसी चीज के शौकीन है, कोई फोटो देखने का शौकीन है, किसी पे शादी का कार्ड आ गया, किसी पे और कोई अटैचमेंट आ गई, दोस्त बातें कर रहे हैं, तो उसमें जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो हमारा फोन का, हमारी डिवाइस का एक्सेस उनके पास चला जाता है। उसके बाद वो हमारी डिवाइस के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जब वो
0: सारा हमने दे ही दिया,
1: चला ही रहे हैं। तो अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि किसी ऐसे नंबर से जो हमारे पास सेव नहीं है, किसी ऐसी कमर्शियल वेबसाइट्स का नकली नाम रख के किसी ने कोई चीज हमें बेचने के लिए भेज दी है, या कोई और चीज हमें लालच दे दिया है कि आपका इनाम में ये चीज निकली है, इसको क्लिक करें, ये फॉर्म भरें, तो हम अपने, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ग्रीड को छोड़ दें। वो ग्रीड किसी भी चीज की हो सकती है,
0: डिस्काउंट की भी हो सकती है,
1: डिस्काउंट की भी हो सकती है, एक महिला का कोई फोटो देखने की भी हो सकती है, मतलब सारी चीजों को आप सभी समझते हैं। तो मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि उसको क्लिक ना करें, और अगर आप क्लिक नहीं करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई जादू नहीं है जब तक आप गलती नहीं करेंगे कि वो आपका अकाउंट हैक कर लेंगे।
0: बिल्कुल, यानी छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में आप सिर्फ एक क्लिक में घिर सकते हैं, तो इसलिए क्लिक कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ।
1: इसका एक और पहचानने का तरीका है कि APK लिंक में आज की डेट में बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, तो .APK जहां भी लगा हुआ हो, जिसके भी पीछे लगा हुआ हो, वो मलवेयर है।
0: अच्छा,
1: उसको आपने क्लिक नहीं करना, जैसे शादी का कार्ड मैंने अभी बोला इस तरह डॉट एपीके में वो किसी का भी नाम रख के कोई भी फाइल बना देंगे, कोई भी लिंक बना देंगे, उस लिंक को बहुत सस्ती सस्ती हजार हजार दो दो हजार तीन तीन हजार रुपए की एप्लीकेशन आ रही है जिनसे लिंक क्रिएट किया जा सकता है, पांच पांच हजार रुपए की एप्लीकेशन आ रही है पेड, और उसी में मलवेयर को डाल देते हैं और हमारी जो सारा सिस्टम है वो कैप्चर हो जाता है। तो डॉट एपीके जहां भी लगा हुआ हो हमें उसको किसी भी हालत में क्लिक नहीं करना। वो बिजली बिल के साथ भी हो सकता है, वो वाटर बिल के साथ भी हो सकता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो आपके चालान के लिए भी हो सकता है,
0: गाड़ी का चालान कटा आपको पता ही नहीं।

0: क्लिक करते ही वो आपने सेव कर लिया
1: जी।
0: वो सेव होते ही आपके बैकग्राउंड में कहीं फोन में ऐसा नाम भी रख सकता है अपना कि जिसको आप पहचान ना पाए। डबल आपकी जो हम जहाँ पे आपके अकाउंट है जो जिसके अंदर आपके नाम सेव हैं कि मैंने जो फोन मोबाइल नंबर सेव कर रखे हैं कॉन्टैक्ट गैलरी के अंदर भी वो किसी का नाम रखे भी सेव हो सकता है।
1: हाँ।
0: तो यानी वो अपने रूप ऐसा धारण कर लेगा जैसे आप पहचान नहीं पाएंगे।
1: हाँ, और आजकल ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है।
0: बिल्कुल आता है, डबल डबल हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि आप अपने पहले तो सबसे अपने जितने कॉन्टैक्ट्स हैं ना उनको अपने जीमेल पे सेव रखें, जो भी मेल आईडी आप चला रहे हैं उसमें सेव करके रखें। और आप अपनी व्हाट्सएप की जो चैट हिस्ट्री है उसको रिट्राइव करते रहें, यानी सेव करते
1: रहें,
0: बैकअप लेते रहें उसका, और आपकी जो जरूरी चीजें हैं उसको किसी पेन ड्राइव में कॉपी कर लें। उसके बाद उसको फैक्ट्री रीसेट कर देना। बिना फैक्ट्री रीसेट करे उस फोन से वो मलवेयर किसी भी तरीके से नहीं जाएगा।
1: ओके, यानी सारा डेटा आपको जो है वो स्टोर करना है कहीं और आप अपने लैपटॉप में स्टोर करें या किसी पेन ड्राइव में या अपनी हार्ड ड्राइव में कहीं पर भी।
0: पेन ड्राइव में ही लेना चाहिए, अगर लैपटॉप में भी आप डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे तो वो वहाँ भी ट्रांसफर हो जाएगा।
1: अच्छा, वहाँ भी हैकिंग का सिस्टम है पेन ड्राइव में आप उसको ट्रांसफर,
0: और जब भी उसको वहाँ से कहीं कॉपी करके करें तो उसको अच्छे से किसी एंटी मलवेयर से पहले से देख लें और उसको साफ करें और फिर आगे उसको ले जाएं। अन्यथा आप कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप का डाटा है और तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं, उनको आप सेव कर लें और यूज करें उनको।
1: जी, अपने आप में थोड़ा मुश्किल है ये सारी चीजें करना, पर मुझे लगता है ये करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल जवाब और वो भी फ्रॉड से जुड़े हुए, और फ्रॉड कोई छोटा मोटा नहीं, साइबर फ्रॉड। सोशल मीडिया पर हम 24 घंटे रहते हैं, फोन हाथ में हमारे हमेशा रहता है, एप्स पर हम बहुत से कार्य करते हैं, पैसे का लेन देन भी बहुत कुछ इसी फोन के माध्यम से करते हैं, लेकिन कई बार एक गलत क्लिक हमारी जिंदगी भर की कमाई को गायब कर सकता है। इसी विषय पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। प्रोग्राम का नाम सुरक्षा संवाद। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं इंस्पेक्टर बसंत चौहान, SHO साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सेंट्रल जोन।

0: जीवन में बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे सेहत, हमारी सोच और हमारा खान पान, रहन सहन। लेकिन अब इन सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है हमारी सेफ्टी। सेफ्टी आपकी फिजिकली भी और आपके बैंक बैलेंस की भी, यानी साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आज हम कर रहे हैं हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर बसंत चौहान जी के साथ, जो कि SHO हैं साइबर क्राइम सेंट्रल जोन पुलिस स्टेशन फरीदाबाद पुलिस में, और साथ ही आज के हमारे एक्सपर्ट भी हैं। कार्यक्रम का नाम है सुरक्षा संवाद, जिसे हम लेकर आए खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर। एक बसंत जी, बहुत कॉमन समस्या आती है, बहुत सारे लोग अपना फोन जब खराब हो जाता है उसको ठीक करने शॉप पे देते हैं। अब आपने एक दुकानदार पर भरोसा करके अपना फोन दे दिया, क्योंकि अब वो फोन चल नहीं रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आप डेटा सेव भी नहीं कर पा रहे हैं, अचानक से खराब हो गया, सपोज गिर गया या पानी में गिर गया, तो आप जब वहां फोन देते हैं तो अब आपको कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां तो सारा डेटा लीक हो सकता है, बहुत इजीली लीक हो जाता है।
1: देखिए मैडम, इसका तो सॉल्यूशन यही है कि आपका जब फोन वहां पर बन रहा है तो आपको वहां हाजिर रहना चाहिए।
0: अच्छा जी,
1: कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज नहीं है कि उसको बनाने में उनको कई दिन लगते हैं या कोई समस्या खड़ी होती है। तो आप ये देखें कि आपका जो भी मोबाइल फोन है उसका जो डाटा है, अगर आपका एंड्रॉयड हो या iOS हो आपका, आप कहीं भी अगर उसे नई जगह लॉगिन करते हैं तो वहां से उस फोन से वो डाटा नए फोन में चला जाता है।
0: ओके।
1: अगर आपको लगता है कि उस फोन के अंदर ऐसा डाटा है कि जिस डाटा को उसके पास जाने से आपको कोई सुरक्षा या समस्या खड़ी हो सकती है भविष्य में, तो आपको वहाँ लॉग इन उसको नए मोबाइल फोन में कर लेना चाहिए या परिवार के फोन में कर लेना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप को लॉग इन करेंगे तो वो वहाँ चला जाएगा और वहाँ से उसको डिलीट कर देना चाहिए।
0: अच्छा बसंत जी, क्या ऐप डिलीट करने से, जैसे अगर हमारे फोन में कोई दिक्कत आ रही है और हमें वो फोन ठीक करने देना, तो क्या हम अपनी वो सारी ऐप्स डिलीट करके दे दें, जैसे बैंक की ऐप है या व्हाट्सएप है, ये सारी ऐप्स डिलीट करके फोन ठीक करने दे दें तो फोन सेफ रहेगा?
1: नहीं मैम, आपको जो भी फोन आप दे रहे हैं वहाँ पर, मेरा सुझाव तो यही है कि आप जो भी फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पहले तो बैंक में जो रजिस्टर्ड नंबर है ना, उस नंबर पे वो एप्लीकेशंस चलाएं ही ना।
0: अच्छा,
1: आपका नंबर तो OTP तो उसी पे आएगा। आप जिस नंबर पे OTP ले रहे हैं, आपका सभी का IMEI डबल है, तो आप क्यों ना उस सिम को ही निकाल लें उसमें से। OTP दोगे नहीं तो वो करेगा कैसे?
0: नहीं, सिम तो सपोज हमने निकाल ली, लेकिन फिर भी क्या हमको ऐप डिलीट करना है? जैसे बहुत सारी फोटोग्राफ्स की ऐप होती है या कोई एडिटिंग की ऐप है, अब उसमें डेटा सेव होता रहता है, तो क्या हम वो जब फोन सपोज थोड़ा हैंग कर रहा है तो हम वो ठीक करने से पहले वो सारी 5-6 जो ऐप्स हैं हमारी जिसमें हमारा डेटा है हम उसको डिलीट कर लें, क्योंकि उसमें हमारा नंबर और हमारी मेल आईडी तो है, तो अगर हम दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो ठीक ठाक वापस आ जाएगा, तो क्या वो ऐप डिलीट करना एक ऑप्शन है?
1: मैम, ऐप डिलीट करने की बजाय हमें वो डेटा या तो डिलीट करना चाहिए या कहीं और सेव करना चाहिए जिससे हमें दिक्कत हो सकती है।
0: ओके,
1: एप्लीकेशन से कोई कुछ नहीं कर सकता है।
0: अच्छा, एप्लीकेशन से कोई कुछ,
1: कोई लॉगिन करेगा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू होगी, आप पे बिना OTP आए लॉगिन नहीं हो सकता है। मैं फिर वो बार बार कह रहा हूँ
0: जी,
1: आपके कहीं भी किसी सिस्टम में कोई एंट्री करेगा तो आपके रजिस्टर्ड नंबर या मेल पे OTP जरूर आएगा।
0: ओके, तो उसका आप, ध्यान रखना।
1: हाँ, आपने कोई पहले से कोई ऐप चलाई हुई है और उस ऐप के अंदर फोटोज है और कुछ ऐसे फोटोज हैं जिनको जो हमें समस्या खड़ी कर सकते हैं, पहले तो वो फोटोज वहाँ होने ही नहीं चाहिए, और अगर हैं भी तो आपको उनको हर हालत में पहले डिलीट कर देना चाहिए या उनको मूव कर देना चाहिए कहीं ना कहीं, फिर भी आप रखना चाहते, नहीं तो मेरा तो सुझाव ये है कि किसी भी कीमत पर हमें किसी भी ऐसी डिवाइस में या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ से कोई भी किसी को चोरी कर सकता है, हम अपने पर्सनल प्राइवेट फोटोज कभी क्लिक ही नहीं करने।
0: बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये
1: और
0: तो मैं
1: भी नहीं करने।
0: जी जी, और खास तौर पर से मैं ये कहना चाहूंगी यंगस्टर्स को, जो यंग गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, उनके साथ बहुत ब्लैकमेलिंग होती है इस चीज को लेकर, तो उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: जब एक चीज आई गई है तो मेरा एक अभी एपिसोड ध्यान में आ रहा है
0: जी,
1: कि मैं अभी सोनीपत साइबर SHO था पीछे
0: जी,
1: तो वहां पर एक महिला आती है, उनका जो फेसबुक की आईडी थी वहां से जो प्रोफाइल उन्होंने लगाई हुई थी फोटो, चेहरा लिया उनका और अच्छा। चेहरा लेने के पश्चात उसको मॉर्फ कर दिया, यानी उनकी बॉडी
0: मतलब उनकी
1: किसी और की लगा दी,
0: शक्ल वहां से ले ली लेकिन
1: बॉडी किसी और की लगा दी, तो वो फोटो उन्होंने बिल्कुल नेक फोटो कन्वर्ट कर दी और जो उसके बेटा था बेटी थी उनको भेज दी और उनके फ्रेंड्स को भेज दी।
0: अच्छा,
1: अब ना तो बेटा स्कूल जा रहा है ना बेटी स्कूल जा पा रही है, वो दिक्कत क्या आ रहा है कि अब अपनी माँ उनको समझा नहीं पा रही है कि बेटा ये मेरी नहीं है।
0: हाँ, घर में ही एक डिप्रेशन का माहौल,
1: अपने बच्चों को ही नहीं समझा पा रही है कि ये फोटोज मेरी नहीं है। फिर हमने उन सभी को बुलाया, उन सबको बताया समझाया, जैसे वो होता है उनके सामने करके दिखाया कि ऐसा भी होता है, तब जाके उनके वो बात समझ में आई। लेकिन फिर भी समस्या तो है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो अब जो सोशल मीडिया पे हम थोड़े से लाइक्स के लिए, बर्थडे विशेस के लिए हम अपनी प्रोफाइल को लॉक नहीं करते हैं और फोटो को पब्लिक कर देते हैं और हम उस पे ना करके हम उसको प्राइवेसी और सेटिंग्स में जाएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना प्रोफाइल पिक्चर, अपना फोटो, अपना फोन नंबर, अपनी मेल आईडी, जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड करने के लिए करते हैं और यही डाटा पब्लिक डोमेन में चला जाता है। तो इन सबको हम हाइड करें तो हम सोशल मीडिया पर भी और फाइनेंशियली भी दो ही तरह से फ्रॉड होता है, तो हम दोनों तरह से सेफ हो जाएंगे। बेसिकली ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। मैं छोटे से तरीके से आपको समझाना चाहूंगा कि जब हम बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं या हम कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट खोलते हैं तो दीज आर सिमिलर थिंग्स जो हम वहां पर भरते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आप जब अकाउंट खोलते हैं तो नाम, पता, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, जीमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और फिर एक ऑल्टरनेट नंबर और फिर एक गारंटर और उसका फोन नंबर, फिर उसका सारा डाटा। तो यही तो हम एक अकाउंट बैंक का खोलते हैं और उनको बेसिकली क्या चाहिए, यही इन्फॉर्मेशन चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जैसे ही हम सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलते हैं तो वहां भी हम अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और अपना आइडेंटिटी भी देते हैं वहां पे। तो आइडेंटिटी थेफ्ट करना, आपका यूपीआई रिलेटेड सारा डेटा थेफ्ट करना,
0: बिल्कुल,
1: आपकी जो भी चीजें हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, मोबाइल नंबर होगा, और एंड में ओटीपी थेफ्ट करना, वो एक्सेस लेना पड़ेगा आपके फोन का। तो ये सारी चीजें मैं सोशल मीडिया पे ओपन छोड़ दूंगा,
0: बिल्कुल,
1: तो वो वहां से चोरी कर लेंगे। बैंक से ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बेस से चोरी हो रहा है, ये सोशल मीडिया से थेफ्ट हो रहा है। वो आपकी आदतें चोरी कर रहे हैं, वो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हैं,
0: तो
1: वो आपकी इन्फॉर्मेशन थेफ्ट कर रहे हैं,
0: सामने ओपन है,
1: ओपन है। तो इस चीजों को देख के, दोनों चीजों पर अगर वहां हम उनको एडिकेट्स का पालन करें, वहां पर हम डेट ऑफ बर्थ मेरी किसी को, मेरे फैमिली को, सबको पता है, वो मुझे बर्थडे विश
0: बाहर वालों को क्यों बतानी,
1: पता नहीं। या फिर आप ऐसे ग्रुप्स बना लें जिनको आप फॉर श्योर जानते हैं कि 50 आदमी मेरे नॉन हैं, इस ग्रुप के लिए ओपन कर दें, वो तो सब कुछ उपलब्ध है। 50 का बनाए, 100 का बनाए, 200 का बनाए, 300 का बनाए, 5000 का ही बना लें, लेकिन ऐसे बनाए पता है ये ठीक है, और बाकी लोगों को उसमें शामिल ना करें।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो उन्हीं को फोटो दिखाएं, उन्हीं को अपना, और उनको भी वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। जो मेरा अपना होगा उसको मेरी डेट ऑफ बर्थ याद होगी, तो कर ही देगा
0: और उनको पता भी चल जाएगा।
1: हाँ, तो ये सारी चीजें बड़ी वल्नरेबल हैं और बड़ी समस्यात्मक हैं, इनको हम एडिकेट्स का पालन करें, छिपा के रखें।
0: सुबह संजी, छिपाने वाली बात तो एक आम इंसान के लिए ठीक है, लेकिन ये जो व्लॉगिंग का ट्रेंड चल गया है, डेली व्लॉग्स जो कर रहे हैं लोग, अपने घर का पूरा सिस्टम बता रहे हैं कि आज हमने ये गोल्ड खरीदा, आज हम यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने गए, ये सारी जो व्लॉगिंग चल रही है, ये कितनी खतरनाक होती है? ये भी उतनी खतरनाक होती है कि आप सब कुछ बता रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में?
1: देखिए मैडम, उनका तो धंधा ही वो है,
0: इनकम बहुत स्ट्रांग है,
1: वो ब्लॉगिंग से ही सब कुछ कमा रहे हैं, और उन्होंने अपने उस अकाउंट को बचाने के लिए भी और उस अकाउंट को चलाने के लिए भी बड़े अच्छे अच्छे एक्सपर्ट रखे हुए हैं।
0: अच्छा, अच्छा, उन्होंने एक्सपर्ट्स
1: वही मैनेज करते हैं उनके अकाउंट्स। तो आप एक छोटे से बिजनेसमैन को या पॉलिटिशियन को या आप छोटे से आप ब्लॉगर को ही कह लीजिए, किसी के पास भी जाओगे तो वो आपको ना 4-5 नाम गिना देगा जिनको सैलरी दे रहा होता है।
0: हाँ, एक टीम होती है,
1: एक टीम होती है
0: मीडिया की,
1: तो वो हर चीज को मैनेज करती है। जैसे ही उनके अकाउंट से कोई समस्या होती है ना, वो पुलिस को सीधा फोन करते हैं कि हमें आज ये समस्या आ रही है। छोटी मोटी चीजें, कोई कुछ गलत लिख रहा है, गंदा लिख रहा है, उनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो फॉलोअर्स चाहिए। अगर वो हट गए तो फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा।
0: ट्रोलिंग से कोई खास फर्क,
1: तो मेरे और आपको क्या मिल रहा है? हमको तो ना कोई टीम मैनेज कर रही है, ना हम किसी को सैलरी, हमें तो अपनी सैलरी में गुजारा करना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना फोटो, हम अपने उनकी सेविंग प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर उनको अच्छे से मैनेज करें,
0: हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है, और जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं। तो इस बात को प्लीज समझिए कि अपने अकाउंट को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को पब्लिक मत कीजिए। बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने पब्लिक कर दिया, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन लीक होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आपकी मेल आईडी तक, और फिर हैक करना एक बहुत ईजी टास्क हो जाता हैकर्स के लिए। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल हमारे पास अक्सर आते रहते हैं, जैसे अकाउंट फ्रीज हो जाता है या गलती से हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ऐसे कुछ सवालों के जवाब हैं जो हम बसंत जी से जान रहे हैं, जो कि इंस्पेक्टर हैं साइबर क्राइम सेंट्रल जोन में और SHO हैं साइबर क्राइम सेंट्रल जोन पुलिस स्टेशन के। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम सुरक्षा संवाद। बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां, वो भी साइबर फ्रॉड को लेकर। क्यों, कैसे, कब, कहां, क्या हो जाए हम नहीं जानते हैं। एक फोन, एक लैपटॉप या फिर हमारी कोई भी गतिविधि जो इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी हुई हो हमें किस तरीके से फंसा सकती है। कभी हमारे पैसे चले जाते हैं तो कभी ब्लैकमेल किया जाता है, कभी फोटो को मॉर्फ किया जाता है तो कभी डीप फेक के माध्यम से वीडियो बनाकर लोगों को बहकाया जाता है, डराया जाता है तो कभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। अखबार भरे होते हैं ऐसी खबरों से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी रह जाती है। अगर हम अवेयर हैं तो हम इस साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, और हमको अवेयर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आज हमारे खास मेहमान बसंत चौहान जी, जो कि इंस्पेक्टर हैं और एसएचओ हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सेंट्रल जोन फरीदाबाद में। तो बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं बसंत चौहान जी से। बसंत जी, अब बात करते हैं अकाउंट में अचानक से पैसे आ जाना, ये भी एक समस्या है आज के समय में, क्योंकि अकाउंट से जब पैसे अचानक से जाते हैं वो तो साइबर फ्रॉड होता ही है, लेकिन लोग इस बात से खुश हो जाते हैं कि अरे पैसे आए ही तो हैं, बट उसके बाद अकाउंट फ्रीज भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे देश में हैं जिनका अकाउंट में पैसे आए हैं और उनका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करें, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कहीं से पैसे ठगे नहीं है, पर वो फ्रॉडस्टर की कैटेगरी में आ गए।
1: देखिए मैडम, ये एक इंटरकनेक्टेड चेन है, मैं थोड़ा शुरू से शुरू करूंगा।
0: जी जी।
1: मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है
0: जी,
1: तो आप बेसिकली, अब तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप 1930 कॉल करेंगे। दो ही तरीके से होता है, सोशल मीडिया फ्रॉड या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड।
0: जी।
1: अगर आपके सोशल मीडिया फ्रॉड हुआ है तो आप www.cybercrime.gov.in पर जाके अपनी एक कंप्लेंट लॉज कर सकते हैं।
0: okay.
1: या फिर आप अपने पुलिस स्टेशन में किसी में भी जाकर अपनी कंप्लेंट को देके आ सकते हैं।
0: जी।
1: अगर आपके साथ फ्रॉड होता है फाइनेंशियल, तो आप 1930 विदिन 78 आवर्स कॉल कर सकते हैं। आफ्टर 78 आवर्स आपको फिजिकली जाके कंप्लेंट करनी पड़ेगी।
0: ओके।
1: तो जब भी आप कंप्लेंट करते हैं 1930 पर, तो 1930 जो हमारे एमएचए का प्रोग्राम है 24/7 काम करता है, उसके साथ सभी इंटरमीडियरीज, बैंक्स, सभी पुलिस स्टेशन देश के जुड़े हुए हैं।
0: जी।
1: जैसे ही हम वहाँ कॉल करते हैं तो वो हमसे हमारा बैंक कौन सा है, यूपीआई रेफरेंस नंबर, जब आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है 14 अंकों का, आपसे वो पूछते हैं आपका बैंक कौन सा है और आप कहाँ रहते हैं, इन सारी चीजों को पूछ के वो फोन रख देते हैं। इतने में हमारा बैंकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब वो पैसा, आप मान लीजिए आपका SBI बैंक में अकाउंट है
0: जी,
1: और वो आगे HDFC बैंक में ट्रांसफर हो गया। अब ये मुझे पूछने के लिए वो कहाँ ट्रांसफर हुआ, मुझे तो बैंक को ही मेल करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उस सिस्टम को पता है कि ये पैसा कितनी लेयर्स में गया और कहाँ गया।
0: Okay.
1: चाहे वो 50 बैंकों में घूम जाए पूरे देश में, लेकिन वो सिस्टम को पता है। तो जैसे ही आप कॉल करते हैं तो वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो जिस अकाउंट में पैसा जाता है
0: वो सारे सामने,
1: वो सारा डेबिट फ्रीज होता चला जाता है।
0: ओके।
1: वो तीन तरीके से होता है, एक डेबिट फ्रीज यानी अकाउंट में पैसा आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता। एक लियन होता है, यानी मान लीजिए आपके अकाउंट से पैसा निकल के मेरे में आ गया और आपके में गया था लेकिन है नहीं।
0: अच्छा, मतलब वो टच भी करके अगर गया है,
1: हाँ, तो लीन मार्क्ड हो जाता है, यानी 10,000 रुपया था, मेरे पास 10,000 आ गया, आपके पास बचा नहीं, तो जब भी 10,000 आपके खाते में आएगा वो माइनस हो जाएगा।
0: okay.
1: ये लीन होता है।
0: okay.
1: और एक होता होल्ड, यानी मेरे पास पहुंच गया 10,000 तो अब मेरे खाते में वो होल्ड हो गया, यानी अब मैं उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तीन चीजें होती हैं बेसिकली। तो अब आपसे शिकायत करता, मान लीजिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके कुछ लेना देना नहीं साइबर फ्रॉड से, मैं किसी संस्था में काम करता हूँ, उसने मुझे सैलरी दी और वो पैसा घूम घाम के उस संस्था के अकाउंट से और मेरे अकाउंट तक आ जाता है और मेरा भी अकाउंट बंद हो जाता है। अब दो तरह के विक्टिम हो गए, एक तो आप हो गए कंप्लेनेंट विक्टिम कि आपके खाते से पैसे उड़ गए थे, आपने 1930 कॉल किया और वो पैसा घूम के कहीं फ्रीज हो गया। एक विक्टिम वो हो गया जिसने कुछ किया नहीं, किसी ने किसी सर्विस ली या दी, होटल से खाना खाया, QR कोड स्कैन किया, पैसा दिया, वहां से आ रहा था, वो घूम के पूरे इंडिया में अकाउंट्स में और वहां पहुंच गया। तो वो भी सभी विक्टिम्स हो गए जो साइबर फ्रॉडस्टर्स नहीं है, उनके खाते बंद हो गए।
0: ओके। मतलब वो एक शॉप चला रहा है लेकिन वो भी कनेक्टेड हो गए।
1: ओके। तो अब इन दोनों चीजों के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने MRM और GRM, MRM हमारा है मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल, और GRM है ग्रीवेंस रेस्टोरेशन मॉड्यूल। तो जैसे कि आप शिकायत कर रहे हैं और आपका पैसा कहीं फ्रीज हो गया और आपको अब वो वापस लेना है, अब तक तो हमारे कितना भी पैसा गया हो, चाहे 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, 10,000 हो, 10 करोड़ हो, उसके लिए कोर्ट जाना होता था, कोर्ट से ऑर्डर लेने होते थे,

0: वो ऑर्डर हमें देने होते थे, हम उनको कंसर्न नोडल को भेजते थे, फिर वो बैंक को भेजते थे, तब वो पैसा कहीं 6-8 महीने साल भर में प्रोसेस में आगे वापस आता था, आया आया नहीं आया।
1: अच्छा, नहीं भी आता था, सभी होता था।
0: रीजन क्या है कि एक अकाउंट पे बहुत सारे लोगों का पैसा गया हुआ होता है, कई स्टेट से उस पे लीन और होल्ड मार्क होता है,
1: तो वो पूरा प्रोसेस ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है।
0: जब हमारा पैसा हमारा है कि नहीं है ये तय तो बैंक करेगा। और अगर एक पैसा किसी का है, मान लीजिए किसी का 10 लाख आया और बचा 2 लाख है, और किसी का 2 लाख ही है, तो अब उसको वो 2 लाख देना, तो 10 लाख वाले से एनओसी लेनी पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: अब वो स्टेट एनओसी देती नहीं है तो उसका 2 लाख भी रिलीज नहीं होता है, इसलिए वो नहीं आता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए ZRM और MRM को चलाया गया
1: जी।
0: तो मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल क्या है कि 50,000 तक अगर आपका पैसा फ्रीज है तो आपको किसी कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं है।
1: ओके,
0: उसके लिए पुलिस को ही एम्पावर कर दिया गया है, और जो हमारा पोर्टल चलता है NCRP, उस पोर्टल के ऊपर ही एक ZRM और MRM के नाम से ओपन होता है। उसके अंदर हम क्लिक करते हैं तो वहां पर जो कंप्लेंट आई हुई होती है कि भाई मेरा पैसा, आदमी खुद उस पोर्टल पे जाके कंप्लेंट कर सकता है और बैंक के थ्रू भी कर सकता है।
1: अच्छा, दोनों तरीके से
0: कर सकता है। तो जो वो कंप्लेंट होती है तो उसमें टेक एक्शन हम करते हैं। वहीं से उनसे दो चीजें होती हैं कि जो व्यक्ति होता है वो उसकी एक इंडेमिनिटी होती है, शपथ पत्र उसको भरवाते हैं, उसको नोटराइज कराना होता है, उसको नोटराइज करा के वो हमें वापस देता है। बाकी एक हमारी इंडेमिनिटी जाती है, हम दोनों को सबमिट करके बैंक को भेज देते हैं। बैंक को कोई आपत्ति होती है तो वो वापस हमें भेजता है, हम पूरा करके भेज देते हैं और उसका पैसा आ जाता है। आने की गारंटी इसलिए हो जाती है इसमें क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पोर्टल पे ये दिख रहा होता है कि इस खाते में पैसा है या नहीं है और कितना पैसा इस खाते में है और कितना रिलीज किया जा सकता है। तो वो आसानी से मिल जाता है, तो सब चीज वहीं दिखाई दे रही है। अब हमें बैंक ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें नोडल को भेजने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ पोर्टल पे दिखाई दे रहा है
1: जी।
0: तो मोर देन 50,000
1: ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी
0: है। मोर देन 50,000 के लिए आपको फिर से कोर्ट जाना होगा और कोर्ट से वो सिमिलर ऑर्डर कराने होंगे और आपकी इंडेमिनिटी कोर्ट ऑर्डर प्लस पुलिस की इंडेमिनिटी, वो तीनों जाएंगे तो ही वो पैसा वापस आएगा
1: जी। यानी अब प्रोसेस थोड़ा सिंपल है कि आप जो है एक पुलिस विभाग ही इस चीज को अलाउ कर सकता है।
0: बिल्कुल, अब तक तो सभी लोगों को कॉम्प्लेक्स हुआ पड़ा था, वो पता ही नहीं था क्या करना है और कहाँ जाना है इसके लिए,
1: वो एक घूम रहा था।
0: तो वो चीजें आ गई। अब इसको आप यूट्यूब पर जाएंगे या गूगल पे भी लिखेंगे, क्योंकि बैंक्स में लोग जा रहे हैं तो बैंक मैनेजर उनको अभी भी पुलिस स्टेशन भेजे दे रहे हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन उनको वो अगर यूट्यूब पे खोल के दिखाएं कि MRM है और आप इसको सुनिए ये क्या कह रहा है और क्या MHA ने इसको जारी किया, तो वो सुनेंगे। अब एक दूसरा मैंने आपको बताया ग्रीवेंस रेड्रेसल मॉड्यूल, वो क्या है कि आपका खाता बंद हो गया और आपने कुछ नहीं किया, कोई पैसा किसी पड़ोसी से लिया या तनख्वाह ली, तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल, चाहे आप हरियाणा के रहने वाले हैं, चाहे आप केरल के, चाहे कर्नाटक के, आपका जिस बैंक में खाता है उसी बैंक मैनेजर को जाके कंप्लेंट देनी है कि भाई मैंने ये पैसा वहां से लिया था और इस पैसे की वजह से मेरा खाता बंद हो गया है, मैं साइबर फ्रॉडस्टर नहीं हूँ, कृपया मेरे खाते को खोला जाए या खुलवाया जाए। वो बैंक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है कि वो ही उसको वेरीफाई करेगा अब
1: जी,
0: कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वो सच है कि नहीं है।
1: ओके,
0: कि ये म्यूल अकाउंट है, म्यूल मनी तो नहीं आ रहा है, और उस पूरे प्रोसेस को देखकर वो हमें एक मेल डालेगा कि ये व्यक्ति ठीक है, ये साइबर फ्रॉडस्टर नहीं है, इसके खाते को खोल दिया जाए। उसको 7 दिन मिलेंगे बस उसके लिए।
1: अच्छा, वो एक विंडो जो होती है सिर्फ 7 दिन, हाँ,
0: उसको करना ही पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: नहीं तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो जाएगी।
1: अच्छा,
0: तो उसके बाद पुलिस को 15 दिन मिलेंगे। मेरे पास एक रिक्वेस्ट उसी पोर्टल पे आती है, मैं उस रिक्वेस्ट को टेक ऑन करूंगा। अगर मुझे लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की जरूरत है तो मैं एक मेल बैंक को वापस करूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए बोलूंगा, वो व्यक्ति को टाइम और डेट बताऊंगा मैनेजर को, वो उस व्यक्ति को बुला के हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कराएगा। हमें जो क्वेश्चन पूछने होंगे मैं पूछ लूंगा और उनको PDF के फॉर्म में वो वापस वो साइन करके हमें आंसर्स को भेज भी देंगे। उसको मैं फाइल पे लगा लूंगा। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं उसको NOC प्रदान कर दूंगा, उसका खाता खुल जाएगा। इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड मैं रिजेक्ट कर दूंगा। रिजेक्ट होते ही उसको 1-7 दिन और मिलेंगे, 22 दिन हो गए, 1 महीने भर की प्रोसेस है, वो उसमें अपील कर सकता है।
1: अच्छा,
0: और उस अपील को फिर टेक अप करेगा नोडल ऑफिसर, जो कि DSP या हमारा ACP होता है।
1: ओके,
0: और फिर वही प्रोसेस चालू होगी।
1: ओके,
0: तो एक बहुत सिंपल फॉर्म में है, सिर्फ बैंक के आपको मैनेजर को जाकर एक कंप्लेंट रेज करनी है, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना।
1: यानी SHO लेवल पर ये सारी चीजें
0: हो जाएंगी।
1: ये तो एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको ACP या DSP या इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक थाना इंचार्ज हैं और आप आपके पास ये पावर आ जाती है तो एक आम इंसान की दिक्कतें काफी हद तक सॉल्व हो जाती हैं, इसमें उनको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर सर बहुत सारी बातें हमने बताई हैं और मुझे लगता है कि इतनी सारी बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप काफी हद तक अपने आप को साइबर सेफ्टी में महारत हासिल कर लेंगे, ये आप जरूर चीज को समझ सकते हैं। आपका अकाउंट सेफ हो जाएगा, आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। तो चलते चलते बसंत जी कोई खास एडवाइस देना चाहेंगे?
0: देखिए बहुत सारी चीजें हैं, हम बार बार कहते हैं OTP शेयर ना करें, लिंक क्लिक ना करें। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिससे आप रियली में अपने आप को सेव कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड से।
1: जी
0: आप बहुत सारे लोग जो हैं, हम फोन पे पेटीएम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का पेमेंट UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए कर रहे हैं, तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप बैंक की ही जो आपकी एप्लीकेशंस है, जैसे SBI सिक्योरिटीज है, HDFC की है, जिस भी बैंक में आपका खाता है उसको इस्तेमाल करें। वहाँ 3-layer सिक्योरिटी होती है और उनसे ज़्यादा सुविधाएं वो आपको प्रदान करते हैं। तो उसमें आप फायदा क्या है कि उस एप्लीकेशन के अंदर जाके आप अपनी ट्रांजैक्शन की जो यूसेज है ना उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप ATM का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे जा रहे हैं, या आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी बैंक का, या फिर आप अपने ATM कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप, या आप UPI ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप उसमें यूसेज मैनेज नाम का है, सेटिंग्स में जाएंगे तो उसमें आपको ये सारी ऑप्शन दिखेंगे, तो वहां जाके सबको जीरो कर दीजिए।
1: अच्छा,
0: जैसे ही आप उनको जीरो करेंगे तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, ना तो फ्रॉडस्टर कर पाएगा आपके खाते से, ना आप खुद कर पाएंगे।
1: मतलब वो कुछ हद तक ब्लॉक हो जाएगा,
0: कुछ हद तक नहीं, वो कम्प्लीटली ब्लॉक। लेकिन आपको मान लीजिए खुद कुछ करना है तो आप फिर से उसमें जाइए और आपको 10,000 खर्च करने ATM से, तो ATM वाले पे जाइए और ATM की स्पेंड लिमिट को 10,000 कर दीजिए।
1: जी
0: तो आप उसी टाइम 10,000 यूज करिए और उसको फिर जीरो कर दीजिए। अब आपका फोन क्लिक हो गया हो, आपका लिंक क्लिक हो गया हो, आपसे गलती हो गई हो, अगर आप ये सारी चीजें बंद है तो आपके खाते से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा।
1: बिल्कुल, यानी शॉपिंग में जो डिस्काउंट मिलता है उन क्लिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए, कहीं पर इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड मत होइए कि आपको यहाँ पर अकाउंट खोलने में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में डबल मुनाफा होगा। इस तरीके का जो लालच होता है वो हमेशा साइबर फ्रॉड की तरफ ही ले जाता है। बसंत चौहान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने विस्तार से प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: दीक्षा जी, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हम तो खुद से ये चाहते हैं कि पब्लिक से किस तरह रूबरू हो
1: जी,
0: और आपका ये प्लेटफॉर्म मैं कई सालों से देख रहा हूँ, लगभग 7 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ
1: जी,
0: कि लोगों को जागरूक करने में बहुत ज्यादा बड़ा योगदान दे रहा है और आप ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं और करते रहें, बहुत जरूरी है। लोगों को यहाँ कोई नाका लगा कर तो हम साइबर फ्रॉडस्टर को रोक नहीं सकते हैं
1: जी,
0: तो अवेयर करके ही हम इस कार्य को कर सकते हैं जिसमें आप हमारे लिए बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवेयरनेस ही सॉल्यूशन है साइबर फ्रॉड को रोकने का। सुरक्षा संवाद में आज बस इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को आपसे मिलवाती हूँ, वो सभी लोग जो मानवता के काम कर रहे हैं। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं इस खास एपिसोड में, वो कहलाते हैं वाटर हीरो ऑफ इंडिया। जी हाँ, पानी कितनी जरूरी चीज है हम सब जानते हैं। ऐसे स्लोगन्स हमने बचपन से लेकर आज तक सीखे हैं, जल ही जीवन है, जल को बचाओ। लेकिन इस जल को बचाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है और क्यों जरूरी है कि अब हम इसे सीरियसली लें, आज हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। शुभाजीत मुखर्जी आज हमारे साथ हैं, जिनकी एक फाउंडेशन है, शुभाजीत मुखर्जी फाउंडेशन, इसके फाउंडर है और साथ के साथ कहलाते हैं वाटर हीरो ऑफ इंडिया। इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिससे कि ये वाटर हीरो ऑफ इंडिया बन गए हैं। तो इनसे करेंगे आज हम ढेर सारी बात और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभाजीत जी।
2: थैंक यू सो मच भावना जी, एंड आप और आपके जितने भी लिसनर्स हैं उन लोग सब नेचर लवर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमें पहले भी आपको रेडियो में सुना हूँ एंड इट इज रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा चांस है आपके और आपके लिसनर से जुड़ने के लिए।
1: शुभाजीत मुखर्जी फाउंडेशन, आइडली इस फाउंडेशन को बनाने के पीछे क्या कहानी और क्यों जरूरत आन पड़ी, मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं।
2: देखिए, जब एक काम बड़ा हो जाता है तो लोगों को कंफ्यूजन लगता है कि कैसे मैनेज होगा। लोग इसका ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कि क्योंकि जब एक NGO बन के प्रॉपर फाउंडेशन बन जाता है तो ऑडिट्स होने शुरू हो जाते हैं। अब जब 2000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं इस कैंपेन में, तो एक फाउंडेशन का रूप से उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बेटर आता है, ऑडिट्स होते हैं टाइम टू टाइम, फाइनेंशियल ऑडिट्स भी होते हैं। एंड उद्देश्य ये था कि एक छोटा सा सोच कि हमें अपने हिस्से का पानी बचाना ज़रूरी है, खुद किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जब लोग जुड़ने गए, उनका सजेशन आता गया कि आप एक फाउंडेशन का रूप दीजिए, फंड्स भी बहुत मिलने लगे एंड वॉलंटियरिंग भी बहुत बड़ा हो गया है। शायद ही ऐसा कोई NGO इंडिया में जहां फुल टाइम 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स काम कर रहे हो आज।
1: वाओ, सो शुभाजीत जी, इसका गठन कब हुआ, शुभाजीत मुखर्जी फाउंडेशन का?
2: 2010 में शुरू किया था एंड पहले कोशिश थी कि हम लोग पेड़ के पीछे फोकस करेंगे, लेकिन 2-4 साल काम करके याद आया कि जितना भी पेड़ लगा लीजिए बचेगा कोई नहीं। आज भी करोड़ों पेड़ लगाने का लोग दावा करते हैं, 2 साल बाद देखिए एक भी पेड़ जिंदा नहीं है। तो एक चीज मैं सीख गया हूँ, पेड़ मत लगाइए, पानी लगाइए, पानी को जमीन में जाने में मदद कीजिए। जिस तरीके से हम खड्डा कर करके पेड़ लगाते हैं, उसी में कुछ बड़े खड्डे कीजिए ताकि पानी जमीन में जाए। पानी रहेगा तो पेड़ अपने आप आ जाएगा, जैसे बारिश में पानी होता है, पेड़ चारों तरफ भर जाते हैं, हरा भरा हो जाता है, बस वही करना है। पानी को बचाइए, पानी का संरक्षण कीजिए, पानी का जिसे कहते हैं संचय कीजिए बस। और पानी के विषय में अगर हम फोकस कर लिए, अगर पानी को हम लोग अच्छे तरीके से रेस्पेक्टफुली उसको मैनेज कर लिए, तो हर चीज मैनेज हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब चीजें साइड इफेक्ट है। रियल बीमारी को फोकस करना ज्यादा जरूरी है, ना कि आसपास के। बुखार हुआ है तो ये नहीं कि पैरासीटामोल खा लिया, बुखार क्यों हुआ है वो देखना जरूरी है, मेन रीजन पानी है, इसलिए पानी पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है।
1: दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात कही है शुभाजीत जी ने, हम हर साल पेड़ लगाते हैं, आजकल नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन जो है उससे हम बीज डालते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्रूट ट्रीज भी उगाएं, लेकिन ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हमारे ये पेड़ बच नहीं पाते हैं। बहुत टाइम तक तो हम उसे पानी देने की कोशिश करते हैं और जब तक बारिश का सीजन होता है तब तक ये हरे भरे भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम इन्हें बचा नहीं पाते हैं। उसका एकमात्र कारण है हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल। शुभाजीत जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो हमारे भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे शहर हैं जिनका अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही बुरी तरह खराब है? चाहे मैं फरीदाबाद और दिल्ली NCR की बात करूँ तो हम तो रेड मार्क पर चल रहे हैं।
2: अब ये मैं बोलते हुए भी मुझे बड़ी दुख ही दुख हो रहा है और शर्म आ रही है कि इंडिया के 90% जगहों में वाटर लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है। दो चीज़ें, एक तो पानी ही नहीं है, दूसरा है जो पानी है वो जहरीला हो गया है, दो प्रॉब्लम है। एंड एक पेड़ जो है, जो भी हमें आसपास दिखता है, ये मुश्किल से 40 या 50 फीट तक पानी खींच सकता है ज़मीन से, मतलब बारिश के बाद ज़मीन से पानी उसको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जगह जहाँ गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ 270 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो रेड एरिया में आते हैं, जहाँ ऑलरेडी 250 से 300 फीट नीचे तक पानी चला गया है, तो उसके लिए एक एक लाइफ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, चाहे इंसान रह रहे हों या दूसरे जीव रहते हों, वृक्ष रहते हों, लाइफ ऑन दैट लैंड इज इम्पॉसिबल। तो ये बड़ा ही डेंजरस चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, बोलते हुए मुझे डर लग रहा है, बट ये सच्चाई है। ये लगभग कैंसर की तरह हो गया है, हमें ट्रीटमेंट इमीडिएटली करना पड़ेगा, नहीं तो ये और फैलता जाएगा।
1: वाकई। सो दोस्तों, ये है अलार्म का समय, जब हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि जहां हम रह रहे हैं वहां हमारे पास ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। और खुदा न खास्ता वो दिन आ गया जब बिल्कुल ही पानी नहीं बचा तो क्या करेंगे, विचार करिए। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेती हूँ, वापस लौट कर आएंगे और जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं शुभाजीत मुखर्जी के साथ और आज हम बात कर रहे हैं शुभाजीत मुखर्जी फाउंडेशन की, यानी द वाटर हीरो ऑफ इंडिया। शुभाजीत जी, अब बड़ा अहम सवाल, हम बात करते हैं पानी को बचाने की और इसी का एक अभिन्न हिस्सा है मिशन ग्रीन मुंबई जो आपने स्टार्ट किया था। तो किस तरीके से आपने इसे स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुँचे हैं आप?
1: देखिए, सोच सिंपल है, हम चाहे जितना भी तालाब भर लें, जितना भी बड़ा बांध बना लें, अल्टीमेटली जिस हिसाब से पर्यावरण बदल रहा है, जिस हिसाब से गर्मियां बढ़ रही है, हीट आइलैंड इफेक्ट बहुत डेंजरस होता है जो शहरों के आसपास होता है। दूसरा इवेपोरेशन रेट, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर जो हम बोलते थे ना कि डेढ़ डिग्री बढ़ गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, बट ऐसे बहुत सारे शहर हैं, गांव हैं जहां ऑलरेडी 2-3 डिग्री बढ़ चुका है एवरेज। तो ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण हम जितना भी पानी बचा रहे हैं वो इवेपोरेट हो जा रहा है, नदियों में तो बह जाता है, समुन्द्र में हमारे काम नहीं आता है, लेकिन बांध बना लिया, तालाब बना लिया, वो सब इवेपोरेट हो रहा है। तो हमारा मिशन ग्रीन का यही एक मिशन ग्रीन इज द रिजल्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, रिजल्ट ऑफ जल संचय। इसलिए ये सोच लेके हम लोगों तक जाते हैं कि अगर हरा भरा रखना है तो पानी बचाइए। यही है कि नो ग्रीन विदाउट ब्लू, एक कैंपेन का भी नाम दिएंगे, नो ग्रीन मतलब पेड़ ही नहीं रहेगा विदाउट ब्लू, बिना पानी के। इसलिए लोगों को यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तालाब बनाने के पीछे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, वो तो ठीक है बारिश है उसके थोड़े दिन बाद तक रहेगा, लेकिन दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई या इस समय क्या करेंगे आप? तो जमीन का ही पानी आज भी हमारा 80% जो हमारे फार्मर्स है, हम लोग हैं, हम लोग भूजल के ऊपर ही निर्भर हैं 100%, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप बताइए, आपके आसपास ऐसा कोई तालाब है जिसका पानी पी सकते हैं? इतना प्रदूषित हो गया है। ऐसा कोई नदी है जिसका पानी निकाल के पी सकते हैं? पूरा प्रदूषित हो चुका है। इसलिए एक ही तरीका है, हम लोग भू जल को बचाएं, उसको प्रोटेक्ट करें, ये नहीं कि उसमें कुछ भी गंदगी जा रही है। साइंटिफिक तरीके से जो अटल भू जल योजना है, जल जीवन मिशन है, हर घर जल शक्ति अभियान चल रहा है, ये सब सोच है लोगों तक पहुंचाने के लिए, और जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो मिशन ग्रीन का यही कैंपेन है कि आप लोगों को मैं जोड़ सकूं, इसका मैंने नाम भी दिया है एक और, हर घर जल शक्ति अभियान, और लोग जुड़े हैं
0: और हम जुड़ने वाले हैं। तो जितने भी लोग फिलहाल सुन रहे हैं बिल्कुल तैयार हो जाइए, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसे कैसे किया जा सकता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है और एज एन इंडिविजुअल आपका क्या रोल हो सकता है। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं शुभाजीत मुखर्जी फाउंडेशन के फाउंडर शुभाजीत मुखर्जी के साथ, जो कि वाटर हीरो ऑफ इंडिया कहलाते हैं। शुभाजीत जी, अब हम मुद्दे पर आते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल, इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, हर इंडिविजुअल अपने घर में इसे कैसे क्रिएट कर सकता है, और खास तौर पर उन घरों में जहां पर की मल्टी लेवल, कहना चाहिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज हैं, वहां पर।
1: देखिए, हमें स्मार्ट बनना जरूरी है और हमें ऐसा काम करना है, तीन पॉइंट, पहला कि इजी हो, दूसरा सस्ता हो एंड तीसरा क्विक हो। मतलब दो तीन दिन में ऐसा कुछ कर लिए जो कम से कम पैसे खर्चा करके एंड जो हमें इंस्टेंट बारिश आते ही फायदा हो जाए
0: जी।
1: ताकि कहने का मतलब है, अगर हम एक साइंटिफिक टाइप से देखें तो हम जमीन के नीचे ही कई पानी निकाल रहे हैं। एक लंबा सा स्ट्रॉ लगाया है जिसको हम बोरवेल कहते हैं, तो पंप लगा के पानी जमीन से निकाल रहे हैं। एंड अगर आप बोरवेल को ध्यान दिए हो, हम लोग डेली एक दो घंटा पानी निकालते हैं और फिर पानी खत्म हो जाता है, फिर एक दिन भर में 24 घंटे में फिर से आसपास का मट्टी का पानी वहाँ वापिस आ जाता है, फिर निकालते रहते हैं। तो डेली जो एक घंटा पानी दे रहा है हमें वैसे ही डेली पानी उसको जब वापिस देना शुरू करेंगे तो अपने आप जमीन में पानी जमा हो जाएगा। अब क्योंकि जमीन के अंदर का जो भू जल कहते हैं, जब पानी खत्म हो गया है, जितना भी पानी निकालें उतना तो वापिस डाल ही सकते हैं। और पानी कहाँ से वापिस डालेंगे? बारिश का पानी जब बारिश में आता है, छत पे आके गिरता है, जो बह जाता है। दुख की बात यह है, छत का पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाता है, सड़क पे चला जाता है। गार्डन का पानी भी सड़क पे चला जाता है, नदियों में चला जाता है। एक स्कूल का पानी, ऑफिस का पानी, सब देखिए जैसे हम लोग भगा रहे हैं पानी को, भाई जाओ हमें नहीं चाहिए। ये हमें सोच बदलना पड़ेगा। हमें सिर्फ हमारा जो बोरवेल है, जितने भी देश भर में कहते हैं कि इस समय जब हम बात कर रहे हैं 30 मिलियन से ज़्यादा बोरवेल सूखे पड़े हुए हैं, हमें एक ही काम करना है, छत का पानी पाइप के थ्रू उस बोरवेल के अंदर डाइवर्ट कर देना है। और एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि उसमें पानी साफ जाए। तो कुछ फिल्टर का तरीका होता है बेसिक, पर पूरा सिस्टम सोच लीजिए 6-8 हज़ार रुपये में भी रेडी हो जाता है। इंसान लोग खुद ही एक श्रमदान करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बस काम शुरू करना बाकी है।
0: सो भाई देखिए, इतना सस्ता और इतना बढ़िया ऑप्शन की क्या कहने, और इस ऑप्शन को आप भी अपना सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि शुभाजीत मुखर्जी फाउंडेशन का एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर है, अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है तो आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा

0: क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
0: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
0: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
0: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं शुभाजीत मुखर्जी जी के साथ, जिनकी फाउंडेशन है शुभाजीत मुखर्जी फाउंडेशन और जो कहलाते हैं वाटर हीरो ऑफ इंडिया। शुभाजीत जी, अब एक बड़ा अहम सवाल। जितना आपने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत कम पैसों में हम उसे धरती तक पहुंचा सकते हैं, अगर ये इतना सिंपल है तो आज तक लोग इसे अपना क्यों नहीं रहे हैं और आज भी लोगों को इसको अवेयरनेस क्यों नहीं है इसके बारे में?
1: देखिए, अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहा है। हमें क्या है, अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोपना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में हमें अच्छा नंबर नहीं मिलता है तो बोलते टीचर अच्छे से पढ़ाती नहीं है, और आज भी कुछ भी गड़बड़ होता है समाज में हम बोलते हैं गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ठीक से कर नहीं रही है। हर काम गवर्नमेंट का नहीं होता है कि गवर्नमेंट, हर चीज तो इंसान है, हम लोग सभी हैं, हमारे ही लोग हैं जो गवर्नमेंट में, हमारे ही लोग

0: भी स्कूल में है, हर जगह है, तो दूसरों को हम लोग ब्लेम करने की जो आदत हो गई है, पहला तो वो है कि हमें सोचते भी नहीं है कि जिस दिन अगर सोच हो जाए कि मेरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, जैसे कहते हैं ना मेरा कूड़ा मेरा जिम्मेदारी, तो उसी तरीके से मेरा पानी मेरा जिम्मेदारी है। एक पानी का क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनता है जो हम कभी सीरियसली नहीं लिए हैं, एंड यही सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरा, लोगों को लगता है बहुत खर्चा होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी कन्वेंशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जगह भी बहुत लेता है, एक एक दो दो महीना काम चल रहा है, 10-10 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। जब जब जिस जिस आदमी को मैंने बोला कि भाई आप खुद ही कर लो, 5-10 हज़ार में काम हो जाएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 2 महीने में 9,400 इंस्टॉलेशन मैंने खुद एडमिनिस्टर किया है। लोगों को जैसे मैं बोलता हूँ आपको सीखना, आप मुझे मेल ड्रॉप कीजिए waterheroofindia@gmail.com, उनको ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मिलता है, लोग सीख रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, जिसको दिक्कत हो रही है मुझे फोन कर रहे हैं। तो यही सिस्टम है, आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट हुआ पूरे देश में पर दुनिया में कि एक आदमी फोन करके पूछे और उसको कोई गाइड कर पाए, कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो बस मैं ये गाइडेंस शुरू किया हूँ, लोग जुड़ते जा रहे हैं और लोगों का काम होता जा रहा है।
1: अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ तो शिवाजी जी मुझे बताइए, बेसिक चैलेंजेस क्या है हमारे भारत में? अगर हम बात करें तो वाटर कंजर्वेशन के बारे में हम सब बात करते हैं, लेकिन ये कंजर्व हो क्यों नहीं पा रहा है, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं हम?
0: सबसे बड़ा चैलेंज है इन्फॉर्मेशन, नॉलेज नहीं है लोगों को। स्कूल में हम लोग जब दुनिया भर का हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी सब सिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे चीजें पढ़ाई जा रही जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जल संचय वाटर सिक्योरिटी को लेकर जो पढ़ाई होना चाहिए क्लास 10th के पहले ही, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 साल वाटर सिक्योरिटी पढ़ाना चाहिए, जो अभी तक बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है। हाँ, एक बहुत अच्छी बात है, अभी नया नया गवर्नमेंट का मैंने देखा है, कुछ कुछ किताबों में उसकी चीज़ें आने लगी है, बट वो भी कुछ बहुत ही लिमिटेड है। तो जब तक एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक ये लोगों तक जागरूकता नहीं आएगी। और दूसरा है जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा हम कर नहीं सकते, हमें सिविल इंजीनियर बुलाना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, बहुत महंगा चीज़ है, ये हमारे तरफ से नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट ही करेगा, ऐसा नहीं है। हर इंसान जिसको पानी की कमी हो रही है वो खुद ही इसको इंस्टॉल कर रहा है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है।
1: मुझे ऐसा लगता है कि ढेर सारा पानी हर साल हमें हमारे मॉनसून के सीजन में मिलता है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो पानी में डूब जाते हैं, बट अगर हम अपने भूजल की बात करें तो भूजल आज भी बहुत कम है। इन दोनों बैलेंस को, मतलब कहीं ना कहीं दोनों चीजों का जो इतना बड़ा गैप है, इसे कहीं ना कहीं बैलेंस किया जा सकता है। तो क्या आपको वाकई लगता है कि अगर हर साल हम ये जो बारिश का पानी है इसे कॉन्शियसली हर सिटीजन जमीन में जाने दे तो हमारा जो डेफिसिट है वो कम हो सकता है?
0: इंस्टेंट, मैं हर साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जैसे आपने बस इंस्टॉल किया और आपका प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे ही बारिश आते इंस्टेंट जमीन के अंदर पानी चला जाता है, अच्छा पानी अब डालिए रहेगा, आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें 2-4 साल वेट करना पड़े। बट हाँ, ये कांस्टेंट होना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, एंड जो जो मेंटेन किए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो मेंटेन नहीं कर रहे हैं वो परेशान में है।
1: भाई देखिए, अगर इतना आसान सॉल्यूशन है और किसी ने इसे ढूंढ निकाला है तो वक्त है कि इसे हम भी अपनाएं। आप तैयार हैं, मैं तैयार हूं, तो चलिए भाई देर किस बात की है, तैयारी कर लीजिए कि आपको भी अपने आसपास, अपने घर, अपने ऑफिस, अपने ऑर्गेनाइजेशन, जहां कहीं भी लगता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पिट्स नहीं है या फिर हमने उसका सिस्टम ही नहीं इंस्टॉल किया है, तो वो करना शुरू कर दीजिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज हम ढेर सारी बातें करें शुभाजीत मुखर्जी जी से, जो कि फाउंडर है शुभाजीत मुखर्जी फाउंडेशन और वाटर हीरो ऑफ इंडिया कहलाते हैं। शुभाजीत जी, अब बड़ा अहम सवाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका हो सकता है, लेकिन हम एज अ नेशन पानी को कंजर्व करने के बारे में कभी सोचते नहीं है कॉन्शियसली, क्योंकि शायद ये हमारी हैबिट में है। हमें ऐसा लगता है कि पानी तो हमारे पास अबंडेंस में है, बचपन से ही सिखाया गया है कि पूरी पृथ्वी का 3/4 जो है वो पानी है, तो हमें ऐसा लगता है इसकी तो कमी होगी नहीं। बट आइडली हमारे जीवन में हमें डेली पानी को कंजर्व करना चाहिए, जिसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो किस प्रकार के तरीके हो सकते हैं वो?
1: आपने बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया का 3/4 पानी है, जो लोगों की इन्फॉर्मेशन है वही पहले तो गलत है। 3/4 पानी सिर्फ सरफेस पे है, कहने का मतलब है हमारा जो धरती है ना, ये पूरा ठोस है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है। सिर्फ हमारे पास 7% से ज्यादा पानी नहीं है, सिर्फ सरफेस में हमें कवर्ड है 3/4 से, बाकी सब हमें पानी, वो जो 7% कवर्ड है उसमें बहुत ही थोड़ा परसेंटेज है जो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब फ्रेश वाटर है। बाकी एक चीज अक्सर देखा गया कि जो पानी है उसका लोग मिसयूज करते हैं। सबसे बुरी बात और क्रिमिनल पाप लगने वाली बात यह है कि जो म्युनिसिपैलिटी जहाँ जहाँ साफ पानी प्रोवाइड करती है, लोग उस पानी से फ्लशिंग करते हैं, संडास में यूज करते हैं। इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा जरूरी है, समय आ गया है कि हम लोग ग्रे वाटर को रीयूज करना शुरू करें। मुंबई जैसा जगह है, सूरत है, कहाँ कहाँ बोलूँ, विशाखापट्टनम है, बहुत सारे शहर हैं इंडिया में जहाँ म्युनिसिपैलिटी पीने का पानी देती है और हम लोग उसको फ्लश में डाल देते हैं, 40% पानी वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को भी अगर हम एड्रेस कर सकें और लोग सीखें कि चलो रीयूज करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। नहाने का पानी बहुत हद तक साफ होता है, फिल्टर करके फ्लश में डालिए, हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे रीयूज जो वर्ड है इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड है रिड्यूस, किस किस तरीके से हमारा वाटर पानी का खपत हम कम कर पाए। जैसे कहते हैं कि आप शावर बाथ मत लीजिए, बकेट बाथ लीजिए, बहुत सारा पानी बच जाता है। फिर एक मैंने बहुत गलती देखा, फ्लश में एक छोटा फ्लश होता है, एक बड़ा फ्लश होता है। छोटा काम कहते हैं, छोटे काम के लिए छोटा फ्लश, बड़े काम के लिए बड़ा फ्लश
0: जी।
1: सिंपल, ये लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को तो मैं पूछिए तो लोग बोलते पता नहीं दो बटन क्यों दिया हुआ है, ये सोचना जरूरी है। और ज्यादातर जगह तो दो बटन है ही नहीं, एक ही बटन है, तो अपग्रेड करना जरूरी है। बस इतना ही है, सोच की बात है और कुछ नहीं।
0: दोस्तों इतनी छोटी सी चीज, मतलब अगर आप सुनकर देखें तो हमारे वाटर हीरो हमें खुद ये कह रहे हैं कि इट इज एज सिंपल एज दैट, मतलब सिर्फ आपके अपने बिहेवियर में चेंज लाने की जरूरत है। और ये छोटा छोटा चेंज हम सब इंडिविजुअल अगर बदल लें, मतलब अगर हम बस कॉन्शियस लिविंग करें, हम ये ध्यान रखें कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या गलत, सबसे पहले अपने घरों में, अपने इंडिविजुअल यूनिट्स में, अगर आप एक इंडिपेंडेंट घर में रहते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट जरूर बनवाइए, और ये जो बारिश का पानी है इसे धरती में जाने दीजिए, क्योंकि जो पानी ऊपर से हमें प्रकृति दे रही है उसे कंजर्व करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ हमारी डेली हैबिट्स में हम पानी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आरओ सबके घरों में आजकल, क्योंकि हम सभी को फिल्टर्ड पानी पीना है, लेकिन उस फिल्टर्ड पानी से जो वेस्ट निकलता है अक्सर बहुत सारे घरों में वो सिंक से नाली में चला जाता है और नाली से ड्रेन में, यानी वो गटर के पानी के साथ मिलकर पानी जो पीने के लिए बना है जिसे रिसाइकल किया जा रहा है, आप उसे रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू फिल्टर कर रहे हैं, उसका बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं, जो आगे जाने के बाद उस पानी में मिल जाता है जिसे फर्दर आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम कॉन्शियसली छोटे छोटे डिसीजन लें, जिसमें कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं लगता है, तो हम पानी को बचा सकते हैं। चलिए ना एक छोटी सी मुहिम चलाते हैं जहां हम अपने आप को सबसे पहले सिखाते हैं। लेट्स एजुकेट आवरसेल्फ, अपने आप को पहले सिखाएं कि हमें हर रोज पानी कैसे बचाना है। और अगर आपने ये कर दिया ना तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक प्यारा सा गाना जरूर चलाने वाली हूँ। छुड़ा रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं वाटर हीरो ऑफ इंडिया के साथ। शुभाजीत मुखर्जी एक बहुत ही खास फाउंडेशन चलाते हैं जिसका नाम ही है शुभाजीत मुखर्जी फाउंडेशन। इनकी फाउंडेशन का एक मिशन है जिस मिशन को ये धीरे धीरे अचीव करते जा रहे हैं। इनफैक्ट मात्र 2 महीने में इन्होंने जो फिगर टच किया है, 9400 लोगों को इन्होंने एजुकेट किया है और उन्होंने

0: कम समय में न सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनवा लिए हैं, लेकिन आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं। शुभा जी जी एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए कि लोगों को कंफ्यूजन है या उन्हें पता नहीं है कि ये कैसे किया जाए, तो उसके लिए वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं?
1: जुड़ने का सिंपल है कि आप हमें मेल कर सकते हैं waterheroofindia@gmail.com, जिसमें आपको सारे डिटेल्स आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। एंड अगर आपको एडिशनल वो डिटेल्स पढ़ के कोई भी डिफिकल्टी आती हो, आप दोबारा रिप्लाई कीजिए तो हमारा कोई ना कोई वाटर हीरो जो हमारे टीम्स बैठे हैं उनको, सबको मैं वाटर हीरो बोलता हूँ, दे विल कनेक्ट विथ यू, आपको फोन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो साइट इंस्पेक्शन भी करेंगे। क्योंकि हमारा सोच इतना ही है कि जितना पानी हम बचा पाएंगे उतना ही हम इस्तेमाल कर पाएंगे, सिंपल। क्योंकि हर पानी अभी हमें खरीदना पड़ता है, फ्री तो पानी रह नहीं गया है। चाहे आप टैंकर के वाटर की बात कीजिए, चाहे घर में जो हम फिल्टर लगाते हैं, सबके पीछे खर्चा हो रहा है। तो जो भगवान हमें ऊपर वाला हमें फ्री में दे रहा है, उसको हमें फ्री में रखना जरूरी है। इसके लिए हर इंसान को जुड़ना जरूरी है। तो बस लोग हमारे वीडियोस एंड चीजें भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे गूगल करेंगे अपने आप हमारे बहुत सारे वीडियोज आ जाते हैं, ताकि एक क्लैरिटी रहे सबको, बस इतना ही है। एंड एक दूसरे को प्रेरित करें कि मैंने ये किया है तुम भी करो, इसी से वर्ड ऑफ माउथ से ही आगे बढ़ता है।
0: वाकई हमारा भारत तो इसी से ही चलता है। तो अगर आपने ये कर लिया है तो प्लीज अपने चार दोस्तों को इस चीज के लिए मोटिवेट जरूर करें। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ, अब से मैं आप सभी के पीछे पड़ने वाली हूँ कि भाई क्या आपने अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट लगाया है या नहीं, और इस बार खूबसूरत सी बरसात में क्या आपने पानी को बचाने की कोशिश की है या नहीं। तहे दिल से धन्यवाद शुभा जी जी, आज आपने हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी और अपना कीमती समय निकालकर हमसे बातचीत की।
1: सो काइंड ऑफ यू, आप और आपके लिसनर्स सब नेचर लवर्स हैं एंड आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशन सुन के कुछ न कुछ अच्छा काम हम साथ में मिलकर कर पाएंगे।
0: तो दोस्तों हम आज वादा कर रहे हैं कि हम सब मिलकर न सिर्फ पानी को बचाएंगे लेकिन अपने जीवन को और भी बेहतरीन बनाएंगे। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, कहीं मत जाइए, मैं जा रही हूँ आपसे दूर। लेकिन गाने के बाद आप जुड़े रहेंगे FM के साथ। अगले हफ्ते मेरी होगी आपसे मुलाकात कार्यक्रम मानवता की राह पर। टिल देन फील गुड फील लव।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा, मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी, न्योता भी साथ में।

0: उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता। पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहां खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थे। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है। दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की ओर उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: રેડિયો મને પ્રશ્ન મને 7.8 FM પર થે સારી મસ્તી ખૂબ સારા ફન ક્યોકી યે હે ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, एक ऐसा मोटिवेशनल प्रोग्राम जो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करता है बल्कि आपको ये बताता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम उन महान व्यक्तियों की कहानियाँ लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने लगन से एक मुकाम को हासिल किया है और एक मिसाल कायम की है। इनकी जिंदगी में हमें सिर्फ प्रेरणा ही नहीं मिलती है बल्कि एक ऐसे अनमोल जीवन के सबक भी मिलते हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जिंदगी में ना हर इंसान के सामने चुनौतियां आती है। आपको कोई ना कोई ये चीज बताता होगा कि यार आज ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, बहुत सी चीजें होंगी, शायद आपने भी ये चीजें रियलाइज करी होंगी। कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती है तो कभी साधन कम होते हैं और कभी रास्ता बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना इन मुश्किलों के सामने झुकते नहीं है, जी हाँ, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही प्रेरणादायक लेडी की, जी हाँ, एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज का ये खास एपिसोड जिसके लिए है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी एक ऐसी महिला जिन्होंने ओडिशा के एक छोटे से गांव से अपना सफर शुरू किया और भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि अगर इरादे आपके मजबूत हो, मेहनत अगर आपकी सच्ची हो और हौसला आपका बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती आपसे। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया है, आर्थिक चुनौतियां हो, सामाजिक बाधाएं हो और व्यक्तिगत दुखों के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ, हर मुश्किल के बाद वो और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी है और आगे बढ़ती रही है। आज के इस खास एपिसोड में हम उनके बचपन से लेकर उनके आज तक की जो भी उनकी कहानी है उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उनकी जर्नी के साथ आज हम चलने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल होने वाली है ये जर्नी क्योंकि आज हम राष्ट्रपति की बात करने वाले हैं, उनकी जर्नी की बात करने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको अगर ये जर्नी सुननी है ना तो आपको जुड़ जाना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, सिर्फ और सिर्फ आरजी स्नेहा के साथ। और प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं

0: वेलकम बैक दोस्तों,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करता है लोगों की जर्नी से, बल्कि आपको मोटिवेट भी करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और आज जिस जर्नी के

साथ हम चल रहे हैं, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, जिनको जान रहे हैं, वो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। जी हाँ, इनकी प्रेरणादायक कहानी, इनकी जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने उनके सफर का एक छोटा सा परिचय आपको दिया था। चलिए अब उनके बचपन की जो शुरुआती जीवन है उससे शुरुआत करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव ऊपरबेड़ा में हुआ था। वो संतल आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं। उनका बचपन बहुत ही सादगी और सीमित साधनों के बीच बीता। गांव में आज की तरह सुविधाएं तो नहीं थी, ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी काफी सीमित थे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज बहुत मजबूत थी, वो था उनकी सीखने की इच्छा और आगे बढ़ने का जज्बा। बचपन से ही द्रौपदी मुर्मू जी ने पढ़ाई में अपनी रुचि रखी थी। उनके परिवार ने भी उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उस समय गांव की कई लड़कियां स्कूल तक नहीं पहुंच पाती थीं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा। दोस्तों, जब हम किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो अक्सर उसकी उपलब्धियां देखते हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष होता है ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी भी इस बात का सबूत देती है। एक छोटे से गांव की लड़की जिसके पास बहुत अधिक सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने सपने देखने की हिम्मत को और उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करी। उनका बचपन हमें ये सिखाता है कि जन्म की परिस्थितियां हमारा भविष्य तय नहीं करती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कई बार ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, या फिर रिसोर्सेज नहीं है, या फिर अपॉर्चुनिटीज वो अगर कम है तो शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि सफलता की शुरुआत हमारी सोच और हमारे हौसले से होती है। द्रौपदी मुर्मू जी ने बचपन से ही ये दिखा दिया था कि अगर मन में सीखने की लगन हो और कुछ करके दिखाने का जज्बा हो तो कोई भी रुकावट आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। और आज की इस खास सेगमेंट का सक्सेस मंत्र है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर आपका हौसला मजबूत हो तो सपना पूरा किया जा सकता है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको मोटिवेट करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। साथ ही हम ऐसी जर्नी, ऐसी कहानियां लेकर आते हैं, उनकी लाइफ की जर्नी बताते हैं ताकि आप उससे ना मोटिवेट हो सके, क्योंकि लोगों के पास शुरू से ही सब कुछ हो ऐसा जरूरी नहीं है। करने वाले ना थोड़े कम रिसोर्सेज में भी कुछ ना कुछ जरूर कर लेते हैं। और आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है भारत की राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी की। उनके जीवन के सफर को आज हम करीब से जान रहे हैं। पिछले सेगमेंट पे हमने उनके बचपन और उनकी परिस्थितियों के बारे में बात की, जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं उनकी पढ़ाई और उनके करियर के पहले कदम की। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी ने बचपन से ही शिक्षा को अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था। गाँव से निकलकर उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर भुवनेश्वर जाकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उस समय एक आदिवासी परिवार की बेटी का गांव से बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने कभी मुश्किलों को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने ओडिशा सरकार की एक विभाग में काम किया। ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत थी। इस दौरान उन्होंने अनुशासन, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य निभाए, लेकिन उनका मन सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं था, वो समाज के लिए कुछ ज्यादा करना चाहती थी। बाद में उन्होंने एक स्कूल में टीचर के रूप में भी सेवा दी। टीचर बनना उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं था, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का एक माध्यम था। वो बच्चों को पढ़ाती थी और उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने की कोशिश भी करती थी। इसी दौरान उनका संपर्क आम लोगों और उनकी समस्याओं से और ज्यादा हुआ। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती है, बल्कि हमें सोचने, समझने और सही फैसले लेने की भी शक्ति देती है। तो इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी पढ़ाई और काम के माध्यम से ये साबित कर दिया था कि अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो जिंदगी आपको नए रास्ते जरूर दिखाती है। उनकी जर्नी हमें ये बताती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है और आगे की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। एक टीचर और एक कर्मचारी के रूप में जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, वही आगे चलकर उनके लीडरशिप सफर की मजबूत नींव बना। आज की सेगमेंट का सक्सेस मंत्र है, शिक्षा और सीखने की आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजी स्नेहा और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की प्रेरणादायक जर्नी के बारे में। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे उन्होंने पढ़ाई और टीचिंग के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। अब बात करते हैं उस मोड़ की जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जी हाँ, वो था राजनीति और जनसेवा का सफर। द्रौपदी मुर्मू जी ने बचपन से ही लोगों की मदद करने और समाज के लिए कुछ करने की सोच रखी थी। टीचर के रूप में काम करते हुए उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा। उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर समाज में बड़ा बदलाव लाना है तो लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज बनना जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से हुई। उन्होंने उड़ीसा के रायरंगपुर नगर पंचायत में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया। उनकी ईमानदारी, सरलता और लोगों से जुड़े रहने की आदत ने उन्हें अलग पहचान दी। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए शुरुआत भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी हमें कुछ और ही सिखाती है। उन्होंने किसी बड़े पद से अपना सफर शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया और हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाने लगी। वो उड़ीसा विधानसभा की सदस्य बनी और बाद में राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। इसी दौरान उन्होंने लोगों के विकास, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर भी काम किया है। उनका फोकस हमेशा आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना था। उनकी लीडरशिप की सबसे खास बात तो ये थी कि वो जमीन से जुड़ी हुई थी। जी हाँ, चाहे जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो या पोजीशन कितनी बड़ी क्यों ना हो, उन्होंने कभी अपनी सादगी और विनम्रता को नहीं छोड़ा। इसी वजह से लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे और उन पर भरोसा भी करते थे। द्रौपदी मुर्मू जी की जर्नी हमें ये बताती है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जरूरी ये नहीं है कि आप कहां से शुरू करते हैं, जरूरी ये है कि आप कितनी ईमानदारी और लगन के साथ अपने सफर को तय करते हैं। और आज का इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्र है, छोटी शुरुआत से कभी भी मत घबराइए। हर बड़ी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता एक छोटे कदम से ही शुरू होता है।

कैसा लगा आपको ये थॉट, हमें जरूर बताइएगा। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सोचिए मैं खुद बोल रही हूँ और मुझे ही कोई थॉट इंस्पायर कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। मुझे पता है आपको भी बहुत पसंद आया होगा। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की जर्नी के साथ। उनकी आज हम जर्नी की बात कर रहे हैं, उनकी जो बचपन की शुरुआत थी हमने उससे भी बात करी और पढ़ाई और राजनीति में प्रवेश करा उन्होंने उसके भी बारे में हमने जाना। लेकिन अब उस दौर की बात करेंगे जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और सबसे भावुक अध्याय में से एक था। दोस्तों, जिंदगी में ना सफलता पाना मुश्किल होता है, लेकिन कई बार जिंदगी कुछ ऐसे दुख देती है जिनका सामना करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही कई गहरे व्यक्तिगत दुखों का सामना किया। कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने अपने दो जवान बेटों को खो दिया। जी हाँ, किसी भी माँ के लिए ये दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसके बाद उनके पति का भी निधन हो गया। फिर कुछ समय बाद उनकी माँ और भाई भी इस दुनिया से चले गए। एक के बाद एक इतने बड़े नुकसान ने उनकी जिंदगी को ही हिला कर रख दिया। ऐसे समय में बहुत से लोग ना टूट जाते हैं और जिंदगी में हार मान लेते हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने आप को संभाला, धैर्य रखा और धीरे धीरे फिर से खुद को मजबूत बनाया। ये आसान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। इस कठिन दौर में उन्होंने आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच से बहुत ताकत ली। उनका विश्वास था कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, इंसान को ना आगे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने अपना ध्यान सेवा, समाज के काम और अपने कर्तव्य पर लगाया। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी का ये हिस्सा हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक चीज हमेशा होती है, वो है हमारा हौसला। और वही हौसला हमें अंधेरे समय से बाहर निकालने की ताकत देता है। उन्होंने दुख को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसी दुख से अपनी ताकत को लेकर अपनी जिंदगी को एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाया। इसी वजह से आज उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गई है। आज के इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्रा है कि मुश्किलें और दुख जिंदगी का हिस्सा होती है, लेकिन हौसला और धैर्य ही हमें उनसे जीतना सिखाता है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

भैया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: चोरा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की प्रेरणादायक कहानी के साथ, उनकी प्रेरणादायक जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, पिछले सेगमेंट पे हमने उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जाने की, उनका जीवन कितने कठिन संघर्ष और व्यक्तिगत दुखों से गुजरा और उनके बारे में जाना। आप देखते हैं और जानते हैं कि कैसे इतनी मुश्किल के बाद भी उन्होंने अपनी सेवा और कर्तव्य के रास्ते पर चलना जारी रखा और देश के सबसे बड़े पद तक पहुंच गईं। साल 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। झारखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी संभालना एक बड़ा विश्वास और राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाया। झारखंड में उन्होंने लोगों के हित में उनकी शिक्षा और ट्राइबल समुदायों से जुड़े मुद्दों पर खास ध्यान दिया। उनकी पहचान एक ऐसी नेता के रूप में बनी जो लोगों की बात को ध्यान से सुनती थी और जमीन से जुड़ी हुई थी। उनका व्यवहार सादगी भरा था और इसी वजह से लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल काफी अच्छा माना गया। उन्होंने हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। ये उनकी ईमानदारी और सेवा भाव का ही परिणाम था कि धीरे धीरे उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा मजबूत हो गई। फिर आया साल 2022। ये वो साल था जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम भारत के राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया गया। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल था। चुनाव के बाद वो भारत की राष्ट्रपति बनी और इसके साथ ही देश की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। ओडिशा के एक छोटे से गांव से निकली एक बेटी का राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की ताकत और उस पर विश्वास का प्रतीक था कि उनकी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से कोई भी इंसान कितनी भी ऊंचाई तक पहुँच सकता है। द्रौपदी मुर्मू जी की ये उपलब्धि लाखों युवाओं, महिलाओं और ट्राइबल समुदायों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी बताती है कि सपने देखने का हक हर किसी को होता है और उन्हें पूरा करने की ताकत भी हर इंसान के अंदर होती है, बस आपको उसे पहचानना है और उस पर काम करने लग जाना है। और आज की इस खास सेगमेंट का सक्सेस मंत्र निकलता है कि ईमानदारी, समर्पण और लगातार मेहनत का फल चाहे आपको देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। वक्त हो गया छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हमने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की एक बहुत ही प्रेरणादायक और हौसला बढ़ाने वाली कहानी सुनी, उनकी जर्नी सुनी आज हमने कि ओडिशा के एक छोटे से गाँव से शुरू हुआ उनका सफर भारत के राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुँचा। साथ में एक अद्भुत मिसाल ये बात बनती है कि ये कहानी हमें बताती है कि सफलता सिर्फ बड़े शहरों से या फिर ज्यादा सुविधाओं का मोहताज नहीं होता है, बल्कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं। आज के इस आखिरी सेगमेंट में द्रौपदी मुर्मू जी की जिंदगी के मिलने वाले 5 सबसे बड़े सक्सेस मंत्रा को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला सक्सेस मंत्रा है वो है, परिस्थितियों से हार मत मानिएगा। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत सादगी और सीमित साधनों के बीच अपना बचपन बिताया है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने सपने देखे और उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करी। दूसरा सक्सेस मंत्रा है, शिक्षा को अपनी ताकत बनाइए। उनकी जर्नी ये साबित करती है कि शिक्षा जिंदगी बदल सकती है। सीखने की आदत और ज्ञान ही वो ताकत है जो हमें नए अवसर और नए रास्ते दिखाती है। और तीसरा सक्सेस मंत्रा है, छोटी शुरुआत से घबराइए मत। टीचर और समाज सेविका के रूप में शुरू हुआ सफर धीरे धीरे राजनीति और फिर राष्ट्रपति पद तक पहुंच गया। हर बड़ी मुश्किल की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। चौथा सक्सेस मंत्रा है, मुश्किलों में भी हौसला बनाए रखिए। जी हाँ, अपने पति बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों को खोना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने हिम्मत नहीं हारी और जीवन में आगे बढ़ती रही। पांचवा सक्सेस मंत्रा है, सेवा और विनम्रता को कभी मत छोड़िए। चाहे जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो गई हो, उन्होंने हमेशा लोगों के प्रति संवेदनशीलता और विनम्रता बनाए रखा। यही गुण उन्हें एक सच्चा लीडर बनाता है। द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का असली अर्थ सिर्फ किसी बड़े पद तक पहुंचना नहीं होता है, बल्कि असली सफलता होती है हर परिस्थिति में अपने मूल्यों, अपनी मेहनत और अपने उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ते रहना। इसी प्रेरणा के साथ आज के इस खास एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे स्नेहा और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा। याद रखिएगा, सपने बड़े रखिए, हौसला मजबूत रखिए और मुश्किलों के सामने कभी झुकिएगा नहीं। सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। तो चलिए, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर से आऊंगी किसी और नई प्रेरणादायक स्टोरी के साथ, किसी और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: मारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम। वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और आप लोग इस टाइम जुड़े हुए रेडियो मनोरंजना 107.8 के साथ फील गुड फील लाइव। ये शो हमारा हर बार की तरह मैं बोलूंगा बहुत स्पेशल होने वाला है। रीजन बीइंग यहाँ पर आप एजुकेट होते हैं, आपको पता लगता है एग्जैक्टली हम जो बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहे हैं, कौन सी वो कंपनीज हैं, क्या क्या कर रही हैं कंपनीज, अलग अलग डोमेन अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो हम शुरुआत करते हैं अपने फॉर्मेट को ऐसे कि हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, देन वी गोना टॉक अबाउट द कंपनी द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर्स How it started, USP और जो इनसाइट हमारे पास अवेलेबल है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको बताएंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, मैं इतने कहूँगा कि मैं आ चुका हूँ, आप लोग जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजना 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइफ।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है, ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%, जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रोमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज़ जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफ़ी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज़ हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज़ हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गाँव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज़ बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि गांव में इस टेक्नोलॉजी को अगर पहुंचा दिया और वहाँ के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहाँ के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहाँ पर भी ये चीज़ पहुँच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहाँ पर बताना चाहूँगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज़्यादा है, और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफ़ी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीज़न डेफिनेटली बताऊँगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफ़ी कुछ बदला हमारी ज़िंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर ये हो रहा था आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, हर चीज़ को आप एक डाउटफुल नज़र से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफ़ी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात। हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताए, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहाँ पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योर टैग। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइनजी, IDFI, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या, दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना बताया कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वैष्णव 107.8 एफएम के साथ फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टेक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट भी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस। RBI ने नई गाइडलाइंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस हैं वहाँ पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI एंड ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं, जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानव प्रश्न 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

0: Din tana na dirda tanu tana dere na din tana na dirda tanu tana dere na din tana na dirda tanu tana dere na din tana na dirda tanu tana dere na din tana na dirda tanu dirda tanu dirda tanu.
1: Welcome back. मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी है और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पर आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। Tier 2 and Tier 3 जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है, और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो हैं वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

0: बिना किसी देरी के शो को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट टुडेज कंपनी. सो द नेम ऑफ दिस कंपनी इज फ्रियो, FREO. इमेजिन करिए आप एक ऐसे बैंक को जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, जहां पर लंबी लाइन नहीं लगती, जहां पर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क नहीं होता, सिंपली आपके स्मार्टफोन में रहता है, जब आप चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं. वेल एग्जैक्टली दैट इज द कंपनी, दैट इज द आइडिया बिहाइंड फ्रियो. फ्रियो एक इंडियन फिनटेक कंपनी है जो अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करती है, वी आर क्रेडिट लेड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म. यहां पर आपको डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ऑफर की जाती है. ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन. डिजिटल सेविंग्स का आपको सोल्यूशन यहां पर मिलता है, पर्सनल क्रेडिट लाइन यहां पर आपको मिलता है, क्रेडिट कार्ड्स आपको मिलते हैं, क्रेडिट स्कोर ट्रैकिंग आपको मिलता है, क्रेडिट ऑन UPI भी आपको मिलता है, एंड इसके अलावा और इनके प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मनी लैंड करने में हेल्प करते हैं. सो यहां पर एक जो मिशन ये लेकर के चल रहे हैं वो ये है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ईजी बनाना, फास्ट बनाना, ज्यादा एक्सेसिबल बनाना, और इंडिया का जो डिजिटल पॉपुलेशन जिसमें ग्रोथ हो रही है उसमें अपना योगदान देना. Now, how exactly it started? So the story of Frio actually started with another fintech product called MoneyTap. देखिए 2015-16 में इंडिया ने बहुत रैपिड एक ग्रोथ देखी, रैपिडली हम लोग चेंज हुए, क्योंकि स्मार्टफोन अफोर्डेबल हो गए थे, इंटरनेट हमारे फोन में आ चुका था, डिजिटल पेमेंट जो है वो ग्रो कर रही थी, बट देर वॉज अ गैप कि पर्सनल लोन अभी भी स्लो था, स्ट्रेसफुल था. तो बहुत सारे जो एग्जैक्टली यंग प्रोफेशनल थे उस टाइम पे, उन्हें ट्रेडिशनल मेथड समझ नहीं आते थे कि बैंक जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अप्रूवल का वेट करो, उसके बाद लोन अमाउंट जो है वो फिक्स करो. तो यहाँ पर फाउंडर्स को समझ में आया कि अगर किसी ने 2 लाख रुपए का लोन लेना है, ठीक है, एंड उसके लिए उसको इतना पेपर वर्क नहीं करना है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर किसी को 20,000 रुपए का लोन लेना है, ठीक है, तो मानकर चलो यार कितना अमाउंट है, बट उसके लिए 1 लाख रुपए क्यों ले वो, क्यों कोई मिनिमम लिमिट हो, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, ठीक है. उसके बाद फिर इन्होंने क्रेडिट लाइन के लिए एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, मनी अवेलेबल थी व्हेनेवर नीडेड, ठीक है, जहां पर कस्टमर्स उसको यूज कर सकते थे जब भी उन्हें जरूरत थी. उस प्लेटफॉर्म का नाम था MoneyTap. इसको बनाने के बाद डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म इसको बना दिया, टीम ने अपने विजन को एक्सपेंड किया. दे रियलाइज्ड कि पीपल डोंट जस्ट नीड लोन्स, दे नीड एन एंटायर डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जहां पर 2021 में MoneyTap को इन्होंने इवॉल्व करके फ्रियो बना दिया. सो बेसिकली फ्रियो स्टार्ट हुई तो नहीं बोलूंगा, बट ट्रांसफॉर्म हुई थी MoneyTap इनटू फ्रियो इन 2021. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट, दैट इज द स्टोरी बिहाइंड इट. नाउ लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव.
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए. डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा. क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है. ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं.

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंदीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतर्त यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं।

वेलकम बैक, आई एम आरजे सागर, शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, एंड आई एम जस्ट होपिंग आपको मजा आ रहा है यहां तक। जितनी केस स्टडी आपको बताई है, जितनी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया है, कंपनी के बारे में आपको बताया है, आपको समझ भी आई है और आपको अच्छा भी लग रहा है। बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। पहला नाम कुणाल वर्मा। कुणाल वर्मा इज द को फाउंडर एंड CEO ऑफ फ्रियो। बिफोर बिल्डिंग फ्रियो उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट बिल्डिंग में, कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेस में। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या जो कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके लोगों को दे सकते हैं ताकि उनके लिए यूज करना आसान हो। हिज बिगेस्ट बिलीफ इज टेक्नोलॉजी शुड नॉट जस्ट डिजिटाइज बैंकिंग, इट शुड रीडिजाइन द एक्सपीरियंस, एंड एग्जैक्टली वही ये कंपनी कर रही है। दूसरा नाम आता है अनुज कैकर। अनुज कैकर जो हैं वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एलुमनाई हैं। इनके करियर की अगर बात करें, बिफोर एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने बिजनेस में, मार्केटिंग में, स्केलिंग करने में कस्टमर प्रोडक्ट्स को, उसमें अपना जो है एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया है। ISB में भी इनको रिकॉग्नाइज किया गया था एज एन ISB यंग लीडर फॉर लीडरशिप कंट्रीब्यूशन। मतलब कॉलेज टाइम से ही लीडरशिप क्वालिटी थी और इनके कॉलेज ने ही उसको आइडेंटिफाई किया, इनको रिकॉग्नाइज किया, इनको रिवॉर्ड भी मिला था उसको लेकर के। सो इनका फोकस फ्रियो में रहा है कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस ग्रोथ एंड मेकिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट सिंपलर। तीसरा नाम आता है बाला पार्थसारथी। बाला जो हैं वो एकदम आप कह सकते हैं टेक की दुनिया से आते हैं, स्टार्टअप एक्सपीरियंस से आते हैं। सो बिफोर फ्रियो ही वॉज ऑलरेडी डूइंग रियली वेल, ही वॉज ऑलरेडी नोन इन इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सपर्टीज जो इनकी थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, टेक प्लेटफॉर्म्स में, डिजिटल बिजनेसेस को स्केल कैसे करना है। तो यहां पर ये तीन लोग मिले तब जाकर के कंपनी स्टार्ट हुई। सो कुणाल लेकर के आए प्रोडक्ट एंड बिजनेस विजन, अनुज लेकर के आए कंज्यूमर स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ, एंड बाला लेकर के आए टेक एक्सपर्टीज। तो तीन अलग अलग डोमेन्स के लोग आकर के मिलते हैं एक जगह पर सेम विजन के साथ, तब जाकर के कहीं कोई कंपनी ऐसा कुछ कर पाती है, बिकॉज यू कांट डू एवरीथिंग एट वंस। सो यू नीड अ प्रॉपर टीम, यू नीड पीपल जो आपकी तरह सोचते हो, आपकी तरह देखते हो। That's how it started. Okay, got music, break us. After that, show ko aage badhayenge. Stay tuned, feel good, feel live.

वंस अगेन वेलकम बैक। अगर कोई फीडबैक है तो 8010781078 पर जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स टेक द शो अहेड। सो व्हाट एग्जैक्टली वाज़ द प्रॉब्लम दैट फ्रियो वाज़ ट्राइंग टू सॉल्व एट दैट टाइम? तो मैंने बताया कि फाउंडर्स को यहाँ पर एक मेजर गैप नजर में आया कि ट्रेडिशनल बैंकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। अभी भी बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगी सेम प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड है वो बहुत। और जो यंग इंडियंस हैं उनके पास भैया अब फोन आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, स्पीड की आदत लग चुकी है, तो उन्हें चाहिए स्पीड एंड कन्वीनियंस। दूसरा है क्रेडिट एक्सेस जो है बहुत लिमिटेड था। बहुत सारे ऐसे भी वर्किंग इंडियंस थे जिनके पास एक्सेस ही नहीं था, फ्लेक्सिबल लोन्स का ऑप्शन ही नहीं था मार्केट में। 2 लाख रुपए लो, 1 लाख रुपए लो, अगर किसी को 20,000 रुपए या 15,000 की जरूरत है, सॉरी कोई ऑप्शन नहीं है। एंड तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत स्कैटर्ड थे। ठीक है, एक ऐप आपको बैंकिंग बता रही है, दूसरी ऐप आपको लोन के बारे में बात कर रही है, तीसरी ऐप आपको कार्ड के बारे में बता रही है। इन्होंने क्या किया, सिंपल उसको कंपाइल करके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के आए। तो यहाँ पर बिजनेस मॉडल भी एग्जैक्टली इसी एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करता है। पहला है इनका लैंडिंग पार्टनरशिप, ये जो है काफ़ी सारे रेगुलेटेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ काम करते हैं ताकि लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड कर पाए, जो बैंक्स हैं प्रॉपर रेगुलेटेड। उसके बाद सेकंड आता है डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कस्टमर जो हैं वो फ्रियो ऐप इकोसिस्टम को यूज़ करते हैं फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड तीसरा आता है टेक प्लस डाटा, कंपनी जो है डिजिटल प्रोसेस जो है वो यूज़ करती है टू इम्प्रूव रिस्क असेसमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड फास्टर अप्रूवल्स, ताकि किसी को वेट ना करना पड़े। वेट नहीं करना पड़ेगा, स्मूथ हो जाएगा सर, तो बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। साथ साथ ये रिस्क भी यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं अपने टेक की मदद से कि सामने वाला इंसान जिसको हम लोन दे रहे हैं कि क्या उसको रीपे कर पाएगा या नहीं। हालांकि ट्रेडिशनली ये जो चीज़ थी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसमें बहुत सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, ऑफलाइन लोग जाते थे घरों में जा जाके वेरीफाई करते थे, तब जाकर के लोन्स कहीं अप्रूव हुआ करते थे। बट यहाँ पर इस कंपनी ने इस एक प्रॉब्लम को भी फिक्स किया। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए हैं। लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। एंड वी गोना टॉक अबाउट यूएसपीज। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और आप लोग जुड़े हुए रेडियो मधुबन 107.8 के साथ। फ्री हमारी आज की कंपनी है, उसकी यूएसपीज की बात करेंगे। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, पहला है क्रेडिट फर्स्ट नियो बैंक अप्रोच। बहुत सारी जो फिनटेक एप्लीकेशन या कंपनीज आपको नजर आती हैं वो पेमेंट से स्टार्ट होती हैं, बट इस कंपनी ने क्रेडिट से अपना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो, किसी को मनी का एक्सेस दे रहे हो आप लोगों को। ये बहुत कुछ डिफरेंशिएट करता है, कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताता है। दूसरा आता है फ्लेक्सिबल क्रेडिट। सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग कस्टमर्स इनटू ट्रेडिशनल लोन्स, तो यहां पर इन्होंने कस्टमर को एक्सेस दिया, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट जो आपको चाहिए वो आप ले लीजिए, और जब आप पे कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपनी यूजेज के हिसाब से, आप उसको पे कर दीजिएगा। देन डिजिटल एक्सपीरियंस, यहां पर गोल था बैंकिंग शुड फील लाइक यूजिंग अ मॉडर्न ऐप, नॉट डीलिंग विद पेपर वर्क एंड यू नो गोइंग थ्रू दोस क्यूज एंड लाइन एंड फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स दे आर जस्ट वेटिंग। नेक्स्ट आता है यहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर दे दिए, सेविंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट इकोसिस्टम, तो सब कुछ एक जगह पर मिल गया। तो ये मैंने पहले भी बोला था कि यंगस्टर्स को चाहिए स्पीड एंड कन्वीनियंस, दोनों चीजें इन्होंने मिला करके दे दी। और याद रखिएगा कस्टमर्स अब उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर अब क्विक कॉमर्स आ चुका है, 10 मिनट 15 मिनट में आपके घर पे सब कुछ पहुंच रहा है, और लोग उसको मतलब बैक टू बैक यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो मंगवा रहे हैं। ये दिखाता है हमारे एटीट्यूड को, अगर उसकी आदत लग गई है। फॉर एग्जांपल अगर वो ग्रॉसरी के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो 10 मिनट में आ रही है, बाकी चीज़ों के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो 10 मिनट में आ रही है, तो वो लोन के लिए एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन वेट नहीं करना चाहेगा, करना पड़ेगा अगर ऑप्शन नहीं है तो। बट अगर कोई इंसान आता है और आगे बोलता है कि आपको 2 दिन में लोन अप्रूव हो जाएगा, तो वो उसकी तरफ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि स्पीड की आदत हमें लग चुकी है। कस्टमर शिफ्ट हो रहा है, कस्टमर चेंज हो रहा है, हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी एज वेल, कि हम बहुत इवॉल्व हो रहे हैं अच्छे से, बहुत डिजिटल वर्ल्ड में हमने जो कदम रखा है बहुत तेजी से हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है किसी स्टार्टअप के लिए। सो या दैट इज, फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द की ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ फ्रियो। पहला है राइजिंग ऑफ यू नो इंटरनेट, राइज ऑफ डिजिटल इंडिया। करोड़ों लोग हैं भैया जो UPI के साथ कंफर्टेबल हो गए, स्मार्टफोन्स के साथ कंफर्टेबल हो गए, डिजिटल KYC होने लगी। तो सिंपल सा फिनोमिना है ऑलरेडी, जहाँ पर लोग हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग हैं, जहाँ पर करोड़ों लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको वहाँ पर जाकर के अपनी दुकान लगानी है, और ऐसी दुकान लगानी है जिनकी उसको ज़रूरत है, कस्टमर बेस को। सिंपल। सेकंड आता है यंग वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया के पास करोड़ों लोग हैं जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको फ्लेक्सिबल टूल्स चाहिए, स्पीड चाहिए, एक्सेसिबिलिटी चाहिए। ये कंपनी को समझ में आ गया एंड दे स्टार्टेड इट। तीसरा आता है अल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल्स। जो ट्रेडिशनल क्रेडिट इवैल्यूएशन होता था, वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता था, बट टेक की मदद से फिनटेक कंपनीज यूजर्स को डिफरेंटली समझते हैं, किसी एक ब्रैकेट में नहीं डालते हैं, एंड उसके बाद उनका पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है। मतलब बड़े बड़े बैंक्स के साथ पार्टनरशिप है जिनकी मदद से ये क्रेडिट दे पाते हैं। सो दीज आर द की ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ रियो, राइज ऑफ डिजिटल इंडिया, यंग वर्किंग पॉपुलेशन, ऑल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल्स एंड पार्टनरशिप्स। सही टाइम पर सही चीज इन्होंने स्टार्ट कर दी। सो कभी बैंकिंग का मतलब होता था भैया एक बिल्डिंग, एक काउंटर, एक लंबी सी लाइन, लेकिन नए भारत में बैंकिंग का एक्सपीरियंस बन रहा है। लोगों को एक्सपीरियंस बेस्ड बैंकिंग पसंद है अब। और फ्रियो की कहानी में बताती है कि स्टार्टअप सिर्फ नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, वो पुरानी प्रॉब्लम्स को नए नजरिए से देखते हैं। तीन फाउंडर्स ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर दुनिया डिजिटल हो रही है तो बैंकिंग अभी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है बॉस? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, फ्रियो। अब आज की केस स्टडी आपको कैसी लगी मुझे बताइए 8010781078 पर। फिलहाल वक्त है शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का, फिर मुलाकात होगी। उम्मीद कर रहा हूँ केस स्टडी पसंद आई होगी। कोई फीडबैक है तो 8010781078 ये हमारा नंबर है, बताइए। नाउ दिस इज द टाइम टू साइन ऑफ। नाउ योर दोस्त एंड होस्ट आर दिस सागर साइनिंग ऑफ।
1: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जिसे सपोर्ट किया है SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। हर हफ्ते एक हेल्थ एक्सपर्ट देते हैं आपको बहुत सी जानकारी आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। लेकिन आज जिस प्रॉब्लम या फिर जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, वो प्रॉब्लम पहले ज्यादा नहीं होती थी लेकिन अब बहुत कॉमन होती जा रही है। इसका क्या रीजन है और क्या है इसका सोल्यूशन, ये हम जानेंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। लेकिन पहले जानते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है किडनी रिलेटेड। जी हाँ, किडनी, जो कि हर व्यक्ति के पास दो होती हैं, लेकिन इनका रोल क्या होता है बॉडी में और किस तरीके से आजकल किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है या फिर बढ़ती हुई और प्रॉब्लम्स जो इससे कनेक्टेड होती हैं, ऐसे कुछ सवाल और कुछ सवालों के जवाब आज देने वाले हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष महाजन, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। बहुत वर्षों का अनुभव है इनको विभिन्न अस्पतालों और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने का, जो किडनी से जुड़ी होती हैं। सो डॉक्टर मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव।
3: नमस्कार, थैंक यू सो मच।
2: डॉक्टर मनीष, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछना चाहती हूँ, पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करें, उससे पहले किडनी के फंक्शन के बारे में जानना चाहेंगे साधारण शब्दों में, कि किडनी हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है।
3: हाँ, मैं इसको सामान्य वर्ड में बोलूँगा कि किडनी जो हमारा है बॉडी में, जितने भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया होता है, चाहे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड यूरिया क्रिएटिनिन, इन सबको बॉडी से निकालने का काम, फिल्टर करने का काम हमारा किडनी करता है। इसके सिवा किडनी जो करता है, हम तो ये सोचते हैं कि बस वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ ये हमारा BP भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है और विटामिन डी के एक्टिवेशन में भी ये हेल्प करता है। और किडनी, बहुत कम लोग जानते होंगे कि किडनी में एरिथ्रोपोइटिन बनता है, जो कि हमारा हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। तो एनीमिया के भी पेशेंट में किडनी का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन बढ़ता है, जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ाता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में।
2: जी, यानी अगर किसी को एनीमिया है या किसी को हाई BP है तो किडनी पे इफेक्ट होना नॉर्मल है।
3: जी, मैं ये नहीं बोलूँगा, अगर किडनी में कोई कॉम्प्रोमाइज, अगर कुछ हो गया, किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो पेशेंट को एनीमिया होने के पूरे चांसेस
2: हो सकते हैं। यानी किडनी जो है वो ओवरऑल पूरी बॉडी से कनेक्टेड है और आपका BP, आपका ब्लड भी इससे जुड़ा हुआ है। सो अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या फिर एनीमिक हैं, तो कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो उसकी वजह से एनीमिया है या फिर एनीमिया की वजह से किडनी, यानी इंटर रिलेटेड हैं ये दोनों चीज़ें। सो डॉक्टर साहब, हम किडनी की बात कर रहे हैं और किडनी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमारे पास अक्सर हमारे शोज में आते रहते हैं, लोगों के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अचानक से ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। आज से 20 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन आज के समय में किडनी रिलेटेड ट्रांसप्लांट्स, किडनी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसका रीजन क्या है? खासतौर पर से इंडिया में क्या ये बहुत कॉमन होता जा रहा है?
3: जी बिल्कुल, मैं एक फिगर बताना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो मोर देन 800 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन को किडनी है, आउट ऑफ 136 मिलियन पॉपुलेशन प्री डायबिटिक है, जो कि डायबिटीज होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर इंडिया के संदर्भ में अगर आप देखते हैं, तो दे आर मोर देन 100 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन हु आर डायबिटिक, और बहुत ऐसे पॉपुलेशन इंडिया में हैं जो कि बीपी है, उनको पता भी नहीं होता, और काफ़ी लोगों को डायबिटीज भी काफ़ी लेट से पता चलता है। एक तो ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिसीज है, दूसरी चीज जिसके सिवा स्मोकिंग, मोटापा और अच्छा खानपान नहीं खाना और अल्टरनेटिव मेडिकेशन, इन सब के कारण भी किडनी की डिजीज काफ़ी हो रहे हैं। और स्पेशली जैसा कि मैंने बताया, इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो अगर शुगर नहीं कंट्रोल होता है तो इनमें किडनी के प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं अगर इंडिया के संदर्भ में अगर मैं परसेंटेज वाइज में बोलता हूँ, तो वन आउट ऑफ सेवन लोगों में CKD होता है, 15-20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को सीकेडी है। तो ये हमें बताता है कि ये सीकेडी की जो बर्डन है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, चाहे कोई भी कारण हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, या डिसलिपिडीमिया हो, या शुगर नहीं कंट्रोल हो, या बीपी नहीं कंट्रोल हो, या खान पान से रिलेटेड, या मोटापा हो, तो ये सब सारे कुछ अल्टरनेटिव मेडिकेशन जैसे मैंने बताया, तो अगर इन सब सबको अगर देख लें तो इंडिया में इसका बर्डन काफ़ी ज़्यादा है।
2: इंडिया में जहाँ हम डायबिटीज़ की बात करते हैं वहाँ किडनी की बात करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डायबिटीज़ किडनी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है या हाई ब्लड प्रेशर कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन अगर आपके मन में प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। 8010781078 पर वक्त है एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और बातें चल रही हैं आज किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशन के बारे में। किडनी हर इंसान के पास होती है, लेकिन उसका ख्याल रखना भी उसी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आज हमारे बीच लेकर आए हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष महाजन, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर महाजन, हम बहुत सी बातें किडनी से जुड़ी हुई करें, लेकिन अभी आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया। अब डायबिटीज़ भी अलग अलग प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सो यहाँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ज़्यादा जो खतरा है वो कौन से टाइप की डायबिटीज से है? क्योंकि टाइप 2 की जो डायबिटीज़ होती है जनरली लेटर स्टेज में या बड़े होने पर पता चलती हैं, और तब तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ऑलरेडी शरीर में आ चुकी होती हैं।
1: डायबिटीज़ जो है वो साइलेंट किलर मैं बोलता हूँ इसको, बहुत साइलेंट है। और वन ऑफ जैसे कि मैंने बताया डायबिटीज़ जो है वो इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल, तो वन आउट ऑफ 3 डायबिटिक पेशेंट में सीकेडी होता है। तो इसका अर्ली मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग और इस पर नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली इंडियन पॉपुलेशन में वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास तब जाते हैं जब इनको बहुत एडवांस स्टेज का सीकेडी प्रॉब्लम हो गया होता है। जैसे कि आपने बताया टाइप 1 में जब डायग्नोसिस टाइप 1 डायबिटीज़ का जब होता है, जनरली बच्चों में ही पाया जाता है ज़्यादा, जिसमें इंसुलिन नहीं बन पाता, बाहर से देना पड़ता है बच्चों को। इसमें डायग्नोसिस होने के 5 साल के बाद इसकी मॉनिटरिंग हम स्टार्ट कर देते हैं कि किडनी में कोई असर तो नहीं आ रहा। कॉमन सी बात है कि बच्चे हैं, इंसुलिन इस्तेमाल कभी होगा कभी नहीं होगा। और 67% जो पॉपुलेशन होता है, चाहे वो टाइप 1 या टाइप 2 हो, इनके डायबिटीज नहीं कंट्रोल रहते। और टाइप 2 डायबिटीज जिनको होता है, जैसे ही डायग्नोसिस होता है तो साल में एक बार मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी होता है। एक इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। इनके जो फर्स्ट अर्ली साइंस जो आते हैं वो यूरिन में प्रोटीन लीकेज होना। तो और लेकिन जब प्रोटीन की लीकेज जब स्टार्ट होती है, तो अगर आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो आपका सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल आता है। तो जनरली सारे पब्लिक ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो किडनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जैसे ही आपका किडनी में किडनी के कारण डायबिटीज़ के कारण यूरिन में प्रोटीन अगर आने लगा, तो मतलब आप ऑलरेडी सीकेडी स्टेज 3 में आप पहुँच गए होते हैं। और ये आपको इट इज़ लाइक एन आइसबर्ग, जैसे कि मैंने बताया 1 in 3 पेशेंट ऑफ डायबिटीज दे ऑलरेडी हैव इट बट दे डू नॉट नो अबाउट इट। उनको पता नहीं होता कि ऑलरेडी सीकेडी स्टेज में, बाय द टाइम जब तक सीरम क्रिएटिनिन जो नॉर्मल 1.0 उसको माने 1.0 से 1.1 जब होता है, तब तक 50% से ज़्यादा उनके किडनी के फंक्शन ऑलरेडी
0: खराब हो चुके होते हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब क्या यूरिन कल्चर कराना या यूरिन रूटीन कराना, इस तरीके के टेस्ट जरूरी होते हैं साथ के साथ?
1: हाँ जी बिल्कुल, एनुअल जब आप जांच कराए तो यूरिन रूटीन जरूर कराए। इसमें आपको पता चलता है कि प्रोटीन लीकेज हो रहा है नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, साल में एक बार यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो जरूर कराएं। अगर आपके यूरिन से प्रोटीन अगर निकल रहा है तो आप समझ जाएं कि किडनी में डायबिटीज के कारण इसके असर आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप उस वक्त तुरंत किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को कंट्रोल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हम जानते हैं डायबिटीज तो रूट कॉज तो डायबिटीज है, अगर आप डायबिटीज को स्टार्टिंग से ही कंट्रोल रखते हैं तो इसको हम प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं और इससे काफी हद तक बचा भी जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, यानी समय पर जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप किडनी को ठीक रखना चाहते हैं तो साल में एक बार अपने कुछ बेसिक टेस्ट करा लीजिए किडनी से रिलेटेड, और अगर आपको हाई बीपी या फिर डायबिटीज है तो ये टेस्ट कराने बेहद जरूरी हो जाते हैं। साल में एक बार आप काफी हद तक अपनी किडनी को बचा के रख सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं किडनी की प्रॉब्लम के। जैसे टेस्ट में तो पता चल गया, लेकिन क्या टेस्ट के अलावा जैसे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो हमें उन चेंजेस को बिल्कुल भी नकारना नहीं चाहिए। जनरली लोग उन्हें अवॉइड करते रहते हैं, और स्पेशली मैंने देखा फीमेल्स बहुत अवॉइड करती हैं कि अगर ये कोई प्रॉब्लम हो रही है तो चलो थोड़े दिन बाद चेक कराएंगे, तब तक कहानी बहुत बिगड़ जाती है।
1: अर्ली वार्निंग साइन मैं बोलूँगा, अगर डायबिटीज़ है या नहीं है दोनों में मैं बात करता हूँ, एक तो थकावट होना, घबराहट आना, पेशाब ज़्यादा है पेशाब कम होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, पेशाब में झाग आना, मोटापा, और पैरों में सूजन, चेहरे में सूजन, भूख कम लगना, ये सब सारे अर्ली वार्निंग साइंस हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको एक दो अगर कुछ आ रहा है तो आप अपनी जांच करें कि आप डायबिटिक भी हो, नेवन हो, और डायबिटिक नहीं भी है तो शायद आपको किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये जेनेटिक से भी होता है, लाइफस्टाइल से भी होता है। जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनको भी होता है, अगर बीपी नहीं कंट्रोल है तो उनको भी हो सकता है।
0: जी, यानी मतलब ये जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर पैरों में स्वेलिंग आ रही है, फेस पे स्वेलिंग आ रही है, थकावट बहुत रह रही है, सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और किडनी के मामले में तो जनरली पैरों की स्वेलिंग बहुत बड़ा एक वार्निंग साइन होती है जिसको आपको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। बहुत सारे लोग और एक्सपर्ट्स कहते हैं पानी बहुत पीना चाहिए। ये सवाल बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम्स में भी पूछते हैं कि हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी एकदम ठीक रह सके। ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं जिसे किडनी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डॉक्टर मनीष महाजन के साथ, जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।
1: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है नॉलेज पार्टनर SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हम बात करें हैं किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में, किडनी प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन। एक सवाल जो बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं, हमें पानी कितना पीना चाहिए? या फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा पानी पी लो, शायद इस वजह से प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और पानी एक मैजिकल लिक्विड भी है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक भी कर सकता है। बट आखिर ये पानी पीना कितना चाहिए, ये जान रहे हैं आज हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष महाजन से, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूफ्रोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर महाजन, पानी की बात हम कर रहे हैं। पानी जो है वो एक अमृत है। पानी ना मिले तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कम पानी पीने से BP बढ़ जाता है या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन पानी कितना पीना चाहिए और क्या बहुत ज़्यादा पानी जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है?
2: दीक्षा जी, आपने बहुत अच्छा आपने सवाल किया और बहुत लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। और किडनी हमारा बहुत स्ट्रांग ऑर्गन होता है और इनकी कैपेसिटी 800 लीटर ऑफ ब्लड को फिल्टर करने की होती है। और रही बात कि आप पानी कितना पी सकते हैं, तो मैं मेल और फीमेल को कैटेगराइज करके बोलूँगा जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए जो किडनी को जिंदा रहने के लिए, किडनी को एक अच्छे से काम करने के लिए, फीमेल को स्पेशली 200 ml का गिलास, कम से कम 12 गिलास पीना चाहिए, जो रफली 2.5 लीटर होता है मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ। और मेल को 200 ml का गिलास कम से कम 10 पीना चाहिए, मिनिमम 2 लीटर ऑफ गिलास। उस चाय को भी मैं पानी मानता हूँ, दूध को भी पानी मानता हूँ, और जो सब्जी आप खाते हैं वो भी पानी में मैं काउंट करता हूँ। अब दूसरा आपका ये रहा कि कितना ज़्यादा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलेस कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। जैसे कि हम किडनी डिजीज़ की बात करते हैं, अगर इस्टेब्लिश किडनी डिजीज़ है, आपका सीरम क्रिएटिनिन कितना, आपका EGFR कितना काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम पानी का मात्रा भी डिसाइड करते हैं। अगर आपका सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है, किडनी बढ़िया फंक्शन कर रहा है, तो मिनिमम अमाउंट जो बताया उतना या उससे ज़्यादा आप जितना पिए उतना बढ़िया होता है, मिनिमम है। लेकिन अगर किडनी आपकी प्रॉब्लम है, अगर सूजन आ रहा है, तो आपको पानी का मात्रा कम करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपका किडनी की काम करने का परसेंटेज कितना है, उसके हिसाब से पेशेंट वाइज पेशेंट या इंडिविजुअल वाइज इंडिविजुअल हम डिसाइड करते हैं कि पानी का इंटेक कितना होना चाहिए।
1: पानी का इंटेक आपको फॉर फीमेल्स 2.5 लीटर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और मेल्स के लिए 2 लीटर मिनिमम है अगर आप एकदम ठीक हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में और बॉडी को फिट रखने में, लेकिन जब किडनी प्रॉब्लम होने लगती है, किडनी को आपको कंट्रोल करना है, तो प्रोटीन का इंटेक कम होता है। तो ऐसे में जो डायबिटिक पेशेंट है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि प्रोटीन कितना लें, कितना नहीं लें और कितना अवॉइड करें।
2: अब अगर इसको मैं दो, जैसे कि आपने बताया, इसको मैं दो तरीके में बांटता हूँ। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट है या नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट है या डायबिटिक जिनको नहीं है, अगर डायबिटिक अगर आपको नहीं है तो आप 1.5 टू 2 ग्राम या मिनिमम 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से पर डे आप प्रोटीन का इंटेक ले सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, जैसे कि मैंने बताया, अगर किडनी में असर आ गया तो प्रोटीन लीकेज अगर होने लगता है, तो 0.6 टू 0.8 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आप उससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटीन का लीकेज होता, जब जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे उतना ज़्यादा प्रोटीन का लीकेज होता है, जितना ज़्यादा प्रोटीन का लीकेज होता है आपकी किडनी खराब उतनी फास्ट तरीके से होता है, प्रोग्रेशन जो डायबिटिक किडनी डिजीज को वो ज्यादा हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये पेशेंट वाइज पेशेंट या इंडिविजुअल वाइज इंडिविजुअल हम डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन का इंटेक कितना होना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, BP नहीं है, तो बिल्कुल आप प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं, मिनिमम 1.5 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और चीज आपने थोड़ी शुरुआत में कही थी और ये बहुत कॉमनली लोगों में देखा भी गया है, पेन किलर्स का इस्तेमाल। अक्सर आफ्टर 60 लोगों के घुटने में दर्द होता है और वो नी रिप्लेसमेंट कराने की जगह पेन किलर्स खाना शुरू कर देते हैं कि नी रिप्लेसमेंट से उन्हें डर लगता है। अब ये पेन किलर्स जो हैं, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पेशेंट अगर नी रिप्लेसमेंट समय पे करा ले तो वो किडनी फेलियर से बच जाता है। उसका डायरेक्ट कनेक्शन पेन किलर से होता है। सो ये पेन किलर क्या इतने भयावह होते हैं कि लोगों की किडनी तक फेल हो जाती है, और किस प्रोपोर्शन में लेना चाहिए?
2: देखिए, मैं पेन किलर्स के बहुत अगेंस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट मैं बोलूँगा कि एक्सेस ऑफ एनी मेडिकेशन टेकन इरेशनली बिना डॉक्टर के एडवाइस के बिना अगर आप लेते हैं तो वो आपको हार्म पहुँचा सकता है। जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पेन किलर्स होते हैं, जैसे नेप्रोक्सिन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, नेमोसिलाइड्स हो गए, ये आपके किडनी में विपरीत असर करते हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेते। हालाँकि मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि जिन्होंने 10 दिन लिया उनके भी किडनी में असर आ गए। तो कोई भी पेन किलर लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। और आपको जैसे मैंने दो कॉम्प्लिकेशन जैसे बीपी है, अगर डायबिटीज है तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। कुछ सेफ पेन किलर्स भी होते हैं जैसे पारासीटामोल हो गए या अल्ट्रासेट हो गया, ये सब सेफ पेन किलर्स है। आप सेफ पेन किलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के इरेशनली घर में पेन किलर का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर है।
1: बिल्कुल, यानी पेन किलर्स का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें और डॉक्टरी सलाह से ही पेन किलर लें, खुद ब खुद जाकर मेडिकल स्टोर से पेन किलर्स ना खरीदें। बहुत सारी और भी बात, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं हूँ दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. और बातें चल रही हैं आपकी हेल्थ के बारे में. किडनी हेल्थ से जुड़ी कुछ खास इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष महाजन, जो कि कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. सो डॉक्टर महाजन, अब बात करते हैं बच्चों की हेल्थ के बारे में. क्या बच्चों में भी कोई किडनी डिजीज हो सकते हैं? जैसे बच्चा है 8-10 साल का बच्चा है, एकदम नॉर्मल है, क्या उसमें ये किडनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? और अगर हाँ तो क्या सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स को देखने चाहिए?
1: दीक्षा जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल करा. आपने तो 8-10 साल की बातें करी है, मैंने तो 6 महीने के बच्चे या 1 साल के बच्चे 2 साल के बच्चों में भी किडनी के प्रॉब्लम देखे हैं. एक कंडीशन होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जनरली बच्चों में काफ़ी पाया जाता है. और इसमें जो मेन जो साइंस जो देखने को मिलते हैं वो यूरिन में प्रोटीन का लीकेज होना, और काफ़ी ज़्यादा लीकेज होता है. अगर इसका समय पे डिटेक्शन और इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो और तो ये किडनी फेलियर की ओर ये बच्चे जा सकते हैं. तो और इनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है. और अर्ली जो साइन होते हैं बच्चों में, ये चेहरे पे सूजन आना, पैर में सूजन आना, ये आना, अगर किसी भी उम्र में बच्चे के जन्म होने के बाद अगर आप ऐसे कोई भी सिम्टम्स देखते हैं कि चेहरे में सूजन या पैर में सूजन अगर आ रहा है, पेशाब अगर करें उसमें झाग आ रहा है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं. जनरली इन तरह के जो पेशेंट होते हैं वो बच्चों के डॉक्टर के पास जल्दी भाग कर जाते हैं. हालांकि ये किडनी की प्रॉब्लम है, इसको नेफ्रोलॉजिस्ट इसका ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने तक चलता है. और बच्चों के जो माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं, जब तक वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुँचते हैं तब तक थोड़ा सा एडवांस हो गया होता है. और बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका समय पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, 6-7 साल 8 साल 9 साल ऐसा रहा, ट्रीटमेंट हुआ नहीं, अल्टीमेटली उनके किडनी फेलियर हो गया, वो डायलिसिस में आ जाते हैं. काफ़ी यंग बच्चों में देखा जाता है. हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये बच्चों में ये कंडीशन पाया जाता है. दूसरी चीज़, दीक्षा जी आपने टाइप 1 डायबिटीज की बात करी थी, जैसे कि मतलब टाइप 1 डायबिटीज में भी ये किडनी के डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. तीसरी चीज जो होते हैं, एक एक्वायर्ड कंडीशन, जेनेटिक्स की भी मैं बात करूं, एक एक्वायर्ड कंडीशन भी जैसे होता है ADPKD, एक्वायर्ड पॉलीसिस्टिक किडनी वगैरह, जो माँ बाप से बच्चों को हो जाता है, तो ये भी एक किडनी की एक कंडीशन है जो बच्चों में पाया जाता है, जो कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको पता चलता है. तो इसके भी ट्रीटमेंट, अगर सही समय पर इसकी मॉनिटरिंग या ट्रीटमेंट हो तो काफी हद तक इसको डिले किया जा सकता है, स्लो किया जा सकता है, और काफी हद तक एक सामान्य जीवन बच्चों को दिया जा सकता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी सिम्टम्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओवरऑल अगर आप देखें किडनी हेल्थ में, तो सिम्टम्स, पैरों में स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग, थकावट, ये सारी चीजें अगर आपको दिख रही हैं किसी में भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें. और अगर आपके फिजिशियन कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने को, तो जरूर जाएं, इसमें डिले ना करें. डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे, ऑल्दो रेयर है, किसी किसी की एक ही किडनी होती है. और ये मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रही थी क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिनकी सिर्फ एक सिंगल किडनी है, उनको पता भी नहीं था इतने सालों तक, कभी जाकर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और उनको पता चला. सो क्या एक किडनी से इजीली बाय बर्थ ऐसा कॉमन है? और अगर है तो क्या इससे जिंदगी आसानी से चल जाती है?
1: जी बिल्कुल, मैं इसमें कहना चाहूँगा दो कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिन्होंने 60 साल के बाद अल्ट्रासाउंड कराया, उनको पता चला एक किडनी है, उनको इससे पहले नहीं पता होता,
0: उसके बाद वो स्ट्रेस में आ जाता
1: है. तो इसका मतलब ये है कि 60 साल तक उन्होंने बहुत सामान्य जिंदगी जी है. कहने का मतलब अगर आपके पास एक किडनी है या 2 किडनी है, अगर सामान्य काम कर रहा है तो आप बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी सकते हैं, औरों की तरह जी सकते हैं. देखिए, और कुदरत का भी आपको मैं एक बात बताऊं, अगर किडनी खराब होता है तो दोनों होता है, आप एक रख लो या 2 रख लो, दोनों होते हैं खराब, एक नहीं होता, दोनों हो जाते हैं और पेशेंट किडनी फेलियर होता है और वो डायलिसिस में चला जाता है. तो अगर आपके पास एक किडनी बाय बर्थ है या एक किडनी बाद में भी अगर छोटा हो जाता, अगर एक किडनी बढ़िया काम करा, तब बिल्कुल सामान्य जिंदगी
0: जी सकते हैं. बिल्कुल, यानी सामान्य जिंदगी जी जा सकती है, बस आपको घबराना नहीं है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. बेसिक कोशिश ये होनी चाहिए कि ओवरऑल हेल्थ ठीक रहे तो किडनी भी ठीक रहती है. डाइट ठीक लेंगे, पानी ठीक से पियेंगे, तो आपकी बॉडी एकदम ठीक रिएक्ट करेगी. डॉक्टर साहब, चलते चलते थोड़ी सी बातें मैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में करना चाहूंगी. किडनी ट्रांसप्लांट कितना मुश्किल है, ये मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आजकल काफी होने लग गए हैं लेकिन फिर भी उसके बाद लोग सर्वाइव कई बार नहीं कर पाते। जैसे सतीश शाह, एक बहुत ही माने हुए एक्टर, किडनी ट्रांसप्लांट कराया था थोड़े टाइम पहले, लेकिन उसके 3-4 महीने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आई और नहीं बच पाए। सो ये कितना सक्सेसफुल है?
1: किडनी ट्रांसप्लांट अगर ढंग से पेशेंट का एवेल्युएट करके अगर हम करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप वगैरह मैचिंग है, काफ़ी कुछ मैचिंग है, तो उसमें रिजेक्शन के रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। और किडनी, जैसे कि मैं बताऊं, आप अपने घर में किसी से लेते हो तो ऑफकोर्स वो बाहर की चीज़ है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है। कोई भी चीज़ अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसको आपको संभाल के रखना होता है। 2-3 दवाइयाँ इसमें होती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, टैक्रोलियर माइक्रोफेनोलेट दवाइयाँ हम चलाते हैं, तो ये क्या करता है कि आपकी किडनी को आपकी एंटीबॉडी से बचा के रखता है। अगर दवाइयों में आप थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतते, समय पर नहीं खाते हैं, तो किडनी के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या, अगर किडनी ट्रांसप्लांट आपके हुए हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट आप खा रहे हैं किडनी को बचाने के लिए, तो ऑफकोर्स आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो हैं, सामान्य लोगों की तरह आप नहीं जी सकते। आपको मास्क पहनना और भीड़ ऐसे जगह से आप दूर रहें जहां से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर इन्फेक्शन वगैरह होता है तो किडनी में इसका विपरीत असर आता है। पहले हम पेशेंट को काफ़ी बोलते थे कि मास्क पहने और भीड़ से बच के रहें, तो पेशेंट पढ़े लिखे जो समझ जाते हैं इसकी वैल्यू, वो इसको फॉलो करते हैं और उनका ये किडनी ट्रांसप्लांट काफी लंबे समय तक चल जाता है। और जो पेशेंट इस बात को सीरियसली नहीं लेते तो उनके किडनी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट करती है। और कुदरत का करिश्मा देखिए, कोविड तक हम बोलते थे कोई मास्क नहीं पहनता था, अब तो मास्क पहनना ही अनिवार्य हो गया है। तो जो कोविड में जो प्रोटोकॉल में जो सावधानियां हम लोग बरतते थे, वही सावधानी आप बरते किडनी ट्रांसप्लांट के पास, तो इसके सक्सेस होने के चांसेस, और डॉक्टर से हर 3-6 महीने में मिलते रहे, समय पे दवाइयाँ खाएं, क्योंकि वो बाहर का गुर्दा है, आपका एंटीबॉडी जो है वो उसको पहचानता नहीं है। समय पे बस दवा खाएं, परहेज करें, भीड़ से दूर रहें, किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने का चाह आपको लगता चाहे उससे दूर रहें, और एक बैलेंस डाइट लें, पानी का मात्रा आप ठीक रखें, तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट बहुत हद तक सक्सेसफुल हो जाता है।
0: बिल्कुल। क्या डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी 2-3 महीने बाद किसी पेशेंट को रिएक्शंस हो सकते हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल, एक्यूट एंड जैसे कि मैंने बताया कि इसमें रिजेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं किसी के, हालांकि हर किसी को नहीं होता अगर वो मॉनिटरिंग में रहते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे बीके नेफ्रोपैथी इन्फेक्शन होते हैं, CMV का साइटोमेगलो वायरस का भी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी एंटीबॉडी मेडिएटेड भी रिजेक्शन हो सकते हैं, किसी किसी मरीज में हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, काफ़ी ये अनकॉमन है। अगर समय पर आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलते रहें तो इसका बचाव किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, सावधानी तो जो किडनी ट्रांसप्लांट किया है, डूज एंड डोंट्स उनको फॉलो करने ही होंगे।
0: जी, यानी इतना मेजर होता है ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस कि उसमें आप लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, चलते चलते कुछ टिप्स जो आप हमारे लिसनर्स और हमारे व्यूअर्स को देना चाहें।
1: टिप्स मैं ये बोलूंगा कि बाहर का खाना कम खाएं, जंक फूड कम खाएं, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें, और डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग करते रहें, क्योंकि समय पर अगर डायबिटीज़ आप डिटेक्ट कर लेते हैं या BP डिटेक्ट कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक अपनी किडनी के प्रोग्रेशन को भी रोक देते हैं। और एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज करें, स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बंद कर दें, कोशिश करें, अल्कोहल का मात्रा कम कर दें या बंद कर दें, और कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह अगर कुछ हाई रहता है तो उसको भी कंट्रोल रखें। तो ये डूज एंड डोंट्स अगर आप करते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रकृति से जुड़े रहें, हरी सब्जियां खाएं, जितना प्रकृति से जुड़ते हैं उतनी आपकी आयु लंबी होती है। प्रकृति से आप जितना दूर जाते हैं उतने कॉम्प्लिकेशन आपको होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, BP हो जाते हैं, और किडनी की भी प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है।
0: जी बिल्कुल, यानी नेचुरल चीज़ों के जितना पास रहेंगे उतना सेफ रहेंगे हमेशा। डॉक्टर महाजन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में और बहुत सारी बातें आपने बताई। उम्मीद है जो हमारे लिसनर्स और जो व्यूअर्स ने सुना देखा वो डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे।
1: धन्यवाद दीक्षा जी।
0: बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं प्रोग्राम ऑल इज़ वेल में। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है और आप ये पॉडकास्ट किसी के साथ शेयर करना चाहें तो हमारी ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या iOS स्टोर से। पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर RG दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर मनीष महाजन के साथ ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रोग्राम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण रील्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव. दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ.

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
2: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दूं तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
3: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
4: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय रंगमंच और अभिनय जगत की एक बेहद सम्मानित हस्ती, जिनका नाम है राम जीवाली। राम जीवाली सर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से अभिनय में डिप्लोमा प्राप्त किया और आज वहीं एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने अपने थिएटर ग्रुप थिएटर वाला के माध्यम से अनेक नाटकों का निर्देशन किया है, कई चर्चित नाटक भी लिखे हैं और भारतीय शास्त्रीय रंगमंच को एक नई पहचान देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको वर्ष 2011 में संगीत नाटक एकेडमी द्वारा यंग प्लेराइट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रेनाउंड थिएटर डायरेक्टर, playwright and teacher, he is also a talented actor who has appeared in films, web series and television projects such as Delhi Crime, Commando, Sahib Biwi aur Gangster 3 and recently The Kerala Story 2, where he portrayed the role of Neha's father. थिएटर के प्रति इनकी लगन, स्टूडेंट्स को दिया गया इनका मार्गदर्शन और कला के प्रति इनका समर्पण इनके एक कंप्लीट थिएटर पर्सनालिटी को बनाता है। आज हम इनके सफर, इनके अनुभवों और थिएटर से लेकर सिनेमा तक की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, प्लीज ज्वाइन मी इन गिविंग अ वेरी वार्म वेलकम टू एक्टर, प्ले राइट, डायरेक्टर, थिएटर मेंटर एंड एनएसडी प्रोफेसर श्री रामजी बाली जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
6: शुक्रिया बहुत बहुत।
5: तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई?
6: मेरे सफर की शुरुआत जहाँ तक मैं समझता हूँ रामलीला से हुई है। जब हम छोटे थे बचपन में, हमारे आसपास काफी रामलीलाएं होती थी
5: जी।
6: तो बहुत छोटे थे तो देखने जाते थे, थोड़े से बड़े हुए थोड़ी सी समझ डेवलप हुई तो फिर उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं समझता हूँ कि मेरे रंगमंच की शुरुआत वहीं से हुई
5: जी। मतलब आपका बचपन से ही रुझान एक्टिंग की तरफ ही था।
6: एक्टिंग की तरफ

0: रुझान था बचपन से ही, और सिनेमा देखते थे तो उससे ही प्रभावित थे, क्योंकि यहाँ का कोई फोक थिएटर तो हमने देखा नहीं था, तो और फोक थिएटर के नाम पे हमारे आसपास अगर कुछ हो रहा था तो वो रामलीला थी।
1: जी जी जी। तो कुछ ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था कि कोई मतलब एक्टिंग में हो या कोई ऐसी चीज में हो जिसके प्रति आपका थोड़ा और इंटरेस्ट आया और आपको लगा कि नहीं मुझे तो इसी में ही जाना है, या ये खुद एक मन से आया एक बच्चे का ये था भाव?
0: मुझे लगता है कि ये बच्चे के मन का भाव ही था जो आगे आया, और मेरे फैमिली में कोई ऐसे किसी की ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी कि किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से कोई जुड़ा हुआ हो, और मैं बहुत सिनेमा से बहुत मैं कहूँ प्रभावित था, बहुत इंस्पायर था। तो उन दिनों ये राजेश खन्ना और इन लोगों की फिल्में आराधना और ये टीवी पे आती थी और या चित्रहार आते थे, तो उसी से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे लगा।
1: जी। तो सर जैसे NSD तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा, और क्या ये आपका कुछ बचपन का ही सपना था कि आपने NSD जाना है, या धीरे धीरे बड़े होते गए तो पता चला इन सब चीजों के बारे में?
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को कुछ ऐसा मालूम नहीं था कि एक्टिंग की भी कोई ट्रेनिंग होती है। बचपन में तो रामलीला करते रहे और एक्टिंग का मन में जैसे जैसे रामलीला की बड़ी बड़े लोगों के साथ काम किया तो लगा कि इसमें बहुत मजा सा आता है, कुछ ये अलग चीज है।
1: जी।
0: अच्छा मैं गा नहीं सकता था, मुझे डांस नहीं आता था, तो लगता ये मैं कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस का अंदर कहीं रहा होगा। और मैं स्कूल में बहुत एक्टिव था, स्कूल्स में छोटी छोटी स्किट्स होती थी तो एक दो दोस्त थे उनके साथ मिलकर हम करते थे, तो वो कहीं रहा। और बाद में आते आते जब हम 10th 12th तक पहुंचे तो किसी एक दोस्त ने जो मेरे से थोड़े बड़े थे, सीनियर थे, कॉलेज और दिल्ली जाते थे पढ़ने, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें एक्टिंग का शौक है तो फिर तो ट्रेनिंग लो। और उन्होंने ना फिल्मी कलियां और इस तरह की, जब हम कॉमिक्स किराए पे लेते थे वो जमाना था, तो उस वक्त वो फिल्मी कलियां में कुछ एक्टर्स के इंटरव्यूज आते थे कि कोई FTI से पास आउट है, कोई NSD से पास आउट है, फिर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता चला। लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं NSD करूंगा, क्योंकि कुछ सोर्स ही नहीं था, कुछ कनेक्शन ही नहीं था, ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था। हाँ लेकिन उनको पढ़ते थे तो अच्छा लगता था, अच्छा इसकी भी लोग ट्रेनिंग करके जाते हैं।
1: जी।
0: तो धीरे धीरे रास्ते खुलते चले गए तो ऐसा हो गया पॉसिबल।
1: वो एक लाइन पकड़ ली फिर आपने?
0: हाँ वो पकड़ी गई, वो ऐसे कि मेरे एक दोस्त थे, पता चला कि NSD तो हम सोच ही नहीं पाते कि इतने नसीरुद्दीन शाह,
1: बिल्कुल
0: इनके नाम सुनते थे,
1: बड़े बड़े एक्टर,
0: हाँ राज बब्बर, ये लोग निकले हैं, तो हम कहाँ सोचते थे कि फरीदाबाद के, तब इतना कनेक्टिविटी भी नहीं थी दिल्ली से कि कहाँ कौन जाएगा एक्टिंग कोर्स करेगा। बड़ी मुश्किल से एक दिन मेरे को किसी ने उसका एड्रेस ला के दिया NSD का, मेरे एक दोस्त ने। तो मैं 12th में था, तो मैं जैसे तैसे दिल्ली पहुंचा और वहां जाके पता चला कि यहाँ तो ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलता है।
1: अच्छा।
0: तो मैं बड़ा उदास हुआ और नाराज भी हुआ कि अरे ग्रेजुएशन करेंगे तो इतनी एज हो जाएगी, फिर हीरो कब बनेंगे, तो मतलब जो भाव होता है एक छोटे,
1: मतलब वो 3 साल ग्रेजुएशन में निकल जाएंगे,
0: फिर वो हाँ करेंगे, अच्छा फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
1: और तब तक मूड बदल जाए, ये
0: मूड बदल जाए, या घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी हमारी की मतलब की हम कहीं भी जब आंख खुलेगी तभी कोई कोर्स कर लेंगे टाइप, सर्वाइवल वाली जिंदगी थी कि कैसे सर्वाइवल चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात थी।
1: जी। तो अब जैसे आप NSD में एक प्रोफेसर हैं, तो आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आप टीचर और आर्टिस्ट इन दोनों रोल्स को किस तरीके से बैलेंस करते हैं?
0: मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अब, क्योंकि मुझे NSD पास किए ही 20-25 साल हो गए हैं, और मैं 2001 में NSD से पोस्ट ग्रेजुएशन किया एक्टिंग का, और ऐसा संयोग रहा कि 2001 से निकलने के बाद से मुझे अपना थिएटर ग्रुप, थिएटर वर्कशॉप ऑल ओवर इंडिया में हम करते रहे घूम घूम के, तो वो एक तरह की टीचिंग ही होती है।
1: जी।
0: जब हम किसी वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, उनके साथ थिएटर की बेसिक्स को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एक प्रोडक्शन तैयार करते हैं, तो वो टीचिंग का ऐसा अनकॉन्शियसली कहना चाहिए कि वो आ गई, नेचर में आ गई।
1: जी।
0: और फिर मुझे बाद में अभी 2018 से लेके मैं 5 साल में को बनारस का डायरेक्टर बनने का भी मौका मिला।
1: अच्छा।
0: NSD का। तो वहाँ फिर वो सब एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब देखना था और एकेडमिक्स भी देखना था, तो वो टीचिंग वो फिर अनोइंगली आ गई, तो ऐसा कुछ मुझे अलग से नहीं करना पड़ता। और NSD की टीचिंग बहुत डिफरेंट है, NSD की वो स्टीरियोटाइप टीचिंग नहीं है, इसीलिए वो एक यूनिक इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ हम 2+2 4 नहीं पढ़ाते।
1: अच्छा,
0: वहाँ 2+2 5 भी हो जाता है और 3 अच्छा, भी हो जाता है।
1: तो जैसे आपने बोला टीचिंग स्टाइल बहुत डिफरेंस है, क्या डिफरेंट होता है?
0: डिफरेंट ये कि वो हमारा जो कोर्स है वो मशहूरी इसलिए क्योंकि वो परफॉर्मिंग आर्ट का है और वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फील्ड है, तो ज्यादातर हमारा 80% तो प्रैक्टिस होती है
1: जी।
0: और हम सब लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, है ना, 20% थ्योरी है और बाकी जो है सब परफॉर्मेंस करना है, करके सीखना है, क्या गलती हो रही है, अलग अलग एक्टिंग के मेथड्स हैं, है ना, अलग अलग फोक फॉर्म्स हैं
1: जी।
0: तो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हैं जो अलग अलग रीजन से आती हैं, तो वो तो करने से होगा
1: जी।
0: वो कोई ब्लैकबोर्ड पे लिखने से वाली हमारे वहाँ की टीचिंग का फलसफा वहाँ है ही नहीं
1: जी। तो जैसे आपने बताया बनारस में भी आपको डायरेक्टर रहने का मौका मिला 5 साल का, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका?
0: वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था बिकॉज वहाँ कुछ नहीं था शुरू में जब हम गए
1: जी।
0: और दूसरी बात मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहूंगा कि वो नाट्य शास्त्र पे बेस्ड एक्टिंग इंस्टीट्यूट है,
1: अच्छा,
0: NSD का है, लेकिन हम पूरी जो हमारा शिक्षा पद्धति है वो पूरी हमारी एंशियंट जो 4,000-5,000 साल पुराना जो हमारे पास एक मेथड है
1: जी,
0: उस पे बेस्ड वो ट्रेनिंग प्रोसेस को लेके तैयार करना था। तो और इत्तेफाकन मैंने वहाँ जाने से पहले कई संस्कृत प्लेस किए थे और ईश्वर की कृपा से मेरा वहाँ एज ए डायरेक्टर सिलेक्शन हो गया, तो मुझे एक बहुत आज़ादी मिली उस सेंटर को डेवलप करने में
1: जी।
0: और बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ मिलकर काम करने में कि कैसे उसको शेपअप कैसे करें, क्योंकि नाट्यशास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है। नाट्यशास्त्र ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम सब समझ गए हैं और उस पर अभी भी उसकी बहुत लेयर्स हैं
1: जी।
0: तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव था और उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी, मैं उसको अपना एक अच्छा गोल्डन टाइम मानता हूँ अपने 5 साल जो मैंने वहाँ निदेशक के तौर पर काम किया।
1: तो फिर जब आप वहां से यहाँ आए दिल्ली दोबारा, तो कुछ मिस नहीं किया वहां का आपने?
0: ऑब्वियसली जब आप एक नया सेंटर या नई चीज बनाते हैं वो एक आपके बेबी की तरह होता है, जब वो जीरो से शुरू करते हैं। आज वहाँ कई अच्छी चीजें हैं, एक स्टूडियो बनाया, मतलब एक शेपअप हुआ। उसके बाद हमारे अंदर एक थिएटर वालों को आदत रहती है कि एक वर्कशॉप खत्म अब आगे बढ़ना है
1: जी।
0: तो हम अब फंसते नहीं है, इसलिए उतना ज्यादा मिस नहीं होता। हाँ, वो शहर भी गजब है,
1: शहर जैसे बहुत अच्छा है ना बनारस, बिल्कुल।
0: और बाबा विश्वनाथ वहाँ बैठे हैं तो वो तो हमेशा लगता ही है, लेकिन हमेशा थिएटर कहता है कि आगे बढ़ो
1: जी।
0: और फिर मेरी फैमिली भी इधर थी और यहाँ भी एक ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे यहाँ एक जॉब था और मैंने अप्लाई किया, हो गया
1: जी।
0: तो वापस बैक टू पवेलियन अपने शहर आ गए
1: जी। तो राम जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे थिएटर की बातें जान के। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से राम जी सर के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिएटर के बहुत ही जाने माने मिस्टर राम जी बाली जी। तो सर, अभी जैसे आपने बताया NSD के बारे में, हमें थिएटर के बारे में, अब थोड़ा थिएटर रिलेटेड ही मैं आपसे और चीज़ें पूछना चाहूँगी कि थिएटर ने आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया है?
1: थिएटर ने ज़िंदगी का सबक ये सिखाया है कि हमेशा मध्यम मार्ग पे चलो, एक्सट्रीम किसी भी विषय पे नहीं होना है, चाहे लाइफ में है, चाहे आर्ट में है, किसी भी चीज़ को लेके। हमेशा थिएटर आपको आपकी जो एजेस होते हैं ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको सुकर्व करता है, ताकि आपको, क्योंकि लिटरेचर है उसमें, उसका सबसे बेस। तो मैं तो मानता हूँ कि किसी, मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि एक 4 पेज की कहानी पढ़ के आप किसी के जीवन की पूरी हिस्ट्री समझ जाते हो, उसका इमोशन समझ जाते हो। ये कितना सस्ता सौदा है। नहीं तो हम अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे तब हमें एक सबक मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: हम किसी की जीव जिंदगी के 4 पन्ने पढ़ते हैं 10-15 मिनट में, और हमें कितना सबक
0: समझ भी आ।
1: तो थिएटर में तो लिटरेचर तो उसका बेस है, तो लिटरेचर हमें हमारी समझ को विस्तृत करता है, काम डाउन करता है, और काफी कुछ सिखाया थिएटर ने
0: जी। और जैसे सर, आज के डिजिटल युग में थिएटर की रेलेवेंस को आप कैसे देखते हैं?
1: मुझे लगता है कि थिएटर की रेलेवेंस इससे और बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि आप देख लीजिए, थिएटर कोई आज का नहीं है। थिएटर शायद जिस वक्त इंसान ने खाना खा लिया होगा, उसी वक्त उसको कुछ करने की सूझी होगी। जिस वक्त रोटी का सवाल खत्म हो गया होगा, वहीं से थिएटर शुरू हो गया होगा। चाहे कम्युनिटी में, एक ट्राइबल एरिया में, जंग चाहे भाषा नहीं रही होगी, लेकिन जब उन्होंने शिकार मार के खाया होगा, फैमिली के साथ रात को बैठे होंगे आग जला के, तो शायद दिन की क्या घटना हुई होगी, शायद किसी ने एक्ट करके दिखाया होगा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, वहीं से थिएटर शुरू हुआ
0: जी।
1: जो इतना पुराना है, जिसकी जड़ें हैं। और आप देख लीजिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी के लेवल पे देख लीजिए, सिनेमा तो अभी का है, 500 साल भी नहीं हुआ अभी।
0: अच्छा।
1: अभी देख लीजिए, ये तो हजारों साल, अनंत, मतलब जैसे बोलते हैं ना, सनातन है
0: जी।
1: रंगमंच सनातन है, जहाँ मनुष्य है, जहाँ 2 लोग, एक कर रहा है, एक देख रहा है, रंगमंच हो रहा है
0: जी,
1: है ना। और आप देख लीजिए, उसकी टेक्नोलॉजी बदलती चली गई
0: जी।
1: मीडिया की, पहले बड़े बड़े वो रिकॉर्ड आते थे, आज हम कैसे गाना सुन रहे हैं
0: जी।
1: फिर वीडियो कैसेट्स आते थे,
0: फिर सीडीज आ गई,
1: वो आई, फ्लॉपी आई, फिर क्या क्या आया, आज वो लिंक में ही है फिल्म, है ना। ये सब का बहुत छोटा स्पैम है, 10 साल में, 5 साल में चेंज हो जाता है
0: जी।
1: लेकिन रंगमंच एक जीवित व्यक्ति करता है और एक जीवित व्यक्ति उसके सामने बैठ के देखता है, दोनों सांस ले रहे होते उस वक्त। तो इसकी ये जो ग्रेटनेस है, वो कोई मीडियम नहीं ले सकता
0: जी।
1: तो जब तक इसका ये जीवंतता वाली बात है, कोई भी मीडिया, कोई भी AI इसको वो नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट,
0: हाँ जी,
1: छपाई खाने में तो आप जो भी हमारी कुर्ती है, शर्ट पहना है, हजारों बन रहे हैं, जैसे ही उस पर कोई कारीगर अपने हाथ से आपका नाम लिख देता है, कस्टमाइज हो जाता है,
0: बिल्कुल,
1: उसकी वैल्यू
0: और उसका दाम भी बढ़ जाता है,
1: उसकी ब्रांडिंग अलग है। तो जस्ट लाइक दैट, रंगमंच, जितना ये टेक्नोलॉजी आएगी, रंगमंच की महत्ता उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने समझाई है, यहाँ पे क्लियर की है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे प्ले होता है और ये नुक्कड़ नाटक, इनमें क्या फर्क रहता है?
1: नुक्कड़ नाटक भी एक नाटक है,
0: हाँ जी,
1: लेकिन वो नुक्कड़ पे होता है, इसलिए नुक्कड़ नाटक है। उसकी कुछ सीमाएं हैं, और सीमाओं के साथ साथ उसकी कुछ स्वतंत्रता भी है, और उसकी कुछ पाबंदियां हैं, क्योंकि वहां पे आपका बुलाया हुआ दर्शक नहीं है उस तरह का। नहीं तो आप एक ऑडिटोरियम बुक करते हैं, आप इनवाइट करते हैं, या एड निकालते हैं, लोग आते हैं, स्वतः आते हैं, मन से आते हैं, मन बना के आते हैं कि मैं नाटक देखने आज मंडी हाउस जाऊंगा या जाऊंगी, गाड़ी चला के जाते हैं, बस पकड़ के आते हैं, या फरीदाबाद में भी किसी, हम जब सभागार में करते थे, आप प्लान करते हो कि आज शाम को नाटक देखने जाना है। नुक्कड़ नाटक में वैसा नहीं है। नुक्कड़ नाटक, आप सड़क पे जा रहे हो, चाट पकौड़ी खा रहे हो, अचानक कोई डम डम डम बजने लगता है, तो क्या हो रहा है, शोर होता है, वो यहीं कॉर्नर में साइड पे 4 लड़के या लड़कियां कुछ डफली बजा के कुछ एक जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं
0: जी।
1: तो उनका क्या, वो उसी वक्त वो स्पेस क्रिएट करते हैं, उसी वक्त वो मंच क्रिएट करते हैं, वहां मंच नहीं होता है, उसी वक्त वो दर्शक को रोकने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त वो कोई एक इश्यू लेते हैं। उनका क्या है, उस रंगमंच में जो बेसिक हम फर्क है, वो इश्यू बेस्ड रंगमंच है, और उसमें स्लोगन है
0: जी।
1: उसमें आर्ट भी है, लेकिन आर्ट की मात्रा थोड़ी कम है उसमें, मैसेजिंग ज्यादा है बजाय इमोशन के
0: जी।
1: मेरा मतलब ये नहीं कि जो वो कर रहे हैं वो इमोशनल सीन नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन मोर और लेस अगर हम बात करें तो वो एक तरह का नारा है, वो कुछ बात कहना चाहते हैं ग्रुप, वो आता है 10 मिनट में, हो हल्ला करता है, अपना कोरियोग्राफी करता है, अपने डायलॉग बोलता है, चला जाता है, वही फिर मार्केट फिर चालू हो जाती है वैसे की वैसे। लेकिन ये जो जो प्रोसिनियम रंगमंच की हम बात करें, उसमें आर्ट है, एस्थेटिक है, म्यूजिक कहाँ थोड़ा कम आएगा, कहाँ ज्यादा आएगा, यहाँ एक पर्दा लहराना चाहिए, यहाँ से लाइट थोड़ी सी ऐसी आएगी, तो ये एक कलेक्टिव वर्क है आर्ट का, आर्ट फॉर्म का एक गुलदस्ता है कहना चाहिए, जिसमें लिटरेचर भी है, मंच भी है, मेकअप भी है, कॉस्ट्यूम भी है, लाइटिंग भी है, लाइव म्यूजिक भी है, डायलॉग भी है, इमोशन भी है, है ना, एक एनवायरनमेंट है। ये बेसिक फर्क है मुझे जहां तक मेरी समझ।
0: नहीं नहीं बिल्कुल सही आपने बताया। तो नुक्कड़ नाटक हमने जैसे अभी कुछ सालों पहले मतलब देखने शुरू किए हैं, इससे पहले तो या होते थे या आप ज्यादा लोगों के बीच में?
1: नहीं ऐसा नहीं है, नाट्य शास्त्र में भी वीथी नाटक की बात होती है। वीथी अच्छा। का वीथी का मतलब गली होता है।
0: अच्छा।
1: तो वीथी नाट्य की बात है, तो इट मींस कि तब भी होते होंगे। उसका प्रारूप क्या रहता होगा ये मुझे नहीं मालूम
0: जी।
1: क्योंकि हमारे नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन है, लेकिन जब नाट्य शास्त्र की ही प्रैक्टिस बीच में मुगल काल और ये सब मतलब जो बहुत पहले खत्म हो गया, अब ये दोबारा रिवाइव हो रहा है इंडियन क्लासिकल थिएटर, तो हम नहीं कह सकते कि पहले कितना हुआ, लेकिन हाँ ये इधर आज का जो नुक्कड़ नाटक है उसकी अगर हम बात करें तो वो ये इमरजेंसी वगैरह के बाद जब सरकार बदली, जब चीज़ें आईं, तो ये लेफ्टिस्ट लोगों ने ज़्यादा इसको अपनाया, प्रमोट किया, और इसका इतिहास है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है
0: जी। तो सर थिएटर और फिल्म में एक्टिंग करने का सबसे बड़ा अंतर क्या है? जैसे आपने बहुत सी फिल्में भी की हैं हमने देखा, और अभी रिसेंटली केरला स्टोरीज 2 में आपका बहुत अच्छा रोल है उसमें, सो क्या अंतर रहता है दोनों चीज़ों में?
1: देखिए मुझे कई लोग इसमें बहुत बड़े बड़े थ्योरीज गढ़ते हैं, बताते हैं, मुझे आज तक कुछ अंतर नहीं लगा। मुझे लगता है एक्टिंग एक्टिंग है,

0: जी
1: रंग, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, ये मंच पे भी एक सीन हो सकता है कि एक आप इंटरव्यू कर रही हैं मेरा, है ना, आप सवाल पूछ रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसी को अगर कैमरा लगा दें जैसे पॉडकास्ट है फॉर एग्जांपल, क्या फर्क आ जाएगा बताइए? आप कोई अजीब से एक्सप्रेशन बना के थोड़ी बात करेंगे, आप ऐसे ही बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर, हाँ, उसमें क्योंकि लेंस चेंज हो जाता है तो उसका एक्सप्रेशन, और वो बहुत बड़े पर्दे पे दिखता है। अभी आपका जितना जितना जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही दिखेगा, और दूसरे देखेंगे तो छोटा दिखेगा मंच पे, जो आगे बैठा होगा उसका क्षेत्र बड़ा दिखेगा। लेकिन सिनेमा में क्या सबको एक साथ दिखता है? वो लेंस की करामात है, वो एक टेक्निकलिटी है, उससे एक्टर का कोई लेना देना नहीं है। एक्टर को हाँ ये ध्यान रखना है कि अब आपका क्लोज लगा है तो मुझे ज्यादा, मैं हाथ हिला हिला के बात कर रहा हूँ, वो फ्रेम में है ही नहीं, वो इतनी सी बात है, वो डायरेक्टर बोल देगा भाई हम आपका ना अभी आईज का ले रहे हैं
0: जी,
1: तो आप बस ये वाले डायलॉग को आपका एक रिएक्शन ले रहे हैं, तो आप मंच पे भी आप वही रिएक्शन देते हैं, लेकिन उसमें शायद आपका हाथ भी चलता है। तो मुझे छोटी सी टेक्निक, हल्का सा फर्क है, मुझे ऐसा कोई ड्रास्टिक फर्क नहीं लगता,
0: वो भी सिर्फ कैमरे को फेस करने वाली
1: चीज। और है कि जो सिनेमा का एक्टर है वो रंगमंच नहीं कर सकता, उसको दिक्कत आएगी।
0: अच्छा।
1: कर सकता मतलब कर लेगा कोई भी, लेकिन वो उतना शायद अच्छा अभिनेता साबित ना हो मंच पे, लेकिन जो मंच का अभिनेता है जब वो सिनेमा करता है तो बहुत बेहतर अभिनेता साबित होता है।
0: अच्छा, ऐसा क्यों कि सिनेमा वाला नहीं कर पाएगा?
1: नहीं, उसको दिक्कत आएगी, मैं नहीं कह रहा कर नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है ना, वो कॉन्टिन्यूटी में इमोशन को कैरी नहीं कर रहा है। हम 2 घंटे का प्ले कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं,
0: वो सीन में कट करके जब
1: उसके बाद कट हो रहा है उसका बार बार, उसके सामने एक्टर नहीं है, उसके सामने कैमरा है
0: जी,
1: उसको एक्टर की आदत ही नहीं है, कम आदत है, समझ लो हमारे पास तो एक्टर ही एक्टर है। हम मंच में जब घुसे तो सामने एक्टर, दाएं एक्टर, बाएं एक्टर, हमारा कैमरा तो दर्शक है,
0: बिल्कुल लाइव ऑडियंस जो देख रही है,
1: नहीं हमें वहीं से देख रहा है ना। तो इसमें क्या है कि अभी यहाँ भी कैमरा लगा देंगे, आपके कान के पास लगा देंगे, आपके कंधे के पीछे लगा देंगे,
0: हाँ जी,
1: तो वहां पे दर्शक मूव कर रहे हैं एक तरह से 360 डिग्री में
0: जी,
1: और रंगमंच पे एक्टर मूव कर रहा है तो उसको कट्स की आदत है, इमोशन के कट्स की आदत है, हम एक फ्लो में करते हैं तो हमें उसकी गहराई, उसकी डेप्थ, उसका इमोशन का जो क्या कहते हैं, उसका जो नमक आना चाहिए वो, उसकी थोड़ा सा एहसास ज्यादा है
0: जी,
1: मुझे ऐसा लगता है। और ये साबित हुआ है, ये हॉलीवुड तक के एक्टर्स में साबित हुआ है।
0: अच्छा,
1: जितने हॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं सब थिएटर करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, हमारे यहाँ के कम करते हैं, लेकिन वहाँ के तो करते ही, वो एक सीजन फिक्स करते हैं, हम 3 महीने नहीं करेंगे सिनेमा, 3 महीने हम जाएंगे अपने ग्रुप में थिएटर करेंगे, 20-50 शो करेंगे, वापस सिनेमा में आएंगे।
0: ये बहुत ही अच्छा एक फर्क आपने समझाया अभी। तो आपने जैसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेस भी दिए हैं, खुद से मतलब डायरेक्ट भी किए हैं, तो आपके दिल के सबसे करीब कौन सा प्ले है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: इसमें 2 चीजें हैं, एक तो जो मैंने प्ले डायरेक्ट किए हैं उनमें अगर हम बात करें तो मेरे बहुत करीब है अभिज्ञान शकुंतल कालिदास का, मुझे बनारस में रहते हुए संस्कृत नाटक करने का मौका मिला और मैंने कालिदास के 3 नाटक किए, कई बार किए हैं अब तो मैं जब भी अभिज्ञान करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने अगर मैं लिखे हुए प्लेस की बात करूँ तो मैंने लगभग अब तक 9-10 प्ले लिखे हैं, और उसमें मेरा सबसे प्रिय प्ले एक है, एक रोमांटिक कॉमेडी है मैंने लिखी है, कोई बात चले।
0: अच्छा।
1: उसको मैंने 2010 में लिखा था, तो उसके कई शोज हम कर चुके, उसमें यशपाल शर्मा भी जो हमारे हरियाणा के बहुत बड़े एक्टर हैं सिनेमा में, गंगा जल में जो मेन विलेन थे
0: जी,
1: वो भी उसमें एक्ट कर चुके हैं प्ले में, और वो प्ले करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत फन है उसमें।
0: तो जैसे आपने प्ले की बात बताई, तो ये आपका कैसे रहता है कि आपको अलग अलग शहर में आप जाके करते हैं, इसका क्या चीज रहती है?
1: जो कोई प्रोडक्शन तैयार होता है तो अगर हम दिल्ली में जैसे ओपन किया तो जो थिएटर वर्ल्ड के लोग हैं उनको पता रहता है कि अच्छा एक नया प्ले आया है, वो थिएटर फेस्टिवल होते हैं कई शहरों में लोग करते हैं तो इनवाइट करते हैं, गवर्नमेंट्स के भी अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स होती हैं उनके वो लोग भी फेस्टिवल्स करते हैं, तो जो थिएटर वर्ल्ड के एक अलग संसार है वो जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं कि इसका क्या प्रोडक्शन चल रहा है, फिर उसको इनवाइट करते हैं।
0: और प्ले का ड्यूरेशन क्या रहता है, मतलब कुछ घंटों का या कुछ दिनों का भी रहता है?
1: नहीं, दिनों का नहीं रहता है, क्या रहता है कि यूजुअली पहले 2.5-2.5 घंटे के 3-3 घंटे के प्लेस होते थे जब हमने किया, अभी भी होते हैं 2.25-2.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट, मतलब ये इसको फुल लेंथ प्ले माना जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइमिंग माना जाता है, क्योंकि अभी टाइम कम हो रहा है तो अभी 1.5 घंटे के भी नाटक होते हैं, 1.5-2.5 घंटे ज्यादातर नाटक होते हैं, उसमें कुछ लोग इंटरवल रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं।
0: तो उसमें फुल म्यूजिक वगैरह सब रहता है?
1: सब होता है, पूरा सेटअप लेके चलना पड़ता है। कुछ चीजें जैसे किसी ने हमें मान लीजिए कि पटना में इनवाइट किया, तो बेसिक जो सेटअप है स्टेज का
0: जी।
1: वो, और मैं आपको बता दूं कि कोई बात चले यशपाल शर्मा वाला प्ले आपके मानव रचना में भी हुआ है।
0: अच्छा।
1: मुझे अभी याद आया, जस्ट अभी याद आया।
0: अच्छा।
1: और यशपाल शर्मा ने ही किया है आपके स्टूडेंट्स के सामने
0: जी।
1: मुझे ये इस बात को हो गए कम से कम 8 साल हो गए होंगे।
0: अच्छा।
1: मिस्टर भल्ला ने इनवाइट किया था
0: जी जी।
1: तो एक आपका अंदर ऑडिटोरियम है उसमें शो किया था, बहुत सक्सेसफुल शो हुआ था, बहुत अच्छा शो हुआ था।
0: वाओ, ये तो बात आपसे अभी मुझे
1: भी अब भूल गया था। हाँ। अभी याद आया मुझे कि हाँ हमने किया है उसको, बॉम्बे से टीम आई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ करने का
0: जी। तो साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को जारी रखेंगे राम जी बाली सर के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए क्रिएटिव मंच ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिएटर जगती के जाने माने मिस्टर रामजी बाली जी। तो सर, बहुत ही मजा आ रहा है आज आपके साथ हमारे शो में, और डेफिनेटली जो लिसनर्स आज ये शो सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत चीजें थिएटर से रिलेटेड समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से क्या क्या होता है पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने। तो अभी तक हमने बात की आपके टीचिंग स्टूडेंट्स और आपके प्लेस के बारे में, लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर मतलब जो चीज़ लाना चाहूँगी, फिल्म एंड स्क्रीन वर्क जो आप करा है, जैसे थिएटर से फिल्म और वेब सीरीज़ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? आपने काफ़ी वेब सीरीज़ भी की हैं, थिएटर तो हमें पता ही है उसमें तो आपकी है ही महारत हासिल, तो अपनी वेब सीरीज़ के बारे में बताइए और उसके बाद में आपकी मूवीज़ के बारे में पूछूंगी।
1: मैंने डेली क्राइम एक वेब सीरीज़, बहुत चर्चित वेब सीरीज़ रही, उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला। उसमें जो बहुत बड़े एक्टर हैं राजेश तैलंग, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं
0: जी।
1: और देखा जाए तो मैंने दिग्मांशु धूलिया जी के साथ सिनेमा में काफ़ी मुझे अवसर मिला उनके साथ काम करने का। मेरी पहली फिल्म उनके साथ पान सिंह तोमर थी
0: जी।
1: और पान सिंह करने के बाद उनके साथ मेरा एक अलग बाउंडिंग बनी। तो उसके बाद मैंने उनके साथ साबिर गैंगस्टर में भी एक छोटा सा रोल किया है, और एक यारा फिल्म उन्होंने बनाई थी दिग्मांशु सर ने, उसमें भी मुझे अभिनय करने का मौका मिला। और सिर्फ अभिनय नहीं, मेरे को जब भी वो सिनेमा कुछ बनाते थे तो अक्सर मुझे डायलॉग में भी बुला लेते थे कि तुम थोड़ा सा एक्ट्रेस को हेल्प कर दो
0: जी।
1: तो बड़ा वो प्यार रखते हैं, स्नेह रखते हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं कि दिग्मांशु धूलिया बहुत बड़ा नाम
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: अगर वो मुझे
0: और अगर वो
1: कह रहे हैं कि हाँ, तुम जरा एक्टर्स का डायलॉग चेक कर लो तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसा मैं उनके साथ काफी काम किया है, त्रिशु भाई के साथ। हम उनको प्यासे सब जो एनएसजी के लोग हैं त्रिशु भाई बुलाते हैं उनको, और उनके साथ काम करने का मौका मिला। और खोसला का घोसला बहुत शुरुआती फिल्म थी जब मैं जस्ट एनएसजी से पास आउट किया था, वो काफी आती है इसलिए लोग उसको ज्यादा जानते हैं। उसमें मैं एक बड़े रोल के लिए कास्ट हुआ था पहले, लेकिन फिर उस वक्त मैं बहुत यंग दिखता था, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला दिवाकर ने कि आई एम वेरी सॉरी, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज फाइनल। उसमें एक बड़ा रोल कर रहा था मैं, लेकिन उन्होंने बोला कि राम जी मुझे बहुत, प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप छोटे लग रहे हो, लेकिन आप एक रोल है जरूर करो। वो एक छोटा सा आईपीएस का रोल, फिर मेरे को दिवाकर ने बोला कि आप करो। तो फिल्म बहुत आती है,
0: हाँ जी
1: हाँ, तो उसमें किया काम। फिर एक फिल्म है रागदेश, रागदेश में भी मैंने एक्टर्स को भी ट्रेन किया था उसमें, और एक रोल भी किया। और रागदेश की भी स्क्रीनिंग आपके यहाँ हुई थी, मुझे अच्छे से याद है हाँ, उसमें दिग्मांशु धूलिया की फिल्म, क्योंकि वो INA पे थी फिल्म, मतलब आज़ाद हिंद फौज के ऊपर, तो उस एक केस है, कोर्ट केस है, उसके ऊपर वो फिल्म थी, तो उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। और बाकी मुझे अपनी फिल्म भी एक छोटी सी बनाई मैंने, जो एक हरियाणा में रह के ही बनाई, हरियाणवी फिल्म बनाई अज्जो नाम से।
0: अच्छा।
1: वो एक बच्ची और दादी,
0: वो शायद आपने अभी थोड़े टाइम पहले ही,
1: नहीं अब उसको हो गया 5-1 साल हो गया।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और वो अभी स्टेज ऐप पे है वो फिल्म
0: जी।
1: और वो फरीदाबाद के ही मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रोड्यूस की थी, मिस्टर प्रदीप मोहंती
0: जी।
1: वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे पहला मौका दिया, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने कोई इंडिपेंडेंटली फिल्म नहीं बनाई थी
0: जी।
1: काम जरूर किया था, लेकिन कोई पहली बार जब आप पे ट्रस्ट करता है वो बड़ी बात होती है,
0: बड़ी बात।
1: और उन्होंने मौका दिया फिल्म की, उसमें डॉली अलूवालिया मेन रोल में थी, और उसमें यशपाल शर्मा ने भी एक कैमियो किया था, और स्वानंद किरकिरे ने गाना गाया है उसका।
0: अच्छा।
1: टाइटल अंतरा मित्रा ने गाना गाया है, और ठीक अपने एनएसजी की काफ़ी लोगों ने मदद की उसमें मुझे। और इसके अलावा थिएटर में भी मैंने कुछ सेलिब्रिटी को लेके एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक प्ले राजपाल यादव भाई को लेके किया था।
0: अच्छा।
1: चलो इश्क लड़ाएं के नाम से, और उसके बाद मैंने हिमानी मैम के साथ, हिमानी शिपुर जी के लेके भी एक प्ले किया डायरेक्ट, उसमें हम दोनों ने मिलके एक्टिंग भी की। और यशपाल भाई वाला प्ले तो हमारा खूब चला, जिसका मैंने जिक्र किया कि आपके यहाँ भी हुआ है। और इस तरह लगे हैं, जो भी काम आता है कर लेते हैं, चाहे थिएटर का हो चाहे सिनेमा का हो। और बेसिक यह है कि रंगमंच से, आर्ट से जुड़े रहना है, यही प्रयास रहता है। और अभी एनएसटी में पढ़ा रहा हूँ तो रही हैं।
0: जी जी, नहीं इतना ही नहीं है, बहुत बहुत कुछ आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, जैसे आपने नेम लिया अभी तिग्मांशु धूलिया जी का, और हमने देखा पंकज त्रिपाठी जी के साथ भी, और शायद नवाज सर के साथ भी, तो आप का मतलब कैसा रहता है जब इतने बड़े लोगों से मिलना होता है, उनके साथ वर्क करना होता है, क्या वो भी उतने डाउन टू अर्थ लोग
1: हैं? नहीं, ये सब लोग अपने दोस्त लोग हैं, सीनियर हैं, कुछ लोग मेरे सीनियर बड़े भाई जैसे हैं। नवाज भाई, जब नवाज भाई एनएसजी में थे तब हम श्रीराम सेंटर में थे, और बाद में मुझे भी एनएसजी आने का मौका मिला, वो सब सीनियर हमारे सीनियर हैं, और छोटे भाई कितना ही बिहेव रहता है उनका प्यार मिलता है। और पंकज बहुत डाउन टू अर्थ है, हमारा मेरा जूनियर है, बट वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा एक्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग एक फैमिली के लोग हैं। मतलब
0: जैसे आपने यशपाल जी की बात की, और राजपाल यादव,
1: ये सब लोग सब सीनियर हैं हमारे, एक कम्युनिटी, एक हम सब एलुमनाई हैं एनएसजी के, तो ऐसा कुछ मतलब,
0: तो वही उसी प्यार से मिलना होता होगा, उसी प्यार से सब रहते होंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात लगती है कि एक सेलिब्रिटीज का भी अगर इतना डाउन टू अर्थ हो, भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो सर, अब मैं बात करूंगी आपकी जो अभी रिसेंट जो फिल्म आई है केरला स्टोरीज में, हमने आपको देखा है केरला स्टोरी 2 में, वो कैसे आपको वो रोल मिला और क्या एक्सपीरियंस था उसका?
1: वो रोल मुझे ऐसे मिला, शायद उन लोगों ने, एक बहुत बड़ा नाम है कास्टिंग में, मुकेश छाबड़ा
0: जी,
1: बहुत बड़े नाम है उनका, उनके ऑफिस से कॉल आया रात को मुझे कि आप अपना सिर्फ इंट्रो भेज दो
0: जी।
1: तो कोई ऑडिशन जैसा नहीं हुआ मेरा, शायद मुकेश मुझे बहुत पुराना जानता है, इवन कई फिल्में मुकेश ने ही मुझे कास्ट किया, पान सिंह हो या दिल्ली क्राइम हो, और भी कई काम मुकेश को ध्यान रहता है, क्योंकि मैं तो फरीदाबाद में हूँ, मतलब दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो मैं दिल्ली मुंबई में तो स्ट्रगल कर नहीं रहा, तो मुकेश को अचानक लगा होगा कि मैं शायद उसमें फिट हो सकता हूँ, तो मुकेश ने अपने ऑफिस में बोला, तो उनके असिस्टेंट्स ने वो मंगवाया, तो वो मेरे को रोल जो मिला विदाउट ऑडिशन मिला, और शुरू में रिवील नहीं किया गया कि हम इस पे फिल्म ये सब्जेक्ट है।
0: ओके,
1: हाँ, कि जब सेट पे गए जब तब हमें स्क्रिप्ट वगैरह मिली, तो धीरे धीरे आइडिया लगा कि अच्छा ये इस सब्जेक्ट पे है, और वो चैलेंजिंग था क्योंकि इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं कि रोज न्यूज़ में सुनते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है। इस तरह की फिल्में बनाना, विपुल अमृत लाल शाह ने फिल्म प्रोड्यूस की, ये भी बहुत डेयरिंग है, क्योंकि मुंबई का सीनेरियो बहुत डिफरेंट है, बहुत डोमिनेशन जिन लोगों का है इंडस्ट्री में वो अलग विचार के हैं, और जिन्होंने ये फिल्म बनाई वो अलग विचार के हैं, तो बहुत जल्दी आपको
0: क्रिटिसाइज भी करते हैं,
1: क्रिटिसाइज से कोई दिक्कत नहीं, लेबलिंग हो जाती है, फिर आपको काम मिलने में भी प्रॉब्लम होता है।
0: अच्छा,
1: तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा ये है, थोड़ा मुझे लगता है, तो लेकिन काम करने में बहुत मजा आया, क्योंकि जो कामाख्या नारायण इसके डायरेक्टर हैं वो बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने, वो नेशनल अवार्ड विनर है ऑलरेडी, और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और बहुत, और इशू बहुत सेंसिटिव है, इसमें थोड़ा सा बदलने से कुछ और कहानी हो जाएगी,
0: हां जी, हां जी।
1: थोड़ा सा स्ट्रेस कहीं और दे दिया आपने, थोड़ा सा कुछ कर दिया, उन्होंने जितने बैलेंस तरीके से तीनों लड़कियों की स्टोरी रखी है, आपको लगता नहीं कि किसकी स्टोरी को ज्यादा एम्फसाइज किया, किसको दबाया, ऐसा नहीं, सबको इक्वल स्पेस दिया है, इक्वल कैरेक्टर्स को इतना मौका दिया है, अदरवाइज बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि उन्होंने कंटेंट पे ध्यान दिया, नहीं तो हम तो उस तरह से कोई बहुत स्टार तो हम लोग है नहीं है, हम लोग तो छोटे मोटे एक्टर हैं
0: जी।
1: और उसी में उन्होंने फिर भी मौका दिया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला।
0: नहीं, हमने आपका रोल देखा, बहुत ही एकदम मतलब सिंपल सोबर जो एक्टिंग आपकी थी उसमें, नेहा जो लड़की के फादर का रोल आपने किया, बहुत अच्छी मूवी भी इवन बहुत अच्छी है, मुझे तो लगता है सभी को ये देखनी चाहिए जरूर, इवन गर्ल्स को तो बहुत देखनी जरूरी है,
1: बिल्कुल देखनी चाहिए।
0: हाँ जी, सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हम राम जी वाली सर के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में थिएटर के जाने माने मिस्टर रामजी बाली जी। तो सर, बहुत अच्छी बातें अभी आपने हमें बताई आपकी वेब सीरीज की, मूवीज की, आपके थिएटर पार्ट की। सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने भी NSD से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद आप अब मूवीज भी कर रहे हैं काफी, वेब सीरीज भी, और अभी NSD में आप प्रोफेसर भी हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को NSD में एडमिशन लेना हो, बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं भी पता होता कि एक्टिंग में किस तरीके से अपना करियर बनाए, तो क्या इसके स्टेप्स हैं, थोड़ा आप हमें बताइए।
1: देखिए, आपकी जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज हमारे टाइम में तो एक ही कोर्स था जो 3 इयर्स वाला कोर्स है, और उसके लिए उस वक्त 10 नाटक करने होते थे और टोटल ऑल ओवर इंडिया से 20 सीट होती थी
0: जी।
1: अभी एक तो वो 10 नाटक अब 6 नाटक हो गए हैं
0: जी,
1: वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है वहाँ। दूसरा, अभी 20 सीट के अलावा 32 सीट्स हो गई हैं।
0: अच्छा।
1: तो सीट्स भी बड़ी हैं और ये 3 ईयर का फुल टाइम कोर्स है, और उसको करने के लिए आप पहले अपने शहर में जो भी थिएटर हो रहा है उनके साथ जुड़िए, क्योंकि 6 नाटक करने के लिए अगर कायदे से करोगे तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं।
0: ओके।
1: है ना, रोज नाटक कोई भी छोटे शहरों में होता नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। आपको बहुत जल्दी करना है तो दिल्ली में कई ग्रुप्स हैं जो नाटक रेगुलर करते हैं, आप दिल्ली आके ज्वाइन कीजिए उन ग्रुप्स को। थोड़ी सी जो भी उनका फीस स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत फीस लेते हैं, वो करवाते हैं, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और हमारे स्कूल ने किया है कि अभी हमारे जो सेंटर्स हैं, 4 सेंटर्स हैं, वहाँ 1 साल का कोर्स है, हमारे समय में ये नहीं था, और उसके लिए 4 नाटक चाहिए और
0: रिलैक्सेशन
1: है, और 20-20 सीट्स सारे सेंटर्स में हैं, तो 80 सीट्स और बढ़ गई
0: जी।
1: अगर आप उस नज़रिए से देखें तो, और वो बनारस जैसे हम बात कर रहे थे, बनारस में 1 सेंटर है, 1 सेंटर हमारा बेंगलुरु में है
0: जी,
1: 1 सेंटर हमारा सिक्किम में है, और 1 सेंटर हमारा त्रिपुरा में है। तो ये 4 सेंटर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर वो आपके क्षेत्र के आसपास हैं। और तीसरी चीज़, हमारे अब शॉर्ट टर्म कोर्स भी हमने शुरू किए हैं।
0: अच्छा।
1: जो पेड कोर्सेज हैं
0: जी,
1: कि अगर आपको 3 मंथ का कोर्स करना है तो वो आप साइट पे चेक कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, शायद 50-60,000 कुछ उसका फी है, और वो हम टाइम टू टाइम अनाउंस करते रहते हैं 3 मंथ के कोर्स।
0: बेसिकली ये डिप्लोमा कोर्स हो जाएंगे या
1: ये 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स?
0: ओके,
1: है
0: ओके।
1: ये आप अपने के किसी को है ही कि मैं कर लूं,
0: करना ही करना,
1: एज का भी फैक्टर नहीं है।
0: अच्छा।
1: किसी को लगा के अरे मैंने जवानी में सोचा था मैं नहीं कर पाया, चलो मैं 3 महीने का एक्टिंग कोर्स NSD का कर लेता हूँ, है ना, उस तरह के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है। तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारी साइट पे वो सब है। और एक 1 ईयर कोर्स अभी हमारा बॉम्बे में चल रहा है, उसमें वो भी पेड कोर्स है।
0: अच्छा।
1: तो काफी अभी स्कोप है, और सारी जानकारी NSD की जो वेबसाइट है उस पे सारी उपलब्ध है, और सारा प्रोसेस भी उपलब्ध है उसमें।
0: बिल्कुल। और सर एक चीज और, जैसे किसी ने कोई भी कोर्स नहीं किया है और तो भी क्या उसको एक्टिंग करने का कहीं पर मौका मिल सकता है, एड एजेंसीज में या कहीं मूवी में कोई साइड रोल, तो किस तरीके से उसे अपना, उसके लिए क्या पोर्टफोलियो रेडी करना चाहिए, क्या कराना चाहिए?
1: मैडम, 90% जो लोग हैं वो नॉन ट्रेन्ड एक्टर काम कर रहे हैं, ट्रेंड एक्टर को काम नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: है ना, बॉम्बे में आप जाके देखिए, वहाँ पे कास्टिंग एजेंसियां हैं, आप उनसे मिलिए। बॉम्बे में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, वो जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनको मालूम है, आराम नगर की एक जगह है अंधेरी में, वो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, बार बार मिलेंगे, फोटो शेयर करेंगे, आपका इंट्रो देंगे, थोड़ा ऑडिशन शूट करेंगे, फिर वो आपको कॉल करते हैं
0: जी।
1: तो वो सब ओपन मार्केट है, सब कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई NSD का सर्टिफिकेट ही चाहिए, उल्टा है, बल्कि सर्टिफिकेट वालों को बहुत स्ट्रगल है, और जो नॉन स्ट्रगल वाले एक्टर हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: सब कुछ
0: ये तो मुझे लगता है हर चीज में चाहिए।
1: हाँ। ये परफॉर्मिंग आर्ट है ना, इसमें हाँ उसको डिग्री नहीं चाहिए ना, जिसको जो एड बना रहा है,
0: हाँ जी।
1: आपका लुक उसको चाहिए, आपका लुक अगर उसकी रिक्वायरमेंट में फिट है तो उसको कुछ नहीं चाहिए।
0: और अगर जैसे कोई यंग आर्टिस्ट जब रिजेक्शन फेस करता है, बहुत करते ही होंगे, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
1: मैं तो रिजेक्शन को उसकी पूंजी मानता हूँ
0: जी।
1: जब तक कोई एक्टर या कोई भी आर्टिस्ट ह्यूमिलेट नहीं हुआ, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ह्यूमिलेशन तो हमारी पूंजी है
0: जी।
1: तो बिना ह्यूमिलेशन कौन सा ऐसा काम है जो बिना ह्यूमिलेट हुए आप आगे बढ़ जाओगे? होगा ही होगा।
0: मैं थोड़ा यंग जनरेशन की बात, वो दिल पे लगा लेते हैं। बिल्कुल,
1: इस पे ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है ना, लुक सबसे पहले है, मैंने अभी आपको बताया।
0: हाँ जी।
1: आप फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको रिजेक्ट करने से पहले मुझे आपको टेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा आप ये फाइल चला के दिखाइए, व्हाटएवर जो भी उसका।
0: जी।
1: एक्टर को तो देखते ही नहीं, आप नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसकी जो रिक्वायरमेंट उसमें फिट नहीं हो, आप लाख अच्छे एक्टर हो, तो ये मन से नहीं लगाना चाहिए। किसी भी यंग एक्टर को, क्योंकि ये फील्ड ही लुक का है। पहले लुक है, अगर आप थोड़े बहुत उसके लुक में हो तो उस जैसे वो 5-6 लोग छांट लेगा
0: जी।
1: फिर वो उनको टास्क देगा, अच्छा ये डायलॉग बोल के दिखाइए, ऑडिशन लेगा, फिर जो उसको सूट करेगा उसको कास्ट करेगा। इस तरह अगर हम नाराज होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, वो दुख होगा भी, लेकिन उसको कुछ चारा नहीं है, ये उसका प्रोसेस का, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस है, आपको उससे बचना।
0: मतलब ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए,
1: ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। ऑडिशन दो, भूल जाओ, अगर आपका होगा आपको फोन करके ढूंढ लेगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेगा
0: जी।
1: आपने ऑडिशन दिया, आप अगले दिन बंबई छोड़ के होनोलुलु चले गए मान लीजिए, वो आपको होनोलुलु से बुला लेगा कि सर आप सिलेक्ट हो गए आ जाइए, और आप उसके दरवाजे पे खड़े रहिए ऑडिशन देके, वो आपको बेइज्जती करेगा फिर, भाई साहब नहीं हुआ आप जाइए घर, क्या करें।
0: तो सर आपकी ये बात हमें तो बहुत मोटिवेट कर रही है, लेकिन आप किस चीज से मोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ में?
1: अपनी लाइफ में मुझे तो लगता है आर्ट ही हमें मोटिवेट करता है, और दूसरों का अच्छा काम मोटिवेट करता है कि काश ये मैंने किया होता। वो जिस दिन खत्म हो जाएगा कि मैंने तो सब कर लिया, अब मैंने पा लिया है सत्य,
0: हाँ जी,
1: तो खत्म हो जाओगे। वो मोटिवेशन होता है जब आप किसी दूसरे का काम देखते हो और आपको लगता है काश ये मैंने किया होता
0: जी,
1: वही मोटिवेट करता है।
0: बहुत अच्छी बात है आपने बताई हमें। और सर अब लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे, सबसे पहले थिएटर या सिनेमा?
1: थिएटर।
0: डायरेक्टर या एक्टर?
1: एक्टर।
0: स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजेशन?
1: ये डिपेंड करता है कि कहाँ हो रहा है, क्या
0: जी,
1: हो रहा है।
0: जी जी। एनएसडी के दिन या आज का सफर?
1: एनएसडी के दिन।
0: एक वर्ड में थिएटर को अगर डिफाइन करना हो?
1: सत्य है।
0: और एक वर्ड में अगर सक्सेस के लिए कुछ बोलना हो?
1: मन की शांति।
0: वाओ, बहुत ही सुंदर आपने जवाब दिया हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने जो लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं, इसमें हर जनरेशन के लोग सुन रहे होंगे, यंग पीढ़ी भी हमारी सुन रही है, मिडिल एज भी, और तो उनके लिए आप क्या अपने तरफ से एक संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप थिएटर से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो पहले थिएटर देखना शुरू कीजिए, थिएटर को प्रमोट कीजिए, है ना, पहले उसकी एस्थेटिक को समझिए, और लिटरेचर पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, किसी भी लैंग्वेज का पढ़िए, वो आपको बहुत आनंद देगा, मैं बता रहा हूँ, किसी भी वेब सीरीज़ को देखने से ज़्यादा आनंद देगा। और लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको थिएटर और अच्छे से समझ आएगा
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आशा करते हैं आपके आगे के प्रोजेक्ट्स में भी आपको बहुत सफलता मिले, और फिर से हम आपको ऐसे ही बुलाएं। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज एनएसडी के प्रोफेसर मिस्टर रामजी बाली जी, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें समझाई एनएसडी थिएटर और फिल्म जगत के बारे में। तो अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी शो क्रिएटिव मंच में, और मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: गाने लिखने की, गाने कंपोज करते हैं, रैपर हैं, राइटर हैं, अपना खुद का स्टूडियो रन करते हैं, इसके अलावा बाकी लोगों के लिए भी कंपोजिशन करते हैं। अच्छा, यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग रही है यहाँ तक की। द जर्नी इज की एक स्टूडियो विजिट किया, और चलिए मैं क्या बता रहा हूँ, इनसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेकिन स्वागत करेंगे सिमरनजीत का। सिमरन, स्वागत है आपका।
1: थैंक यू सर।
0: मुझे जेन्युइनली ये जानना है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, 2019 में एक स्टूडियो विजिट किया, अचानक से कुछ ट्रिगर हुआ कि यार ये करना चाहिए कुछ ऐसा, थोड़ा बताइए क्या कहानी थी, ऐसा क्या लगा कि यार ये करना है?
1: यस सर, बिल्कुल। तो जिस दिन मैं अपने ब्रदर के साथ गया था स्टूडियो, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी, तो जो भी वो गाना बना रहे थे ना, मैं उस टाइम सुनता था बैड बनी, जे बेलविन, तो मैं इनके गाने सुनता था, तो मैं ये चाहता था कि मेरे भाई कि वो इस तरीके का थोड़ा म्यूज़िक बनाए, कुछ हॉलीवुड टाइप। तो वो जो बना रहे थे वो बिल्कुल ही एकदम से एक नॉन कमर्शियल टाइप था। तो मैं उस टाइम कुछ बनाता बनाता था नहीं, ना मैं म्यूज़िक करता था। तो एक उस दिन मेरे मतलब मन में चाहत आई थी कि मुझे हॉलीवुड स्टाइल का कुछ मतलब मेरा भाई बनाए। तो उस दिन तो पहली चीज़ हुई ये। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि जो भी उसका मेरे भाई का मतलब जो भी गाना वगैरह बना, उसमें जो कंपोजिशन थी या जो फील थी, मतलब वो फील ठीक थी, लेकिन ऐसी फील नहीं थी कि वो मतलब दिल को छू जाए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो वो उसका जो वर्जन था FL स्टूडियो जिस पे कि मतलब म्यूज़िक वगैरह बनता है, तो उसका मोबाइल वर्जन हुआ। तो उसी दिन उसी रात को मैंने, रात को अभी मेरे को याद है, कुछ 12 बजे या 1 बजे का कोई टाइम वगैरह होएगा, तो मैंने उस टाइम वो फ़ोन पर डाउनलोड करा, उस पर थोड़ा बहुत मैंने कुछ ना कुछ बनाया उस रात को। तो उस दिन से मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन पे बीट्स वगैरह बनानी चालू करी। तो मैं तब भी मैं हॉलीवुड गाने बहुत सुनता था और मैं बहुत एडमायर करता था, मैं चाहता था कि इंडिया में मैं हॉलीवुड स्टाइल का म्यूज़िक लेके आऊँ, जो भी म्यूज़िक वगैरह चलता है उनका, जो भी बीट्स वगैरह होती हैं, मैं वो अपने स्टाइल में, लेकिन लैंग्वेज मेरी पंजाबी ही हो। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत उस पर मेरा हाथ बैठने लगा, मैंने बहुत सारी बीट्स बनाई हैं, कभी मैं आपको सुनाऊंगा अभी कभी लगेगा तो। तो मैं फ़ोन से मेरा हाथ अच्छी तरह बैठ गया। फिर धीरे धीरे मैं ये समझता था कि ये कंप्रेशन क्या होता है, सैचुरेशन क्या होती है, डिले क्या होता है, रिवर्व क्या होता है, ये सब फ़ोन के उसमें भी था। तो ये सब मेरे को थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज होने लगी। तो उसके बाद 2021 में मार्च 11, हाँ, मैं अपनी सबसे पहली जॉब पर लगा। तो जब मैं पहली अपनी जॉब पे लगा, तो उसके मतलब उसके बाद ये था कि मेरे को दिमाग में कि अब धीरे धीरे मेरे को अपना ना खुद का स्टूडियो बनाना है। मैं देखता था यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह कि माइक क्या होता है, XLR केबल्स क्या होते हैं, और ऑडियो इंटरफेस क्या होता है, स्टूडियो मोनिटर्स क्या होते हैं, मैं देखता था। मैं और मेरे को ये रहता था, मैं बताता किसी को नहीं था कि मेरे को ये चाहिए या वो चाहिए, मेरे को बस मतलब मन में था जब मैं खुद जॉब पर लगूँगा तो खुद ही सब कमाऊँगा। तो उसके बाद मैं अपनी जॉब पे लगा धीरे धीरे 2021 में, तो मेरे चलो स्टार्ट थी। तो 2021 के नवंबर के महीने से मैंने बनाना चालू कर दिया। मैंने सबसे पहले लिए स्टूडियो हेडफोन्स पे मैंने अपना थोड़ा बहुत म्यूज़िक वगैरह चालू करा। तो 2022 के दिसंबर तक मैंने अपना PC बना लिया। उसके बाद मैं जब शिफ्ट हुआ PC पे, तो थोड़ा बहुत मेरे को, क्योंकि मेरा हाथ बैठा हुआ था फ़ोन मोबाइल पे, तो मेरे को थोड़ा PC पे आने में मतलब थोड़ी दिक्कत वगैरह हुई थी स्टार्टिंग में। तो करते करते फिर मैंने ऑडियो इंटरफेस लिया, फिर मैंने माइक्रोफोन लिया, फिर मैंने केबल्स वगैरह सारे कुछ लिए, फिर मैं टोटली शिफ्ट हो गया कंप्यूटर पे। लेकिन तब भी मैं ना हमेशा एक ये चीज़ देखता था, जो एक जिसे बोलते हैं ओवरऑल क्वालिटी गानों की, जो एक वोकल क्वालिटी होती है या म्यूज़िक की क्वालिटी होती है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं भी अभी बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैं हमेशा से वो डिफरेंस मेरे को पता रहता था कि हाँ यार ये साउंड थोड़ा अच्छा लग रहा है या प्रोफेशनल लग रहा है या मतलब कैसा लग रहा है, ये जो मेरे को इस चीज़ की हमेशा से वो थी। तो मैंने इस पे YouTube पे ट्यूटोरियल, मैं रात मैं ऐसे जागता रहता था, और वैसे भी जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है सबको पता है कि उनका तो कोई सोने का टाइम ही नहीं होता। तो मैं ये सब करते करते उसके बाद जब मैंने अपना सबसे पहली बीट, अपना पहला एक सॉन्ग बनाया डेमो सॉन्ग PC पे, तो वो अच्छा साउंड नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मैं फिर ये YouTube पे ट्यूटोरियल देखता था कि ये मतलब कैसे साउंड करेगा प्रोफेशनल, क्या है। फिर मेरे को धीरे धीरे EQ के बारे में पता चला कि इक्वलाइज़र हम जब करते हैं, हम कट्स लगाते हैं, लो कट, हाई कट, मडी वोकल्स इन सब के बारे में मेरे को पता चला। फिर धीरे धीरे मैं और जानने लगा, क्योंकि मैंने सब इक्विपमेंट्स तो ले लिया था, लेकिन मेरे को अब ये नहीं पता था

0: को प्रोफेशनल यूज़ कैसे करते हैं, कि जो अच्छी रिकॉर्डिंग प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। मेरे को बाद में यही पता चला कि सिंगर बहुत अच्छा, एक प्रोफेशनल सिंगर भी मैटर करता है, लेकिन उसके साथ एक एकोस्टिक ट्रीटमेंट स्टूडियो भी मैटर करता है। क्योंकि अगर अच्छा सिंगर किसी नॉन ट्रीटेड रूम में अगर रिकॉर्डिंग करेगा तो तब भी वो क्वालिटी नहीं आएगी। इसलिए हम स्टूडियो में, आपने देखा होगा कि हम फोम वगैरह, रोक वूल वगैरह लगाते हैं ताकि वो साउंड एब्जॉर्ब करे और आवाज़ फैले ना, जिससे कि आवाज़ बहुत अच्छी क्वालिटी में मतलब रिकॉर्ड होती है। तो फिर उसके बाद इसकी मेरे को नॉलेज होने लगी। तो 2024 में मैंने थोड़ा बहुत मतलब गाने अपना मतलब गाना गाना चालू कर दिया था। मैं अपने भाई को देखता था, मैं अपने भाई को भी बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि उसको भी मैं देखता रहता था, तो मेरे को अच्छा लगता था, मेरा भी होता था कि मैं भी अब चालू करूँ, मैं भी कुछ बनाऊँ। लेकिन मैं तब भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं हॉलीवुड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। हॉलीवुड का मतलब हॉलीवुड अमेरिका ही नहीं, मतलब कि जैसे फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, इटालियन म्यूज़िक हो गया, मैं अभी भी बहुत सुनता हूँ। और मेरा अभी भी होता है कि यार इनकी इस वाली बीट पर अगर मैं अपना पंजाबी में कुछ बनाऊँ तो मतलब कैसा लगेगा। तो इसके लिए मैं हमेशा एकदम से रेडी रहता हूँ। तो मैं तब भी ये चीज़ मतलब हमेशा देखता था कि यार मैं चाहता हूँ कि कुछ हॉलीवुड वाली टाइप में मैं कुछ फील लेके आऊँ। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ना मैंने 2024 में थोड़ा बहुत लिखना, राइमिंग बनानी चालू करी, और कंपोजिशन मैं बना लेता था लेकिन मैं लिख नहीं पाता था। मैंने 2024 में थोड़ा बहुत लिखना भी चालू कर दिया, क्योंकि अब मैं अपनी बीट्स तो बनाता था लेकिन उस बीट्स पर मेरा भाई वाली फील नहीं ला पाता था जो कि जैसी मैं चाहता था। तो फिर मेरे को ये चीज़ मेरे अंदर से ही ये चीज़ आई कि मैं अब इसको भी थोड़ा बहुत चालू करूँ। तो मैं कंपोजिशन बना लेता था, मैंने थोड़ी बहुत राइमिंग बनानी चालू करी, थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स मैंने जानने मतलब चालू करे। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत सिंगिंग का रियाज चालू करा। मैंने कहा चलो उसको मैं ही गाता हूँ, क्योंकि मेरी कंपोजिशन और मेरी राइमिंग वगैरह वो कोई कर नहीं पाता, किसी को समझ नहीं आती। तो मैंने कहा चलो उसको मैं ही ट्राई करता हूँ। तो धीरे धीरे कम से कम 2023 में मैंने थोड़ी बहुत सिंगिंग चालू करी थी। तो 2023 और 24 या दो साल मैंने सिंगिंग का रियाज ही करा है, बहुत प्रैक्टिस करी है। अगर मैं कभी आपको अपनी पुरानी वोकल सुनाऊँ 2023 की और मेरी आज की, तो आप मतलब ज़मीन आसमान का मतलब फ़र्क मर बताओगे। तो उसके बाद बात होगी ये। तो फिर उसके बाद 2025 जनवरी 25 को हमने सबसे पहला गाना डाला था अपना ओमेगा, जो कि मैंने लिखा था, कंपोजिशन मेरी थी, म्यूजिक मेरा था, गाया मैंने था, सब कुछ इसमें मेरा ही, मैंने ही करा था। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बता रहा हूँ कि सब तो मैंने करा, मतलब मैंने इन चीज़ों में मेहनत ही बहुत करी है। बहुत बहुत रातें मैं जागा हूँ, बहुत मेरा जो स्लीप साइकिल अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, मतलब थोड़ा पहले से ठीक है, क्योंकि मतलब रात रात भर जानने की इच्छा होती थी कि यार ये साउंड ऐसे साउंड कर रही है, अपनी वोकल को सिल्क कैसे मैं साउंड कराऊं, इनको अच्छे से अच्छा कैसे साउंड कराऊं, जो ये प्रोफेशनल जो बॉलीवुड के जो मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर बैठे हैं ये कैसे मतलब मिक्सिंग वगैरह करते हैं, जो इनकी इतनी अच्छी आती है। तो ये सब मैं मतलब हमेशा से रहता था मेरे को कि मैं जाना चाहता था। तो उस चक्कर में बहुत रातें मैंने अभी इन चीज़ों पर R&D करी है। तो फिर उसके बाद फाइनली मैंने 2025 में मतलब गाना वगैरह स्टार्ट करे। तो उसके बाद फरवरी मार्च, फिर अब 2025 में मैंने अपनी एक EP भी डाली थी जिसका नाम था फोर एवर। अब आप इसको ये समझोगे कि फोर एवर नहीं था, ये था FOUREVER, और वो इस EP में मतलब थे चार गाने। तो वो चार गानों को ही मतलब दर्शाता था कि ये चार गाने मतलब हमेशा के लिए रहे। तो उन चार गानों से मैंने एक और स्टार्ट किया था। अब मेरा जो है प्लान है वो है एल्बम का, 7 गानों की एल्बम होएगी। इस बार मैंने 2026 में मैंने इस बार कोई गाना नहीं डाला। इस बार मैंने ट्रेंड को अच्छी तरह समझा है, और इस बार मैंने जो गाने बनाए हैं सारे ट्रेंड के हिसाब से और एकदम समय के हिसाब से बनाए कि इस टाइम हमारे इंडिया में क्या चल रहा है।
1: बहुत उम्दा। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, सम्राट जी से अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक इनकी यात्रा के बारे में तो बात कर लिया। आइए, बहुत सारे सवाल हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं एज अ लिसनर, सो वी गॉट टू टॉक अबाउट ऑल दोस क्वेश्चंस, ऑल दोस थिंग्स, बट ये सारी बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम RJ Sagar, शो इज वॉइस ऑफ यूथ, फील गुड फील लाइव।

0: उम्मीद कर रहा हूँ जी आपको पसंद आ रही है गाने, आपको पसंद आ रहा है हमारा शो। चलिए शो को आगे लेकर चलते हैं। सिमरनजीत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, फरीदाबाद से हमारे शहर के एक आर्टिस्ट हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ही थिंक्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड हाउ यू कैन बिकम अ कंपोजर। वी आर नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। सिमरनजीत अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको म्यूजिक बनाना है। You said कि आपने फोन से स्टार्ट किया।
1: हाँ जी।
0: पहला सवाल तो ये होगा कि भैया क्या ये जरूरी है, बहुत भारी रकम स्टूडियो आपके पास हो अगर आपको म्यूजिक बनाना है, इज इट मैंडेटरी?
1: बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो म्यूजिक ऐसी चीज है ना, कई कई बार मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कुछ म्यूजिक वगैरह नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे गाने बना रखे हैं, उन गानों की धुन, उन्होंने 100 गाने बना रखे हैं और वो 100 गाने की धुन कभी भी मेरे को सुना सकते हैं। तो जो म्यूजिक है वो ऐसा नहीं है कि आपने बस कंप्यूटर में बनाया तो कंप्यूटर में सेव रहेगा, वो आपके माइंड में सेव रहता है वो चीज़, सबसे पहली बात तो ये। और अगर जिसको भी किसी चीज़ से स्टार्ट करना है ना, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या है। आपके पास जो चीज़ आप उससे स्टार्ट करो, ठीक है, धीरे धीरे आप बनाओ उस चीज़ को, धीरे धीरे करके, ठीक है, बस करते रहो, रुको मत।
0: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। फ़ोन से कैसे सीखा जा सकता है म्यूज़िक?
1: फ़ोन से सर, आजकल का देखो सर जो टाइम है, आजकल तो वैसे सर AI भी इतना सारा चल रहा है, ठीक है सर, जो इंटरनेट ऐसी चीज़ है ना कि लोग इसका, उनको इसका यही नहीं पता कि इसका जो यूज़ है वो कितना अच्छा यूज़, अगर इसको हम अच्छे वे में यूज़ करें तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इंटरनेट पर सारी चीज़ें ही पड़ी हैं कि ये चीज़ कैसे होती है, कि कोई काम कैसे होता है। आप कुछ भी डालो, या आप YouTube पे डालो, आप Google पे डालो, या अब तो AI आ गए, AI पे भी डालो तो वो किसी भी चीज़ का हल आपको 2 मिनट में बता देगा। अब बाकी वो आपका काम है कि आप उस पर मेहनत करते हो कि नहीं करते।
0: ऑल राइट, इस टाइम जो लोग आपको सुन रहे हैं, मतलब मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करूंगा, हम लोगों को गाना गाने की तरह समझ आता है, ठीक है, एक गाना मेरे सामने आया, मेरे को अच्छा लगा, मैं सुन रहा हूँ। आप एक म्यूजिक कंपोजर हैं, आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप बताइए उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या होता है, कितनी सारे प्रोसेस होते हैं गाने को गाना बनने में?
1: जी जी, सबसे पहले देखो सर, ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि पहले म्यूजिक बनेगा या पहले लिरिक्स आएगी, ये बिल्कुल भी वो नहीं होता, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता कि गाने की एक लाइन, कभी कभी मान लो किसी भी गाने की एक लाइन आपको मिल जाती है, ठीक है, कोई म्यूजिक नहीं बना, कोई आपको कोई लाइन अच्छी लग गई, आपके दिमाग में कोई लाइन आ गई, उस लाइन पे भी कभी कभी गाना पूरा पूरा गाना बन जाता है। और कभी कभी मान लो आपने कोई बीट बनाई, या कभी कभी कोई ऐसी कोई ट्यून बनाई या मेलोडी बनाई, और कभी कभी उस मेलोडी पे भी पूरा गाना बन जाता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पहले आपको, मतलब गाना बनाने के लिए पहले आप कोई बीट बनाओ या पहले आप कुछ गाना लिखो, ऐसा फिक्स नहीं है। पर देखो तब भी अगर आपको एक स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं कि एक गाना अगर कैसे बनता है, सबसे पहले देखो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास म्यूज़िक बीट होनी चाहिए, आपके पास अपनी लिरिक्स होनी चाहिए, या आपके मतलब लिरिक्स होनी चाहिए, वो बेशक आपकी हो किसी की भी हो, ठीक है। उसके बाद आपको उस गाने की फील पता होना चाहिए कि ये गाना, मतलब जो फील है इस गाने की, फील क्या है कि जो मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरी जो लिरिक्स है वो इस गाने पे मतलब है कि वो अच्छी लग रही है, वो जो फील आ रही है जो आनी चाहिए। तो उसके बाद फिर जो स्टेप्स होते हैं कि रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, पर अगर आपको मैं डिटेल में बताऊँ तो अगर जैसे मान लो कोई मेरे पास कोई भाई आया, या कोई भी दोस्त वगैरह आया, कोई भी क्लाइंट वगैरह आया, वो कोई सुनाता है गाना, तो उस गाने की फील के हिसाब से कभी कभी हम पियानो पे कुछ कोड्स बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम कोड से ही करते हैं सबसे पहले, कि उसका स्केल क्या है गाने का, कि वो मेजर में है, माइनर में है, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि उसका गाने का स्केल क्या है। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत मेलोडी बनाते हैं, थोड़ा बहुत फिर हम ड्रम्स वगैरह ऐड करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा फिर बेस वगैरह। तो बेसिक तो देखो यही होता है, एक मेलोडी, ड्रम्स, बेस और आपका वोकल्स, वोकल्स फिर आपके आपके लास्ट में मेन आती है। तो यही 4-5 चीज़, ये आपको मैंने बेसिक बताया, वैसे चीज़ तो बहुत सारी होती है, परकशंस, हाई हैट्स, वो सब आपका मतलब ड्रम्स वगैरह में आ जाते हैं,
0: टेक्निकल में नहीं जाएंगे।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बस ये बेसिक चीज़ होती है, लेकिन सबको एक ये पता है कि एक चलो म्यूज़िक बीट है और बस उस पर वोकल रिकॉर्ड कर दो, पर जो असली जो चीज़ होती है वो होती है मिक्सिंग, मास्टरिंग। ये बहुत बड़ा एक ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक गाने को प्रोफेशनल साउंड कराने में, मिक्सिंग मास्टरिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये सर। एक ऐसा स्टेप मिक्सिंग, सबसे पहले आपको मिक्सिंग बताता हूँ, जो मिक्सिंग है ना वो एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम गाने की हम सारी लेवलिंग करते हैं। हम जैसे मान लो कोई पियानो है या कोई गिटार है बीट के अंदर, तो उसको हम एक ऐसे लेवल पे लेके आते हैं जहाँ पे आपके गाने के सारे ड्रम्स, आपकी पियानो की मेलोडी, आपकी गिटार मेलोडी या जितनी भी जो भी मेलोडी है उन सब का हम एक ऐसा लेवल सेट करते हैं ताकि वो सारी के सारी एकदम बराबर और एक अच्छी सुनाई दे। ये ना होए कि कोई गिटार ज़्यादा सुनाई दे रहा है, कोई बेस ज़्यादा सुनाई दे रही है। तो सबसे पहले हम एक लेवलिंग से करते हैं, फिर उसके बाद हम एक EQ करते हैं, उसमें हम कट्स लगाते हैं कि कहीं पर, क्योंकि जहाँ लो फ्रिक्वेंसी होती है वहाँ पर मड्स होती है बहुत सारा, तो वहाँ पे हम कट करते हैं ताकि वो और ज़रा क्लियर सुनाई दे। EQ हम करते हैं, फिर हम करते हैं कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंप्रेशन होता है जैसे मान लो जो भी किसी भी गाने की जो ऑडियो पीक है, ऑडियो पीक और उसकी जो डायनेमिक रेंज है, तो वो उन दोनों को बैलेंस करता है। जो कंप्रेशन होता है वो उन दोनों को बैलेंस करता है। जैसे कि मान लो अगर कोई भी सिंगर है, कोई गाना गा रहा है, ठीक है, उसने कहीं जगह पे उसकी जो आवाज़ है, कहीं पे उसका सुर हाई हुआ, कहीं पे उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है और कहीं जगह उसकी आवाज़ थोड़ी सी धीमे है, तो अब उस हाई को और धीमे को बैलेंस करने के लिए हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। तो ये हो कि बेसिक कंप्रेसर, और फिर उसके बाद सैचुरेशन, ये सब ये आपके मतलब ये स्टेप्स हैं जो आपके मिक्सिंग में आते हैं। उसके बाद जो मास्टरिंग होती है, मास्टरिंग होती है लास्ट स्टेप, जिसमें कि गाना होता है एकदम पॉलिश। पॉलिश कहने का मतलब है कि ये कि मास्टरिंग में आपके पास खाली एक स्टेम होती है, मिक्सिंग में आपके पास सारी स्टेम होती है, चाहे वो आपकी गिटार होए, वोकल्स होए, ड्रम्स होए, सारी वो स्टेम्स होती है। लेकिन मास्टरिंग में आपके पास एक्सपोर्ट होने के बाद एक स्टेम होती है जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। और मिक्सिंग का भी एक ये रूल होता है कि हमें हेडरूम देना पड़ता है 6 dB का, मतलब आपकी जो बीट है उसका मैक्सिमम जो रेंज है वो 6 dB से कम होनी चाहिए, ताकि मास्टरिंग में, क्योंकि मास्टरिंग में ओवरऑल वॉल्यूम भी बढ़ती है, मास्टरिंग में वॉल्यूम भी बढ़ती है, इसलिए हमें 6 dB का हेडरूम देना पड़ता है। तो फिर मास्टरिंग के बाद आपका गाना और पॉलिश साउंड करता है, और गाना वाइड साउंड करता है, और क्लियर साउंड करता है। तो ये स्टेप्स होते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद सिमरनजीत से हम आगे बात करेंगे। और काफ़ी सारे सवाल है मेरे, और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर एज अ लिसनर मैं खुद भी कि मैं वो चीज़ें जान पाऊँ जो संगीत जो आप सुनते हो उसके पीछे मैटर करती है। और अगर आपका एज अ स्किल इसको स्टार्ट करना है, हाउ एग्जैक्टली यू कैन स्टार्ट इट, वी गोना एड्रेस दैट पार्ट बट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, शो वॉइस ऑफ यूथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वंस अगेन वेलकम बैक। अगर मेरे लिए कोई फीडबैक है, कोई भी ऐसी चीज है जो सिमरनजीत तक पहुंचानी है, तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइए। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और सिमरनजीत हमारे साथ हैं क्योंकि फरीदाबाद के कलाकार हैं, सिंगर हैं, कंपोजर हैं, रैपर हैं, बहुत सारी आर्ट फॉर्म इनके पास है। हम यहाँ पर उन सारी आर्ट फॉर्म्स को एक बकेट में समझने की कोशिश कर रहे हैं ओवरऑल कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अगला प्रश्न मेरा सिमरनजीत आपसे रहेगा बीट्स के बारे में। बीट हमने बहुत बार सुनी है, बहुत अच्छी भी लगती है कई बार। बीट एक टेक्निकल स्किल है या क्रिएटिविटी है?
1: सर मैं कहता हूँ दोनों ही है। क्योंकि आप क्रिएटिविटी में आप ये चीज़ आप बना लेते हो, लेकिन पर आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि ये जो साउंड है कि ये, मतलब आपको टेक्निकल ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो साउंड है कि ये सही है कि नहीं है उस जोनर के हिसाब से। तो ये दोनों चीज़ ही मेरे को लगता है सर, दोनों चीज़ ठीक है।
0: ठीक है, ये कैसे डिसाइड होता है कि बीट कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर ड्रॉप होगी, इसके पीछे के मैथ्स क्या है?
1: सर बिल्कुल आपको बताते हैं। तो बेसिकली सर ये चीज़ है, ये चीज़ ना इस पर डिपेंड करती है कि जो हमने लिरिक्स लिखी है उसमें सबसे पहले आपका हुक आती है, हुक के बाद प्री कोरस आता है, प्री हुक आती है, फिर मेन आपका कोरस आता है। तो उसको इन सब के जो आपकी अरेंजमेंट्स होती है ना लिरिक्स में, तो उसमें हम फिर उसमें डिसाइड करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये बिल्डअप आएगा, यहाँ पे आपकी मेन आपके ड्रम्स वगैरह आएंगे, उससे पहले थोड़े बहुत बिना बेस के ड्रम्स आएंगे, तो ये चीज़ वहाँ पे सेट होती है। और कई कई बार मान लो अगर पहले से बीट बनी हुई है तो फिर उस बीट के साथ, अगर जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं कि यूट्यूब पर बीट्स लेते हैं, परचेज़ करते हैं या फिर यूज़ करते हैं फ्री बीट्स यूज़, तो फिर उनको उस बीट के हिसाब से ही लिखना पड़ता है कि जहाँ पे कहाँ पे कोरस से पहले प्री कोरस आ रहा है या कहाँ कौन सी हुक आ रही है, तो उनको उस हिसाब से ही वो चीज़ बनानी पड़ती है। पर इसका कोई भी फिक्स नहीं है।
0: ऑलराइट, रिवर्ब कहाँ पे डालना है, डिले कहाँ पे डालना है, ये कैसे डिसाइड होता है?
1: सर ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ डिसाइड होती है। जैसे मान लो कोई एक, वैसे वोकल्स पे तो देखो सर ये मतलब मेन होती है कि लगती है डिले भी और रिवर्ब भी। पर जैसे मान लो कोई, अगर मैं मेलोडी लेता हूँ, ये जो चीज़ आपने सर बात करी ना बहुत अच्छी बात करी, पर ये चीज़ ना ये खुद अंदर से सेंस होनी चाहिए। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अगर इस पे मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे लगानी ही लगानी है, ये आपको अंदर खुद के सुन के आपको सेंस करनी, मतलब सेंस अंदर से आनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे मेरे को स्टेज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मेरे को रिवर्ब की रिक्वायरमेंट है कि या डिले की है कि नहीं। ऐसी बात नहीं है, ये लगती है और भी मेलोडीज़ वगैरह उन पर भी लगती है रिवर्ब वगैरह, कि हमें जैसे मान लो कोई ट्यून है उसको थोड़ा ड्रीमी साउंड कराना है तो हम वहाँ पे रिवर्ब लगाएंगे, या हमें कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं तो हम वहाँ डिले वगैरह लगाएंगे, तो ये ऐसे काम करता है सर।
0: चलिए मैं एक सिचुएशन आपको देता हूँ। एक लड़का इस टाइम पे आपकी आवाज़ सुन रहा है जो बिल्कुल फ्रेशर है, उसको गाने बनाने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ का पहला गाना बनाना चाहता है। उसने कविता लिख ली है जो लिरिक्स है उसके, अब उस कविता को उसको एक फाइनल गाने में कन्वर्ट करना है। अब मुझे बताइए कैसे करना है।
1: जी जी सर बिल्कुल। अब सबसे पहले सर हम जो भी कविता है या फिर लिरिक्स है, पहले हम उसका ब्रेक डाउन करेंगे कि उसकी जो एक एक लाइन है वो कैसे, मतलब किस अरेंजमेंट में आ रही है, वो कोई किसी रैम्स में आ रही है या फिर किसी फ्लो में आ रही है, किस फ्लो में आ रही है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका जो सिग्नेचर है वो किस उसमें है। तो उसके बाद फिर हम उसमें थोड़ा बहुत उसका गाने का स्केल देखते हैं कि हाँ कि अब जो है ये किस स्केल पे, ये जो मतलब है लिरिक्स है हम उस स्केल पे ट्राई करते हैं। फिर हम जब उसका एक कोड प्रोग्रेशन बना के, सबसे पहले हम बेसिक पे कोड प्रोग्रेशन पे ही देखते हैं कि हाँ ये ऐसा साउंड करेगा, मतलब हमें थोड़ा बहुत पता चलना मतलब चालू हो जाता है कि हाँ ये गाना लास्ट में जाके ऐसा साउंड करेगा। तो कोड प्रोग्रेशन पे फिर हम थोड़ा बहुत स्केल ऊपर नीचे करके चेक करते हैं। वैसे ये मेरा अपना तरीका है, मेरे को मतलब और लोगों के और अपने अपने तरीके होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ऊपर नीचे करके मैं हमेशा चेक करता हूँ कि सबसे अच्छा जो है वो कहाँ पर साउंड कर रहा है जो गाना है। तो वो करने के बाद फिर हम थोड़ा बहुत मतलब मैं पहली बात तो मैं सुनता हूँ थोड़ा बहुत कि हाँ इसको मतलब किस जोनर में बनाए। अगर कोई मेरे को अपना छूट दे देता है कि आप अपने हिसाब से म्यूज़िक बनाओ, फिर तो मैं कोई ना कोई नया सा जोनर ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास पहले से कोई आता है कि उसको पर्टिकुलर कुछ बॉलीवुड टाइप ही बनाना है या कुछ पर्टिकुलर किसी और जोनर में बनाना है, तो फिर वहाँ पे मैं फिर उसी तरीके के ड्रम्स निकालता हूँ, जैसे कि हमारे सैंपल्स पैक होते हैं बहुत सारे, तो जोनर के हिसाब से होते हैं, हिप हॉप सैंपल पैक, एफ्रो सैंपल पैक, ड्रिल सैंपल पैक, तो उनमें उस तरीके की साउंड्स वगैरह होती हैं, साउंड्स वगैरह ड्रम्स की भी, सबकी पर्टिकुलर जोनर के हिसाब से ही साउंड होती है। तो फिर अगर मुझे कोई कहता है कि आप अपने हिसाब से म्यूज़िक बनाओ, तो फिर मैं पहली बात तो उसको थोड़ा बहुत सुनता हूँ, फिर मैं एज्यूम करता हूँ कि हाँ यार इस पर ये वाला जोनर इस्तेमाल करना चाहिए, फिर उस जोनर की थोड़ी बहुत मैं बीट्स और ड्रम्स वगैरह बनाता हूँ, तो ये प्रोग्रेशन बनी, ये थोड़े बहुत ड्रम बने, फिर उसके बाद हम करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह। वैसे तो एक गाना बनने में कम से कम मैक्सिमम हफ्ता कह सकते हो आप, एक अगर अच्छा गाना किसी को बनाना हो या कोई भी अगर बिगनर हो तो कम से कम हफ्ता, क्योंकि बात यह है ना कि म्यूज़िक तो मैं कंप्लीट तो मैं दो दिन में ख़त्म कर दूंगा गाना, लेकिन क्योंकि अगर कोई न्यू कमर है, क्योंकि उसको उस गाने को प्रैक्टिस करने में भी टाइम लगेगा दो तीन दिन अच्छे से, क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छा आउटपुट आए म्यूज़िकली भी और वोकली भी, इसलिए हम कम से कम हफ्ते का टाइम रखते हैं ताकि जो जो सिंगर है वो अच्छे से अच्छी मतलब प्रैक्टिस करके रखे ताकि हमें फाइनल आउटपुट बहुत अच्छी मिले। तो फिर बेसिकली बस ये है कि हम थोड़ा बहुत स्क्रैच मैं म्यूज़िक वगैरह बना लेता हूँ, हम पहला क्योंकि मेरा जो स्टेप है ना कम से कम मैं डेमो वर्जन ही कम से कम 5-6 डेमो वर्जन बनाता हूँ, 5-6 डेमो वर्जन बनाता हूँ मैं कम उनको इतनी बार सुनता रहता हूँ, फिर देखता हूँ कि हाँ इसमें ये इस चीज़ की कमी है या इसको थोड़ा और बढ़िया करूँ या थोड़ी कंपोजिशन में और नई चीज़ें लेके आऊँ, और 7-8 बाद नंबर बाद फिर मैं इसको फाइनल करता हूँ, फाइनल रिकॉर्डिंग। उसका ये उसका मतलब फ़ायदा ये है कि वो गाना हमारे जहन में बैठ जाता है, क्योंकि जैसे मान लो अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लो पोएम है, हमने जैसे जोनी जोनी यस पापा वाली पोएम हमने इतनी बार सुनी है, वो जैसे हमारे सबके जहन में बैठी हुई है कि जोनी जोनी यस पापा हीटिंग शुगर नो पापा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी गाना करे ना तो इसी तरीके से ऐसा याद कर ले कि वो एकदम जहन में बैठ जाए, क्योंकि एक बार जब जहन में बैठ जाती है वो चीज़ तो वो चीज़ एकदम से अच्छे से निकलती है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है, जो भी न्यू कमर होते हैं जो पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो डरते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे, जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं हड़बड़ाते हैं थोड़ा उनको मतलब डर लगता है वो ऐसे करके, तो इसलिए कम से कम मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 बार तो डेमो वर्जन ही रिकॉर्ड कर मतलब कराना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है ये मैं हाँ
0: बेसिकली प्रैक्टिस
1: बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम डन विद माय क्वेश्चंस, जाते हुए अपने कुछ गानों के नाम बता दिए लोगों को ताकि अगर आपको सुनना चाहे तो सुन सकते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी सर, मेरे जो जितने भी मेरे गाने अभी तक मतलब आपको मैं नाम बता देता हूँ, वो सारे ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, चाहे वो एप्पल म्यूज़िक हो, स्पॉटिफाई वगैरह हो, अमेजोन म्यूज़िक हो, तो वो सभी म्यूज़िक पे आप सुन सकते हो इंक्लूडिंग यूट्यूब। तो मैं कुछ गानों के नाम बताता हूँ जो मेरे वैसे तो मेरे मतलब सारे ही फेवरेट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छे लगते हैं वो, तो पहला है स्पार्कल बाय सिमरनजीत सिंह, एंड सेकंड है राइड इन हुड बाय सिमरनजीत सिंह, ये इसमें मेरे भाई ने भी रैप करा, मेरे ब्रदर गुरजीत सिंह, एंड थर्ड सॉन्ग मेरा सुपीरियर, इस सुपीरियर की जो लिरिक्स है ये मेरे भाई ने ही लिखी है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब गाना जो था ये इसमें थोड़ा रैप टाइप था, तो मेरा भाई का थोड़ा मेन उनको मतलब मेरे भाई का सिंगिंग कम है और रैप वगैरह ज़्यादा है हाँ। तो और फोर्थ सॉन्ग बजिन, ये मेरे एक और मेरे बहुत अच्छे खास भाई हैं अमरजीत भाई, तो इसमें मैं और मेरे भाई और अमरजीत हम तीनों ने मिलके हम कुछ ये वाला सॉन्ग अगर सुनोगे तो ये फ़नी सॉन्ग है, हमने कुछ इसमें कुछ फंकी टाइप का हमने कुछ म्यूज़िक वगैरह ट्राई करा था कुछ ब्रूनो मार्स टाइप, और एक गाना हो रहा है यारियां ते मान, ये हमने दोस्तों के ऊपर बनाया था, इसमें हमने वीडियो में मजाक मस्ती करी थी, और एक सबसे पहला मेरा सॉन्ग था ओमेगा, ये आप सुनना, उसकी लिरिकल आपको बेशक अच्छी ना लगे लेकिन उसकी बीट आपको बहुत अच्छी लगेगी ओमेगा की।
0: सो सुनिएगा जरूर, फरीदाबाद के ही आर्टिस्ट हैं, एंड आई थिंक वी एज अ सिटी वी शुड सपोर्ट आर आर्टिस्ट जो यहाँ पर आते हैं और जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ बड़ा करने के ख्वाब देखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक शहर के तौर पर हम सबको इकट्ठे होकर उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ हमारा शो का जो ये एपिसोड है यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच सिमरनजीत यहाँ आने के लिए।
1: थैंक यू सर, सर थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने मतलब अपॉर्चुनिटी दी, थोड़ा बहुत मेरे को भी अच्छा लगा आपसे थोड़ा बहुत सीखने को मिला मेरे को, और बस सर यही कहना चाहता हूँ मैं, थैंक यू।
0: इट्स एन ऑनर टू हैव यू। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपको शो पसंद आया हो तो बताइए और सिमरनजीत के गाने चेकआउट करिए, आपको अच्छा लगे, कुछ खामियां लगे, कुछ और एक्सपेक्टेशन लगे सिमरनजीत से, तो उनको उनके कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। फिलहाल मैं यहाँ पर शो को एक हॉल्ट देता हूँ, चलेंगे फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन हम मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, करिए सर, ये दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: कहां सोता हूं।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर किसान भाइयों आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर आपका कार्यक्रम अन्नदाता। और आप जानते हैं कि अन्नदाता में जब भी मेरी आपकी मुलाकात होती है तो कोई ना कोई ऐसी बात आपके साथ साझा जरूर करता हूं जो हमारी खेती बाड़ी से संबंधित होती है। और आज भी एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं जो कि हमारी खेती के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन किसान भाइयों, मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको जो भी जानकारियां दूं, उन जानकारियों से आप खेतीबाड़ी करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें, यही मेरा उद्देश्य रहता है। और रेडियो मानव रचना 107.8 FM ख़ास तौर से किसान भाइयों के लिए ये कार्यक्रम जिसका नाम है अन्नदाता लेकर आता है और आप सभी किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश करता है खेती बाड़ी के क्षेत्र में। तो करेंगे भाई, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: देखिए किसान भाइयों, आज मैं आपसे किसी भी फसल के बारे में बात करने वाला नहीं हूँ। अब आप कहेंगे कि भाई, कार्यक्रम तो खेतीबाड़ी का है, तो फसल की बात क्यों नहीं करोगे, भला और कौन सी बात करोगे। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, आपका प्रश्न एकदम जायज है। लेकिन किसान भाइयों, आप जानते हैं, हमेशा जब भी मैं आता हूँ इस कार्यक्रम में, कभी आपसे बात करता हूँ पपीते के बारे में, अमरूद के बारे में, करेले के बारे में, तरबूज के बारे में, खरबूज के बारे में। कहने का मतलब है, अलग अलग फसलों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां देता हूं। लेकिन किसान भाइयों, फसल कोई भी हो, जब तक मिट्टी अच्छी ना हो, तब तक आपकी फसल बेहतर नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो शहरों में रहते हैं और अपनी छत पर छोटी मोटी खेतीबाड़ी करना चाहते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी मिट्टी के बारे में जिसको कहा जाता है कोकोपीट। अब आप कहेंगे कि ये कोकोपीट क्या है, तो बताऊंगा कोकोपीट मिट्टी के बारे में सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्नदाता।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
2: देखिए किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि आपको बताऊंगा उस मिट्टी के बारे में जिसको जाना जाता है कोकोपीट के नाम से। भारत के बड़े शहरों में मिट्टी की जरूरत को पूरा करने के लिए कोकोपीट का उपयोग किया जाता है। इस कोकोपीट को नारियल फाइबर, कॉयर फाइबर या कॉयर के तौर पर भी जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोकोपीट को बनाया कैसे जाता है। कोकोपीट नारियल के जो छिलके होते हैं ना, छिलकों को पीसकर तैयार किया जाता है। इसकी उर्वरकता में पौधों की बढ़ोतरी के लिए बहुत सारे पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। इसका उपयोग फूल और सब्जियों की पैदावार के लिए किया जाता है। कहीं भी खेती करने के लिए मिट्टी अत्यंत आवश्यक चीज है किसान भाइयों। और भी देखिए, आप जानते हैं, आप कहीं भी खेती करना चाहते हैं तो आपको मिट्टी की जरूरत तो पड़ेगी ही। ऐसे में शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मिट्टी की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन अगर आप शहर में रहकर खेती करना चाहते हैं तो इस तरीके को स्वीकार करके आप अपनी छत पर भी छोटी छोटी थैलियों में सब्जियां उगा सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है।
1: देखिए दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं कोकोपीट। ये पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन सवाल है कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने का तरीका क्या है और हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किचन गार्डन में कोकोपीट उर्वरक का इस्तेमाल करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। पौधों में कोकोपीट डालने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, इससे बीजों या पौधों में वो जो फंगल होती है ना, फंगल नाम का रोग बिल्कुल नहीं लगता और बीज तेजी से बढ़ते रहते हैं। और इसके अलावा मिट्टी में कोकोपीट मिलाने से वो जो खरपतवार होती है वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है। पानी सोखने की अधिक क्षमता के कारण पौधा मिट्टी में नम रहता है और उसकी जो बढ़ोतरी होती है ना, वो भी शानदार होती है। दोस्तों, कोकोपीट डालने से पौधे की जड़ें भी एकदम मजबूत हो जाती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कोकोपीट और मिट्टी तैयार करने का सही तरीका क्या है। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कोकोपीट और मिट्टी तैयार करने के तरीके के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोकोपीट ईंटों को एक बाल्टी में डाल लें। अब इसमें एक या दो मग पानी डालकर बारीक बारीक तोड़ लें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। यहाँ पौधे की मिट्टी को थोड़ा ढीला कर लें। इसके बाद कोकोपीट को पानी से निकालकर मिट्टी में डाल दें और मिट्टी को बेहतर ढंग से मिला दें। कोकोपीट का उपयोग बीज बोते समय भी किया जा सकता है। इसके अलावा पौधे के लिए मिट्टी 40%, कोकोपीट 30% और गोबर की जो खाद है या वर्मी कंपोस्ट वो 30% कोकोपीट के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो जो भी आपके पौधे होंगे उनको पोषण तत्व मिलेंगे और आपकी जो फसल है वो होगी बेहतर से बेहतर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: दोस्तों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कोकोपीट के बारे में, और मैंने पीछे आपको बताया भी था कि कितना प्रतिशत होना चाहिए जिससे कि आपके पौधों को अच्छी तरह से पोषक तत्व मिल सकें। मैंने बताया था कि पौधे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मिट्टी 40%, कोकोपीट 30% और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 30% कोकोपीट के साथ मिला करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सभी छिलकों को इकट्ठा करके सबसे पहले किसी साफ जगह पर धूप में 3 या 4 दिन के लिए सुखाने के लिए रख दें। अब इन छिलकों को कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, लेकिन ध्यान रखें कोई भी टुकड़ा ज्यादा ठोस ना हो। किसी भी ठोस टुकड़े को अलग से हटा दें। अब इन छिलकों को ग्राइंडर मिक्सर में पीस लें। छिलकों को तब तक पीसना है जब तक ये पाउडर का रूप ना ले ले। हालांकि नारियल के जो छिलके हैं ना, उनको पूरी तरह से पीसना संभव नहीं है, परंतु इसमें कुछ रेशे रह जाते हैं, इसलिए पाउडर को अलग से छान लें और रेशों को अलग कर दें। अब जो पाउडर है उस पाउडर में पानी मिलाएं और 2 से 3 घंटे तक के लिए छोड़ दें। जब ये पाउडर पानी को बेहतर ढंग से सोख ले तो इसे निचोड़ लें। इससे क्या होगा, जो बाकी का पानी है वो पानी निकल जाएगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: दोस्तों, आज मैंने आपसे बात की है कोकोपीट के बारे में, और कोकोपीट को बनाने का तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बताया है, और इससे आपके पौधों को पोषक तत्व किस तरह से मिल सकते हैं वो भी समझाया है। यानी कि कोकोपीट को लेकर के जितनी भी तकनीकी बातें थीं वो सारी बातें आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन अब समय आपसे आज्ञा लेने का आ चुका है, इसलिए आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं, और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में, और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: अरे कुट

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरे थोता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चीरों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की संत्रास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देख कर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गौंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गौंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं। कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

से बता आचार्य जरा आ लहरा किया जरा आंखों से दिल में समा आचार्य।

से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगरा जधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: नैन हटते नहीं प्रकृति तुझे बार बार निहार निहार, हरियाली का ओढ़े आंचल, सरसों के छींक पीले पीले, नहरे देख लगे कुछ ऐसे, गले में जो हार हो तेरे, पानी यूं झिलमिल करता एक सेतु में मोती, गुथे हो जैसे चांदी की रेखा सी मुस्काती, पगडंडियां जगह जगह बिखरी, लताएं झूम रही कुछ ऐसे जैसे लच झूम रही हो तुझे, झूम झूम गोभी के फूल लगे कुछ ऐसे, नच पहनी हो कुआरी कन्या सी, सोन बालिया गेहूं की तूने पहनी अपने कानों में, यौवन कलश तेरे ओ प्रकृति ये ऊंचे ऊंचे शैल शिखर, ओढ़ लिया तूने ओ प्रकृति नील गगन का आंचल, पल पल छिन छिन बदले ओ प्रकृति तूने अपने परिधान, कभी हरियाली कभी नील गगन कभी आंचल में टांग सितारे, चलती पग में झरनों के घुंघरू बांध, छम छम छम की ध्वनि सुनाती तू नाच रही है, झूम झूम जो मदहोश यौवन मदिरा पीकर तुम, पतझड़ आया तुम्हें उदास कर गया, सोन पत्तियां झड़ रही पेड़ों पर से तमाम, लजाए से खड़े हैं सर को झुकाए निर्मम पतझड़ ने लूट लिए भव्य प्रकृति तेरे परिधाम, उदास न हो तू ओ प्रकृति नील गगन का ओढ़ ले आंचल, फिर से वसंत आएगा फिर वह भव्य परिधान तुझे मिल जाएगा, फिर तू लजाना ओढ़ के आंचल, दुख तो सब पर आता है सूरज अस्त होता है रोज, दीपक हम जलाते हैं पर फिर आना ही पड़ता है सूरज को दुनिया में जीवन देने को।

0: हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर आज तक की रिलीज फिल्म के गीत, गजल, भजन, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हो, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं सुनना, या फिर कैसा लग रहा है आपको सृजन और रेडियो मानव रचना भी, आप मुझे बता सकते हैं एसएमएस करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है भगवती सक्सेना जी। आप लेखिका हैं, बहुत सारा साहित्य के क्षेत्र में आपने काम किया हुआ है। आज हम उनके बारे में जानेंगे, सुनेंगे। भगवती सक्सेना जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: भगवती जी, जो सबसे पहले हमारे दोस्त आप लोगों से जानना चाहते हैं, यही कि आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? भगवती जी,
1: मैं 2012 से ही कहानियाँ लिख रही हूँ, कहानियाँ कविता, क्योंकि मेरी दो बेटियाँ थी और एक मेडिकल में हॉस्टल में गई, एक इंजीनियरिंग में, और हम हस्बैंड वाइफ रह गए और मेरे पास समय ही समय था।
0: अच्छा।
1: और मैं बचपन से
0: जी, क्या बात।
1: और मैं बचपन से डायरी में कुछ ना कुछ लिखती थी, और वो समय ने मुझे मजबूर किया, और मैं उसमें हमेशा रात भर दिन भर जब समय मिला मैं लिखने लगी, और तब से मेरी जो लेखनी चलती रही तो अभी तक चल रही है।
0: अच्छा।
1: लेखनी की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई, तब तो ऐसा कुछ नहीं था, डायरी में दो दो लाइन लिखते रहते थे, ऐसा मीडिया आजकल जितना फेमस हो गया उस समय मीडिया नहीं था।
0: क्या बात है भगवती जी, हो सके तो हमारे दोस्तों को अपनी शुरुआती दौर की कोई रचना या अभी की कोई रचना, जो भी आप हमारे दोस्तों को देना चाहें, कृपया आप दीजिए।
1: बिल्कुल जी। हाँ, मैं कविता सुनाती हूँ एक
0: जी। स्वागत।
1: मैं नारियों के ही ऊपर बहुत लिखती थी कि आगे बढ़ो। उस समय मैं पहले गोरखपुर में थी
0: जी,
1: अभी आपने मेरा परिचय, तो वहीं मैंने ये कहानी कविता लिखी थी। बुलंद है हौसले मेरे,
0: क्या बात है,
1: जीवन के कितने भी कठिन पल हो, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: इरादे कर बुलंद, अब रहो, सहना छोड़ो, शुरू करो कहना, जैसे ही कुछ ऊंचाई पर चढ़ोगी तुम्हें विरोध मिल सकता है, रन करो, झुकोगी नहीं, रुकोगी नहीं, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: बेबाक बेबाक बिंदा, हंसी पर भी तुम्हारे कुछ लोग हंसेंगे, माहौल उड़ाएंगे, नीचा दिखाने की कोशिश जारी रहेगी, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: जीवन के कठिनतम दांव को भी हंस कर टालना, हिम्मत न हारना, अनुपलब्धता को उपलब्धि में बदलना, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: अवरोध खड़ा कर रहे हर अभिमानी से, अवरोध खड़ा कर रहे हर अभिमानी से, तुम्हारी राह में आए हर अज्ञानी से,
0: क्या बात है,
1: चोट पहुंचाने वाली कुंठित मनमानी से, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: फिर दोहराना, बुलंद है हौसले मेरे।
0: हाँ।
1: ये मेरी कविता।
0: क्या बात है, क्या बात है। ए भाई, जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: हकार है, हप हप खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही बेहद बेहद खास मेहमान है भगवती सक्सेना जी, लेखिका हैं, बहुत सारी विधाओं में आप काम करती हैं। आपने उनकी अभी भी कविता सुनी नारी पर। भगवती सक्सेना जी, चुनौत में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी, आप बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपको पढ़ा गया, मानवी, हंस, गृह शोभा, अभ्युदय, कविता कानन, सत्य की मशाल, मेरी निहारिका, साहित्य वसुधा, पलाश, बड़े बड़े नाम हैं। गुजारिश होगी कि आप अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
1: ये मुझे जो भी रचना अपनी अच्छी लगती है मैं इन समाचार पत्र और ये सब में भेजती हूँ और वहाँ से लोग उसको चुनते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई पत्रिकाओं में भेजती हूँ, समाचार पत्र में आती है। मैं तो अपना काम करती हूँ कि मुझे जो अच्छी लगती है मैं भेजते ही रहती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई पत्रिका में मेरी रचना आए और लोग उसको पढ़ें और लोग मतलब उससे कुछ प्रेरित होकर कुछ आगे भी करें। और मैं नारियों के ऊपर बहुत मतलब
0: नारियों पर आपने बहुत बहुत बहुत हाँ बहुत काम,
1: उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मेरा दिमाग में हमेशा रहता है क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है जीवन में पहले।
0: जी भगवती जी, इस मोड़ पर गुजारिश होगी आप अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए।
1: हाँ, रचना का शीर्षक है
0: जीवन। जी
1: ये भी कविता है
0: जी।
1: वैसे मैं कहानियां भी बहुत लिखती हूँ
0: जी।
1: अपने जीवन के निर्णायक स्वयं ही बनना, कभी किसी को ये है समर्पण नहीं करना। जब विचलित हो मन, मौन को ही शस्त्र बनाना, निश्चित विजय तुम्हारी होगी, समय भी आएगा, जो षड्यंत्र रचेगा, साम दाम भेद सब कुछ करेगा।
0: क्या बात है।
1: राम कृष्ण के वंशज हो सदा ये याद रखना, सत्य के पथ पर चलते रहना, तुम्हारी विजय होगी। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र जब जीवन में नजर आए हिम्मत रखना, संकल्प साधना, लक्ष्य निर्धारित करके सब पाओगे।
0: क्या बात है।
1: गीता में कृष्ण के शब्दों को सदा ध्यान में रखना, ध्यान रहे ये अपना भारत इकलौता ऐसा देश है, रामायण गीता से कोई भी अनजान नहीं है।
0: क्या बात है।
1: खंडित होते देखो जब जब रिश्तों की मर्यादा को, अपने जीवन के निर्णायक सदा स्वयं ही तुम बनना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत

0: मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहदी खास मेहमान है, लेखिका है, कथाकार है, कवित्री है, भगवती सक्सेना जी। भगवती जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हैं, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, प्रेरणा साहित्य संस्था, भाषा साहित्य मंच, कलश कारवा, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी संस्थाओं की। गुजारिश होगी कि आप अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
1: हाँ, बहुत सुंदर सफर है
0: जी।
1: अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था
0: जी,
1: इसमें मैं 2021 से हूँ
0: जी,
1: और इसमें सब कुछ होता है, साहित्यिक सांस्कृतिक सम्मेलन होते ही रहते हैं
0: जी,
1: और वार्षिकोत्सव होता है जिसमें बहुत बड़ा उत्सव ही समझिए, साहित्यिक और सांस्कृतिक, पूरे देश से लोग आते हैं और जिनको बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं, राशि दी जाती है कईयों को, 31,000 11,000, वो कई क्षेत्र के रहते हैं
0: जी,
1: मतलब कोई जैसे नृत्य विधा या फिल्म के कलाकार, ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं
0: जी।
1: और वो हम उसमें हैं, मैं भी उसमें कार्यकारिणी में हूँ, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था में
0: जी, जी, जी।
1: वो डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला की संस्था है
0: जी।
1: और इसकी ब्रांचेस बाहर भी हैं और यहाँ भारत में भी कई जगह है।
0: क्या
1: आप कोलकाता में भी है?
0: हाँ, तो नाम ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाम ही है आपकी संस्था।
1: हाँ, तो इसकी ब्रांचेस शाखा कई जगह है
0: जी, जी, जी।
1: मैं इन्हीं संस्थाओं में मतलब हर समय हर महीने इसमें कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन मीटिंग्स होते रहते हैं, काव्य गोष्ठी होती है और लघु कथा भी होती है।
0: आप अपनी बहुत सारी संस्थाओं को भूल रही हैं, पंखुड़ी संस्थान है जिसके माध्यम से हम मिले हैं।
1: बिल्कुल। हाँ,
0: हम लोग जुड़े ही पंखुड़ी के माध्यम से।
1: मैगजीन में मेरी कहानी भी आई है ब्लॉग में, और वो बहुत उसकी तो मैं बहुत लोगों को बहुत दिनों से जानती हूँ, आज भी नहीं, वो डॉक्टर उपमा शर्मा से मेरी बहुत अच्छी पहचान है रानी।
0: भगवती जी, गुजारिश होगी इस मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए।
1: मेरी ये कविता का शीर्षक है आजाद परिंदा
0: जी। स्वागत है।
1: क्योंकि देखिए, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, शायद ये आपको पता ही होगा
0: जी,
1: आप देख रहे
0: जी, जी।
1: हाँ, ये इसी के ऊपर एक कविता है
0: जी। स्वागत स्वागत।
1: जिम्मेदारियों से मुक्त एक आजाद परिंदा हूँ मैं। हाँ, मैं 60+ हूँ।
0: हाँ,
1: जिंदगी जीना आ गया।
0: हाँ,
1: सब बंधनों से आजाद हूँ। डरना मैंने छोड़ दिया है।
0: हाँ,
1: मैं 60+ हूँ।
0: जी,
1: डांस भी कर सकती हूँ, गाने भी मैं गा सकती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ।
0: क्या बात,
1: 60+ हूँ।
0: क्या बात,
1: गया वो 60s का जमाना। गया वो 60s का जमाना जब लोग सिर्फ बजट करते थे। 21वीं सदी में 60+ फैशन शो में भी जाते हैं।
0: क्या बात है,
1: भी तो जाते हैं। हाँ, मैं 60+ हूँ। तन पर झुर्रियाँ हो सकती हैं, तन पर झुर्रियाँ हो सकती हैं, पर मन पर बिल्कुल नहीं है।
0: क्या बात है,
1: वो अलग बात है, वो अलग बात है कि डायबिटिक हूँ। चुपके से रसगुल्ला खाती जरूर हूँ। अंतर मन के नेटवर्क से चिंतन में ईश्वर से भी हमेशा जुड़ी रहती हूँ। हाँ, मैं 60+ हूँ।
0: क्या बात है,

0: Welcome again to Radio Manav Rachna with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर और आज हमारे साथ हैं कहानीकार कवित्री गीतकार भगवती सक्सेना जी। भगवती जी टुडेज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी आपकी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, कुछ के मैं नाम लूंगी और आपसे गुजारिश करूंगी आप अपने सफर के बारे में बताइए। शीशे के रिश्ते, परिसीमा के परे, कल्पनाओं का अंबार, पंकजा, जो आपने ट्रांसलेट किया है हिंदी में, गुजारिश करूंगी अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइएगा
1: जी। बहुत सबसे पहली किताब मेरी शीशे के रिश्ते थी
0: जी,
1: जिसमें कहानियां हैं 35-36
0: जी,
1: और उसके बाद भी परिसीमा के परे मेरी एक किताब आई है 2024 में
0: जी,
1: जिसका विमोचन भी अभ्युदय संस्था में हुआ
0: जी,
1: और इसमें भी 35-36 कहानियां हैं जो यहाँ सब लोगों के द्वारा बहुत पसंद की गई।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद अभी एक किताब इस समय हुई है 2025 में, कल्पनाओं का अंबार
0: जी,
1: उसमें कुछ कहानियां भी हैं और कुछ कविताएं भी हैं, दोनों उसमें हैं
0: जी जी।
1: अच्छा, वो डिजर्विंग बुक जो है वो स्नेहा की है, स्नेहा खानवेलकर
0: जी,
1: और उनका ट्रांसलेशन मैंने किया।
0: अच्छा, आप पंकजा, पंकजा की बात हो रही है ना अभी?
1: हाँ, पंकजा, पंकजा जी,
0: जी आप,
1: हाँ वो किताब एक आत्मकथा थी और बहुत प्यारी किताब थी।
0: अच्छा, पंकजा जो आपने ट्रांसलेट की है?
1: जब मैंने ट्रांसलेशन किया तो भी मुझे वो लिखने में भी बहुत आनंद आया।
0: क्या बात, क्या बात।
1: पूरे की है स्नेहा खानवेलकर।
0: तो गुजारिश होगी भगवती जी इस मोड पर आप हमारे दोस्तों को अपनी जो भी कविता गीत जो भी आप देना चाहें आपका स्वागत है।
1: कविता का शीर्षक है मुस्कान
0: जी। स्वागत।
1: स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग किसने देखा है? पर जिस घर में पत्नी हंसती मिले, मुस्कुराती मिले, समझना वही स्वर्ग।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: आकाश किसने छुआ है? पर जिस घर में पत्नी उड़ती दिखे, विचरण करे, समझना वही आकाश है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हवा को किसने पकड़ा है? हवा को किसने पकड़ा है? पर जहाँ पत्नी शांत मिले, आपका सत्कार करे,
0: क्या बात है,
1: समझना वही संसार है।
0: वाह, क्या
1: दूर
0: बात
1: से ही
0: क्या बात है,
1: दूर से ही मुस्कुराती दिखे, खिलखिलाती दिखे,
0: क्या बात है,
1: आपको देख आनंदित हो, समझना वही लक्ष्मी है।
0: क्या बात है। तेरा

0: संरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। आप लेखिका हैं, कवित्री हैं, कथाकार हैं, भगवती सक्सेना जी चुडोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी, आपने इतना सारा काम किया साहित्य के क्षेत्र में, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। कुछ के मैं नाम लूंगी, सहभागिता सम्मान से सम्मानित है, श्रेष्ठ सदस्य सम्मान आपको मिला है, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य चेतना सम्मान आपको प्राप्त है, राजू देवी सम्मान से आप सम्मानित है, हिंदी गौरव सम्मान, पलक रत्न सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, कलम सारथी सम्मान, बहुत लंबी लिस्ट है आपके सम्मानों की। गुजारिश होगी कि आप अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए, इतना सारा सम्मान आपको मिला, कैसा लगता है इतना सारा सम्मान लेने?
1: सबसे पहला सम्मान मुझे पलक समूह से, क्योंकि मैं वहाँ बहुत सी कहानियाँ लिखती थी और 2012 से लेकर अभी तक मैं लिख रही हूँ, तो 2019 में मुझे पलक रत्न का सम्मान मिला वहाँ से।
0: जी जी।
1: उसके बाद मैं ये अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था से 22 में मिला, 23 में मिला, 24 में मिला और 25 में अभी पूरे बैंगलोर में श्रेष्ठ सदस्य सम्मान से नवाजा गया।
0: और बेंगलोर से पधारी हैं दोस्तों हमारे स्टूडियोज में।
1: हाँ जी जी। फिर प्रेरणा साहित्य मंच से मुझे 24 में साहित्य चेतना सम्मान मिला, प्रेरणा मातोश्री राजो देवी सम्मान मिला। वहाँ पे बहुत सी प्रतियोगिता होती रहती है, उसके अनुसार हमें सम्मान मिलते हैं। और साहित्य अर्पण समूह से हिंदी गौरव सम्मान मिला, भाषा साहित्य मंच से साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया। वहाँ भी हर माह में काव्य गोष्ठी होती है और हर महीने हम लोग जुड़ते रहते हैं, कविता कहानी कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तब साल में एक बार सम्मान दिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: कलम बोलती है साहित्य संस्था, कलम के साथ ही सम्मान से मुझे नवाजा गया।
0: क्या बात।
1: और इस तरह कई संस्था थी, एक विश्व रचनाकार मंच भोपाल का था, वहाँ से कल्पना चावला सम्मान भी मुझे मिला है।
0: क्या बात।
1: और कई एक अभी हम लोगों ने एक नाटक संस्था शुरू की है अभी जो चतुर नार के नाम से विख्यात है, और उसमें हम चार लोग हैं और बेंगलोर में कई संस्थाओं में हम जाकर उस पे नाटक भी करते हैं, छोटी छोटी नाटिका समाज के उत्थान के लिए, जैसे अभी हमें पर्यावरण के ऊपर करने वाले।

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सब का जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़ है। हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है। सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते, इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था। उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का। तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तब मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए। अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे। अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में
उन्होंने अपनी खोज की होगी। यहाँ कोई पहला नहीं और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है जहाँ तख्ती लगी चुंगी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंगी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंगी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा, जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ,
कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा, यह शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाए फकीर के कदमों में, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है? आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते? तो अकबर ने कहा, तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई। अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी। साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच ले रहा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा, हटो बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके? आदमी का सिर किस काम आता है? अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या? ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं होगा। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या? तो अकबर ने कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है? दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा? तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है? जिसका कोई मूल्य नहीं, इसका नाम झुकाना है। सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो। देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा इस सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए। सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी इच्छा प्रकट की। इसलिए पूर्व में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं। पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं? सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को। अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं। और अब पूछो कि सिर की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी। अब क्या करूं? व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं? ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है? ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण। मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे। अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे? गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन
प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता है कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं। तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई। तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो, इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए। और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी। उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु सांस। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है, प्रमाण नहीं पूछता। तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी, जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता, वो तो कहता आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की प्रभुध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे, चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो
कार में बैठने की भांति है। यात्रा शुरू हो जाती है लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्रधनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विश्व बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रुके रह जाना, झुकना तो

चालाक रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे। तुम जाओ तो ही परमात्मा आए। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूं तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत। देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा जितनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझ पर जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी, और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क शायद ये है कि वो श्रद्धा ईसाइत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ। लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पर श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो। तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं, अक्सर समझना। जिसने सच में ही नानक पर श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती और नानक पर श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा नहीं वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला है। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ था, अब साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक

व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात जिससे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता। मेरे लिए वे वैसे महात्मा है जैसे महात्मा गांधी, दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उसी एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारण का तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का ना हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में ना रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पार। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। इंसानों तो कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा? अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिस पे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होगा, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत ना हुआ। फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत ना हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया ये सहयोगी बात है, अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना,
कि तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर का भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए, कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो, ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण हो। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद तक पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा? मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो, तो मेरी सुनो भी, उस अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी, तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी, वो असली श्रद्धा होगी। क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो, फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाए, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा, उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे? तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं। बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं, फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती, तो आप कहता है तो पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती। तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो, नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ, क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो, तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी, कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी, कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तथस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा
तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात? तो सुकरात ने कहा, मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों? पूछा पूछने वाले ने। क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जैसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना। असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा? जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में है। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोल कर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवेरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपद वासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई, वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे, उन्हें यह खबर मिली। वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए।
सात्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण ही नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी ना पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते, ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का बुद्ध ने पूछा, राजा और भी सक्षम है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्प मात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं, उनके शब्द शब्द में अर्थ और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तुम सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खींचे चले आए, तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उखड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकर है, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया, कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया, स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है, और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुके सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साक्ष्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे।
दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं।

असली झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जफा कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है? तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़े ही शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े, यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है, और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं। इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए,
खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्ट का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज।
4: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे। और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
3: एंड देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं दे नेवर चेंज, यू नो दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
4: लेबलिंग,
3: हां
4: अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
3: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूअसली अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
4: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
3: Because I empathized with that victim.
4: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर clarity आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, now I only have to empower, reform नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, there you go,
3: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
4: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है। और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दे, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
3: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
4: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, तो उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण हैं वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत ईजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
3: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
4: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा, तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
3: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
4: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड, बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
3: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
4: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे, तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान, जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है,

0: तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है। अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चली जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा? और फिर मैं उनको और दर्द दूं, बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया, इट्स बिकम अ साइकिल। एंड देन इट इज हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस साइकिल, एंड देन वी से वी आर ऑल इन पेन, हु विल हील हु? एवरीवन इज अ पेशेंट नाउ, सो दैट्स व्हाई लेट मी टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इसीलिए जो हम कहते हैं मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, या आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, व्हाट वी डोंट रियलाइज इज इट्स नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, इट्स फॉर माई फैमिली,
1: फॉर माई ऑल लव्ड वंस, यू नो, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ। अनअवेयरनेस में मैं कहाँ तक, कितना नुकसान। रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
0: ओनली वन, यू नीड ओनली वन। कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की, लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो एक करे, उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की।
1: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, यू नो समवेयर, ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूँगा, मैं ही कर रहा हूँ।
0: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से, तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी, इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही,
1: और ये मेरे लिए जरूरी है,
0: दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था, बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग। और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है, नुकसान किसका है? उनका, वो भूल चुके, अपना। सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है। इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग, टिल व्हेन?
1: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक,
0: लेट मी स्टॉप नाउ। नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, ओनली एंड ओनली मी। How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then, मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
1: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं, और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए, और gradually पूरे समाज के लिए। जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। तो सर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का, और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है, लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए। और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए, और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है, और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है, और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं। इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिपेक्ष में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू समवेयर, हम ऊपर उठ जाते हैं। वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है। तो सही परिपेक्ष क्या होगा?
0: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो, बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना. जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो, क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
1: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
0: क्षमा कर दो, कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस, इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ. तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फॉरगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फॉरगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो, देयर इज अ होल लिस्ट. सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं. तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो, आई एम द विक्टिम, यू नो, मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है. हमें इससे निकलना होगा, और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है
1: मैं कर रही हूँ.
0: अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर? सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए. फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए. आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव. अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं. तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
1: मैं ही करूँ,
0: मुझे करना है. अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो, कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी. क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो, जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी, या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो चोट किसको लगी? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है. तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है? और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं? से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया. अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रीलिव करते जाते हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा? तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ. अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस. एक्चुअली मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे. नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या?
1: बिल्कुल. और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. हम क्यों नहीं समझ पाते और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है.
0: एब्सोल्युटली. और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ. तो क्या होता है वो नेगेटिव. सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव. सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है. और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूँ.
1: पेन में हूँ
0: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ. इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा. मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है. अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है, दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट के मैं विक्टिम यू नो. और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी. अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन. आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, यू नो. इवन नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रियली यू नो विक्टिम्स ऑन सम बिग,
1: छोटे छोटे. आई कैन टॉक अबाउट माय सेल्फ. यार एट टाइम्स वी स्टार्ट शेयरिंग एक्चुअली इतना ज्यादा.
0: आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, एंड वो एक रिकॉर्ड की तरह प्ले होता जाता है कि जहाँ जहाँ बैठे लोगों के साथ अपना, जैसे जैसे बोलते हैं ना, अपना रोना रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ. वी आर नॉट एबल टू मूव अहेड. तो मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ ये किसने क्रिएट की, मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, आई हैव टू मूव ऑन. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहाँ पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते
1: रहते हैं. लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. इट इज यू नो एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल एक्चुअली गेटिंग इन टू इट और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस विक्टिमाइज्ड जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं वो, तो वो कौन सी विल पार है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते.
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर. अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई विल कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है,
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं. तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायु

0: है कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
1: आई थिंक समवेयर यू नो व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट यू नो वी आर एबल टू हेल्प समबडी.
0: True.
1: Because we don't, we would like to help somebody.
0: Right, but we're not really helping.
1: Yes.
0: You know, a help at that time would mean empowerment. Lekin baar baar keh kar ke hai aapke saath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga? Ya even ye kehna, koi baat nahi, sab theek ho jayega. Matlab it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi, sab theek ho jayega, wo theek hai. But by saying that, we're saying ke abhi sab galat hai. You know, to jitna hum normalcy ko create kar sake. सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.